एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज रविवार है। शक संवत 1948 के आश्विन मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 11 अक्टूबर सन 2026।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में यात्रा भी करेंगे। पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में 3,700 मीटर लंबा डबल डेकर ढांचा बनाया गया है। इसमें आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है जो परिचालन को सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अंबा समुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल है। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्र की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया गया।

0: है ताकि प्रत्येक जिले के कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अद्दीस अबाबा में अफ्रीका में भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क रेजोल्यूटली।
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को रूस के तेल शोधक कारखानों, विशेष रूप से डीजल ईंधन का उत्पादन करने वाली इकाइयों को निशाना बनाने को लेकर भी चेतावनी दी। श्री ट्रंप की टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार है और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों को यात्रा से पहले जानकारी लेने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। इस बीच उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। विविध भारती से आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास है। रास्ते कितने भी कठिन हों, हौसले मजबूत हों, तो मंजिल दूर नहीं। ये था आज का चिंतन। और लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं मीरा भजन लता मंगेशकर की आवाज में।

लीजिए सुनिए आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोका के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान प्रसारित किया जाएगा। आज आप सुनेंगे भाग 338। सुबह 6:45 पर और पुनः शाम 6:45 पर संगीत सरिता के अंतर्गत आप सुनेंगे श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आज भाग 11 प्रसारित होगा। आमंत्रित कलाकार हैं पद्मश्री शेखर सेन, गायक एवं संगीतकार, संवादिका ममता सिंह। सुबह 7 सुनिएगा भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के और 8 समाचार प्रभात। आठ पर और पुनः दिन में 2 आप सुनेंगे त्रिवेणी, आलेख एवं स्वर मंजू द्विवेदी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। नए गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर। आज के फनकार ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा अभिनेता अमिताभ बच्चन पर, आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति शकील बख्शी की। इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। पिटारा के अंतर्गत सुबह 10 बॉम्बे टॉकीज, इसमें सुनेंगे आप गौतम कृष्ण चंदानी कास्टिंग डायरेक्टर से नेहा शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति तेजश्री कामले। सुबह 11 विविधा में आप सुनेंगे सृजन भारती काव्य तरंग, हिंदी पखवाड़े पर विशेष कवि गोष्ठी, प्रतिभागी सुभाष काबरा, देवमणि पांडे, आस्करण शर्मा, दमयंती दीपा, संचालन ममता सिंह का, प्रस्तुति तेजश्री कामले की। दोपहर 12 सुनिएगा हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल और सुरीला सफर दिन में 1। दोपहर समाचार आप सुनेंगे 2:15 पर और 2:30 पर आनंद लीजिएगा सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम का। दोपहर 3 मन चाहे गीत, संवादक मंजू द्विवेदी, प्रस्तुतकर्ता

ಕಥೆ ಶ್ರೀ ಕಾಂಬ್ಲಿ. नाचे तरंग में आप सुनेंगे प्लास्टिक की घास, इसका भाग दो आज प्रसारित होगा. लेखक सुरेंद्र गुलाटी और निर्देशक दीपनाथ. दिन में 3:30 पर आप इसे सुन सकेंगे. शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत उजाले उनकी यादों के, संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का भाग 4 आज प्रसारित होगा. प्रस्तुति अनुश्री पाठक की. छाया गीत आप सुनेंगे शाम 5 बजे 5:30 पर तराने नए पुराने कार्यक्रम. शाम 6 बजे हिंदी में समाचार और 6:05 पर पुनः तराने नए पुराने कार्यक्रम जारी रहेगा. शाम 6:35 पर संध्या रंजन. विशेष जयमाला के अंतर्गत आप सुनेंगे सैनिकों की शौर्य गाथा. महावीर चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजित रॉय की गाथा आज आप सुनेंगे. वाचन और स्वर मंजरी वर्मा का है. प्रस्तुति देशरी कामले की शाम 7 बजे. इंद्रधनुष में आज आप सुनेंगे साज और आवाज, गिटार चरणजीत सिंह 7:45 पर. और रात्रि 8 बजे हवा महल के अंतर्गत सुनिएगा झलकी हमारा क्या होगा. लेखक प्रकाश साथी, निर्देशन कमल दत्त का है. आठ बजकर 45 पर समाचार संध्या और 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए. रांची 10 बजे छाया गीत सुनिएगा. प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी. 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे पुनः आप सुनेंगे विविधा. तो ये थी दिनभर के कार्यक्रमों की रूपरेखा. आप सुन रहे थे झरोका. लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का भाग 338.

रावण की आसुरी सेना का प्रायः विनाश हो चुका है। श्री राम और रावण का युद्ध सन्निकट है। रावण अपने बंधु बांधवों खर दूषण विराट बाली आदि योद्धाओं का वध करने वाले तपस्वी को ललकार रहा है कि वो उन जैसा नहीं है। वो जगत प्रसिद्ध रावण है जिसका बल और पराक्रम अनंत है। हे तपस्वी, आज तुम यदि युद्ध से भाग नहीं गए तो मैं अपना सारा वैर निकाल लूंगा। तुमने मेरे मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी वध किया है, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हारा पाला रावण से पड़ा है। श्री राम ने उसे ललकारा कि व्यर्थ की बकवास न कर, अब वो अपना पराक्रम और पौरुष दिखाए। बोले, संसार में तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, गुलाब आम और कटहल की तरह। एक केवल फूल देते हैं, दूसरे फूल और फल दोनों देते हैं, और तीसरे प्रकार के पुरुष कटहल के समान केवल फल देते हैं। इसी प्रकार एक केवल डींग हाँकते हैं, दूसरे कहते और करते हैं, और तीसरे केवल करते हैं कहते नहीं। श्री राम की इस उक्ति से क्रुद्ध होकर रावण ने वाण छोड़ना प्रारंभ किया।

किंतु श्री राम के अग्निबाण से वे भस्म होते गए। रावण के एक बाण से अपने सारथी को आहत होता देख श्री राम ने क्रोध में आकर अपने धनुष पर टंकार की, जिसका नाद सुनकर महल में मंदोदरी तथा अन्य रानियों के हृदय कांप गए। समुद्र, पर्वतों तथा पृथ्वी पर चारों ओर भय और आतंक व्याप्त हो गया।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। आज सुनिए इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं और आज देखते हैं कि शेखर दादा क्या सुनवाने वाले हैं। लेकिन हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एक नाम याद आ रहा है, शर्मा बंधु, जिनके भजन को हम सुन सुनकर कहीं छाया पाते हैं, धूप से निजात पाते हैं। शेखर दादा बताइए क्या सुनवाएंगे।
2: जैसे कभी कभी अचानक कोई तूफान आ जाता है,
1: हाँ,
2: या अचानक कोई जोरदार से बादल गरजते हैं और कोई बारिश बहुत धमाकेदार आ जाती है, वैसे ही कभी कभी बहुत कड़कती धूप हो और अचानक एक बादल आकर के छा जाए, तो जैसी शीतलता आपको अचानक मिलती है
1: जी।
2: वैसी शीतलता मिली थी 1974 के एक भजन से, जब अचानक बिल्कुल अपरिचित चार भाइयों ने, जिनको हम शर्मा बंधु के रूप में जानते हैं, उन्होंने एक भक्ति रचना प्रस्तुत की और बाद में उसको फिल्म परिणय के

0: लिए
1: जी जी
0: जयदेव जी ने उनकी ही धुन को रिकॉर्ड करके उस गीत को और भी अमृतत्व प्रदान किया। तो मैं चाहता हूं कि आज इस कड़ी में हम सबसे पहले अपने श्रोताओं को ये रचना सुनाएं, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया।

0: क्या बात है। परिणय फिल्म की ये रचना जब भी हम सुनते हैं तो सच में ऐसे लगता है कि कड़ी धूप में छाया मिल गई है। दादा, इन के जो रचना है इसकी कुछ बारीकियां बताइए, और शर्मा बंधु के चारों बंधुओं के नाम और इनके शैली के बारे में भी हमारे श्रोताओं को थोड़ी सी जानकारी।
1: अब तो खैर उसी परिवार के और भी जो आगे वाली पीढ़ियां हैं उन लोगों ने भी इसका ध्वज धारण कर लिया है, तो अब हमारे पास शर्मा बंधु की टीम्स हैं बहुत सारी। लेकिन जिस समय ये शुरू हुआ था उसकी सबसे विशेष बात ये थी कि बिल्कुल एक जैसा चारों भाई मिलकर गाते थे। ये उत्तर भारत में परंपरा नहीं थी, दक्षिण में जो है, दक्षिण के आप 50 सिंगर्स को एक साथ बिठा के गवा देंगे वो बिल्कुल

0: एक जैसा गाएंगे, पर उत्तर भारतीय संगीत परंपरा में एक जैसा गाने वाले दो सिंगर भी आपको नहीं मिलेंगे।
1: जी जी,
0: फिल्मी गानों की बात अलग है, पर यहाँ चारों भाई मिलकर गाते थे और बिल्कुल एक साथ मिलकर गाते थे। उनकी सांस लेने की जगह भी तय होती थी, ऐसा मैं लगता है मतलब सुन करके, और वो इतना प्रभावी हुआ उस समय, उसने एक जादू कर दिया। और हमारे यहाँ ये अद्भुत बात है कि हर 5-10-15 साल में ऐसा कोई ना कोई जादू अचानक कोई जाकर के छिड़क देता है हमारे ऊपर, और उस जादू से हम लोग आनंद में रहते हैं। तो ये रचना शर्मा बंधु जी की, ये लोग उज्जैन के थे मूलतः, मध्य प्रदेश के, तो बहुत अच्छी रचना उन्होंने गाई और बहुत वो उसको प्रसिद्धि मिली।
1: जी, अब आगे हमारे श्रोताओं को आप क्या सुनवाने वाले?
0: मैं ये बताना भी चाह रहा हूँ कि अमूमन अधिकांश गायकों ने गायिकाओं ने अपने प्राइवेट एल्बम्स भी निकाले, दो एक ही हैं जिन्होंने गजलों के एल्बम निकाले होंगे, पर ज्यादातर गायक गायिकाओं ने अपने भजनों के एल्बम्स निकाले।
1: जी।
0: इसमें कई चीजें बहुत प्रसिद्ध हुई, जैसे मुकेश जी की रामायण बड़ी प्रसिद्ध हुई, फिर सुधीर फड़के जी का गीत रामायण मराठी में वो अत्यंत प्रसिद्ध हुआ, बहुत सुंदर उसका सेट बना था। ऐसे ही लता जी के प्राइवेट सॉन्ग्स थे, मीरा या उनकी ज्ञानेश्वरी मराठी में, ऐसे बहुत सारी हमारे यहाँ प्राइवेट एल्बम्स की एक परंपरा मिलती है। और उसी परंपरा में एक गायक का एक बहुत ही अद्भुत हमारे ऊपर छाप हमारे मनों में है, जिस गायक ने सबसे कम गाने गाए संख्या के हिसाब से, पर जिन गायक के एवरेज के हिसाब से सबसे ज्यादा गाने हिट हुए, और उनका नाम था आदरणीय मुकेश जी।
1: जी जी।
0: और मुकेश जी ने जब भी गाया तो वो भारतीय जनमानस को हमेशा बहुत भाया।
1: जी,
0: मुझे ऐसा लगता है आप भारत के किसी भी शहर किसी भी गांव में जाएंगे तो आपको वहां मुकेश जी के गाना गाने वाले लोग मिलेंगे ही।
1: जी, चाहे दिल टूटा हो किसी का, चाहे किसी से चाहे, दिल जुड़ा हो,
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: फिल्मी गीत हो, भजन हो,
0: भजन हो, जो भी हो, क्योंकि मुकेश जी सरल गाते थे।
1: जी जी,
0: बाकी सब मान लीजिए, मैं मुझे अगर आप कहें कि मन्ना दा का गाना गाना है तो मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
1: जी।
0: लता जी का गाना है, आशा जी, इसमें थोड़ा सा रफी साहब, लेकिन मुकेश जी का गाना तो मैं गा सकता हूँ कभी भी। और ऐसा ही एक भजन उनका था जो उनके निधन के बाद रिलीज हुआ 1976 में, अमेरिका में डेट्रॉयट में मुकेश जी का अकस्मात निधन हुआ, उस समय ये भजन रिलीज हुआ था, और वो एकदम चुटकी बजाते पूरे देश में इतना प्रसिद्ध हो गया कि हम सब उसको कब से गा रहे हैं हमें भी याद नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे श्रोता इसको सुने, जितना अच्छा मुकेश जी ने गाया है उतनी ही अच्छी इसकी धुन है और उतने ही सुंदर इसके शब्द हैं।
1: जी।
0: जिनके हृदय श्री राम बसे उन और को नाम लियो न लियो, जिनके हृदय श्री राम

0: अद्भुत रचना है ये मुकेश जी के स्वर में। तो अब इस कड़ी को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। तबला संगत आशीष बिस्वास। तकनीकी सहायक HR पाटले। संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में हम लेकर आएंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार अलवर। नमस्कार अलवर कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के जरिए हम रोज उपस्थित होते हैं एक नई जानकारी के साथ और आपको देते हैं नई नई जानकारियाँ। सभी सुनने वालों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आज के नमस्कार अलवर का विषय भी हमने यही रखा है, शारदीय नवरात्रि आरंभ। शारदीय नवरात्रि का आरंभ आज से यानी 11 अक्टूबर से हो रहा है। नवरात्रि के ये 9 दिन बहुत ही पावन माने जाते हैं। मान्यता है कि इन 9 दिनों में जो भक्त पूजा पाठ करता है उस पर देवी दुर्गा की पूरी कृपा बनी रहती है। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। यह दिन माँ दुर्गा को समर्पित है। इस दिन भक्त माँ दुर्गा की पूरे विधि विधान के साथ उपासना करते हैं। साथ ही इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन भी किया जाता है।

श्रोताओं, शारदीय नवरात्र से शुरू हो रहा है त्योहारों का समय, साथ ही साथ शरीर के लिए भी बदलाव का समय है। बदलते मौसम में शरीर की ऊर्जा, खान पान और दिनचर्या को संतुलित करने का अवसर नवरात्र का संयम आगे आने वाले लंबे उत्सवों और उसके लिए तैयार करता है। बदलते मौसम में शरीर को भी एक नई लय की ज़रूरत होती है और नवरात्रि उस नई लय की शुरुआत का एक अच्छा अवसर है। उपवास, संयमित भोजन, सुबह जल्दी उठने को धार्मिक नियम मानने के बजाय मौसम के बदलाव के साथ जीवन शैली को व्यवस्थित करने की परंपरा के रूप में देखा जाता है। शारदीय नवरात्र के साथ देश में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। 9 दिन दुर्गा पूजा और उपवास के बाद दशहरा, फिर दीपावली से दीपों से सजा घर आंगन मानव जीवन के तमस रूपी अंधकार को प्रकाशित करने के लिए ये उत्सव आए हैं। इसके पूर्व घरों में तैयारियां होती हैं, बाजारों में रौनक बढ़ जाती है, सामाजिक मेल मिलाप बढ़ जाता है, लेकिन नवरात्र का महत्व सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होता है।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, शारदीय नवरात्र साल के उस दौर में आते हैं जब मौसम करवट ले रहा होता है, तापमान में बदलाव आता है और दिनचर्या भी बदलती है। भारतीय परंपरा में मौसम के इस संक्रमण को ऋतु संधि के रूप में देखा गया है। आयुर्वेद में इस दौरान खान पान और जीवन शैली में क्रमिक बदलाव की बात कही गई है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि मौसम और पर्यावरण में परिवर्तन, नींद, शारीरिक गतिविधि, भोजन की आदतें और कुछ संक्रमणों के जोखिम को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में नवरात्रि को सांस्कृतिक अवसर के रूप में देखा जा सकता है, जिससे आस्था के साथ शरीर और दिनचर्या को भी नए मौसम की तैयार करने का संदेश मिलता है।

श्रोताओं, नवरात्रि का पर्व भारत में माँ दुर्गा के नौ रूपों की पूजा के रूप में मनाया जाता है। इसे शक्ति की उपासना का सबसे पवित्र समय माना जाता है। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा को शक्ति, साहस, समृद्धि और शांति की देवी माना जाता है। नवरात्रि के नौ दिनों में माँ के नौ रूपों की विधि पूर्वक पूजा की जाती है, जिन्हें नव दुर्गा के रूप में जाना जाता है। हर दिन माँ दुर्गा के एक रूप की पूजा की जाती है और हर रूप का अपना महत्व और विशेषता है। माता के नौ रूपों में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री है। आज नवरात्रि का पहला दिन है। माता शैलपुत्री के पूजन का दिन है। शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला रूप है। शैल का अर्थ है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री माँ शैलपुत्री अपने सिर पर चंद्रमा धारण करती है और उनके दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। यह देवी अपने वाहन बैल पर विराजमान होती हैं। आज के दिन इन्हीं की पूजा होती है।

तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम नमस्कार अलवर। इस कार्यक्रम से माध्यम से हम आपसे बातचीत कर रहे थे नवरात्रि के बारे में। आज से नवरात्रि के दिन शुरू हो रहे हैं और सभी सुनने वालों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत में मन्ना डे की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे वक्त फिल्म का ये गीत।

गीतकार कैफी आजमी का लिखा गीत था। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में ये आवाज़ थी मन्ना डे की। फिल्म का नाम था हिंदुस्तान की कसम। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से।

0: गीतकार असद भोपाली का लिखा ये गीत आशा भोंसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था ठाकुर जरनैल सिंह। श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से।
1: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
2: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
3: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं। जैसे
4: जैसे

0: यहाँ कैश की परंपरा नहीं है।
1: तो लेन देन?
0: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
1: ओ,
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुँह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: आप भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान।
3: हर लेन देन अब है आसान।

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ में आप सुन रहे थे जुर्म फिल्म का ये गीत, और इसके साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.1 MHz पर। थोड़ी देर में यानी सवेरे के 8 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज एक वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ। सऊदी अरब के अधिकारियों ने कहा रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बासमुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री सड़क विकास, बंदरगाहों और विज्ञान में नवाचार से जुड़ी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कार्गो हैंडलिंग क्षमता का विस्तार करने और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखना और उद्घाटन करना शामिल है। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मौजूदा मनाली रिफाइनरी में यूब ऑयल बेस्ड टॉक्स परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कामराजार बंदरगाह पर एक अतिरिक्त कोयला घाट परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और कंटेनर टर्मिनल के लिए कैपिटल डेजिंग कार्यों की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और चेन्नई के जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100

0: महत्वाकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है, ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके।
1: इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं, ऋण की उपलब्धता और फसल कटाई के बाद की आधारभूत संरचना में सुधार करना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्थाएं बनाई गई है। स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप जिला कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं। वहीं 36 केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत 121 संकेतकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है। पहले वर्ष के दौरान योजना के लिए चुने गए सभी 100 जिलों ने अपनी कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं और उनका क्रियान्वयन जारी है। इन जिलों का औसत प्रदर्शन स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85% से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89% हो गया। नितिका गुप्ता के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। अपनी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको गुजरात की बंदरगाह क्रांति के बारे में बता रहे हैं।
2: गुजरात के पास देश की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है, लेकिन दशकों तक इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका। तटरेखा को केवल भूगोल न मानकर औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखने के दूरदर्शी विजन के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपीपी मॉडल के साथ निजी निवेश को आमंत्रित किया। बंदरगाहों को बिजली, सड़क, रेल और औद्योगिक क्षेत्रों से इस तरह जोड़ा गया कि फैक्ट्री सीधे बंदरगाह और बंदरगाह सीधे वैश्विक बाजार से जुड़ सके। इसी मॉडल पर मुंद्रा, हजीरा और पीपावाव जैसे देश के प्रमुख निजी बंदरगाह विकसित हुए। गुजरात का यही सफल मॉडल आगे चलकर सागरमाला के रूप में राष्ट्रीय नीति बना, जिसके तहत देश के बंदरगाहों की क्षमता 2014-15 के 1561 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 2817 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई और प्रमुख बंदरगाहों पर टर्नअराउंड टाइम भी घटकर आधा हो गया। भारत की समुद्री उपलब्धियां और हरित पहलों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है। इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है। देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग एक तिहाई हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल होता है।
2: इसी विजन के साथ गुजरात के कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य राहुल मोदी ने कहा,
4: जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनकी जो सोच थी कि समुद्र और बंदरगाह केवल कार्गो हैंडलिंग के साधन नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ इंजन बनने की पूरी ताकत रखते हैं, इसी सोच के साथ पोर्ट्स को उन्होंने रोड, रेलवे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, एसईजेड, लॉजिस्टिक, हिंटरलैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा।
2: समुद्री तटों को आर्थिक प्रगति के इंजन में बदलकर भारत का यह बंदरगाह आधारित विकास देश को वैश्विक समुद्री मंच पर अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
6: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात में परिवर्तन किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और किसी भी यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी

0: लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। इस बीच उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है। श्रद्धालु इसे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में नवरात्रि के आगमन के साथ ही राज्य के सभी शहर भव्य रास गरबा समारोह के लिए तैयार हैं।
2: गुजरात में नवरात्रि का ये पर्व पारंपरिक गरबों प्रज्वलित कर, उपवास रखकर, घट स्थापन जैसे विशेष अनुष्ठानों और पारंपरिक रास गरबा नृत्य के साथ उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बनासकांठा प्रतिष्ठित अंबाजी मंदिर, पावागढ़ के महाकाली मंदिर और कच्छ के माताना मढ़ मंदिर सहित राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस ने राज्य भर के 22,000 से अधिक स्थलों पर कड़े प्रबंध किए हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: तेलंगाना का विशेष पुष्प उत्सव बथुकम्मा कल एंगलीपुला बथुकम्मा के साथ शुरू हुआ। 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस उत्सव में महिलाएं तंगेड़ू, गुनुनु, गेंदा और गुलदाउदी जैसे रंग बिरंगे फूलों से बथुकम्मा तैयार करती हैं। काला सागर में जहाज से बचाए गए 3 भारतीय नागरिक रोमानिया से अब स्वदेश लौट रहे हैं। बुखारेस्ट में भारतीय दूतावास ने बताया कि साहिल संधु, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह को उनकी वापसी के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई गई है। काला सागर में सोमवार को जहाज एमवी रॉयद मम्मा दोव पर हुए हमले में घायल हुए क्रू सदस्यों में ये 3 भारतीय भी शामिल थे। सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीका के लिए भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता तथा साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमरीका और वैश्विक बाजारों के लिए 3 लाख टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ 3रा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल गरज के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
4: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
3: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
4: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
3: सारी शिकायतों

0: का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: धन्यवाद मुकेश। आज सभी समाचार पत्रों ने नवरात्रे शुरू होने की शुभकामना दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, देवी हमारे द्वार, शक्ति का वास हमारे आसपास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मंदिर सजे, शक्ति की भक्ति में आज से लीन होंगे श्रद्धालु। रामलीला मंचन का गणेश वंदना के साथ होगा शुभारंभ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शब्द जनसत्ता ने प्रकाशित किए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 56 विशेष बसें चला रही सरकार, दिल्ली की बसों में 2000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात। अमेरिका और रूस में डीजल डील, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से 7 अप्रैल तक डीजल सप्लाई बैन हटाया। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों में है, कैप्टन स्मिथ पर हमले की जांच, एनआईए को पायलट पर केस। दैनिक जागरण की खबर है, पत्र लिखता है, फ्लाई दुबई विमान अपहरण और आतंकी साजिश की होगी जांच। पहाड़ों के छोटे से गांव में बसता है मिनी सराय, मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर दूर धर्मकोट। राजस्थान पत्रिका ने यह खबर पर्यटन को बढ़ावा शीर्षक से प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी अलवर का ये सरीस का चैनल है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उदास की गायिका गजलें।

0: सुगम संगीत में आज आप सुन रहे हैं पंकज उदास की गई गजलें। कार्यक्रम की अगली गजल हम आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
5: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
6: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
7: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
8: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
5: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
6: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
5: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
6: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
5: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।

सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे पंकज उदास की गायी गजलें। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका। आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं डॉक्टर अरुण कुमार से शिव कुमार शर्मा की बातचीत पर आधारित भेंट वार्ता, फ्रोजन शोल्डर और डिसलोकेशन।

0: स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ तो हम अक्सर महसूस करते हैं, लेकिन कंधों के स्वास्थ्य का बोझ कब बढ़ जाता है यह हमें दर्द होने पर ही समझ आता है। चलिए आज बात करते हैं कंधों के बारे में ही। सुनते हैं डॉक्टर अरुण सिंह से शिव कुमार की बातचीत।
1: आज का हमारा चर्चा का विषय है वो है फ्रोजन शोल्डर, यानी कि कंधों में जो दर्द होता है, कंधों में जो पेन होता है उसके बारे में है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हम सीधे कनेक्ट होते हैं डॉक्टर अरुण सिंह से, जो कि जयपुर के जाने माने शोल्डर जॉइंट स्पेशलिस्ट है, यानी कि कंधों के जोड़ विशेषज्ञ हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार
1: सर। आज का हमारा चर्चा का विषय है फ्रोजन शोल्डर। जैसा कि नाम से तो ये लगता है कि फ्रोजन शोल्डर यानी कि जो कंधा ऐसा है जो जम गया है, और यदि हम आपकी लैंग्वेज में जाने, मेडिकली लैंग्वेज में, कैसे आप इसको एक आम श्रोता को समझा पाएंगे कि क्या होता है फ्रोजन शोल्डर?
2: पहले सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं एक सीनियर कंधा रोग विशेषज्ञ हूं, और पिछले काफी सालों से कंधे से संबंधित बीमारियों की लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का मैं काम कर रहा हूं।
1: जी,
2: तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सामान्य, बहुत ही कॉमन टॉपिक है, जो चाहे जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, कभी ना कभी कंधे में दर्द सभी के रहा होता है। वो जरूरी नहीं वो फ्रोजन शोल्डर या स्टिफ शोल्डर रहा हो, पर कंधे का दर्द बहुत ही आम है हमारी जनसंख्या में, पॉपुलेशन में। तो अगर हम बात करें फ्रोजन शोल्डर की, वो क्या होता है, तो फ्रोजन मतलब होता है कंधे का जकड़ जाना, जिसको हम मेडिकल टर्म में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या स्टिफ शोल्डर बोलते हैं। तो एक ये बहुत ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी आती हैं। कंधा बहुत कारणों से जाम होता है, उसमें से सबसे कॉमनली जो हमको देखने में मिलता है वो होता है डायबिटिक स्टिफ शोल्डर, यानी कि जिन लोगों को मधुमेह है या डायबिटीज है उनके कंधों के अंदर दर्द या स्टिफनेस बहुत कॉमन होती है।

0: जाम हो जाता है जी। अगर महिलाओं की हम बात करें तो महिलाओं के अंदर कॉमन कॉज होते हैं थायराइड की प्रॉब्लम, जो बहुत ही हाइपोथायराइडिज्म होता है उसके अंदर हमें कंधे के स्टिफ शोल्डर्स बहुत कॉमनली मिलते हैं
1: जी।
0: तो ये बीमारी जितनी ज्यादा हमारे समाज में है इसका समाधान भी बहुत आसान है। पहले तो हमें ये समझना है कि हुआ क्यों है। अगर मान लीजिए कि ये शुगर की वजह से हुआ है तो हमको पहले शुगर को अपने बहुत ही स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है। अगर ये थायराइड की वजह से हुआ है तो हमको उसका ट्रीटमेंट करना है
1: जी। डॉक्टर साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि ये दूसरे जो रोग होते हैं उनका ये साइड इफेक्ट्स की वजह से ऐसा होता है?
0: जी जी, इसमें देखिए लैक ऑफ एक्टिविटी होती है। हम बार बार ये कहते हैं कि आप किसी भी उम्र के हो अपने आप को फिजिकली फिट रखें, अपने हाथ के जॉइंट के मूवमेंट्स को लगातार करते रहें। हम देखते हैं अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग पार्क में जाते हैं, वहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ पे भी एक्सरसाइज करते हैं, तो वो जो एक्टिव रहते हैं उनके जोड़ कम जाम होते हैं। जो कि डेस्क जॉब में है, फिजिकली एक्टिव नहीं है, जो घर पे ही रहते हैं, बहुत ही कम का हिलना डुलना या एक्सरसाइज रहती है, उनके कंधे बहुत जल्दी जाम होते हैं
1: जी।
0: तो इसलिए हम लोगों को अपने जोड़ों को बहुत एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व रखना है अपनी एज के अकॉर्डिंगली। बहुत ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं होती है, पर सिंपल स्ट्रेचिंग और रेंज ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज हमको करते रहना होगा
1: जी। डॉक्टर साहब, जब हड्डियों के जोड़ों की बात होती है तो अर्थराइटिस की भी बात होती है, तो अर्थराइटिस और इसमें क्या कोई सिमिलैरिटी है या दोनों अलग बातें हैं?
0: देखिए, अर्थराइटिस जो है वो जोड़ों का खराब हो जाना हम बोलते हैं। अर्थराइटिस मतलब अर्थ मतलब जॉइंट, आइटिस मतलब उनके अंदर सूजन आना
1: जी।
0: तो कंधा एक ऐसा जोड़ है जो अर्थराइटिस से बहुत बचा हुआ जॉइंट है। अगर हम कूल्हे की बात करें, घुटने की, टखने की, कहीं की जॉइंट की बात करें तो वहां पे अर्थराइटिस ज्यादा कॉमन है। कंधे में अर्थराइटिस बहुत कम होता है, और जो स्टिफ शोल्डर होता है वो बेसिकली वहां की मांसपेशियों के या उसके कैप्सूल के टाइट होने की वजह से होता है। इसके अंदर जो जॉइंट होता है वो बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होता है, जो कि अर्थराइटिक जॉइंट में होता है
1: जी।
0: पर कई बार हमें ये मिलता है कि अर्थराइटिस शोल्डर में स्टिफनेस मिलती है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका ये है, अगर आप कंधे के एक्सरे कराते हैं, कंधे के एक्सरे आपके नॉर्मल आते हैं, आप अर्थराइटिस को और एक सिंपल स्टिफ शोल्डर को बहुत आसानी से अंतर कर सकते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, अमूमन कई बार ऐसा होता है, हमने बहुत सी लोगों को बात करते भी सुना है कि जब वो रात को सोते हैं तो जब वो करवट लेते हैं तो उनका जो कंधा है वो दर्द करता है, उनसे करवट नहीं ली जा सकती, तो क्या ये एक आम बात है या ये एक फ्रोजन शोल्डर का ही एक नतीजा है?
0: देखिए, शोल्डर की कोई भी कंडीशन होती है और स्पेशली स्टिफ शोल्डर, जब कंधा जाम होता है उसके बहुत टिपिकल से प्रेजेंटेशन होते हैं। उसके अंदर आपको रेस्ट पेन होते हैं, जब भी आप एक्टिव होते हैं, अपने दिनचर्या में व्यस्त होते हैं या कामकाज में व्यस्त होते हैं, जब उसमें दर्द नहीं होते हैं, जब आप शाम को बैठे होते हैं, टीवी देख रहे हैं या बातें कर रहे हैं, जब आपको दर्द होने शुरू हो जाते हैं और ये दर्द रात को बहुत बढ़ जाते हैं, वो चाहे आप सीधे सो रहे हो तब भी बढ़ते हैं, और स्पेशली आप जिस साइड में आपको ये स्टिफ शोल्डर है उस करवट को लेने में आपको बहुत ही परेशानी होती है, और किसी कारण से भी ये हाथ हिल जाए या टकरा जाए तो आपको कई घंटों तक उसमें आराम नहीं आता। तो ये जो पेन होते हैं ये बहुत ही टिपिकल होते हैं, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण शोल्डर के दर्द का ये भी है, तो उसके अंदर कंधे में दर्द नहीं होता है, उसके अंदर हमारे बाजू के बीच वाले हिस्से में दर्द होता है। अगर हम कंधे और कोहनी के बीच का हिस्सा जो हम लेते हैं बाजू का, वहां पे अक्सर लोग हाथ पकड़ के मसाज करते हुए या मसलते हुए हमें पाए जाते हैं कि वहां पे हमको दर्द होता है। डॉक्टर साहब, कंधे में तो इतनी दिक्कत नहीं रहती है, पर ये हमारे को बहुत परेशान करता है।
1: डॉक्टर साहब, जब किसी व्यक्ति का जो कंधा है वो जकड़ जाता है, जिसको फ्रोजन शोल्डर हो गया है, तो फिर आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचते हैं कि भाई ये विकार आपको हो गया है और ये किस डिग्री का है, मतलब अभी अभी शुरुआत हुई है, इसके बाद क्या हो सकता है, तो ये आप कैसे पता करते हैं? पहली नजर में किसी व्यक्ति को जब आप मिलते हैं, उससे बात करते हैं, वो अपनी समस्या बताता है, तो आप ये कैसे बताते हैं कि भाई आपको ये समस्या है?
0: देखिए, पहले तो हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, यानी कि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको डायबिटीज तो नहीं है, या आपका कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, या आपकी है फिजिकल एक्टिविटी या लेवल किस तरह का रहा है। फिर ड्यूरेशन पूछते हैं कि कितने टाइम से आपको ये दिक्कत है। तो फ्रोजन शोल्डर हमेशा बहुत लंबे ड्यूरेशन की परेशानी नहीं होती है, एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है जो कि एक टाइम के बाद अपने आप ही रिजॉल्व होती है, पर इसका पीरियड एक साल का भी हो सकता है, डेढ़ साल का भी हो सकता है। तो शुरुआती दौर में इसमें दर्द से शुरुआत होती है, अगर हम पहली स्टेज की बात करें तो दर्द होना शुरू होता है। सेकेंड स्टेज जो होती है इसकी फ्रीजिंग स्टेट होती है, जिसमें कंधे का जाम होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सामान्य सी बात है, अगर दर्द होता है तो आदमी उस हाथ को काम में कम लेता है और वो जाम होने लग जाता है। तीसरी जो स्टेज है वो थॉइंग स्टेज बोलते हैं, जिसके अंदर वो धीरे धीरे रिजॉल्व होती है और कंधे में इम्प्रूवमेंट आने लग जाता है। तो हमारा जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है वो इसी पर फोकस होता है कि हम इस साइकिल को जल्दी से जल्दी ब्रेक करें, और आदमी की जो पेशेंट की डिसेबिलिटी है वो इतने लंबे टाइम तक नहीं कैरी ऑन हो और वो जल्दी रिलीव्ड हो जाए। इसको मालूम करने का बहुत ही सिंपल तरीका है,

काम कर देता है। तो ऐसे जॉइंट जो कि डायबिटिक के अंदर होते हैं स्टिफ, ये बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं और इनकी जो जकड़न होती है आम स्टिफ शोल्डर वाली जकड़न से भी बहुत ज्यादा होती है। तो दूसरी स्टिफ शोल्डर की बात करें तो स्टिफ शोल्डर कई बार हमारे चोट लगने की वजह से हो जाता है, कई बार हम गिर जाते हैं या हमारा हाथ में कोई झटका आ जाता है उसके बाद से ही हमें दर्द होता है और कंधा जाम हो जाता है। कई बार कुछ ऑपरेशन की वजह से हमारे कंधे जाम हो जाते हैं, जरूरी नहीं वो ऑपरेशन हमारे कंधे से रिलेटेड हो, हमारे जैसे बाईपास सर्जरी हुई है, हमारा कोई ब्रेन का ट्यूमर या उसकी सर्जरी हुई है, या फिर हमको कई बार लकवा स्ट्रोक जिसे हम बोलते हैं वो आया हो, या फिर हम किसी भी कारण से बिस्तर पे बहुत लंबे टाइम तक रहे हो जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा नहीं रही हो, तो उसमें भी

0: के अंदर जो टिपिकल सा सिम्टम है वो होता है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ ऑल द मूवमेंट एक्टिव और पैसिव। इसका मतलब ये होता है सामान्य भाषा में, आप अगर खुद से हाथ को उठाते हो या चलाते हो या घुमाते हो तो वो नहीं चलता है, अगर दूसरा भी आपके हाथ को पकड़ के घुमाने की चलाने की कोशिश करता है तो उससे भी नहीं होता है, यानी कि आप भी नहीं कर सकते हैं, दूसरा भी नहीं कर सकता है, इसका मतलब आपका कंधा स्टिफ हो गया।
1: जी डॉक्टर साहब, जब किसी व्यक्ति को ये हो जाते हैं, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो क्या ये गंभीर माना जा सकता है या ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं?
0: देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसको हमको बहुत अर्ली ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि शोल्डर की स्टिफनेस एक ऐसी डिसेबिलिटी है जो आपको दिनचर्या के काम करने में, स्पेशली आपकी रात की स्लीप जो है उसको बहुत डिस्टर्ब करता है। तो आदमी बहुत ही मेंटली ब्रेकडाउन हो जाता है दर्द की वजह से और एक अच्छी नींद नहीं लेने की वजह से। तो इसको हम शॉर्ट करते हैं क्योंकि एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, पर ये कई बार बहुत लंबा टाइम लेती है, स्पेशली डायबिटिक जो लोग होते हैं उनके अंदर। तो इसके ड्यूरेशन को अगर हमको 4 to 6 weeks करना है, यानी कि 1-1.5 महीने में इसको हमको ठीक करना है, हमको इसको इंटरवीन करना पड़ता है, यानी कि इसके ट्रीटमेंट को हमें जल्दी जल्दी स्टार्ट करना होगा।
1: जी हाँ डॉक्टर साहब, इसके डायग्नोज की बात करें कि आप कैसे इसकी जांच करते हैं, कौन कौन से फिजिकल जांच ऐसी होती है जिसके माध्यम से आप और अधिक गहराई तक जाते हैं कि इसको क्या हो गया है?
0: देखिए, इसमें बहुत सिंपल सा है क्योंकि ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन से बहुत इजीली मालूम पड़ जाता है। अगर हम पेशेंट के हाथ के मूवमेंट टेस्ट करते हैं, उससे करवा के देखते हैं और फिर हम उसको टेस्ट करते हैं, तो ये बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं कि कंधे की कौन सी बीमारी से हम डील कर रहे हैं, यानी कि स्टिफ शोल्डर से अगर हम डील कर रहे हैं तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन इसके अंदर 100% एक्यूरेट होता है। अगर हम इन्वेस्टिगेशन की बात करें, अगर पेशेंट को थायराइड है या डायबिटीज है, और कई बार हम लोगों ने डायबिटीज डायग्नोज किया है स्टिफ शोल्डर से, हमने पेशेंट को डायबिटीज कराने के लिए बोला और वो डायबिटिक निकले क्योंकि उनको पहले कभी डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं थी, तो ये ब्लड टेस्ट होते हैं। और अगर हम इन्वेस्टिगेशन बाकी बात करें तो एक्सरे कराने हैं आपको सिंपली, और कुछ नहीं कराना है आपको। बहुत महंगी इन्वेस्टिगेशन जो सीटी स्कैन या एमआरआई कराने का शुरुआत में जरूरत नहीं होता है, आपको केवल एक एक्सरे कराने हैं जिससे आपके कंधे के बारे में ये पता चले कि उसमें कहीं आर्थराइटिस तो नहीं है जिसको हम स्टिफ शोल्डर समझ रहे हैं। अगर कंधे के एक्सरे नॉर्मल है तो हम उसको स्टिफ शोल्डर की तरह ट्रीट कर सकते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, हम एक्सरसाइज की बात करें तो किस प्रकार से इनको हिला डुलाना चाहिए, किस तरह से हम व्यायाम के द्वारा ऐसी कोशिश करें कि ये जो जकड़न है ये आए ही नहीं हमारे कंधों में, तो इसके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज आप रिकमेंड करते हैं?
0: देखिए, हम बात करें पहले तो प्रिवेंशन की, देन हम बात करेंगे क्योर की। तो प्रिवेंशन के लिए मैंने आपको ये बताया कि अपने जॉइंट के मूवमेंट्स को आप बना के रखें, यानी कि उसकी सिंपल जो एक्सरसाइज है, चाहे हाथ को उठाना हो चलाना हो, बहुत ही जेंटल वे में करना है। कभी भी कोई हैवी वेट्स उठाना या कोई भी जर्की मशीन के साथ काम करना नहीं करना है। हम बहुत ही स्मूथली उसको स्ट्रेच करें, उसको रोटेट करें, और हमें कहीं भी लेवल पे लगता है यह हमको पेन कर रहा है या हमको जकड़न दे रहा है तो उसको पुश नहीं करना है आपको। हमेशा पेन फ्री मूवमेंट्स करें, दर्द की कंडीशन में आप एक्सपर्ट की सलाह लें, उसके बाद ही अपनी एक्सरसाइज को कैरी ऑन करें। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, अगर किसी को स्टिफ शोल्डर है तो बहुत ही सिंपली वो ट्रीट होता है, उसमें आपको एक्टिव और पैसिव, यानी कि आपको खुद से भी एक्सरसाइज का प्लान बनाना है और आपको कुछ फिजियोथेरेपिस्ट जो एक्सरसाइज कराने के लिए आपको या तो जाना पड़ता है या वो आते हैं आपके पास, उनकी हेल्प ले सकते हैं और वो आपको बहुत अच्छे से ट्रेन कर देंगे कैसे आप अपने घर पे रहकर भी उन एक्सरसाइज को इजीली कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन 4 to 6 weeks लेती है ठीक होने में। तो अगर आप नियमित रूप से इसको स्टिप शोल्डर वाले पेशेंट एक्सरसाइज करते हैं तो वो 100% क्योर हो जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, आप संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे चलते चलते हमारे श्रोताओं को?
0: एक मैं बहुत यूजफुल टिप देना चाहता हूँ, बहुत बार लोग पेन नहीं मैनेज कर पाते हैं, कंधे का जो दर्द है उसका बहुत ही डिसेबिलिटी होती है, बहुत परेशान होते हैं, तो इसके लिए बहुत स्पेसिफिक इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो लोगों के अंदर बहुत भ्रांति है इस चीज को लेकर कि इंजेक्शन नहीं दिए जाते हैं और इंजेक्शन कई बार स्टीरॉयड के होते हैं तो स्टीरॉयड नहीं लेना चाहिए, हम लोग डायबिटिक हैं तो हमें स्टीरॉयड का सेवन नहीं करना है। तो ये स्टडीज कहती हैं और वर्ल्ड वाइड डेटा ये कहता है कि स्टीरॉयड बहुत ही हार्मलेस होते हैं, ये किसी भी तरह के डायबिटीज में या किसी भी बीमारी में हार्मफुल नहीं होते हैं, ये आपकी स्पेसिफिक लोकेशन पे काम करते हैं और वहीं पे उसको पेन को या स्टिफ शोल्डर को रिलीफ दे देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि इसके अंदर आपको जो डायबिटीज है उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना है और उसकी जांचें रेगुलरली करानी है।
1: तो श्रोताओं, आपने सुना, हम बात कर रहे थे डॉक्टर अरुण सिंह से जो कि जयपुर के जाने माने शोल्डर ज्वाइंट स्पेशलिस्ट यानी कि कंधों के जोड़ विशेषज्ञ हैं। कंधों के जोड़ से जो परेशान है वो आज की इस बातचीत को सुनकर बहुत ही राहत में भर गया होगा, हमें उम्मीद है कि उनको काफी फायदा होगा। डॉक्टर साहब, आपने टेलीफोन लाइन के जरिए

0: बहुत बहुत शुक्रिया।
1: श्रोताओं, जब कार्यक्रम में हम बात कर ही रहे हैं कंधों की, तो अब बात करते हैं कंधों के डिसलोकेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

0: तो सर क्या होता है ये डिसलोकेशन, ये किस तरह से इसकी लोकेशन क्या होती है कंधे की, पहले तो इसको समझाते हुए सर ये बताएं कि डिसलोकेशन यानी कि कंधे का उतर जाना किसे कहा जाता है।
1: देखिए कंधा जो जोड़ है वो हमारे शरीर का सबसे मोबाइल यानी कि सबसे ज्यादा चलायमान जोड़ है, जो कि सबसे ज्यादा मूवमेंट देता है और बहुत अच्छे से घूमता है। तो हम अगर कहें जो चीज ज्यादा घूमती है, जो ज्यादा अच्छी चलती है, उसके डिसलोकेशन के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। तो कंधा जो जोड़ है वो डिसलोकेशन बहुत बार मामूली सी चोट से भी डिसलोकेट हो जाता है, और कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या खेल कूद में लगी चोट की वजह से भी डिसलोकेट हो जाता है। इसके अंदर जो कंधे की जो बॉल होती है वो अपने सॉकेट से निकल जाती है, और जो कंधे के आसपास की मांसपेशियां होती हैं उसको फाड़ते हुए वो अटक जाती है। तो इसे बोलते हैं हम शोल्डर डिसलोकेशन, जो कि बहुत बार तो मरीज के खुद के प्रयास से भी अपनी जगह रिलोकेट हो जाता है, और ज्यादातर ये किसी डॉक्टर के हेल्प से ही अपनी जगह पर बैठ पाता है। और ये बहुत ही पेनफुल यानी कि बहुत ही दर्द वाली स्थिति होती है, और अनबेरेबल यानी कि असहनीय दर्द होता है इसके अंदर
0: जी।
1: और इसको हम कैटेगराइज करें तो ये दो तरह के लोगों के अंदर अमूमन मिलता है, एक 40 साल से कम के लोगों के अंदर, एक 40 साल से ज्यादा के लोगों के अंदर
0: जी।
1: तो हम अगर यंग लोगों की बात करें जो 40 साल से कम उम्र के हैं, उनके अंदर जो शोल्डर डिसलोकेशन होता है वो प्योर शोल्डर डिसलोकेशन होता है, यानी कि कंधे का उतर जाना मांस को फाड़ के खाली वही होता है, उसके साथ कोई फ्रैक्चर या कोई और साथ में मांसपेशियों का फटना नहीं होता है। वही हम बात करें 40 साल से बाद के लोगों के अंदर डिसलोकेशन में, तो वहां पर डिसलोकेशन के साथ फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं
0: जी।
1: और साथ में जो मांसपेशियां डिसलोकेशन में फटती हैं उसके साथ साथ उनके जो कंधे को चलाने वाली मांसपेशियां जिनको हम रोटेटर कफ टेयर मसल्स बोलते हैं वो भी फट जाती हैं। तो 40 साल के बाद जो होती हैं वो इंजरीज और भी ज्यादा सीवियर होती हैं, और 40 साल से कम जो यंग लोग हैं उनके अंदर एक सिंपल डिसलोकेशंस होते हैं
0: जी। डिसलोकेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक ही प्रकार का डिसलोकेशन होता है या इसमें आप इसको कुछ वर्गीकरण किया हुआ है आप?
1: देखिए इसमें दो तीन तरह के डिसलोकेशन होते हैं, एक एंटीरियर डिसलोकेशन आगे की तरफ, एक पोस्टीरियर यानी कि पीछे की तरफ, एक इंटीरियर डिसलोकेशन नीचे की तरफ। पर इसमें जो 90% से ज्यादा केसेस जो आते हैं वो एंटीरियर डिसलोकेशन के आते हैं, यानी कि हाथ का पीछे जाने की वजह से हमारा जो शोल्डर है वो आगे की तरफ डिसलोकेट हो गया है। तो इसके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी ये है, अगर किसी भी व्यक्ति का एक बार डिसलोकेशन हुआ है और उसको अपनी जगह सेट कर दिया गया है तो वो 99.9% कई बार ठीक हो जाता है
0: जी।
1: पर ज्यादातर पेशेंट अगर जिनको दो या दो से ज्यादा बार डिसलोकेशन हो गए हैं उनके ठीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि एक बार उसकी हीलिंग हो जाती है, वो जुड़ जाता है तो बहुत अच्छा है। अगर वो दोबारा डिसलोकेट हो जाता है किसी गिवन पीरियड ऑफ टाइम यानी 3 महीने 6 महीने साल भर के भीतर, तो उसके वापस से रिलोकेट या डिसलोकेट वापस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यंग लोगों के अंदर ये चीज ध्यान रखने की होती है, अगर आपके डिसलोकेशन

0: एक बार हुआ है तो हम उसको बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के या बिना किसी ऑपरेशन के ठीक कर सकते हैं, पर अगर वो कंधा बार बार उतर रहा है तो एक ये सीरियस कंडीशन।
1: जी डॉक्टर साहब, हमने घुटने के जो जोड़ है उसका डिसलोकेशन के बारे में काफी कुछ सुना है कि एक बार जिसका डिसलोकेट हो जाता है तो फिर वो फ्रीक्वेंटली होता रहता है, और इसी तरह से क्या कंधे पर भी ये लागू होता है कि एक बार जिस व्यक्ति का अगर डिसलोकेट हो गया कंधा तो फिर वो एक तरह से वो फ्रीक्वेंटली बार बार उसकी आवृत्ति बढ़ जाती है?
0: जी बिल्कुल, जैसे हमने कैटेगराइज किया 40 साल से पहले और 40 साल के बाद, तो 40 साल के बाद में जो हमने देखा कंधे डिसलोकेट होते हैं वो फ्रैक्चर के साथ या दूसरी मांसपेशियों को फाड़ के होते हैं। तो जो 40 साल से कम वाले लोगों के अंदर डिसलोकेशन होते हैं इनमें हमने देखा है फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है रील डिसलोकेशन की, यानी कि उनको बराबर होते रहते हैं 5 बार 10 बार 15 बार 20 बार। तो ऐसे यंग लोग जिनके अंदर डिसलोकेशन बार बार हो रहा है उनको इसको बहुत थरली इन्वेस्टिगेट कराना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है जितनी बार आपका डिसलोकेशन होता है आपकी दोनों जो जोड़ की हड्डियां होती हैं वो आपस में घिसती हैं, खराब होती हैं, आर्थराइटिस होने के और मांसपेशियों के खराब होने के चांसेस बढ़ने लग जाते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया था कि एंटीरियर, इसी तरह से आपने पोस्टीरियर और इंफीरियर के बारे में भी बताया, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे आपसे।
0: देखिए एंटीरियर का मतलब ये होता है कि कंधे का जो बॉल होती है वो आगे की तरफ आ गई है, इसको एंटीरियर डिसलोकेशन बोलते हैं, और कटोरी अपनी जगह पे ही रहती है। यहाँ पे अगर पोस्टीरियर बोले तो वही बॉल अगर हमारी पीछे चली जाती है उसको पोस्टीरियर बोलते हैं, और अगर हमारी कंधे की बॉल जो है वो अगर नीचे की तरफ आ जाती है उसको हम इंफीरियर डिसलोकेशन बोलते हैं।
1: जी, अब एक सवाल हमारे मन में ये आता है साहब कि डिसलोकेशन किन कारणों से होता है, क्योंकि व्यक्तियों के सब जो कंधे होते हैं वो सभी व्यक्तियों के तो डिसलोकेट नहीं होते हैं, तो कोई खास कारण ऐसे होते होंगे शरीर में या कुछ ऐसी क्रियाएं की होंगी जिसकी वजह से डिसलोकेशन होते हैं? तो क्योंकि आप
0: देखिए डिसलोकेशन होने का, हाँ जी जी, डिसलोकेशन होने का सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण हमको मिलता है वो हाइपरलेक्सिबिलिटी, यानी कि शरीर के अंदर अगर किसी व्यक्ति के एक्स्ट्रा लचीलापन है, हाइपरफ्लेक्स है, तो इन लोगों के डिसलोकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ना केवल कंधे में बाकी जोड़ों की में भी चोटें लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो जिनका शरीर लचीला है तो वो ये ना समझें कि हमारे को चोट लगने के चांसेस कम है, अमूमन यही सोचा जाता है कि ज्यादा लचीलापन हमारे लिए फायदेमंद है, पर उनको कंधे डिसलोकेशन की समस्याएं ज्यादा मिलती हैं। दूसरे आते हैं हमारे खिलाड़ी वर्ग जिसमें स्पोर्ट्स इंजरी में ये कंधे बार बार डिसलोकेट होते हैं, क्योंकि वो चोट में कुछ ऐसी पोजिशन में या कुछ ऐसी इंजरी में फंस जाते हैं। तीसरा हमारे यहाँ जो मुख्य कारण बनता है वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हमारी बाइक से गिरने की वजह से या किसी और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हमारे कंधे डिसलोकेट होते हैं। तो हमारे यहाँ तीन मुख्य कारण है, बिना किसी चोट के हाइपर जो लचीले लोग हैं उनके अंदर, बाकी खिलाड़ियों के अंदर और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर हमको ज्यादा से ज्यादा शोल्डर डिसलोकेशन देखने को मिलता है।
1: डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो थ्रो ज्यादा करते हैं, थ्रो वाले जो भी गेम्स या इवेंट्स होते हैं तो क्या उसमें इनकी संभावना ज्यादा होती है?
0: जी, थ्रोइंग एथलीट के अंदर हमेशा हमें कंधे की समस्याएं ज्यादा मिली हैं, चाहे वो कंधे का दर्द हो, रोटेटर कफ टेयर हो या कंधे का डिसलोकेशन हो, क्योंकि सबसे ज्यादा थ्रो करने के अंदर हमारे कंधे ही इन्वॉल्व होते हैं। तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है क्रिकेटर्स में, जैवलिन थ्रोअर्स में, डिस्कस थ्रो करने वालों में, इवन जो कबड्डी प्लेयर्स हैं हमारे यहाँ राजस्थान में बहुत कबड्डी खेली जाती है, तो कबड्डी के प्लेयर में भी बहुत ये कंधे की समस्याएं मिलती हैं। तो ऐसे खिलाड़ी इसको इग्नोर ना करें, इसको टाइमली अपनी इन्वेस्टिगेशन करा के इसको ट्रीटमेंट लें।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे कोई खिलाड़ी, जैसे आपने बताया कि जो थ्रो इवेंट्स होते हैं उसके जो खिलाड़ी होते हैं, या एक्सीडेंट से कोई गिर गया है, तो इस वजह से यदि कंधे में कभी दर्द महसूस हो तो इसका ऐसा कौन सा मोटा लक्षण देखकर बताया जा सकता है कि भाई कंधे का जो है वो डिसलोकेशन हो गया, कंधा उतर चुका है?
0: देखिए कंधे का डिसलोकेशन बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सी फीचर है, उसके अंदर कंधा बाहर की तरफ निकल जाता है और मरीज को बिल्कुल पता चल जाता है कि कोई बड़ा इवेंट हुआ है, यानी कि उसका कंधा अपनी जगह से जगह छोड़ चुका है। तो वो क्या होता है, उसको या तो अपनी जगह रिलोकेट नहीं कर पाता है, या फिर उसका हाथ जो होता है कहीं भी मूवमेंट नहीं शो करता है, ना वो ऊपर उठता है ना वो घूमता है, और असहनीय दर्द होता है उसके अंदर। कंधे में छोटा मोटा दर्द होना डिसलोकेशन की निशानी नहीं होता है। अगर आपको असहनीय दर्द हुआ है और आपकी बॉल आपको ऐसा लगता है कि अपने कंधे को छोड़ के कहीं चली गई है, तो आपको असहनीय पेन होता है। ये जनरली पहली बार जब शोल्डर डिसलोकेशन होता है ये बहुत ज्यादा होता है पेन। अगर किसी को रिकरेंट डिसलोकेशन होते हैं तो वो या तो अपने आप ही उसको बैठा लेता है, सेट कर लेता है, या फिर उसकी पेन की जो इंटेंसिटी होती है वो टाइम के साथ कम होने लग जाती है।
1: डॉक्टर अरुण, कई बार व्यक्तियों के जब कंधे जो डिसलोकेट हो जाते हैं तो कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, तो क्या अपने आप भी

0: जो डिसलोकेटेड शोल्डर होते हैं वो ठीक हो जाते हैं?
1: देखिए मैंने ये बताया कि 1% जो डिसलोकेशन है, 1% को मैं बोलूंगा कि वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, पर शोल्डर डिसलोकेशन ऐसी समस्या है जो कि रिकरेंट होती है, यानी कि कंधा एक ऐसा जोड़ है जो बार बार डिसलोकेशन देता है। तो 40 साल से ऊपर के लोग हैं जिनके अंदर हमें लगता है कि कंधा डिसलोकेट हुआ है, बाकी चीजों में नुकसान नहीं हुआ है, वो ज्यादा अच्छा करते हैं। पर 40 साल से कम उम्र के जो कि एक्टिव लोग हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हैं चाहे किसी और एक्टिविटी में हैं, वो सारे लोग जो है वो बार बार कंधा उतरने की समस्या से पीड़ित रहते हैं। तो ये कंधे का बार बार उतरना ये इंडिकेशन बनाता है कि ये अपने आप ठीक नहीं होने वाली समस्या है, इसको हमको सर्जरी से, जो कि आजकल बहुत ही एडवांस हो गई है, दूरबीन की सर्जरी से इसको फिक्स कर दिया जाता है। और वो इतनी अच्छी सर्जरी है, आदमी पूरे अपने चाहे खेल हो चाहे अपने बोझ भार के काम हो, खेती बाड़ी के काम हो, कोई भी काम वो आराम से पहले जैसा कर सकता है।
0: जी आपने सर्जरी की बात कही सर, तो सर्जरी की जो सर्जरी की बात कब आती है, क्योंकि वैसे तो लोकेट करने की कोशिश की जाती है, अपने आप भी हो जाते हैं, तो आप ये तय कैसे करते हैं कि भाई अभी इसको सर्जरी की जानी है तभी इसका जो कंधा है वो ठीक हो पाएगा?
1: देखिए सर्जरी हमेशा पहले एपिसोड के अंदर नहीं की जाती है, अगर डिसलोकेशन होता है और अगर उसकी कोई फ्रैक्चर नहीं है या बाकी मांसपेशियां उसकी सही सलामत है तो पहले एपिसोड के बाद कभी सर्जरी नहीं की जाती है। हम उसको देखते हैं, इवन कुछ लोग जो होते हैं दूसरे एपिसोड के बाद भी सर्जरी नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि शायद हम इससे ठीक हो सकते हैं। पर अगर दो या दो से ज्यादा बार अगर आपका शोल्डर डिसलोकेट होता है तो 100% ये चांसेस बन जाते हैं कि आपका तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार ये शोल्डर डिसलोकेट होगा। वहां पर सवाल आ जाता है कि अब हमको डिसीजन लेना होगा, क्योंकि इससे हमारे कंधे के जोड़ खराब हो रहे हैं, मांसपेशियां खराब हो रही हैं, हमारे मन के अंदर डर बैठता जा रहा है अपने हाथ को काम में लेने में कि कहीं ये डिसलोकेट तो नहीं हो जाएगा। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन आती है और फिर उसके बाद सर्जरी का सवाल आता है।
0: सर्जरी में कितना वक्त लगता है और उसके बाद सामान्य अवस्था में आने में, कंधे का सामान्य हो जाने में कितना वक्त लगता है?
1: देखिए सर्जरी बहुत ही एडवांस हो गई है आजकल, जैसे मैंने आपको बताया दूरबीन से सर्जरी होती है, केवल 2 या 3 छेद से ये पूरी सर्जरी की जाती है। अगले दिन से ही मरीज आराम से कसरत कर सकता है, नहा सकता है, अपने काम कर सकता है, चाहे कपड़े पहनना, खाना पीना, 4 से 6 हफ्ते में यानी कि 1 से 1.5 महीने में वो अपने सारे रूटीन के काम, ऑफिस जाना, बाकी ड्राइविंग करना, वो सारी चीजें वो बहुत आसानी से कर सकता है। खिलाड़ी को खेलने के लिए हम 3 महीने का समय लेते हैं जब तक उसको एक्सरसाइज करनी होती है, पर ये पेनलेस सर्जरी होती है और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं।
0: जब सर कई बार ऐसा भी देखा गया है, अपने बचपन में भी और अभी भी हम देखते हैं, कई बार जब शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है तो उसको पता नहीं होता कि शोल्डर डिसलोकेट हुआ है या दर्द हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो उसमें मसल दिया जाता है, उसको तेल लगाकर या अन्य किसी चीज के साथ उसको मसला जाता है, तो सर मसलना कितना उचित है?
1: देखिए मसाज तो किसी भी एक्यूट इंजरी के अंदर इंडिकेटेड नहीं होती है, चाहे वो घुटना हो, कोहनी हो, कंधा हो। मसाज क्या करती है, उस जॉइंट के अंदर और इरिटेशन करती है और उसको बाद में जाम करने में या उसको परेशान करने में मदद करती है। तो वो आपको अगर तुरंत कुछ करना है तो सबसे पहले एक्सरे करा के देखना है। एक्सरे में हमें ये पता चल जाएगा कि सारी हड्डियां, हमारे सारे जॉइंट जो है वो कई जगह पे है कि नहीं है, डिसलोकेशन है कि नहीं है, या फिर कोई फ्रैक्चर हुआ है कि नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है तो आप कुछ मेडिसिन से, और शुरू शुरू में बर्फ की सिकाई, ना कि गर्म सिकाई या कोई मसाज करना, आप बर्फ की सिकाई करें, अपने शोल्डर को थोड़ा आराम दें, कुछ मेडिसिन लें। अगर आपको लगता है कि वो दर्द कम होता जा रहा है तो आप उसी ट्रीटमेंट को फॉलो करें। अगर दर्द की इंटेंसिटी बढ़ रही है या आपको हाथ चलाने में तकलीफ हो रही है, फिर उसके बाद MRI स्कैन होता है, एक बहुत ही एडवांस इन्वेस्टिगेशन होती है जो कि खाली ज्वाइंट बोन्स के अलावा मसल्स और बाकी चीजों को भी बहुत अच्छे से बताती है, उसको कराना होता है।
0: तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमें शोल्डर डिसलोकेशन यानी कंधे के उतर जाने के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हमें उम्मीद है कि बहुत से हमारे श्रोता ऐसे होंगे जिनके कंधे डिसलोकेट होते रहते हैं या कभी, इसके बारे में सभी को जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। तो आपने बहुत बखूबी ये काम आज किया है, हमारे तमाम श्रोताओं को आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद धन्यवाद
2: श्रोताओं, आज का कार्यक्रम बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात इसी कार्यक्रम में अगले रविवार, तब तक के लिए नमस्कार।
3: कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका में आज आप सुन रहे थे फ्रोजन शोल्डर और डिसलोकेशन पर डॉक्टर अरुण कुमार से शिव कुमार शर्मा।

की बातचीत। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कानूनी सेवा संस्थानों से बच्चों के लिए बचाव पक्ष के विशेष वकीलों का समर्पित दल गठित करने का आग्रह किया। प्रदेश में इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 67 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया। शारदीय नवरात्र आज से शुरू, 9 दिन तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से बेटियों को समान अधिकार देने का संकल्प लेने की अपील की। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कानूनी सेवा संस्थानों से बच्चों के लिए बचाव पक्ष के विशेष वकीलों का समर्पित दल गठित करने का आग्रह किया है। इस दल को पुलिस स्टेशन में गिरफ्तारी से लेकर अंतिम आदेश और पुनर्वास तक लगातार काम करना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत कल नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। ये कार्यक्रम किशोर न्याय बाल देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रखा गया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अधिनियम का दृष्टिकोण दंडात्मक के बजाय सबल बनाने पर होना चाहिए, साथ ही संस्थागत कारावास को अंतिम उपाय के रूप में ही माना जाना चाहिए। प्रदेश में इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 67 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ में 205 तथा जयपुर पीठ में 408 प्रकरण आपसी राजीनामे से सुलझाए गए, साथ ही लगभग 8,61,000 लंबित प्रकरण भी निपटाए गए। इसके अलावा 2,576 करोड़ रुपए से अधिक के अवार्ड पारित किए गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से ये अदालत कल लगाई गई। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल ने कहा कि ये अदालतें आम जन तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने का एक संवेदनशील और सार्थक प्रयास है। उन्होंने कहा कि इन अदालतों का उद्देश्य न्याय की अपेक्षा रखने वाले हर व्यक्ति को राहत, संतोष और विश्वास देना है। उन्होंने विधिक सेवा संस्थाओं और वकीलों से लोक अदालत को औपचारिक आयोजन तक सीमित नहीं रखकर जनसेवा के महत्वपूर्ण अवसर के रूप में लेने का आह्वान किया। उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन की घोषणा के बाद 9 और 10 अक्टूबर को कई ट्रेनों को रद्द और कई के समय में बदलाव किया गया था। उन्होंने बताया कि आज नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन

0: पर पहुंचने वाली मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को फिर से बहाल किया गया है।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज 1 साल पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इस योजना के तहत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्र योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है ताकि हर जिले की कृषि संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप काम किया जा सके। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। माँ दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्र के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कामना की कि ये त्योहार राष्ट्रीय एकता की भावना और देश की प्रगति के संकल्प को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि और आरोग्य का संचार होने तथा हर परिवार में मंगल और खुशहाली बनी रहने की प्रार्थना की है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर प्रदेश भर के प्रसिद्ध शक्तिपीठों, देवी मंदिरों और घरों में घट स्थापना की जा रही है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्र के पहले दिन आज माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। माँ शैलपुत्री स्थिर, शक्ति और नई शुरुआत का प्रतीक है।

0: प्रदेश के सभी छोटे बड़े देवी मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजाया जा रहा है। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा और बाड़मेर जिले में वीरात्रा स्थित वांकल माता मंदिर में आज से नवरात्र मेला भर रहा है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी का शारदीय नवरात्र मेला आज से शुरू हो गया है। 20 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। यहां राजस्थान सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालु माता को चुनरी चढ़ाने पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मेले को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
1: माता के दर्शन के लिए राजस्थान सहित अन्य राज्यों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंदिर परिसर में लांगुरिया गीतों और माता के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। मेले में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। 300 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी, जबकि 250 से अधिक पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए राजस्थान रोडवेज की अतिरिक्त बसें भी लगाई गई हैं। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल मेले की व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। बांके बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: माँ दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए पंडाल बनाए गए हैं, जहां गरबा और डांडिया का आयोजन होगा। इससे पहले कल पितृ अमावस्या पर विधि विधान से श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया गया। लोगों ने जरूरतमंदों को दान पुण्य भी किया। नवरात्र में महिलाओं की सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस शक्ति सुरक्षा अभियान चलाएगी। एडीजी लता मनोज कुमार ने बताया कि अभियान के तहत गरबा डांडिया कार्यक्रमों के दौरान और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए प्रमुख आयोजन स्थलों को चिन्हित कर सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था की कार्य योजना तैयार की गई है। इस अभियान के तहत गरबा डांडिया स्थलों पर कालिका पेट्रोलिंग टीमों की तैनाती, सादे वस्त्रों में निगरानी और डिकॉय ऑपरेशन से मंचलों पर कार्रवाई होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये दिन बालिकाओं के लिए लैंगिक समानता, शिक्षा और अवसरों के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष की थीम बाल विवाह समाप्त करें और बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करें।

0: की गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों को बालिका दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बेटियां समाज की प्रगति और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव हैं। उन्होंने बेटियों के सपनों को पंख देने और उन्हें आगे बढ़ाने के समान अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लेने की अपील की। इस मौके पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अजमेर में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने और खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली लगभग 150 बालिकाओं को सम्मानित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कानूनी सेवा संस्थानों से बच्चों के लिए बचाव पक्ष के विशेष वकीलों का समर्पित दल गठित करने का आग्रह किया। प्रदेश में इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से 67 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया। शारदीय नवरात्र आज से शुरू, 9 दिन तक माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना की जाएगी। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से बेटियों को समान अधिकार देने का संकल्प लेने की अपील की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। FM बैंड 103.1 MHz पर आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

कॉकटेल 2। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे प्रीतम, अरिजीत सिंह, अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में। गीत के बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत बद किया था इस गीत को प्रीतम ने। अब कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। हम दिल दे चुके सनम इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौर, करसन सग सर गठिया की आवाज में महबूब के बोल हैं।

0: कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौर, करसन सरगठिया और साथियों के स्वरों में ये गीत आपने सुना हम दिल दे चुके सनम फिल्म से।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
4: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ।

0: उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
4: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
5: श्रोताओं, अमिताभ बच्चन का जन्मदिन, आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा अभिनेता अमिताभ बच्चन पर। आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति शकील बख्शी की, और ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर, जरूर सुनिएगा। और अब कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति।

लव यात्री। इस फिल्म का गीत देव नेगी योयो हनी सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। शब्बीर अहमद, योयो हनी सिंह और होमी दिल्लीवाला ने इस गीत को लिखा था। तरिश्क बागची ने तर्ज बनाई थी। और अब इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक यहीं संपन्न करने की दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को नमस्कार। और साथ ही आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि के पावन पर्व

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार।
1: कौन हो तुम?
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती।
0: अगर आप दोबारा पूछेंगे कौन हो तुम, तो वो कहेंगे
1: विजय दीनानाथ चौहान। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन, 16 घंटा चलवे।
0: सारी दुनिया को रहता है उनका इंतजार।
3: डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
0: वो सब तो ठीक है भाई साहब, पर क्या आपको इंग्लिश आती है?
4: लो कर लो बात। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज।
0: लोग उनको छोरा गंगा किनारे वाला कहते हैं।
5: छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खाई के पहन बनो रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला।
0: भाई हमने आज ये सोचा कि हम अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो आपको पता है। हम ये भी नहीं बताएंगे कि उन्होंने फिल्म जंजीर से एंग्री यंग मैन की अपनी पारी को शुरू किया था। हम ये भी नहीं बताएंगे कि एक के बाद एक उन्होंने बहुत सारी कामयाब फिल्में दी हैं। बल्कि हम तो आज अमिताभ बच्चन के डायलॉग दर डायलॉग, डायलॉग दर डायलॉग आपको सुनवाएंगे। ये वो डायलॉग हैं जो आपके जहन में ताजा हैं, और इनके जरिए आप अमिताभ की अभिनय यात्रा से होकर गुजरेंगे।
6: हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चल शुरू हो जाओ।

0: सबसे पहले चलते हैं ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद की तरफ। ये फिल्म साल 1971 में आई थी और अमिताभ बच्चन की आवाज से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये उनके शुरुआती दौर की फिल्म थी।
1: मौत तो एक कविता है, मुझसे कविता का वादा है मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे कविता का वादा है मिलेगी मुझको।
0: हम इस साल की दो महत्वपूर्ण फिल्मों की बातें करेंगे। पहले अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के सामने वाला सीन, फिल्म नमक हराम।
2: विकी, किस साले ने 100 रुपए पे हाथ उठाया है? बोलो कौन है वो माइकल लाल जो अपनी मां का दूध अजमाना चाहता है? आजा सामने कुत्तों कमीनों, अब हाथ उठा के दिखाओ। आओ देखे कि खाल ना खिंचवादी, तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं, ये सारा मोहल्ला जला के राख कर दूंगा, समझे?
0: इसके बाद आ जाइए साल 1973 की तरफ, प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर, जहां से अमिताभ बच्चन का असली सफर शुरू होता है।
3: तुम्हारा नाम शेर खान है?
4: इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर अब मुलाकात हो गई।
3: जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
4: आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी ये कुर्सी नहीं होगी, उस दिन तुम
5: नहीं साहब।
3: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी, और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं।
4: मतलब का बात बोलू साहब?
0: जैसे जैसे अमिताभ बच्चन आगे की फिल्में करते गए, उनकी आवाज पहले की बजाय ज्यादा कड़क होती चली गई और संवादों की अदायगी का दम बढ़ता चला गया।
3: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।
6: हाँ, क्यों?
3: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी यश चोपड़ा की फिल्म दीवार। इसी साल अगस्त के महीने में आई रमेश सिप्पी की फिल्म शोले, जिसमें जय और वीरू की जोड़ी थी। और जरा देखिए जय वीरू से अपनी दोस्ती किस कदर निभा रहा है और मौसी से कह रहा है,
7: कमाने का तो यह मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
8: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
7: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा, मौसी कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
8: हार जाता है?
7: हाँ मौसी, अब ये कम्बक जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
8: तो क्या जुआरी है?
7: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष?
8: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
7: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है, अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो 2 दिन में छूट जाएगी।
8: अरे बेटा मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो, ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
7: मौसी आप वीरू को नहीं जानते, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
8: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
7: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं।
8: तुम्हारे गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
7: बस मौसी, खानदान का पता

0: निकलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
1: भला सन 1975 से आगे हम कैसे जा सकते हैं जब तक कि हम इस खास सीन का जिक्र ना कर लें। आज इतने बरस बाद भी अमिताभ बच्चन के चाहने वालों को ये डायलॉग जबानी याद है।
2: आज खुश तो बहुत हो गया था। देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो गए तुम, बहुत खुश हो गए कि आज मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूं, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है, और ये तुम्हारी हार है। ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म यह है कि वो मेरी मां है? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म यह है कि मैं उससे प्यार करता हूं? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है उसे? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी मां सुहागिन होती हुई विधवा बनी रही। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आज मांगता हूं। मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करना जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी मां मुझे वापस दे दो।
1: इस जज्बाती सीन के बाद जरा वो सीन सुन लीजिए जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके से हमने लिया है। अमिताभ बच्चन का बिल्कुल अलग रंग जो उन्हें बड़ा एक्टर बनाता है।
3: आइए आइए प्रेमल बाबू,
2: मजाक मत कीजिए भैया, मैं ये तमाशा करते करते तंग आ गया हूं। आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगा।
3: क्यों,
2: क्या हुआ? अरे जो होना चाहिए था वो तो हो नहीं रहा है, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। आप लोग तो समझने की कोशिश ही नहीं करते ना।
3: अरे भैया, कभी कभी दो बातें ना होते हुए भी हो जाती हैं, और जो नहीं होती हैं वो कभी कभी होके भी।
4: मेरे ख्याल से तुम रहने दो।
2: ओ सुनो तो सही,
3: मैं वसुधा को पढ़ाने जाता हूँ, मैं बन के नहीं तुम बन के, और तुम बन के जो कहता हूँ वो समझती है। मैं कह रहा हूँ कहता मैं ही हूँ, कहता मैं ही हूँ, लेकिन वो मैं जो तुम और वो तुम जो मैं, यानी मैं जो तुम।
4: क्या बकरी रहे, मैं लगा रखी है, सीधी तरह बात करना।
3: सीधी तरह कहां से करूं,
2: बात तो तेरी तुम लोगों ने कर रखा है ना। देखो भैया, मैं तो सुकुमार हूं ना, लेकिन वहां जब जाता हूं तो सुकुमार नहीं हूं, परिमल हूं ना। हाँ। और परिमल शादीशुदा है वसुधा के लिए, हूं ना?
4: होना नहीं है ना।
2: हाँ है ना।
4: हाँ।
2: इसलिए जब मैं अपनी बात यानी सुकुमार की दिल की बात कहना चाहता हूं, तो वो समझती है कि परिमल जो कंबख्त शादीशुदा है,
4: कंबख्त क्या,
2: परिमल जो शादीशुदा है वो कह रहा है। इसलिए बजाय मेरे दिल की बात समझने के वो मुझे परिमल समझ के कैरेक्टरलेस यानी चरित्रहीन समझती है, मुझसे नफरत करने लगी। और ये तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जिससे मैं प्यार करता हूं वो मुझसे नहीं बोलूंगा।
3: तो ये कहना अपने दिल की बात बीच में घुसेड़कर सब गड़बड़ कर रहा है।
2: नहीं बोलूंगा अपने दिल की बात।
3: नहीं, तुम्हें अपने दिल की बात करने का कोई हक नहीं। मत भूलो कि तुम इस ड्रामे में सिर्फ एक एक्टर हो, और वही करोगे जो डायरेक्टर कहेगा।
1: जी हाँ बिल्कुल, अमिताभ बच्चन ने वही किया जो डायरेक्टर ने कहा और लेखक ने लिखा। इसीलिए अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन ये कारनामा करते नजर आए।
5: You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of the Ram Babas. Hey!
6: My name is Anthony Gonsalves.
7: What for?
6: Right. My name is Anthony Gonsalves.
1: अमिताभ बच्चन जैसा नायक दुनिया में अकेला ही होता है, फिर चाहे उसका नाम एंथनी गोंसाल्विस हो, डॉन हो या विजय। साल 1978, त्रिशूल।
8: मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए कि जो काम दूसरों ने 25 बरस में किया है मुझे एक बरस में करना है। दुनिया में कम लोग हैं जो दूसरों की कामयाबी से खुश होते हैं। मैं सोचा था पता नहीं आ पाएंगे या नहीं।
9: अगर ये जश्न तुम्हारी कामयाबी की खुशी में है तो मुझे आना ही चाहिए था, इसलिए कि तुम मानो या ना मानो।

0: लेकिन तुम्हारी इस कामयाबी में मेरे उन दो टेंडर्स का भी हिस्सा है जो तुम्हें भंडारी के जरिए मिले थे।
1: मैं तो मानता हूं कि आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से। यकीन कीजिए मिस्टर आर के गुप्ता, जिंदगी में जो कुछ भी आपसे मिला वो मैं भूला नहीं हूं। वो तो एक कर्ज है जिसे एक न एक दिन मैं जरूर उतारूंगा। जरा ठीक से साफ कीजिएगा वरना कोई देखने वाला समझेगा कि आपके हाथ किसी के खून से रंगे हैं।
0: नहीं, मैंने हाथ धो दिया है, साफ हो गया।
1: मैं तो समझता था कि ये दाग आसानी से नहीं धुलते।
0: तुमसे हाथ मिलाकर जब मैंने अपने हाथ पर खून देखा तो एक सेकंड के लिए मैं समझा मेरा अपना ही खून है। बाद में पता चला तुम जख्म।
2: यहां तक आते आते अमिताभ बच्चन के अभिनय का सूरज अपने पूरे शबाब पर चमक रहा था। साल 1978 में एक और फिल्म आई, मुकद्दर का सिकंदर।
3: मैं कोई नेता या लीडर या सोशल वर्कर नहीं हूं। मैंने अगर इन यतीम बच्चों के लिए कुछ दिया है तो अपनी बिरादरी को दिया है, अपने भाइयों को दिया है, क्योंकि क्योंकि मैं भी इन लोगों की तरह एक एक यतीम हूं। जब होश संभाला तो न मां की गोद थी न बाप का साया था, फुटपाथ की गोद थी, भूख और गरीबी का साया था। मैं था, मेरी तन्हाई थी, ठोकरें थी, जमाने की धुतकार थी, लोगों की गालियां थी। ऐसे में एक हमदर्द मिला। उसे मेरी हालत पर रहम आया, प्यार से उसने मेरे सर पे हाथ रखा, मैं रो पड़ा। उसने गीत गाकर मेरे जख्मी दिल पर मरहम लगाया। उस मरहम के सहारे हम आज जिंदा हैं, वरना हम तो कब के मर गए होते। वो गीत मेरे जहन के वादियों में आज भी गूंज रहा है, मैं उसे भूला नहीं। मैं गली या चौराहे पे वो गीत नहीं गाता, नहीं, बल्कि जब कभी भी उस खोए हुए हमदर्द की याद आती है, जब कभी भी जिंदगी से मायूस हो जाता हूं, वो गीत गुनगुना लिया करता हूं। आज वही गीत आपके सामने, अगर आप इजाजत।

0: और अब हम आ गए हैं सन 1981 की तरफ, जब अमिताभ बच्चन की एक के बाद एक तीन महत्वपूर्ण फिल्में आईं। फिल्म कालिया।
1: इसे सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके, ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके।
2: आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चढ़वा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। कालिया हर दीवार फांद के दिखा देगा जेलर साहब, हर जंजीर तोड़कर दिखा देगा, समझे?
0: इसी साल आई फिल्म नसीब।
3: ये चुटकी उधर होटल में बजाना जहाँ वेटर है, यहाँ बुलाना हो तो नाम लेके प्यार से बुलाओ।
4: अच्छा जॉन साहब, आपको हम घर छोड़ दें?
3: तुम मेरे को घर छोड़ोगे? मैं तो समझा था अपना स्टोरी होटल में खलास हो गया, पर ये तो आगे बढ़ रहा है। बढ़ने दो बढ़ने दो, बहुत दम है स्टोरी में। बहुत जल्दी खाना खत्म कर दिया आपने।
4: मैंने तो खाना खाया ही नहीं उसके साथ।
3: बहुत अच्छा किया खाना नहीं खाया, ये विलन लोग के साथ तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। जितना घटिया आदमी होता है ना उतना ही घटिया इनका खाना होता है। आप देखो अपना गला देखो है कितना अच्छा है, वो खाना खाया होता ना बैठ गया होता।
4: मैंने तुम्हें यहाँ बकबक करने के लिए नहीं बिठाया।
3: अच्छा क्या, ठीक है बकबक नहीं करता है।
4: कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? अरे बोलो ना कहाँ जाना है।
3: अरे कमाल करता है, खुद बोलता है कि बकबक करता है फिर खुद ही बात करने को बोलता है। बैलेट पेयर जाना है।
4: अच्छा वहाँ रहते हो?
3: नहीं नहीं, वहाँ तो हर शनिचर हमारा इंतजार होता है।
4: इंतजार? कौन करता है?
3: अपना महबूब।
4: महबूब?
3: हाँ अपना डार्लिंग, अपना दिल, अपना जिगर। हाँ हाँ, एक घंटा मुलाकात होता है तबीयत हरी हो जाती है। अब

0: मिलेगी ना, देखना कितने प्यार से मिलते।
1: दो किस मैं मारूंगा, दो किस वो।
2: एकदम सही जगह पर लाके पटका।
3: और साल 1981 में ही आई अमिताभ बच्चन की एक और महत्वपूर्ण फिल्म यश चोपड़ा की सिलसिला।
4: जिंदगी का सफर तय करने के लिए बस एक सहारा चाहिए। शुक्रिया उस सफर के लिए, उस मान के लिए, उस जिंदगी के लिए। चंद अल्फाज अपने नए ड्रामे से आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो जमीनों की तरह सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हसीं चांद सही, मेरी दुनिया के हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, मैं किसी राह से गुजरूं, मेरी मंजिल तू है।
3: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। साल 1984 अमिताभ बच्चन की एक बहुत यादगार भूमिका फिल्म शराबी।
2: आपको कहां से मिल गए बड़े मालिक, हम तो उन्हें बरसों से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कभी दिखाई नहीं दिए।
0: क्या बात करते हैं आप, रोज तो आप उनसे मिलते हैं, अभी बाहर आए थे, बोर्ड की मीटिंग में बुलाया आपको।
2: ओ, वो बड़े मालिक, हम ऊपर वाले बड़े मालिक की सोच रहे थे। भाई ये नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहां हैं?
5: सरकार मैं तो आपके बगल में ही खड़ा हूं।
2: नथुलाल जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी हम यहाँ आए अगल बगल नहीं हमारे सामने रहा कीजिए, ताकि हम आपकी मूछें देख सकें। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का, मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना।
5: ये तो आपका बड़प्पन है।
2: मेरा बड़प्पन है? मूछें बड़ी आपकी और बड़प्पन हमारा? नहीं, बड़प्पन तो उसका होता है जिसकी मूछें बड़ी होती, हमारा तो कोई पन नहीं। ये देख मैदान सफर चट।
5: बात कहनी थी मालिक।
2: देखो यार, इतनी शानदार मूछों के मालिक होकर के हमें मालिक मत कहा करो, कहो क्या काम है?
5: सरकार अगले महीने मेरी बेटी की शादी है।
2: वाह, ये तो बड़ी खुशी का मौका है, हम अपनी बहन की शादी में जरूर आएंगे और तमाम जनता के सामने खड़े होकर के कहेंगे कि मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो।
6: नथुलाल जी, आपकी तीन बेटियां हैं ना?
5: नहीं मुंशी जी, मेरी पांच बेटियां हैं। पढ़ाया लिखाया मगर कोई फायदा नहीं, जो भी शादी की बात करने आता है 25-30 हजार जहेज के लिए मांगता है। अब बड़ी लड़की की शादी के लिए मैंने 25 हजार रुपया बड़ी मुश्किल से जमा किया है।
2: हमारे अकाउंट में से नथुलाल जी को 2.5 लाख रुपए दे दीजिए।
0: 2.5 लाख रुपया?
2: हाँ सक्सेना साहब, 50 हजार के हिसाब से हमारी पांच बहनों का 2.5 लाख बनता है। जाइए चेकबुक लेके आइए, हम अभी साइन किए देते हैं, कल का क्या भरोसा। नथुलाल जी मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। क्यों चलो ठीक है हमने।
3: हमारे लिए ये बड़ा ही मुश्किल था कि अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्मों की संवाद आपको सुनाएं और कौन सी फिल्मों के छोड़ दें। अब अमिताभ बच्चन के इस दौर की कुछ फिल्मों के बेमिसाल डायलॉग्स। फिल्म मोहब्बतें।
7: परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। आपसे पहले जो यहां से गुजर चुके हैं वो आपके लिए बहुत ऊंचे सिद्धांत छोड़ गए हैं। आज वो सब अपनी अपनी जगह बहुत कामयाब लोग हैं, कुछ बड़े लेखक, कुछ बड़े बिजनेसमैन, कुछ बड़े नेता, पर उन सब में एक चीज सामान्य है, वो सब अपनी सारी जिंदगी इस गुरुकुल के सिखाए हुए उसूलों पर चले। आज आप सबको उस कामयाब

0: वंश का हिस्सा बनने का मौका दिया जा रहा है। हम आप सबको इस देश के चारों कोनों से चुन चुन कर यहां लाए हैं, इस विश्वास के साथ कि आप में वो काबिलियत है जो एक कामयाब इंसान बनने की होनी चाहिए। पर कोई भी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान होता है। आज आपने इस गुरुकुल में कदम रखकर बाहर की दुनिया अपने पीछे छोड़ दी है। जब तक आप यहां हैं, गुरुकुल ही आपकी दुनिया है।
1: फिल्म बागबान का ये जज्बाती कर देने वाला मोनोलॉग।
2: बागबान मेरे बारे में या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है, ये किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे के बारे में। ये किताब है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर पुल के बारे में। ये किताब है झुके हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे थे। ये किताब है कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था। ये किताब है लरसते हुए उन होठों के बारे में जिन पर कभी लोहियां थी मगर अब परसों से खामोश।
1: फिल्म पीकू का ये संवाद, ये मस्ती।
3: ऐसे वॉक करने से कुछ नहीं होगा, जाके बैठिए बाथरूम में, हो जाएगी।
4: आई नो माई सिस्टम बेटर ऑन यू।
5: आपको ना कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर है, यहाँ पर।
4: इंसान का इमोशन उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है।
6: कमाल है, आप हर बात को पेट से कैसे जोड़ देते हैं।
1: निर्माता सुजीत सरकार की फिल्म पिंक का ये संवाद जो गली गली घर घर में गूंजा।
7: नो नो योर ऑनर, ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। माय क्लाइंट सेड नो योर ऑनर एंड दिस बॉयज मस्ट रियलाइज नो का मतलब नो होता। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो, नो मींस नो।
1: सबसे आखिर के लिए हमने चुना है दो महानायकों का आमना सामना, सन 1982, फिल्म शक्ति।
8: पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने?
9: क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी?
8: तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है। इसका फैसला अदालत में होगा।
9: तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा।
8: विजय, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है।
9: मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा।
8: ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ।
9: कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है।
8: देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो।
10: दोस्तों, हमारी कोशिश यही रही कि भी किस तरीके से आप तक नए से नए अंदाज में प्रोग्राम पेश किए जाए, और हमारी ये कोशिश कितनी कामयाब हुई है इसके बारे में आप ही अपनी राय हमें नवाजिए, ताकि हमें भी समझ आए कि जो हम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम जो यूनिस ने आप लोगों के लिए पेश किया, इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी है। कि यूनिस जब मेरे पास आया ये सारे डायलॉग्स का कंसेप्ट लेके और इतने डायलॉग्स लेके, तो यकीन मानिए कि मेरे सर के ऊपर से चला गया कि अमिताभ बच्चन का कौन सा डायलॉग प्रोग्राम में लेना चाहिए, शामिल करना चाहिए और किसको छोड़ दें, क्योंकि अमिताभ बच्चन की अदायगी, किरदार का अंदाज़े बयां, उनका आवाज के ऊपर अपना किस तरीके का भाव है और किस तरीके का वजन है उनका, उस सब को देखते हुए कोई भी डायलॉग छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिलहाल हमने जो कोशिश की वो कामयाब हुई कि नहीं हुई, ये आप ही बेहतर जान सकते हैं। प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।
1: तो अब इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी के साथ अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत।

0: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं संदेश।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
4: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
5: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
7: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
6: हाँ।
7: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
6: हाँ।
7: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
6: हाँ? पता नहीं।
7: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
8: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: ना फिल्म में इन्वॉल्व होना है, वो फिल्म से मैं बहुत प्रभावित हुआ, रहमान के म्यूजिक से और संतोष सिवन की सिनेमाटोग्राफी और मनी सर का डायरेक्शन, एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। पहली बार एक ऐसे लेवल की फिल्म देखी जो मुझे लगा हाँ ये हॉलीवुड के टक्कर की फिल्म है, और ऐसी फिल्म में पार्ट होना ऐसी फिल्म का बहुत बड़ी बात होगी करके ये मेरे मन में बैठ गया। और फिर मैं अगले दिन फिर अकेले वही फिल्म देखने गया और फिर वो और भी फीलिंग स्ट्रांग हो गई। पर तब मैं आई थिंक सेकेंड ईयर MBBS में था और वहां से आई थिंक वो सीड हो गई थी, और वो फिर मैंने कैसे तैसे 3 साल निकाले और इंटर्नशिप की। फिर भी मम्मी पापा मान नहीं रहे थे, बोले कि नहीं तू अस्पताल में तो काम करके देख। फिर मैंने 1.5 साल हॉस्पिटल में भी, मैं जूनियर रेसिडेंट था।
3: अच्छा।
2: हाँ, वो भी किया। और मैं सुबह निकलता था बस में, परेल जाना होता था MGM हॉस्पिटल में, और मैं सोचता था कि मैं घर कब पहुंचूंगा, और फिर चलता रहा 1.5 साल। बट एक पॉइंट के बाद मैंने बोला मुझे नहीं करना है, तो मैंने आके मेरे मम्मी और पापा को कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेडिसिन में, मुझे फिल्म्स में कुछ करना है, मुझे पता नहीं क्या करना है, बट आई वॉन्ट टू क्विट मेडिसिन। तो तब तक आई थिंक दे हैड रियलाइज्ड कि हाँ इसने 1.5 साल अपने दिए, एक अस्पताल में काम भी किया और फिर भी खुश नहीं है, तो फिर रहने दो।
3: तो गौतम जी, पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पे लोग जब फिल्म इंडस्ट्री की ओर आते हैं तो सबसे ज्यादा तो एक्टर बनने आते हैं, उसके बाद हो सकता है कोई गीतकार बनना चाहता हो, कोई राइटर बनना चाहता हो, कोई डायरेक्टर बनना चाहता हो, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर ये बनने का ख्याल कैसे आया?

0: आप?
1: मेरी कोशिश रही थी कि मैं असिस्ट करूं और इवेंचुअली डायरेक्ट करूं, तो मेरा रास्ता वैसे शुरू हुआ। मैंने पहले एड फिल्म्स में असिस्ट किया
0: जी।
1: और फिर मुझे उसमें इतना मजा नहीं आया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे फिल्म्स में असिस्ट करना है। तब आपके फेवरेट कोई डायरेक्टर्स होते हैं
0: जी,
1: वो शॉर्टलिस्ट करके उनको चेस करने लगा मैं, बट कहीं बात नहीं बनी क्योंकि मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे फिल्म इंडस्ट्री में,
0: हाँ।
1: कोई पहचान नहीं थी। मुझे पता चला कि जेवियर्स इंस्टीट्यूट का XIC का कोर्स है, फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का पार्ट टाइम कोर्स है कुछ, तो मैंने उसका एंट्रेंस दिया और उसमें पास हुआ और फिर मेरा वो फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन का कोर्स था, आई थिंक 9-10 महीने का कोर्स था। शाम को होते थे क्लासेस और वीकेंड को फुल डे होता था, तो VT में जेवियर्स में जाता था और वहाँ अच्छा एक ग्रुप बन गया। हमारे जो प्रोजेक्ट्स थे वो बहुत अच्छे हुए, वहाँ से मुझे फिल्म्स डिवीजन के लिए फिल्में बनाने का मौका मिला। मैं और मेरे ग्रुप को, हम 4 जन थे, तो हमने गुजरात अर्थक्वेक पे भी कुछ फिल्में बनाई थी। वहाँ से मेरी जर्नी, वहाँ फिल्म्स डिवीजन के लिए काम करने के बाद मुझे लगा अभी कुछ फिल्म मेकिंग में फिनेस नहीं था, तो मैंने फिर एड फिल्म्स ज्वाइन किए। एक मेरे कजिन ब्रदर की बचपन की दोस्त थी जो एड फिल्म्स में काम करती थी, तो उससे बात की, तो फिर मैंने 1-1.5 साल एड फिल्म्स में असिस्ट किया, बहुत सीखा उधर, पैसे भी कमाना शुरू किए, अच्छे खासे पैसे भी आते थे, बट मजा नहीं आ रहा था क्योंकि रियलिज्म नहीं था तब। अर्ली 2000 में एड्स बहुत चकाचक चीजें होती थी, ये रियल कैरेक्टर्स और ये सब होते ही नहीं थे।
0: अच्छा,
1: हाँ, तब एड्स बहुत अलग बनते थे 2001-2002 में। फिर मैंने बोला कि अच्छा, 1.5 साल मैंने काम किया उधर और फिर मैंने बोला हाँ भाई फिल्म में करना है, कैसे तैसे फिल्म में करना है। तो मैं अप्रोच करता था, श्याम बेनेगल को अप्रोच किया, गोविंद नियालानी को अप्रोच किया, बट किधर कुछ हुआ नहीं। मुझे लगा हाँ रियलिस्टिक फिल्मों में असिस्ट करना है, और फिर मैंने सत्या देखी हुई थी और सत्या का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, और तब अनुराग का नाम सुना था कि उन्होंने 5 करके एक फिल्म बनाई है, और फिर उनके इंटरव्यूज आई थिंक पढ़ता था तभी, आई डोंट नो वीडियो इंटरव्यूज कितने थे उनके, उनका जो विजन था वो मुझे बहुत प्रभावित हुआ। मुझे लगा हाँ इनको असिस्ट करना चाहिए करके, तो उनके पीछे लगा रहा मैं। और एक पॉइंट आया जब मैंने उन्हें कहा कि प्लीज मुझे असिस्ट करने का मौका दो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं सारा खर्चा उठा लूंगा, बस मुझे सीखने दो। तब उन्होंने आई थिंक मेरा पागलपन देख के बोला कि ठीक है तुम आ जाओ मेरी टीम में।
0: तो जैसे आप उनके पीछे लगे रहे, तो क्या थी ये प्रक्रिया पीछे लगे रहे, मतलब किस तरह से मिल सकते हैं, इस तरह से कैसे आप?
1: मतलब मेरा लक तब था, ये तो 2001-2002 की बात है, तब DVD हुआ करती थी, तो एक DVD लाइब्रेरी थी बंबई के एक इलाका है बांद्रा, और वहाँ का जो ओनर था DVD लाइब्रेरी का ओनर, वो बड़े प्यारे इंसान थे छगन भाई, तो अनुराग भी वो लाइब्रेरी में आता था। तो मैंने बोला कि छगन भाई जरा अनुराग से कुछ मीटिंग करा लो यार, मुझे असिस्ट करना है उन्हें। तो उन्होंने फिर मुझे एक ऐसा, जस्ट एक दिन ऐसा रहा कि मैं भी था वहां और वो आए, और उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन कराया, और वहां से जब उन्हें पता चला कि मैं डॉक्टर हूं जो असिस्ट करना चाहता हूं, तो उनको और भी इंटरेस्ट आ गया कि अच्छा तुम डॉक्टर होके तुम असिस्ट करना चाहते हो। बोला हाँ, अब मैंने छोड़ दिया मेडिसिन, मुझे बस फिल्मों में असिस्ट करना है करके, वहां से शुरुआत हुई।
0: तो मतलब आपको डायरेक्शन की ओर जाना है, ऐसा आपका इंटरेस्ट आ गया, और इसलिए आप फिर अनुराग जी से मिले, तो सीधा कास्टिंग के हिसाब से शुरू हुआ या कैसे शुरू हुआ?
1: मतलब जो एसोसिएट थे राजकुमार गुप्ता
0: जी,
1: जो बड़े डायरेक्टर है Raid 1, Raid 2, आमिर, नो वन किल जैसे का के, वो एसोसिएट थे अनुराग के। और जब ब्लैक फ्राइडे शुरू हुई तो उन्होंने बोला कि देख तू कास्टिंग संभालेगा। तो पहले कैसा होता था कि 4 या 5-6 AD होते थे, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कास्टिंग करेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर कॉस्ट्यूम देखेगा, एक असिस्टेंट डायरेक्टर सेट देखेगा, ऐसा कुछ हॉलीवुड वाला सिस्टम जो अब है
0: जी,
1: जो एकदम स्पेसिफिक है, वो तब नहीं था कि 4-5 AD सब डिपार्टमेंट संभाल लो। तो प्री प्रोडक्शन में मेरा काम था कास्टिंग का, शूट के टाइम मैं कंटिन्यूटी लिखता था
0: जी,
1: और पोस्ट में मुझे नहीं इन्वॉल्व किया था, बट मैं अटेंड करता था ऐसे ही। तो जब ब्लैक फ्राइडे तैयार हुई, पोस्ट प्रोडक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने आया, तब अनुराग ने मुझे बताया कि अच्छा मैं तुझे कास्टिंग डायरेक्टर की क्रेडिट दे रहा हूँ। तब तक मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी क्रेडिट होती है
0: जी।
1: तब मैंने जाके हॉलीवुड की फिल्में देखी और उसमें मैंने देखा कि एक्टर्स के नाम के बाद कास्टिंग करके क्रेडिट आती है, तब मुझे समझा अच्छा देयर इज अ क्रेडिट लाइक दिस इन फिल्म्स। सो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। फिर अनुराग ही मेरा नाम रेकमेंड करता था, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे को बनने के बाद भी 3 साल लगे रिलीज होने।

0: को, तो अनुराग खुद बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखते थे, तो एक दो जगह मेरा नाम रेकमेंड करता कि इसको ले लो कास्टिंग के लिए।
1: अच्छा,
0: तो ऐसे मुझे एक दो प्रोजेक्ट्स उसके मिले जिसमें वो डायलॉग लिख रहा था और मैं कास्टिंग कर रहा था, तो वहां से थोड़ा कास्टिंग डायरेक्टर की जर्नी शुरू हुई
1: जी। तो कैसी प्रक्रिया रहती है इसकी कास्टिंग की, ये जानना चाहेंगे आपसे।
0: कास्टिंग में क्या होता है कि हमें एक स्क्रिप्ट मिलती है। यूजुअली क्या होता है, अगर एक फिल्म को शुरुआत होने के लिए, अगर छोटी फिल्म नहीं हो, अगर एक मीडियम साइज की फिल्म हो, तो यूजुअली एक दो बड़े स्टार होते हैं। तो जब उनकी कास्टिंग हो जाती है तो आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि भैया आप शुरू कर लो काम
1: जी।
0: तो बड़े एक दो जो भी कलाकार है वो रहेंगे, उसके अलावा जो भी डायलॉग वाले कैरेक्टर हैं उनको हमें कास्ट करना पड़ता है। तो हमें वो स्क्रिप्ट मिलती है, फिर हम हर कैरेक्टर का एक अच्छा सीन निकालते हैं, उसके फिर हम कॉपीज हम एक्टर्स को देते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये रोल में सूट होंगे। तो इस तरह से हम फिर पूरी एक लिस्ट बनाते हैं कैरेक्टर्स की, जो स्पीकिंग पार्ट्स है, जिनके डायलॉग्स है, उनकी पूरी एक लिस्ट बनाते हैं। फिर हर कैरेक्टर के हमारे जो डेटाबेस में है, हमारी जानकारी में जो अच्छे एक्टर्स है, जिनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, जिन्होंने थिएटर NSD FTII या जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसने 10-15 साल थिएटर किया हो, वैसे सब नाम हमारे पास होते हैं। तो हम उसमें देखते कि किसका चेहरा ये कैरेक्टर से मिलता है, तो वैसे हम 8-10 शॉर्टलिस्ट करते, उनको वो एक सीन भेजते, फिर वो उनको टाइम देते थे कि भैया 2 दिन बाद आपको 4-5 के बीच में आके ये सीन करना है। फिर वो एक्टर आता है, परफॉर्म करता है, फिर उसमें से जो 8-10 जन जो हमने ऑडिशन किए, उसमें से हमें जो बेस्ट 3-4 लगते हैं वो हम डायरेक्टर को दिखाते हैं कि देखो ये 3 बेस्ट थे, आप देखो, उनको अगर नहीं पसंद आए कोई भी तो और लोगों को ऑडिशन करते, वरना वो 3-4 में से कोई एक लॉक कर लेते हैं।
1: तो मतलब ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, पहले आपकी नजरों से गुजरती है सारी चीजें कि कौन आपको कौन लगता है उस किरदार में फिट बैठेगा, और देन आप आगे लेके जाते हैं। गौतम जी, इतनी बातों के बीच एक गाना तो होना चाहिए।
0: हाँ, एक पुराना गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, वो भी बहुत पसंद है
1: जी। सुन लेते।

0: तो गौतम जी, आपने कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जब अपनी शुरुआत कर ली, हर डायरेक्टर का काम करने का कुछ तरीका अलग होता है उनकी कास्टिंग जब आप करते हैं उनकी फिल्म के लिए, या कास्टिंग का अपना एक ही तरीका है?
1: यूजुअली एक ही तरीका होता है, सिर्फ है कि कोई डायरेक्टर का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक ही प्रोसेस होता है। अनुराग जैसे डायरेक्टर को 5 सेकंड लगते हैं डिसाइड करने को कि ये एक्टर फिट है कि नहीं उनके लिए। कुछ कुछ डायरेक्टर्स को और टाइम लगता है और उनको ज्यादा ऑप्शंस देखना पसंद करते हैं। कोई थोड़े इंडिसाइसिव होते हैं, लास्ट मिनट में डिसाइड करते हैं। अलग अलग टाइप के हैं, बट प्रोसेस ज्यादातर सेम ही होता है।
0: आपकी ओर से प्रोसेस सेम है और डायरेक्टर्स का नजरिया?

0: बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दो एक्टर्स दोनों परफेक्टली फिट है, समझ नहीं आ रहा है कि किसके पास जाए। तो जैसे विशाल जी के साथ हुआ था, विशाल भारद्वाज के साथ
1: जी।
0: हम दोनों कंफ्यूज थे कि हु इज द बेटर ऑप्शन, लेकिन सर ने बोला कि इसका इंट्रोडक्शन लगाओ। तो एक्टर का इंट्रोडक्शन देख के उसकी पर्सनैलिटी और क्लियर हो गई, तो जिसका पर्सनैलिटी थोड़ी फिट हो रही थी और ज्यादा
1: जी,
0: वो लॉक हो गया।
1: तो ऐसे मुश्किल मौके
0: ऐसे भी कभी कभी होता है
1: जी।
0: कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी फिट नहीं होते क्योंकि टेक्निकली सिनेमाटोग्राफर के वजह, या अगर हाइट डिफरेंस हो, या जब आप कॉम्बिनेशन कास्टिंग कर रहे हो, एक फैमिली की कास्टिंग कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू कीप ऑल द फोर कैरेक्टर्स इन माइंड कि चलो ये चार जन एक फैमिली के लगने चाहिए। तो भी कभी कभार होता है कि एक अच्छा ऑडिशन नहीं सिलेक्ट होता, वो भी होता है, बट दैट इज रेयर। मोस्टली द बेस्ट ऑडिशन गोज थ्रू यूजुअली।
1: तो अगर कोई बाय चांस सेलेक्ट नहीं होते हैं आर्टिस्ट, आपने जिनका ऑडिशन लिया है और भेजा है, तो उनको बताने का कुछ ऐसा स्पेशल प्रोसेस होता है कि कभी कोई बुरा नाम आने, कुछ ऐसा ना लगे उन्हें कि क्यों नहीं सेलेक्ट हुए?
0: देखो, एक्टर को तो बुरा लगता ही है, पर हम उन्हें कोशिश करते समझाने की कि ये इसमें आपकी गलती नहीं है। कि मैं हमेशा एक्टर को तो पर्सनली मत लो, क्योंकि बहुत चीजें जाती है इन एक कैरेक्टर को फाइनल करने में, तो पर्सनली ना ले और ऑडिशन करते रहें विद द सेम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑडिशन करें, नेगेटिवली ना ले और आगे बढ़े, क्योंकि ये सब एक्टर के साथ होता है। हर एक्टर को बहुत समय लगता है टू रीच दैट सक्सेसफुल पोजीशन, एवरी एक्टर। आपको वो जर्नी क्रॉस करनी है थ्रू रिपीटेड फेलियर्स।
1: तो कभी ऐसा हुआ कि किसी एक्टर को आपने, मतलब वो सिलेक्ट नहीं हुए हो लेकिन वो बुरा मान गए हो, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ हो कि नहीं?
0: हाँ, तो ऐसे भी थे एक्टर्स। एक एक्टर है, दो चार साल पहले मैंने उसके साथ तीन चार बार काम किया है, उसका कॉल आया मुझे कि गौतम भाई मैंने फिल्म में असिस्ट किया और मुझे समझ आया कि प्रोसेस क्या है, कैसे कास्टिंग होती है, और मैं खामखा आपको कोसता था कि आपने मुझे कास्ट नहीं किया करके। तो जब एक एक्टर कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है कास्टिंग असिस्टेंट की तरह, या एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पोजीशन में काम करता है, तो उन्हें पता चल जाता है बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, कैसे कास्टिंग होती है, क्या जाता है डिसीजन मेकिंग में, और उन्हें फिर बेटर समझ आता है। इसलिए मैं हर एक्टर को बोलता हूँ, पर्सनली मत लो, बस अपने क्राफ्ट पे काम करो, कोशिश करो कि आप जो पिछले साल जो आपकी एक्टिंग एबिलिटी थी, इस साल उस पिछले साल से बहुत बेटर होनी चाहिए। तो क्राफ्ट पे काम करते रहो, वो मेरी एडवाइस होती है हर एक्टर को, और आपका टाइम आएगा। ये एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, यहाँ लंबी रेस के घोड़े जीतते हैं।
1: पूरे वक्त अपने कला को निखारते रहिए, तराशते रहिए।
0: हाँ,
1: अगर हम देव डी की बात करें जिसकी कास्टिंग आपने की, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, क्योंकि इसकी कास्ट एक से बढ़कर एक है, बिल्कुल अलग तरह की कास्ट है, कुछ टिपिकल किरदार उसमें बहुत कम है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से आपने चुना?
0: आई थिंक अनुराग भी काफी इन्वॉल्व होता है कास्टिंग में, और अभय तो पहले से ही था कास्ट, अभय का ही आइडिया था आई थिंक एक मॉडर्न डे देवदास बनाना, और अनुराग ने और विक्रम ने शायद वो स्क्रिप्ट लिखी, और माही को आई थिंक अनुराग ने ही एक पार्टी में देखा था, जो कल्की का पार्ट है
1: जी
0: चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी, और जैसा पार्ट था वो पार्ट आज बहुत कॉमन दिखता है, बट 2007 में वो बहुत ही शॉकिंग था एक्टर्स के लिए। तो वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ये ट्राई भी नहीं करना है करके। बट इसमें हमने बहुत एक्टर्स को ऑडिशन किया था, राधिका आप्टे को किया था, रिचा चड्डा, ऑल दीज पीपल वर टेस्टेड, फाइनली वी वेंट विद कल्की।
1: और बिल्कुल सही लगती हूँ किरदार, जैसा कह रहे थे, ऐसा लगता है वो ही वो उस किरदार को बहुत अच्छी तरह से निभा सकती हैं। तो यहाँ पर हम एक गाना भी सुन ले, क्योंकि इतनी सारी मेहनत की आपने इसके पीछे, तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: हाँ, ये देवडी का गाना है, अमित त्रिवेदी का, साली खुशी आई थिंक।
1: खुशियों को याद करते हुए गाना सुनते हैं आपकी पसंद पर।
2: जा...

0: तो कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि बहुत से किरदार को सोच के ही कहानी लिखी जाती कि इसमें यही व्यक्ति अच्छा लगेगा और उसने मना कर दिया, मान लीजिए उस एक्टर ने। फिर उसके बाद जब किरदार खोजना होता है तो मुश्किल ज्यादा होती है क्या? जैसे किसी खास एक्टर को सोच के लिखा गया हो और उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं करना इसमें काम।
1: मतलब आई थिंक ये बात है कि देखो मुश्किल तो होती है लेकिन दूसरा ऑप्शन मिल ही जाता है
0: जी।
1: नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, लाइक आपको हमेशा एक अच्छा एक्टर मिल ही जाएगा और फिर आप उस कैरेक्टर को थोड़ा सा रीराइट करते हो उसे मन में रख के।
0: और सबसे ज्यादा टाइम किस फिल्म की कास्टिंग के लिए आपको लगा?
1: सबसे ज्यादा वक्त एक हमने एक प्रोजेक्ट के लिए किया जो शेल्व हो गया था। हमने ऑलमोस्ट फोर एंड हाफ मंथ्स कास्टिंग की थी मिडनाइट चिल्ड्रेन की, जो विशाल जी बना रहे थे नेटफ्लिक्स के लिए। वो मैं अनमोल अहूजा जो कास्टिंग बे के चलाते हैं, हम दोनों मिलके कर रहे थे वो, क्योंकि बहुत बड़ा कास्ट था वो। लेकिन सैडली प्रोजेक्ट शेल्व हो गया था वहाँ। आई थिंक उससे ज्यादा टाइम मैंने कोई प्रोजेक्ट पे स्पेंड नहीं किया।
0: और सबसे कम किस में लगा आपको समय?
1: सबसे कम आई थिंक काफी कम, सबसे कम नहीं बट काफी कम टाइम लगा नो वन किल जेसिका में, क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ एक महीना ही था, महीना या सवा महीना था, और बड़ा कास्ट था, 50-70 स्पीकिंग पार्ट्स थे। बट वो था कि हम बिकॉज शूट दिल्ली में था तो हमने दिल्ली में ही सारा टैलेंट 3-4 हफ्ते में टेस्ट करके, आई थिंक टचवुड राज को 95% ऑफ द ऑप्शंस पसंद आए थे। काफी मतलब लगा था जो मुश्किल होगा लेकिन बहुत स्मूथली हुआ वो,
0: क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट थी जैसे कि आप बता रहे हैं
1: और टाइम बहुत कम था
0: जी। अगर सीक्रेट गेम्स की हम बात करें तो ये अगर मुझे सही जानकारी है तो भारत की पहली ओरिजिनल ओटीटी सीरीज है ये, और उसकी कास्टिंग भी आपने की है?
1: मैंने season 2 की थी, season 1 मुकेश छाबड़ा ने किया था
0: जी। पर ओटीटी और फिल्म्स की कास्टिंग में कुछ ऐसा फर्क रहता है?
1: नहीं, कुछ फर्क नहीं होता है। ओटीटी में फिल्म वाला ही सुर होता है परफॉर्मेंस का, तो बस वो एक लंबी फिल्म होती है, लेकिन ज्यादा फर्क है नहीं। फर्क आती है जब आप टीवी सीरियल जो सास बहू टाइप के टीवी सीरियल होते हैं उनके एक्टर्स अलग होते हैं, उनका परफॉर्मेंस हाइटेंड होता है, थोड़ा रियलिज्म से थोड़ा ऊपर होता है वो
0: जी।
1: तो वहाँ अलग एक्टर्स होते हैं। जैसे मेरे को तकलीफ होती है जब कुछ एक्टर्स को मैंने, जिन्होंने बहुत सारा सोप ऑपेरा वाले शोज किए हैं, तो उनको फिल्म में अडेप्ट करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए टाइम लगता है। कर पाते हैं इवेंचुअली बट थोड़ा सा वो मीडियम से इस मीडियम में आने को टाइम लगता है, बट वेब और फिल्म में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है।
0: और आपने कभी ऐसा सोचा कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम आप करते हैं उसके अलावा भी कोई काम करना चाहते हैं ऐसा कुछ?
1: अभी भी डायरेक्ट करने का सपना तो है ही है, वही पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: और कुछ कभी किया हो बीच में, मतलब ऐसे कास्टिंग के काम के बीच में ऐसा कुछ अपना कुछ काम करते हैं? कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये इस रोल में तो मैं ही फिट बैठता हूँ?
1: नहीं नहीं, मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं है।
0: और आपके ऑफिस में अगर मान लीजिए आपकी टीम में कोई हो तो कभी ऐसा लगता है कि ये इस रोल
1: में? कोशिश करता हूँ कि अपनी टीम को कास्ट ही नहीं करूँ। क्या है क्योंकि दूसरे एक्टर्स को फिर बुरा लगता है, एक्टर्स को लगता है कि अच्छा ये कास्टिंग के जरिए काम मिल जाएगा करके, वो भी बहुत गलत होता है।
0: हाँ।
1: तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो बिगनिंग में एक दो बार हुआ होगा कि चलो टीम को ही कास्ट कर लो या छोटे छोटे पार्ट जिसमें इतना फर्क नहीं पड़ता हो, बट जब कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, जब बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उनको काम नहीं मिला और जो कास्टिंग असिस्टेंट्स को काम मिला, तो एक्टर्स में बहुत एंगर देखा मैंने। तो वो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ना, तो मैंने तब वो रूल ही बना दिया मेरे टीम के साथ कि भाई अगर आप मुझे असिस्ट कर रहे हो तो आपको मैं ऑडिशन नहीं करूंगा, अगर आपको एक्ट करना है तो आपका कास्टिंग का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, ये रूल मैंने बना दिया।
0: तो अगर किसी को आपकी टीम में से कास्ट होना है किसी फिल्म में तो उसको टीम छोड़नी पड़ेगी?
1: हाँ, और

0: एज एन एक्टर ऑडिशन करना पड़ेगा, फिर उनकी जगह नहीं है मेरे टीम में।
1: तो मतलब वो फेयरली हो ताकि सब,
0: हाँ, ताकि जो लोग पूरा टाइम एक्टिंग में घुसे हुए हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, वर्कशॉप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्हें एक बेटर चांस मिले।
1: तो गौतम जी, यहाँ आपकी पसंद का एक गीत सुनते चलें और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रेखा भारद्वाज जी ने जो गाया है कबीरा, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं।

0: तो गौतम जी, जब कास्टिंग की हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की कास्टिंग होती है, तो मेन कैरेक्टर की, जैसे आपने बताया कि पहले मेन कैरेक्टर्स की जब कास्टिंग हो जाती है, उसके बाद आगे के कैरेक्टर्स आप चूज करते हैं, तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपने बताया संवाद वाले कुछ कैरेक्टर होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई संवाद नहीं होता है, पर वो फिल्म में नजर आते हैं, बार बार भी नजर आते हैं, तो किस तरह से ये सारी कास्टिंग का काम होता है?
1: देखो, पहले तो आप प्राइमरी कैरेक्टर्स पे ध्यान देते हैं, जिनका सबसे ज्यादा किरदार है, उनकी कास्टिंग पहले होती है। फिर हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स पे जाते हैं, जिनके 3-4 सीन हो, साइड बाय साइड हो ही जाता है, वो भी प्राइमरी के साथ शुरू करते हैं। फिर जब प्राइमरी और सेकेंडरी कवर हो जाते हैं, तब टर्शरी होते एक लाइन वाले, वो फिर हम ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 डेज सारे कैरेक्टर्स को बुलाते हैं, सारे एक्टर्स को बुलाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि एक ही लाइन बोलनी है, तो 5-7-10 मिनट में एक एक ऑडिशन हो जाता है। तो एक 4-5 दिन जाते हैं, सारे टर्शरी करते हैं, बाकी जो नॉन स्पीकिंग पार्ट है, अगर उसमें टर्शरी में भी कोई है जिसको बिना डायलॉग के इमोट करना है, एक्सप्रेशन देनी है, तो भी हम एक्टर्स ही ढूंढते हैं उसके लिए। और फिर बाकी रहता है जो क्राउड, फिर एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो प्रोडक्शन जब डायरेक्टर डिमांड करता है कि हाँ मुझे सपोज ये मार्केट का सीन है, मार्केट के सीन में मुझे 70-80 लोग चाहिए एज अ क्राउड इन द मार्केट, तो वो फिर वैसे वो स्ट्रेटा के लोग एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि कहाँ है। डिपार्टमेंटल स्टोर का सीन है, मतलब एक मॉल में है तो अलग होगा, एक सब्जी मंडी होगा तो अलग टाइप का क्राउड होगा, तो वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो लेकर आता है, उन जूनियर आर्टिस्ट ही कहलाता है वो।
0: मतलब कि अगर गांव का सीन है तो उनकी उस तरह के लोग दिखने वाले, एकदम कोई बहुत ज्यादा शहरी जो दिख रहे हैं उनको नहीं लेंगे, तो इस तरह से आप चुनाव कर लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो गौतम जी, अगर किसी एक्टर को हम कास्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम उसे चेहरा उसका है, कैसी कद काठी, ये तो देखते ही है, उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आप जज कर

0: सकते हैं?
1: देखो, हर एक्टर को आपके दिमाग में जो विजुअल है एक कैरेक्टर का, उसमें अगर वो बैठता है तो वो एक फर्स्ट प्लस पॉइंट हो जाता है उसके लिए। बाकी फिर है कि एक्टर कितना स्ट्रांग है, दैट इज द फाइनल मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी एक्टिंग एबिलिटी पे बात आ जाती है। फिर अगर वो परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे है, वो मैटर नहीं करता। फिर अगर एक स्ट्रॉन्गर एक्टर ऑप्शन है तो यूजुअली अ डायरेक्टर विल गो विथ हिम और हर,
0: क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से वो
1: हाँ वो ऐसे लेयर्स लाएगा परफॉर्मेंस में जो शायद एक वीकर एक्टर नहीं ला पाए।
0: और आप जब कभी फिल्म देखने जाते हैं तो कहते कि जब इस मीडियम में कोई काम करने लगता है तो वो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से ही फिल्में देखता है।
1: बट कभी कभी हो जाता है, जब आपको अगर कास्टिंग गलत लगती है या सेट ठीक नहीं लगते हैं तो वो नोटिस में आता है। जो भी ज्यादा फिल्में देखता है, आई एम नॉट सेइंग जो काम करते हैं, बट जो काम करते हैं, जो बहुत सारी फिल्में देखते हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ने लगते हैं प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को। तो एक दफा आप वो कुछ नोटिस करने लगे तो फिर थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है फिल्म देखने का।
0: पर्दे के पीछे की बातें जब आप

0: कभी कभी हो जाता है जब आपको अगर कास्टिंग गलत लगती है या सेट ठीक नहीं लगते हैं तो वो नोटिस में आता है। जो भी ज्यादा फिल्में देखते हैं, आई एम नॉट सेइंग जो काम करते हैं, बट जो काम करते हैं, जो बहुत सारी फिल्में देखते हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ने लगते हैं प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को। तो एक दफा आप वो कुछ नोटिस करने लगे तो फिर थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है फिल्म देखने का।
1: पर्दे के पीछे की बातें जब आप जान रहे थे,
0: हाँ,
1: फिर
0: जान
1: वो
0: जाते
1: आप
0: हो,
1: सारी चीजें
0: अरे
1: देख
0: यहाँ ये रह गया, इन्होंने ये ठीक नहीं किया।
1: अगर कोई इंडस्ट्री में आता है, कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता है वो, तो इसके लिए क्या कर सकते? कोई कोर्स है या बस करने की कला है सब?
0: आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर के कोर्स तो अभी तक आई डोंट थिंक है, बट आपको आके कोई कास्टिंग डायरेक्टर को ही असिस्ट करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिंग की एक इंस्टिंक्ट होती है, जो मुझे लगता है कि मेरे में थी,
1: हाँ
0: इवन दो मुझे ये करना नहीं था, ये तो मुझे पता भी नहीं था, बट ये था कि जब आप एक एक्टर को देखते हो एक पर्टिकुलर किरदार में और आप बोल रहे हो कि यार ये तो वो लग ही नहीं रहा, जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो। आई थिंक एक इंस्टिंक्ट होती है, ऐसा मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग बट देर इज एन इंस्टिंक्ट।
1: हाँ मतलब वो स्टोरी को पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये
0: हाँ
1: व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगेगा, और उस तरह
0: हाँ
1: से आपको एक
0: हाँ
1: अंदाजा।
0: वो होता ही है, मतलब अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर को चेहरे दिख जाते, अगर एक चेहरा दिख गया तो उसको लगता है हाँ ये यहाँ पे अच्छा बैठेगा करके,
1: जी
0: और एक आपको एक इंटरेस्टिंग चेहरा पहचानने की एबिलिटी आ जाती है।
1: कोई अगर एक्टर बनने के लिए यहाँ आते हैं, पहचाने कैसे कि असल में कास्टिंग डायरेक्टर क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं काम दिला सकता हूँ, ऐसे भी लोगों से हम मिलते हैं
0: हाँ, जब
1: मिले
0: भी एक्टर्स आते हैं ना, जो भी बॉम्बे आते हैं, एक तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एक्टिंग सीखने मत आना, कभी सीख के आओ, ट्रेन करके आओ, क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर है,
1: जी
0: सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, और एक दफा आपके पास पैसे नहीं हो, अगर आप एक रईस खानदान से नहीं हो तो आप एक्सप्लॉयट हो जाओगे, या बहुत बहुत डिफिकल्ट जगह रहने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। इसीलिए मैं हर कोई एस्पायरिंग एक्टर को कहता हूं, आपके होम टाउन में, आपके घर के पास कोई भी थिएटर ग्रुप हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, वहां ज्वाइन करो। एक्टिंग ऐसे आप कुछ एक हफ्ते भर का कोर्स करके आप एक्टर नहीं बनते हो, बहुत टाइम लगता है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, लाइफ टाइम लग जाती है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। तो मेरी एडवाइस वही रहती है कि आप जाके एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए, या एक NSD जैसा इंस्टीट्यूशन हो, ड्रामा इंस्टीट्यूट, या FTI जैसा, या ड्रामा स्कूल, ऐसे लॉन्ग फॉर्म इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन करें, या आपके आसपास के शहर में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, 4-5 साल थिएटर करें, पूरा क्राफ्ट समझे और फिर बॉम्बे आए। क्योंकि फिर क्या है, जब आप आओगे आपके थोड़े से जो रेडार्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, आपको समझ आएगा कौन बुद्धू बना रहे और कौन जेन्युइन है करके। आई थिंक है जेन्युइन लोग भी है बट फ्रॉड्स भी बहुत है, वो फिर फेक ऑडिशंस करते हैं एक्सप्लॉयट करने के लिए, या फिर आपसे पैसा मांगेंगे कि आप 50,000 दे दो या 20,000 दे दो, आपको रोल फाइनल होगा और आपको कुछ बता देंगे, सीन दे देंगे, और बाद जब शूट का टाइम होगा वो लोग ही गायब हो जाएंगे। तो ऐसा भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है, इसीलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूं जो एक्टर बनना चाहता है या बनना चाहती है कि ट्रेन करके आओ, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द इंडस्ट्री देन।
1: और उनके भी एक अनुभव रहेंगे एक्टिंग के, तो
0: हाँ
1: वो ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं।
0: हाँ और अब जब आप थिएटर वेटर करके आओगे तो बॉम्बे आओगे तो आपको भी थिएटर सर्किट के और लोग मिलेंगे,
1: हाँ
0: वो भी एक होता है, आपका कोई ना कोई पहचान वाला होता है बम्बई में, फिर ऐसे ही आप डायरेक्ट आ जाओगे बिना एनी नॉलेज तो आपका फायदा उठाया जाएगा।
1: तो जिन फिल्मों के लिए आपने कास्टिंग की है, उनमें से कौन सी आपके सबसे दिल के करीब है?
0: आई थिंक पहली वाली ब्लैक फ्राइडे, पहली फिल्म आई थिंक यूजुअली स्पेशली होती है सबके लिए, और क्वांटिटी भी ज्यादा थी, 172 स्पीकिंग पार्ट्स थे और 2 महीने थे, और बस मैं था और एक कोई एक और असिस्टेंट होता था क्यूज के लिए, बस हम दो ही मिलके पूरी कास्टिंग हमने की। बहुत ही मुश्किल था, सुबह से लेके रात तक बस ऑडिशन पे ऑडिशन पे ऑडिशन, एंड विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। सबसे डिफिकल्ट बट खुशी वही कास्ट को देख के लगती है।
1: तो ये आपको मतलब याद रहेगी फिल्म, और इससे ऐसा कह सकते हैं कि इससे आपकी एक ट्रेनिंग हो गई पहली फिल्म।
0: हाँ हाँ ब्लैक फ्राइडे ने सारा जो कुछ भी मैं हूँ उस फिल्म के वजह से हूँ।
1: तो गौतम जी, जब ब्लैक फ्राइडे की इतनी बात हो रही है तो उस फिल्म से कोई गाना सुन ले।
0: अरे बंदे है ना, इंडियन ओशन का गाना,
1: बहुत ही प्यारा गाना है, चलिए सुन लेते हैं।

0: ये आप लोगों के पास ये पूरा आर्टिस्ट का एक कोई बैंक होता है, डेटाबेस होता है?
1: देखिए, जैसे आप और काम करते जाते हैं, आपको नए नए एक्टर्स पता चल जाते हैं, और बस आपकी टीम भी होती है। मैं अपनी टीम को प्लेस देखने, थिएटर देखने भेजता हूँ अगर मैं खुद नहीं जा पाऊँ। कोशिश करता हूँ जितना हो सका थिएटर देखूँ, शॉर्ट फिल्म्स देखूँ। इंस्टाग्राम पे भी आजकल लोग देखते हैं कोई अच्छा टैलेंट निकल आया क्या। तो मेरी एडवाइस वही होती है जो एक्टर्स जिनके पास अगर अभी कम काम है, कि अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, प्लेस करें मिलके, प्ले होस्ट करें, कास्टिंग की इंडस्ट्री जो है, कास्टिंग असिस्टेंट्स, कास्टिंग एसोसिएट्स, उनको इनवाइट करें अपने प्ले के लिए, या शॉर्ट फिल्म बनाएं, सबको भेजें, 100 जन को भेजो, शायद 4 जन जो सही हो गए उनके पास पहुंच गया तो वो आपको बुलाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी पीस है जो आपको बहुत अफेक्ट की, कोई राइटिंग जो आपने थिएटर करते हुए कुछ आपको बहुत प्रभावित हुआ, तो वो इंस्टाग्राम पे परफॉर्म कर लो। जस्ट होप कि कोई सही इंसान कहीं पे भी हो वो आपको देख ले और आपको कांटेक्ट करे, शायद शॉर्ट फिल्म के लिए, प्ले के लिए, या जिसके लिए भी। यही कहता हूँ कि एक्टर्स को कि अपने आप को विजिबल रखो
0: और अपने आप परफॉर्म करते रहे, अपना काम तो करते जाइए, मतलब अपनी तरफ से कोशिश आप जारी रखिए,
1: कोशिश जारी रखिए। अगर आप अच्छे एक्टर हो, आप नोटिस हो जाओगे और आपको बुलाया जाएगा ऑडिशन के लिए।
0: तो इंस्टाग्राम में जो फॉलोवर्स किसी किसी ज्यादा होते हैं, तो ये भी कुछ असर करता है कास्टिंग के लिए?
1: ये मतलब प्रेशर आ जाता है प्रोड्यूसर से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि जिसके पास ज्यादा फॉलोवर है उससे उनको ऑडियंस ज्यादा मिल जाएगी, टीआरपीज या जो

0: जो भी मेजर ऑफ सक्सेस है वो ज्यादा मिल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि वो अगर वो इन्फ्लुएंसर को लोग अपने फोन पे देख रहे हैं तो वो शायद उन्हें थिएटर में देखने के लिए 500 रुपया तो शायद नहीं खर्च करें, उन्हें जब फोन पे फ्री पे मिल रहा है सब कुछ, और अगर वो इन्फ्लुएंसर वो ही कर रहे हैं, मैं नहीं कहता कि सब इन्फ्लुएंसर वैसे, बट अ मेजोरिटी ऑफ देम विल हैव टू वर्क ऑन द क्राफ्ट। उन्हें अपने कैरेक्टर जो इंस्टाग्राम पे प्ले करते उसके बाहर के कैरेक्टर प्ले करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज उन्हें सिर्फ वही काम मिलेगा, जो वही रोल जो वो इंस्टाग्राम पे प्ले कर रहे हैं वही किरदार उनको फिल्म में मिलेगा, तो वो एक दो बार मिलेगा, उसके बाद नॉवेल्टी वेयर ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वो फोन पे ही फ्री पे मिल रहा है आपको।
1: तो ये बताइए कि अभी कौन सा गीत हम सुन ले आपकी पसंद से।
0: हाँ, वो डेली सिक्स का रहमान का रहना तू,
1: बहुत ही अच्छा गाना, हम सुन लेते हैं आपकी पसंद पर।

0: गौतम जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जैसे फिल्मों में कास्टिंग होती थी वो कुछ अलग तरह से होती होगी, और अभी जैसे अब सोशल मीडिया का इतना दौर है तो कुछ लोग अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं लोगों के फिल्मों में आने से पहले भी, तो इस तरह से भी कुछ कास्टिंग में चेंजेस आए हैं?
1: मैंने शुरुआत की 2003 में ब्लैक फ्राइडे के साथ। उसके पहले 90 सिनेमा था जिसमें सिनेमा ऐसा बन नहीं रहा था। एक बैंडिट क्वीन छोड़ दो आप, जो तिग्मांशु धूलिया जो पहले आई थिंक हिंदी सिनेमा के कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो एक ही फिल्म थी आई थिंक तब की जो इतनी रियल थी। बट अदरवाइज जो हिंदी कमर्शियल सिनेमा बन रहा था 90s में 80s में, उसमें वही होता था कि अनुपम खेर फादर, फरीदा जलाल मदर, ये पर्सन दोस्त, और फिक्स्ड एक्टर्स होते थे। बाद में जब अनुराग और विशाल जी ने मकबूल बनाई या मकड़ी बनाई, जब हनी त्रेहान जो उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो टाइम था जब इन डायरेक्टर्स को रियलिस्टिक कास्टिंग चाहिए थी। तब थिएटर का इम्पोर्टेंस सबको लगा कि थिएटर के एक्टर को एनएसडी के एक्टर्स ढूंढो, हमें रियलिज्म चाहिए, जितना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है चाहिए। तो वो 2001-2003 से वो चलता आ रहा है, टिल कोविड वही चल रहा था। अब कोविड के बाद क्या हुआ है कि स्टूडियो के ऑडिशंस कम हो गए, तो अब सेल्फ टेस्ट बहुत होते हैं, तो अब लोगों को आदत भी पड़ गई है कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि यू नो सीन भेज दो, एक्टर वहीं अपने घर पे रिकॉर्ड करके भेज दे।
0: मतलब अब स्टूडियो में वो नहीं आते, वो खुद ही
1: वो पता नहीं क्यों, बट मैं अभी भी प्रेफर करता हूँ कि जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो एक स्टूडियो हायर करो, एक्टर को बुलाओ और ऑडिशन करो। हाँ, अगर बंबई के बाहर है वो एक्टर तो फिर आपको सेल्फ टेस्ट ही करना पड़ेगा। बट कोविड के पीक में ये शुरू हुआ, जूम टेस्ट, सेल्फ टेस्ट, तो आजकल एक्टर्स को उसमें भी प्रिपेयर करना चाहिए कि एक अच्छा सेल्फ टेस्ट कैसे दे, उनको फिगर आउट करना चाहिए। यूट्यूब वीडियोज है उसके बारे में, वो शायद देखना चाहिए। और बाकी कास्टिंग असिस्टेंट्स हो या एसोसिएट्स हो या कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पे हैं, तो इन

0: इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई भी इंटरेस्टिंग दिख जाता है तो अभी उनका एटलीस्ट आपको एक कॉन्टैक्ट भी है, इंस्टाग्राम में आपको उनका वर्क ईमेल भी मिल जाता है, तो हम रीच आउट भी करते हैं अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक कैरेक्टर मिल गया हमको कि हाँ ये ऐसा कैरेक्टर बैठता है हमारी फिल्म में, तो हम उसे रीच आउट करते हैं और उन्हें कास्ट करते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मैं एक्टर्स को बोलता हूँ जिनके पास काम नहीं है फिलहाल, विजिबिलिटी बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए
1: अपने रील्स या ऐसे अपना काम आगे बढ़ाते हैं।
0: ह्यूमर कुछ भी जो भी आपको पर्सनली बहुत अफेक्ट करता है वो पोस्ट करिए। हर एक कोई कॉमेडी रील्स नहीं कर सकता। जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आपका कोर स्ट्रेंथ है, वो पोस्ट करिए, कहीं ना कहीं किसको वो अफेक्ट होगा और वो आपको कांटेक्ट करेगा।
1: जब आप किसी को बुलाते हैं ऑडिशन के लिए, आप बुलाना प्रेफर करते हैं ज्यादा और वो खुद अगर कोई वीडियो बना के भेजते, दोनों में क्या फर्क आ सकता है?
0: देखो, ऑडिशन रूम में कोई कैमरा पकड़ के बैठा है, एक असिस्टेंट आपको क्यूज दे रहा है, दूसरा परफॉर्मेंस देख रहा है, चार पांच जन की टीम होती है एक प्रोजेक्ट पे, तो एक पूरी टीम होती है जिसमें हर एक का एक अलग काम होता है। वो कास्टिंग एसोसिएट या कास्टिंग डायरेक्टर होगा, वो आपको गाइड करेगा, ऐसे नहीं ऐसे, करेक्ट करेगा आपको। लाइव उधर आपका बेटरमेंट होता जाएगा, घर पे आप सेल्फ टेस्ट करोगे, आप भेजोगे, फिर जब किसको टाइम होगा देखने का तब वो देगा, फिर वो मैसेज पे आपको रिप्लाई करेगा इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर आप वापस करोगे। अगर आपको कोई क्यू देने वाला दोस्त नहीं मिला घर पे, तो आपके मम्मी पापा क्यूज देंगे जो बहुत खराब क्यूज होंगे मोस्टली, तो प्रॉब्लम्स होते हैं सेल्फ टेस्ट में। बट मैंने ऐसे भी देखा कोई दो तीन ऑडिशन सेल्फ टेस्ट इतने बढ़िया है कि वो एक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे।
1: बेसिकली अगर वो आपके सामने आते हैं तो आप उन्हें उनके कैरेक्टर के बारे में भी समझा सकते हैं और
0: बहुत इजी हो जाता है स्टूडियो में। बहुत इजी हो जाता है। सेल्फ टेस्ट में क्या है, एक्टर को सब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, जो स्टूडियो में होता है वो आपको घर में करना पड़ेगा। आपको चार दोस्त लगेंगे, एक दोस्त आपको रिकॉर्ड करेगा, दूसरा दोस्त आपको क्यूज देगा, तीसरा आपको बताएगा ऐसे नहीं ऐसे कर। ये स्टूडियो में बढ़िया हो जाता है
1: और वो भी निर्भर करता है कि आपके दोस्त कितना ज्यादा जुड़े हुए उस क्राफ्ट से।
0: अगर वो खुद एक्टर्स है तो शायद कुछ ठीक ठाक निकल जाएगा।
1: और जैसे कि आप बोले थे कि सोशल मीडिया पर भी रीच आउट करते हैं आप लोग, तो फिर बहुत से लोग है, वही बात है कि तो किस तरह से पहचाने कि जो हमें बोल रहे हैं कि आपको कास्ट किया जा सकता है या आपने टेप भेजी इस तरह से बोल रहे हैं अगर कोई, तो कितने जेन्युइन है, कितने रियल हमें वो चीज मिल रही है?
0: देखो, सोशल मीडिया में हम रीच आउट करते हैं जब हमें कोई प्रोफाइल ऐसी दिखती है जो हमारे स्क्रिप्ट में बैठ रहा हो, कोई ह्यूमरस कैरेक्टर हो या कुछ हो, वो वहां हमको बाय चांस दिख गया और वो वही है जो कैरेक्टर है, अगर वो इज वेरी और ही और शी इज वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर, देन वी रीच आउट कि हाँ भाई हमारे पास ये है, आप अब स्टूडियो में आके ये परफॉर्म कीजिए, ये हमारे सीन पे करिए। वो अब वो अच्छी तरह कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है,
1: पर जानना हम ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी आम इंसान को जो कि रोज रील बनाता है उसका कोई एक कैरेक्टर आपको अपने कैरेक्टर के इर्द गिर्द लग रहा है, तो आपने उसे रीच आउट किया, लेकिन आप तो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि वो पता करना पड़ता है कि कौन रियल है कौन नहीं है, तो वो किस तरह से पता कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन हो?
0: नहीं, उनको तो फिर पता करना पड़ेगा। एक तो आजकल सब कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंस्टाग्राम पेजेस है, आई थिंक आप इंडियन कास्टिंग डायरेक्टर्स या हिंदी फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर टाइप करोगे तो आपको 5-10 नाम तो आ ही जाएंगे। तो आज जो भी सोशल मीडिया पे है आपको पता ही चलेगा, इंस्टाग्राम में आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, आप कितने कास्टिंग डायरेक्टर्स है कौन है सब पता चलता है, अभी सब क्रेडिट्स देखते हैं। अगर आप फिल्म की क्रेडिट देखोगे कास्टिंग में, कोई जो कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है वो नाम टाइप कर लोगे उसका इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, फिर आप देखिए उसके कोई असिस्टेंट टीम वाले कौन है या उसे मैसेज भेजिए, देखिए रीच आउट करिए। अगर आप बंबई में हैं तो आप ट्रेंड एक्टर हो तो आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि मैक्सिमम काम आरामनगर वर्सोवा में हो रहा है
1: जी।
0: तो वहां पहुंच जाइए, वहां पे पता करिए कौन कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके ऑफिसेज में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, इंट्रोडक्शन के लिए बोलिए कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है। कोई कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स एडवर्टाइज करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि इस दिन ये बजे से ये बजे तक हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो 200-200 एक्टर्स पहुंच जाते हैं इंट्रोडक्शन देने, तो उनकी डेटाबेस में आ जाते हैं,
1: तो जब भी आपको जरूरत हो आप उसमें से किसी को चूज कर सकते हैं,
0: चूज करते बुला सकते हैं फॉर एन ऑडिशन।
1: अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्मों में आपने बिल्कुल ही अलग तरह की कास्टिंग की है जो कभी पहले उस तरह से नजर नहीं आए, जैसे पटाखा की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो भी सब कास्ट है उनको कभी हमने उस तरह से कभी देखा ही नहीं, तो ये कैसे आप सोचते हैं कि वो किरदार में फिट बैठेंगे वो एक्टर जिन्होंने कभी वैसा नहीं
0: हम किया? आई थिंक वो ही है, एक्टर का स्ट्रेंथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कैपेबिलिटी अगर आपको पता हो कि ये एक अच्छा एक्टर है तो इसको हम टेस्ट करते हैं। बेसिकली हमने बहुत लोगों को वो दोनों लड़कियों के लिए टेस्ट किया था और फाइनली सानिया और राधिका हुई।

0: और वो दोनों बहुत ही अच्छी एक्टर्स है, इवन दो दोनों दिल्ली की हैं, बट फिर भी उन्होंने वो एक्सेंट और वो राजस्थानी बोली बहुत बढ़िया पकड़ी उन्होंने। उनका वर्कशॉप भी हुआ था, बट जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी वो उनके घर पे रहे थे दोनों,
1: अपने किरदार को पकड़ने के
0: लैंग्वेज पे ट्रेन कर रहे थे। तो एक अच्छा एक्टर होता है वो फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इनटू द कैरेक्टर।
1: वैसे सांड की आंख की अगर हम बात करें तो इसमें भी जब किरदार चुना तो उसमें भी आपने ऐसा पहले से ही नहीं सोचा था कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगी तो दूसरे किरदार लेंगे?
0: नहीं, भूमि और तापसी की कास्टिंग हो चुकी थी जब वो दोनों कास्ट हुए तो फिल्म बनी। आई थिंक डायरेक्टर वांटेड कि एक्चुअली सीनियर सिटीजन्स को कास्ट करे, बट रियलिटी ऑफ फिल्म मेकिंग और फंडिंग इज वेरी डिफरेंट। तो आई थिंक देवर नॉट गेटिंग फंड्स टू विद अ कास्ट ऑफ सीनियर सिटीजन्स, हेंस दिस वाज डन।
1: कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को चूज किया हो, आपको लगा हो कि ये उस किरदार में ज्यादा अच्छा बैठेगा, फिट होगा, लेकिन फिर आगे जाके उन्हें ऐसा लगा हो निर्माता निर्देशकों की हमें ये नहीं चाहिए?
0: एक बार हुआ था एक फिल्म में, मैं फिल्म नहीं बोलूंगा बट बताऊंगा नहीं कौन सी फिल्म है, मैं अच्छा दोस्त है वो, बट उसको मैंने प्ले में देखा था और एक रिहर्सल में देखा था और उसका ऑडिशन इतना इनक्रेडिबल था कि मैंने अनुराग को दिखाया और अनुराग बोला हाँ करते हैं इसको कास्ट। लेकिन उसने कभी कैमरा पे काम किया नहीं था, सिर्फ थिएटर किया था, वो भी कॉलेज में। और जब वो उसका पहला दिन शूट का था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2007-08 की बात कर रहा हूँ, जब बड़े कैमरास होते थे, लाइट्स भी बहुत बड़ी होती थी, अब लाइटें भी छोटी हो गई है कंपेरेटिवली, उतना साइज नहीं होता लाइट्स का। तो अगर आपको HMI लाइट्स लगाओ और 50 लोग आपको देख रहे हैं, वो फ्रीज हो गया था, वो परफॉर्म नहीं कर पाया था पहले दिन। फिर बाद में उसे कॉन्फिडेंस आया, उसको ये किया और वो उसने किया, बट नॉट टू हिज एबिलिटी। फिर उसने अपने आप पे काम किया और फिर वो अच्छे काम करने लगा, उसने काफी फिल्में की बाद में। लेकिन ये हुआ था, उसके बाद मेरा लेसन था कि भाई सिर्फ थिएटर में बहुत बढ़िया हो बट लेकिन अगर कैमरा का आइडिया नहीं है
1: जी,
0: तो उसे पहले थोड़ी ट्रेनिंग लगेगी। ऐसे रॉक लो मत, या जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं है, बट ऐसे भी है जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, वो लोग छा गए कैमरा पे
1: कोई बिना ट्रेनिंग के। वो
0: बिना आए दो बच्चे थे, स्लम के बच्चे थे, उनको अनुराग की एक शॉर्ट फिल्म के लिए कास्ट किया था, सलाम बालक ट्रस्ट जो मीरा नायर ने शुरू किया था, तो वहाँ के दो बच्चे कास्ट किए थे, उसमें से एक तो इतना नेचुरल था जिसने कुछ नहीं किया पहले भी, तो वो भी हो सकता,
1: तो वो आप कह सकते गॉड गिफ्टेड है।
0: हाँ, वो गिफ्टेड था, वो कॉन्फिडेंट था, नेचुरल था, बढ़िया था वो।
1: तो आप सेट पे भी मौजूद रहते हैं या आपका काम सेट के बाहर का ही रहता है?
0: यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है, बट जहाँ जब डायरेक्टर्स पसंदीदा डायरेक्टर्स हैं या जब ज्यादा रिलेशन है तो मैं जाता हूँ सेट पे जाता।
1: बट आपका सपना तो सेट में ही रहने का है, हालांकि जैसे आपने बताया।
0: हाँ, मेरा सपना तो डायरेक्ट करना ही है। अब मैं एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, पहली दो स्क्रिप्ट बना नहीं पाया, अब एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, होपफुली वो बन जाए।
1: तो आप अपनी स्क्रिप्ट पे काम करें तो आप क्या पहले से किसी एक्टर को ऐसा मन में सोच के ही बना रहे हैं या आप उससे बात
0: पहले, पहले स्क्रिप्ट तो कंप्लीट करूंगा फिर कास्टिंग पे आऊंगा।
1: तो ये राइटिंग वाला पक्ष कब से आपका सामने आया? आपने डायरेक्शन तो आपने कहा।
0: हाँ, वो जब मैंने 5 साल के लिए बीच में कास्टिंग छोड़ दी थी।
1: अच्छा,
0: तो घनचक्कर थी 2013 में मैंने कास्ट की थी, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट रोक ही दिया था। फिर मैंने एक स्क्रिप्ट पे काम किया जो नहीं बन पाई, फिर मैंने दूसरी स्क्रिप्ट डेवलप की राइटर्स के साथ, फिर वो भी नहीं बन पाई, फिर एक बुरा दौर रहा मेरी लाइफ में, फिर उधर से कैसे तैसे निकल आया मैं और फिर मैंने फिर से कास्टिंग शुरू की। मैंने बोला कि चलो फिर से कास्टिंग शुरू करते हैं, फिल्म कभी ना कभी तो बना लूंगा।
1: तो इस जो ये दौर रहा उसके नाम कोई गीत बताना चाहेंगे आप?
0: जिंदगी कैसी है बहेली।
1: ठीक है, तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गाना।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: तो गौतम जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें आपने हमसे की हैं, आखिर में अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में आने चाहते होंगे या कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए कोई एक संदेश अगर आप देना चाहें।
2: वही जो मैंने एक्ट्रेस के लिए कहा कि आप ट्रेन करके आइए, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए, फिल्मों की किताब पढ़िए, फिल्म मेकिंग की किताब पढ़िए, एक्टिंग की किताब पढ़िए, कास्टिंग डायरेक्टर जो हॉलीवुड के फेमस है उनके बारे में पढ़िए, उनके प्रोसेस, आज के टाइम में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो जितना आप अपने आप को एजुकेट करके आएंगे उतना बेटर होगा आपको जब आप बॉम्बे आए। बट हर एक जो भी इंसान है जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा वो वाली फील्ड में। अगर आप एडिटर बनना चाहते तो यूट्यूब पे सीखिए कोर्स, खुद प्रैक्टिस करिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, FTI प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, ट्रेन करके आइए, दैट्स माय बिगेस्ट एडवाइस।
1: बस बिल्कुल, मतलब तैयार होके ही आइए आप,
2: हाँ, अनप्रिपेयर्ड मत आइए, फिर आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा।
1: गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो कास्टिंग से रिलेटेड बातें थी, जो हमें पता ही नहीं थी कि किस तरह से चुना जाता है किरदार को, बहुत ही अच्छी तरह से आपने विस्तार में हमें बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत की,
2: मुझे बहुत मजा आया आपके साथ बात करने का, थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए,
1: धन्यवाद।
3: बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत, संपादन सहयोग प्रभा भटनागर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले और

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी।
3: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
4: हाँ जी हाँ।
3: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
4: नहीं नहीं अभी नहीं।
3: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
4: है ना? बोलो बोलो।
3: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
5: कुछ लिखा,
3: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

0: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। आइए सुनते हैं संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
1: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
1: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
1: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
4: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
5: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
6: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
8: आज की सृजन भारती कुछ ऐसे ही शब्दों, संवेदनाओं और एहसासात के नाम है, जहां शेर व शायरी है, गीत है, गजल है, व्यंग्य, हंसी की फुहार पड़ेगी और भी बहुत कुछ। कहीं कहीं दिल को छू जाने वाली ये खामोशी भी होगी, जो सुंदर कविता सुनने के बाद देर तक हमारे भीतर, हमारे दिल में बसी रहती है, उतरती है। दरअसल ये जो कवि हैं, शब्दों से दुनिया रचते हैं और अपनी कविता से हमारे मन में जगह बनाते हैं। तो हम अब शुरुआत करते हैं उन कवित्री से जो गीत भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं, डॉक्टर दमयंती शर्मा। एक प्रतिष्ठित कवित्री के रूप में जानी जाती हैं, एक लेखिका हैं, शिक्षिका हैं और अनुवादक भी हैं। उनकी लेखनी कविता से लेकर बाल साहित्य, शोध और राजभाषा तक विविध क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुकी है। भीड़ तो जिंदा है प्रसिद्ध और चर्चित काव्य संग्रह है और इसके अलावा बहुत सारी पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं और कुमाऊनी भाषा और लोक संस्कृति के संरक्षण में भी उनका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य और शिक्षण के क्षेत्र में उन्हें बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। इसके अलावा फिल्म खानदानी शफाखाना और फिसड्डी वेब सीरीज सहित बहुत सारे रचनात्मक परियोजनाओं के लिए भी उन्होंने गीत और गीतांश लिखे हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित अनेक मंचों पर अपनी रचनाओं का काव्य पाठ ये कर चुकी हैं। डॉक्टर दमयंती दीपा हिंदी लोक भाषा की सेवा में निरंतर सक्रिय रहती हैं। तो आइए डॉक्टर दमयंती जी, आपका हम स्वागत कर रहे हैं, आइए मंच संभालिए।
9: सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी विविध भारती मुंबई का और विशेष रूप से ममता सिंह जी का, जिन्होंने आज इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत बहुत ही शानदार आयोजन है उसमें मुझे आमंत्रित किया है और मैं मंच में सभी को प्रणाम करते हुए यहाँ मुंबई जैसे महानगर में और वो भी विविध भारती मुंबई के प्रांगण में, परिसर में इतना शानदार आयोजन करना, मुबारकबाद मैं इसके लिए इन सबको देती हूँ, क्योंकि हिंदी जो है वो केवल भाषा नहीं है, वो संस्कृति है, वो हमारा गौरव है, सम्मान है और आप सभी जानते हैं कि संपर्क भाषा के रूप में वो प्रेम का एक सेतु है जो कि हम सब की भावनाओं को, हमारे शब्दों को एक साथ बांधता है और पूरे भारत को एक साथ जोड़ता है वह सेतु। तो हिंदी को हम सब अपने

व्यवहार में लाएं और जो कि जैसा मैं देख रही हूं आज उसी उपलक्ष में यह आयोजन है, हिंदी को समर्पित है। तो मैं आप सभी को भी मुबारकबाद देती हूं हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़े की, और दो माहिया मैं समर्पित करना चाहूंगी। सबसे पहले माँ हिंदी को, माँ

तो ये तो थी हिंदी भाषा को समर्पित दो माया, और मैं एक दो मुक्तक आपके समक्ष रखती हूँ, उसके बाद मैं अपने गीत पर आऊंगी।

जाऊं। और एक मुक्तक, बहुत धन्यवाद, एक मुक्तक समर्पित करती हूँ इस देश की मिट्टी के नाम। जो हमारे जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, हमारे भारतवासी हैं, क्या कहते हैं कि कश

हम हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आगे यदि हम आंतरिक भेदभाव मिटाएंगे और आगे बढ़ेंगे शांति के साथ, तो उस पर भी एक संदेश मुक्तक के द्वारा मैं देना चाहूंगी कि सब नफरतें भुला दो तुम अमन के वास्ते, सब नफरतें भुला

चालो इस वतन के वास्ते। तो एक ये थे कुछ माही और मुक्तक। एक गीत आपकी सबके समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। तुम रे चाहों से हमारे मन में हो,

0: जिंदगी अच्छी नहीं लगती। भले मिल जाए दौलत शोहरत हमको दुनिया में, भले मिल जाए दौलत और शोहरत हमको दुनिया में, मगर दिल को मोहब्बत की कमी अच्छी नहीं लगती। जरा सी ठेस लगने से छलक पड़ते हैं क्यों आंसू, हमेशा आंख में इतनी नमी अच्छी नहीं लगती। एक कतरे को दरिया समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, एक कतरे को दरिया समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, हर सपने को सच्चा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ। ये जो पंक्तियां हैं जाने माने कवि मंच संचालक और राइटर देवमणि पांडे जी की। देवमणि पांडे जी का हम स्वागत कर रहे हैं। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें, फिल्म पिंजर, हासिल और कहां हो तुम के अलावा कई सीरियल में इन्होंने गीत लिखे। फिल्म पिंजर के गीत चरखा चलाती माँ जो हम विविध भारती के अनेक प्रोग्राम में बजाते हैं उसके गीतकार ये हैं। फिल्म पिंजर में तकरीबन 6 गाने या 5 गाने गुलजार साहब ने लिखे हैं, एक गाना इनका है चरखा चलाती माँ, जब आप सुनेंगे तो देवमणि जी को याद करेंगे। इसके अलावा कुछ संग्रह है दिल की बातें, खुशबू की लकीरें, अपना तो मिले कोई जो इनकी कामयाबी में शामिल है। उन्होंने सिने गीतकार जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं जो भारतीय फिल्म जगत के गीतकारों पर आधारित है। ये भी बता दें कि बड़े अच्छे मंच संचालक भी हैं और बड़े अच्छे कवि और गजलकार। तो इनके लिए जोरदार तालियां और स्वागत। आइए देवमणि जी,
1: आप लोग अनुमति दे तो मैं शुरू करूं। अनुमति देने का मतलब है ममता जी ने गीत के बारे में बताया, 2003 में इस गीत को बेस्ट लिरिक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। तो गुलजार साहब के सामने अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। तो गीत था कि चरखा चलाती माँ धागा बनाती माँ, बुनती है सपनों की खेसरी, समझ न पाऊं मैं किसको बताऊं मैं, मैया छुड़ाती क्यों देसरी, बेटों को देती है महल अटरिया, बेटी को देती परदेसरी।

0: धन्यवाद, आप सभी ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत धन्यवाद।
1: अब हम आमंत्रित कर रहे हैं, जरा उनका स्वागत करते हैं कुछ उनकी ही पंक्तियों से। महक कलियों की फूलों की हंसी अच्छी नहीं लगती, महक कलियों की फूलों की हंसी अच्छी नहीं लगती, तुम्हारे बिन हमें ये

जब हम यहाँ खड़े होते हैं तो सोचना पड़ता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत वहाँ से करते हैं जिसने मुझे शायर बनाया। दो मुक्तक, मुक्तक काव्य की वो बुधा है जिसके सुनाने के बाद कवि और सुनने के बाद श्रोता मुक्त हो जाते हैं। अंदाज भी है दिलकश, जलवे जमाल के हैं। अंदाज भी है दिलकश, जलवे जमाल के हैं। जब देखिए उन्हें वो लगते कमाल के हैं। उसी के लिए जिसने मुझे शायर बनाया। अंदाज भी है दिलकश, जलवे जमाल के हैं। जब देखिए उन्हें वो लगते कमाल के हैं। हर जन्म दिन पे उनको देते हैं हम बधाई, फिर भी ये कैसे पूछे कितने साल के हैं। तो एक मुक्तक और उनके लिए, तितली गुलाब अब्र का नक्शा बना दिया। तितली गुलाब अब्र का नक्शा बना दिया, इस बेखुदी ने देखिए क्या क्या बना दिया। पूछा किसी ने चांद वो दिखता है किस तरह, कागज पे हमने आपका चेहरा बना दिया। देखिए हमारे यहाँ जो प्रेम की परंपरा है, या कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में राधा और कृष्ण का जो प्रेम है वो सबसे उदात्त माना जाता है और सदियों से आप सब जानते हैं। तो चाहे राधे श्याम बोलिए चाहे राधे कृष्ण बोलिए, राधा जी का नाम पहले आता है। क्यों आता है? चार लाइनों में आप समझेंगे कि किशन की बांसुरी पर रीझ कर ये राधिका बोली, हमारे प्रेम का भी क्या कोई परिणाम आएगा। किशन की बांसुरी पे रीझ कर ये राधिका बोली, हमारे प्रेम का भी क्या कोई परिणाम आएगा। तो हंसकर कह दिया कान्हा ने, इस जग में हमेशा अब हमारे नाम से पहले तुम्हारा नाम आएगा। डगर पे प्रेम की चलना तो मुश्किल काम होता है, किसी से डोर जुड़ जाए तो दिल बदनाम होता है। अगर है प्यार सच्चा तो सराहेगी उसे दुनिया, जिसे राधा कोई चाहे वही घनश्याम होता है। तो घनश्याम यानि श्याम घन, काला मेघ। तो काले मेघों के बीच से यानी काले बादलों के बीच से जब कोहरा चांद दिखाई पड़ता है तो कैसा लगता है। तो एक दिन मैंने देखा और फिर चार लाइनें इस पे लिखी कि जुड़ गया है मन का धागा जब से नटखट श्याम से, दिल को मेरे मिल गए हैं कुछ नए आयाम से। अब बादलों की ओट से जब चांद का चेहरा दिखा, यूं लगा जैसे मिली हो राधिका घनश्याम से। बादलों की ओट से जब चांद का चेहरा दिखा, यूं लगा जैसे मिली हो राधिका घनश्याम से। कितने अच्छे मुक्तक पे ताली बजनी चाहिए। एक गजल के चंद शेर आपके सामने, हुए जब मुतमईन वो भी मोहब्बत की कहानी से, हुए जब मुतमईन वो

0: भी मोहब्बत की कहानी से गुलाबों की महक आने लगी है रात रानी से, हुए जब मुतमईन वो भी मोहब्बत की कहानी से गुलाबों की महक आने लगी है रात रानी से। किशन की जिंदगी में राधिका है रुक्मणी भी है, किशन की जिंदगी में राधिका है रुक्मणी भी है, मिली है प्रेम को एक दिव्यता मीरा दीवानी से। मेरी धड़कन में हर एक पल मधुर संगीत बसता है, मेरी धड़कन में हर एक पल मधुर संगीत बसता है, मिला है जब से एक पैगाम लहरों की रवानी से। मेरी धड़कन में हर एक पल मधुर संगीत बसता है, मिला है जब से एक पैगाम लहरों की रवानी से। कभी आंसू कभी सपने कभी कांटे कभी खुशबू, मिला है देखिए क्या क्या बशर को जिंदगानी से। और मुंबई महानगर के निवासियों को ये शेर मैं भेंट कर रहा हूँ कि शहर की इस भीड़ से घबरा के इस दिल ने कहा, अब मुझे एक झोपड़ी गंगा किनारे चाहिए, ये बताओ क्या तुम्हें भी चांद तारे चाहिए, या कि दिल के वास्ते दिलकश नजारे चाहिए। एक सीधी सादी गजल है कि हसीन ख्वाब की चाहत जरूर करते हैं, हसीन ख्वाब की चाहत जरूर करते हैं, हम ऐसे लोग मोहब्बत जरूर करते हैं, हसीन ख्वाब की चाहत जरूर करते हैं, हम ऐसे लोग मोहब्बत जरूर करते हैं, किसी के साथ कभी इश्क वो नहीं करते, किसी के साथ कभी इश्क वो नहीं करते, किसी के दिल पे हुकूमत जरूर करते हैं, किसी भी हाल में कुछ लोग खुश नहीं रहते, किसी भी हाल में कुछ लोग खुश नहीं रहते, वो हर किसी की शिकायत जरूर करते हैं, जिन्हें पता है बदी क्या अजाब ढाती है, वो नेकियों की हिफाजत जरूर करते हैं। एक इंटरनेशनल शेर है, जिन्हें है फिक्र की दुनिया में अमन हो कायम, वो कुछ नहीं तो इबादत जरूर करते हैं। एक शब्द है निजामत यानी संचालन, किसी का एक भी मिसरा जबानी याद नहीं, पर ऐसे लोग निजामत जरूर करते हैं, हसीन ख्वाब की चाहत जरूर करते हैं, हम ऐसे लोग मोहब्बत जरूर करते हैं। आप सब जानते हैं कि मैं महिलाओं का कितना सम्मान करता हूँ। इस कविता का शीर्षक यह है गृह स्वामिनी, कमर में खोंस कर पल्लू किचन में व्यस्त हो, लेकिन मधुर आवाज में नगमा को ही तुम गुनगुनाती हो।
1: वाह वाह वाह।
0: कमर में खोंस कर पल्लू किचन में व्यस्त हो, लेकिन मधुर आवाज में नगमा को ही तुम गुनगुनाती हो, छलक आए हैं माथे पर पसीने के कई मोती, तुम इससे बेखबर चूल्हे पे कोई डिश पकाती हो। सुबह उठकर थमा देती हो सबको चाय का प्याला, सुबह उठकर थमा देती हो सबको चाय का प्याला, सुहाना लगता है हर पल तुम्हारा घर में यूं होना, सजा कर थाल पूजा का दिखो तुम लक्ष्मी जैसी, जला कर दीप कर देती हो रोशन घर का हर कोना, सुबह से शाम तक घर को तुम ही गुलजार करती हो, बड़ों का मान रखती हो सभी का करती हो तुम आदर, तुम अपने पद से बच्चों से बहुत ही प्यार करती हो। देखिए आखिरी पंक्तियाँ, किचन में रोटी कैसे जलती है, कोई तारीफ करता है तो झट से फूल जाती हो, कोई तारीफ करता है तो झट से फूल जाती हो, तवे पे रख के तुम रोटी पलटना भूल जाती हो, मोहब्बत से लगन से आशियां तुमने सजाया है, यही सच है हमारे घर को घर तुमने बनाया है, यही सच है, यही सच है हमारे घर को घर तुमने बनाया है। हम लोग जो कॉलेज लाइफ में थे तब से लिख रहे हैं, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं, सिर्फ 35 साल पहले की बात है। है ना, एक कतरे को दरिया समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, हर सपने को सच्चा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, और पाल पोस कर बड़ा किया था फिर भी एक दिन बिछड़ गए, पाल पोस कर बड़ा किया था फिर भी एक दिन बिछड़ गए, ख्वाबों को एक बच्चा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, और कांटे से खुद मेरी शोहरत मेरे दिल में चुभती है, कांटे से खुद मेरी शोहरत मेरे दिल में चुभती है, फन को खेल तमाशा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, तन पर तो उजले कपड़े थे पर जो मन के काले थे उन लोगों को अच्छा समझा मैं भी कैसा पागल हूँ, बिछड़ने पर दिल रेगिस्तान की तरह जलता

है और जब मिलन होता है तो दिल किसी हिल स्टेशन की तरह ठंडा हो जाता है। शायर इस कंटेंट को कैसे ले आता है गजल में, तो आप ध्यान दीजिए तो आपको अच्छा लगेगा। दिलों की राह में कोई नया मजमून आ जाए, मैं जैसलमेर से निकलूं और देहरादून आ जाए। समझ में आ गया ना कि एक रेगिस्तान है, एक हिल स्टेशन है। दिलों की राह में ऐसा कोई मजमून आ जाए, मैं जैसलमेर से निकलूं और देहरादून आ जाए। दिल्ली के आखिरी बादशाह को सलाम करते हुए ये शेर पढ़ रहा हूँ। सभी को चाहिए दिल्ली का तख्तो ताज सदियों से, मगर डर है कि राहों में न फिर रंगून आ जाए। ऐतिहासिक शेर है ना। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, आखिरी बादशाह को रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से कि सभी को चाहिए दिल्ली का तख्तो ताज सदियों से, मगर डर है कि राहों में न फिर रंगून आ जाए। पिया था किस लिए सुकरात ने वो जहर का प्याला, पिया था किस लिए सुकरात ने वो

0: समझ में आ गया ना कि एक रेगिस्तान है, एक हिल स्टेशन है। दिलों की राह में ऐसा कोई मजमून आ जाए, मैं जैसलमेर से निकलूं और देहरादून आ जाए। दिल्ली के आखिरी बादशाह को सलाम करते हुए शेर पढ़ रहा हूँ। सभी को चाहिए दिल्ली का तख्त व ताज सदियों से, मगर डर है कि राहों में न फिर रंगून आ जाए। ऐतिहासिक शेर है ना। तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, आखिरी बादशाह को रंगून भेज दिया गया था अंग्रेजों की तरफ से, कि सभी को चाहिए दिल्ली का तख्त व ताज सदियों से, मगर डर है कि राहों में न फिर रंगून आ जाए। पिया था किस लिए सुकरात ने वो जहर का प्याला, पिया था किस लिए सुकरात ने वो जहर का प्याला, बताने के लिए दुनिया में अफलातून आ जाए। मोहब्बत में कोई बंदिश नहीं है बेवफाई पर, यह लाजिम है कि अब इस पर नया कानून आ जाए। दिलों की राह में कोई नया मजमून आ जाए, मैं जैसलमेर से निकलूं तो देहरादून आ जाए। देखिए गजल में जो है ना, कभी कभी प्रयोग करने पड़ते हैं। तो आप किसी जो है ना बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड को देखिए, उसमें बीए एमए वाले भी मिल जाते हैं। तो ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों को देख करके ये ख्याल आया एक गजल का, कि पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह वगैरह पे ध्यान दीजिए। पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह, ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी दरबान वगैरह। पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह, ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी दरबान वगैरह। रोजी रोटी के चक्कर में हमने खुद को गंवा दिया है, कहाँ गया अपना वो तेवर खुददारी पहचान वगैरह। दूर दूर तक आदर्शों से रिश्ता नहीं सियासत का, जब इनमें कहाँ नजर आएंगे सच्चाई ईमान वगैरह। दौलत शोहरत और प्रतिष्ठा सब कुछ हासिल है, फिर भी किसे पता क्या ढूंढ रहे हैं ये अमीर धनवान वगैरह। ये बहुत बढ़िया शेर है, आपको अच्छा लगेगा। कि फिल्में अगर नहीं चलती तो सोचो इनका क्या होता, फिल्में अगर नहीं चलती तो सोचो इनका क्या होता, काट रहे हैं हर दिन चांदी अक्षय और सलमान वगैरह। कम से कम इतवार के दिन तो अपने घर पे रहा करो, बिना बताए आ जाते हैं यार दोस्त मेहमान वगैरह। पढ़ लिख कर क्या करेंगे आखिर राम श्याम रहमान वगैरह, ये भी एक दिन बन जाएंगे चपरासी दरबान वगैरह। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जो बड़ी संजीदगी से बोलते हैं और बहुत खूबसूरत बोलते हैं, हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं माइक पर। उनकी बातें उनके शब्द आपके हृदय में हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं छोटी छोटी बातों को अपनी कविता में ढाल लेते हैं, अपने गद्य में ढाल लेते हैं। और आज की जो भागदौड़ की जिंदगी है, स्ट्रेस दबाव से लोग परेशान हैं, ऐसे में आपको मुस्कुराहट आपके चेहरे पर ला देते हैं, आपको हंसाते हैं गुदगुदाते हैं, ये बहुत बड़ी दौलत है उनके पास। प्रसिद्ध हास्य कवि लोकप्रिय मंच संचालक धारावाहिक लेखक और प्रतिष्ठित व्यंग्यकार सुभाष काबरा, इसी बात से उनका परिचय मिल जाता है कि उन्होंने मंचों पर अपने सतत 50 वर्षों और 4000 आयोजनों की पारी पूरी कर ली है और अभी भी किसी नौजवान से ज्यादा वो सक्रिय हैं। 6 किताबों के लेखक हैं और बहुत सारे प्रतिष्ठित पुरस्कारों के विजेता हैं। सुभाष जी आज भी आयोजनों में आयोजकों की पहली पसंद होते हैं, फिर चाहे आयोजन साहित्यिक हो या शुद्ध मनोरंजन वाले, लेकिन वो पहली पसंद होते हैं। सुभाष काबरा जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं बड़े सम्मान के साथ। वो गद्य भी लिखते हैं, पद्य भी लिखते हैं, हंसाते भी हैं और संजीदगी से बहुत प्रहार भी करते हैं समाज पर, व्यवस्था पर, कई बातों पर, जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं। आइए सुभाष जी, तो इनके लिए जोरदार तालियां और स्वागत।
2: जो प्रणाम करने लायक है उन्हें प्रणाम करता हूँ और जो मुझसे छोटे हैं उन्होंने मुझे प्रणाम कर लिया है, मैं मान के चलता हूँ। ममता सिंह बहुत अच्छा बोलती हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परिचय मेरा दिया, लेकिन मैं अपने परिचय में 4 पंक्तियां अक्सर कहा करता हूँ। हम चहकती महफिलों के दूत हैं, हमसे मनहूसी न झेली जाएगी और बांटती है जो उदासी और तनाव, हमसे वो पारी न खेली जाएगी, हमसे वो पारी। इसका एक मतलब ये भी है कि बजाते रहिएगा, मैं शायर साहब की तरह बार बार फरमाइश नहीं करूंगा कि बजाओ।

आपको खुद ही समझना है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो नई पीढ़ी है इसे कुछ पंक्तियां देना चाहूंगा कि हमने ये जाना है पर्चे जांच जांच के, हमने ये जाना है पर्चे जांच जांच के, अनपढ़ होते जाते पोथी बांच बांच के, अनपढ़ होते जाते पोथी बांच बांच के, हिंदी की खाने वाले विदेशी गाते हैं, हिंदी की खाने वाले विदेशी गाते हैं, बेटे ये नादान माँ को भूल जाते हैं, कंप्यूटर का युग है आगे बढ़ते जाइए, लेकिन हमको मेमोरी से मत मिटाइए, पिज्जा खाने वाली पीढ़ी पैदा होती है, लेकिन मक्के की रोटी मक्के की रोटी है। कुदरत के सब कानूनों को शैदा करना है, लेखक का लिखना तो बच्चा पैदा करना है, जिस बचपन की खातिर मैया पल पल रोती है, क्योंकि मक्के की रोटी है। ये तो नई पीढ़ी की बात थी। आपने व्यंग लेख का जिक्र किया था, तो मैं आपको एक छोटा सा व्यंग लेख सुनाता हूँ, जिसका शीर्षक है एक बंगला मिले न्यारा। वो मुझे एक साहित्यिक कार्यक्रम में मिली थी, प्रेमचंद के कार्यक्रम में। मैंने अपना परिचय दिया, उनका नाम पूछा तो बोली आधुनिका। उन्होंने मेरे हाथ से मेरा मोबाइल लेकर उसमें अपना नंबर फीड कर दिया और मुस्कुराकर चली गई। पर एक दिन दोबारा वो एक सिग्नल पे मिल गई। गाड़ी इतनी बड़ी थी कि मुझे किश्तों में देखनी पड़ी। वो बोली, हे घर पर आओ ना, यही फर्स्ट राइट में है बंगलो नंबर 19। वो चली गई। बंगले मुझे बचपन से ही आकर्षित करते थे, कितनी जगह होती है उनमें। सोचा आज ये अंतिम इच्छा पूरी कर लूं, बंगला देख ही लूं। सो मैं बंगले की ओर बढ़ गया। पहुंचा तो लगा शायद किसी गलत जगह पर आ गया हूं। वो तो किसी कार का शोरूम लग रहा था। झोले से एक किताब निकाली और वॉचमैन को ये कहकर कि मुझे आधुनिका जी से मिलना है भीतर चला गया। डोरबेल बजाई तो एक काम वाली आई। उसने पहले तो मुझे कुरियर वाला समझा, लेकिन मुझे बाद में हॉल में बिठाकर बेबी को बुलाने चली गई। मैं हॉल की भव्यता देखता रहा। थोड़ी देर बाद वो बाई आई तो उसके साथ दो बच्चे भी थे। बोले, इनको संभालो, बेबी अभी आता है। बच्चे मुझे संभला कर वो बाहर चली गई, लेकिन बच्चे बड़े शरारती थे, दोनों मुझसे खेलने लगे। एक ने चश्मा खींचा तो दूसरे ने मोबाइल। मेरा जी जानता था कि वो 10 मिनट मैंने कैसे निकाले। बच्चे बाकायदा मेरी छाती पर सवार थे। तभी एक नौकर आकर उन दोनों को ले गया। मैंने चैन की सांस ली ही थी कि तभी शेर से कुछ छोटा शेरू नाम का एक कुत्ता आ गया। वो मुझ पर झपटना चाह ही रहा था कि आधुनिका की आवाज आई, चलो अपने कमरे में जाओ। शेरू मुझे घूरता हुआ चला गया। आधुनिका बोली, ये आपको जानता नहीं है ना, इसलिए जान पहचान होगी तो अच्छे से पेश आएगा। तभी कोई आया। आधुनिका बोली, माय हनी। मैं समझा मिस्टर आधुनिक होंगे। वो आए और आधुनिका से गले मिले। मुझे पूरी तरह नजरअंदाज करके भीतर चले गए। बोली, हनी के लिए भी सॉरी, ये थोड़े रिजर्व हैं, आप पर ध्यान नहीं दिया। मैं कहा, कोई बात नहीं, मुझे आदत है इस तरह इग्नोर किए जाने की। आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? अब वो मुद्दे की बात पर आई कि प्रेमचंद की पोएट्री वाला प्रोग्राम सुनकर मैं इम्प्रेस हूँ। हमारी सोसाइटी में मिसेज चड्डा ने अपना गजल का बुक छपवाया है, मिसेज शाह ने भी कुछ रिलीजन पे छपवाया है, मुझे भी कुछ छपवाना है, इसमें आप मेरी हेल्प करो। मैंने कहा, देखिए, मैं गजल और धर्म के बारे में कुछ नहीं जानता। तो बोली, जिस पे जानते हो उसी पे लिखेंगे, कौन सी बड़ी बात है, कोशिश करूंगा कि आपके काम आ सकूं। बोले, हाँ, इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तभी एक रौबदार बुजुर्ग टी शर्ट में आए। ये कौन है बीबी? आधुनिका ने बताया कि मैं राइटर हूँ, तो वो खुश हुए। बोले, वेरी गुड, तो तुम्हें राइटर मिल ही गया। बुक जैसी भी हो, कवर पेज बहुत बढ़िया होना चाहिए, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। वे मुझे धमकी देकर चले गए, मैं जवाब भी नहीं दे सका। आधुनिका बोली, मेरे पापा है, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। मैंने कहा, वो तो दिख ही रहा है, आपकी किताब की बहुत चिंता है इन्हें, इनकी बात भी रखने की कोशिश करूंगा। वो बोली, बिल्कुल, इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। वैसे मैंने अंग्रेजी में कुछ लिखा है, ढूंढकर आपको दे दूंगी, आप उसकी एक बुक बना सकते हो। मैंने फिर कहा, मैं कोशिश करूंगा। उसने कहा, मैं दुआ करूंगी कि आप अपनी कोशिश में कामयाब हो और काम मेरा हो जाए। वैसे इंसान को कोशिश कभी छोड़नी नहीं चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभालने की कोशिश की और बाहर आया। दिमाग इतना घूम रहा था कि रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था। मैंने वॉचमैन से पूछा, भाई, ये स्टेशन जाने वाली बस कहाँ मिलेगी? वो बोला, मैं यहीं रहता हूँ साहब, मुझे पता नहीं, आप चौक पर जाकर किसी से पूछ लो, कोशिश करोगे तो कोई ना कोई बता ही देगा, इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये भी आधुनिका जी से प्रभावित ही था। मैंने चौक ढूंढने की कोशिश की, फिर वहां से स्टेशन की बस। एक बात बताऊं आपसे, आप में से यदि किसी की किसी बंगले में जाने की इच्छा हो तो 19 नंबर वाला वो बंगला छोड़कर किसी भी बंगले में जाने की कोशिश जरूर करना। इंसान को कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ये जरूरी तो नहीं कि आपको भी वही भाई, वही बच्चे, वही शेरू, वही मिस्टर आधुनिक और वही पापा जी मिले, और आधुनिका भी वैसे ही मिले

0: थी। वैसे भी आधुनिका जी का कहना है कि इंसान को कोशिश करनी कभी नहीं छोड़नी चाहिए, तो आप भी चाहें तो मेरी तरह किसी बंगले में घुसने की अपनी इच्छा भी पूरी कर सकते हैं और कोशिश भी। मैंने तो कसम खा ली साहब कि अब वहां कभी नहीं जाऊंगा।
1: दोस्तों, हम हास्य से व्यंग, जैसा कि बताया ममता जी ने कि व्यंग लेखन के लिए भी जाना जाता हूँ। शरद जोशी जी मेरे आदर्श भी रहे और गुरु भी रहे। अब लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछते हैं कि अंतर क्या है, कि हास्य क्या है, व्यंग क्या है। मैं आपको बहुत सरल सा गणित बताता हूँ कि हास्य वो है कि आपने एक बटन दबाया और आपके घर में बल्ब तुरंत जल गया, हल्का पीला सा लाइट, पीली सी रोशनी के साथ, ये होता है हास्य। अब आपने बटन दबाया दूसरा, कुछ सेकंड लगे, 15, 20, 25 और ट्यूबलाइट जली, लेकिन उसकी रोशनी ज्यादा साफ थी, वो कहीं ना कहीं देर तक और दूर तक असर करती है। तो हास्य और व्यंग में यही फर्क है। ये जो हम कहते हैं कि इधर स्तर गिर गया, मानवता ऐसी हो रही है, लोग वैसे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है स्वार्थ। परमार्थ से स्वार्थ की यात्रा जब आती है तो उसे कलयुग का नाम दिया जाता है। मैं एक छोटी सी कविता के माध्यम से एक व्यंग करना चाहता हूँ। शीर्षक है दूरदर्शी। दूरदर्शी जो आने वाले समय को, आगे की बातों को भांप लेता है। यदि मैं चाहता तो अपनी बेहिसाब दौलत का एक छोटा सा हिस्सा जाया करता और तुम्हें तुम्हारी जानलेवा बीमारी से बचा लेता। ऐसा होता है कहीं कहीं, लेकिन नहीं। ये रकम मैंने तुम्हारे नाम से अलग रख छोड़ी है, अलावा इसके तुम्हारा एक संगमरमरी बुत, शहर का सबसे व्यस्त चौराहा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य खरीद लिया है। आजकल तुम्हारी बीमारी से प्यार कर रहा हूँ, तुम्हारी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। कवि हूँ तो कवियों पर ही एक रचना, शीर्षक है कवि का इलाज, एक छोटी सी रचना। लोग अक्सर अपने आप पर नहीं लिखते, लेकिन हम कवि लोग हैं, आपस में तो जानते हैं कि हम क्या हैं, बाहर से जितनी भी पब्लिसिटी करवा लें। एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद बीमार पड़े, उनकी तबीयत देखने के लिए बुलाए गए डॉक्टर बड़े बड़े, और देखकर सभी ने एक स्वर में ये कहा कि इतने वर्षों तक हम सबको बड़ा धोखा रहा, लेकिन अब हमको तलवार की धार पे चलना होगा। जिंदा रखना है तो हरिश्चंद का दिल बदलना होगा। अतिरिक्त दिल की तलाश में फौरन एक आदमी दौड़ाया गया और संयोग से पड़ोस के मोहल्ले में ही एक कवि का दिल स्पेयर में पाया गया। जल्दबाजी में वही हरिश्चंद को लगाया गया। ऑपरेशन के बाद जैसे ही हरिश्चंद को होश आया, वो बेड पर खड़ा हो गया और ग्लूकोज की बोतल को माइक समझकर उसके मुंह में बोला डॉक्टर भाइयों और नर्स बहनों, टेरिकॉट के वस्त्र त्यागो, खादी के कपड़े पहनो, मैं अब ठीक हूँ इसलिए अपने घर जा रहा हूँ। फिक्र मत करना, अस्पताल का बिल जल्दी ही आकर चुका रहा हूँ। कवि को हरिश्चंद समझकर अस्पताल के लोग धोखा खा गए। कवि जी सही सलामत अस्पताल से बाहर आ गए। पिछले 6 महीनों से अस्पताल के प्रांगण में अजीब से नजारे नजर आ रहे हैं। कवि जी नियमित रूप से अस्पताल आ रहे हैं और पेमेंट के रूप में अस्पताल के पूरे स्टाफ को रोज अपनी नई नई कविताएं सुना रहे हैं, कवि अंतर मन से बड़ा शुद्ध प्राणी होता है। वो किसी भी विधा में लिखे, चाहे वो शायरी करे, चाहे गीत कहे, गजल कहे, व्यंग कहे, अपनी बात आप तक पहुंचाता है। तो कई बार हमारे इंटरव्यू जो होते हैं उससे बड़े अजीब सवाल हो जाते हैं कि आपको कौन सी चीज प्रभावित करती है, आप कैसी दुनिया चाहते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरा एक गीत है जो आपको सुनाता हूँ। शीर्षक है सुंदर चेहरे अच्छे लोग। तुम इसको पागलपन कह लो या कह लो इसे मन का रोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। जिनकी बोली में मिठास हो और चाल में एक रिदम, जो खुशियों के भी साथी हो और गमों के भी हमदम, ऐसे लोगों से मिलने का बनता रहे सदा संजोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। अंधभक्त ना जो यंत्रों के और न भागी षड्यंत्रों के, जिनके कानों में संचित हैं बोल अभी तक कुछ मंत्रों के, खुद से पहले अर्पित करते मंदिर में जो पहला भोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। और अंतिम है जो न बदलते रंग कभी भी, भेड़ चाल में है भी नहीं भी, मानवता के रिश्तों को जो भूल न पाते कभी कहीं भी, जिनको विचलित कर देते हैं अपनों के साधारण रोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। तुम इसको पागलपन कह लो या कह लो इसे मन का रोग, मुझको आकर्षित करते हैं सुंदर चेहरे अच्छे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस हौसला अफजाई के लिए। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: ऐसे वरिष्ठ कवि को मैं यहाँ पर माइक पर आमंत्रित कर रही हूँ जो शब्दों के जादूगर तो है ही, साथ साथ फिल्मी दुनिया में भी अपना नाम रोशन किया है। फिल्म विवाह और प्रेम रतन धन पायो के संवाद उन्होंने लिखे हैं और नमूना टेलीफिल्म का निर्देशन किया है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म शर्मा गए सिनेमा का भी निर्देशन किया है और उनके कुछ सीरियल्स हैं मूवर्स एंड शेकर्स, नहले पे दहला, जिसे लिखा है उन्होंने, और उनकी किताबें हैं जिनका नाम हम आपको बता दें, जब कभी आपको मौका लगे तो जरूर पढ़िए, हम क्या समझते नहीं है काव्य संग्रह है, ढाई आखिर हास्य के काव्य संग्रह है और फिल्म पुराण सिनेमा पर हास्य व्यंग्य है और साहब बाथरूम में ये भी हास्य व्यंग्य है। तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं इसे। और कविता क्या हमारे पूर्वज बंदर थे, और इसके अलावा उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है, काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार और महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। और आपने अमेरिका, रूस, हांगकांग, थाईलैंड और भी कई विदेशी यात्रा की है और जहां पर इन्होंने मंच पर अपनी कविताएं प्रस्तुत की है और लोगों को अपनी कविताओं से मंत्रमुग्ध किया है, वो है आशकरण अटल जी। तो आशकरण अटल जी के लिए जोरदार तालियां आप बजाएं, उनका हम स्वागत करते हैं। आइए आशकरण जी,
1: एक गीत सुनिए हमारे स्वाधीनता सेनानियों पर। इस गीत को शहीदों की आरती मानकर सुनिए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, वो दिन थे गीत गाने के, संवरने और निखरने के, मोहल्ले की किसी कली से पुस्तकें बदलने के, वो इनकलाब की डगर के कैसे राहगीर थे, जो कोई चीज के लिए हुए नहीं अधीर थे, वो फांसियों के तख्त देख पाने को मचल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, वो धन्य थे सपूत, उनकी धन्य थी जवानियां, के कायरों में प्राण फूंक जाएं वो कहानियां, न जाने उनको माने घुट्टियों में क्या पिला दिया, कि जब हुए जवान तो जहान को हिला दिया, वो कोख धन्य हो गई जिस कोख में वो पल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, बड़े उदार थे कि शीश काट के भी दे दिया, उपकार हम पे करके अपना नाम भी छुपा लिया, किसी की प्रेयसी सदा बुहारती रही डगर, किसी की माँ दुलार से पुकारती रही मगर, वो मौत की दुल्हन भगा के जिंदगी को छल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, बने थे कौन चीज से ए हिंद तेरे लाडले, कि जितनी यातना सही वो उतने ही निखर चले, कि गोलियां जहां चली वहां खड़े मिले सदा, वो आहुति के वक्त पहली पांत में रहे सदा, फिर आरती के वक्त बावरे कहीं निकल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, वतन के शहीदों को हमने घर भुला दिया, अभी तो माए ना जनेंगी देश भक्त लाल फिर कभी, तो इनकलाब सीखने लगेगा दुनियादारियां, तो पूछेंगी इतिहास से ये आने वाली पीढ़ियां, चलन कहां बसंती चोलों वाले आज कल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग, जिए तो यूं जिए कि वो कहानियों में ढल गए, मरे तो यूं मरे कि अर्थ मौत का बदल गए। वो कैसे कैसे लोग थे, वो कैसे कैसे लोग।
2: क्या बात, क्या बात, अद्भुत अद्भुत, क्या
0: बात। अब कार्यक्रम समापन की ओर है, यूं कहें कि समाप्त हो रहा है, और मुख्य अतिथि प्रोफेसर रविंद्र कात्यायन जी उपस्थित हैं और हम प्रोफेसर रविंद्र कात्यायन जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें। वो पहले सैनिक रह चुके हैं, उसके बाद प्रोफेसर रहे, कथाकार पटकथा लेखक हैं, वो कथाकार के रूप में पूरे मुंबई में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी पहचान है, और थोड़ी जानकारी देते उनकी कृतियों के बारे में। उनकी कृतियां हैं कोर्ट मार्शल फिर से, प्यार में लड़की, दो कहानी संग्रह है, और एक प्रेम कथा है उनकी जो प्रकाशित होने वाली है जल्द ही, और मीडिया लेखन, फिल्म विमर्श, साहित्य पर

0: 13 पुस्तकों का लेखन उन्होंने किया है और फीचर फिल्म भी उन्होंने बनाई है, उसकी पटकथाएं भी लिखी है इन्होंने। 5 धारावाहिक लेखन इन्होंने किया है, कई डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण किया है। महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया है। SNDT महिला विश्वविद्यालय का महर्षि कर्वे उत्कृष्ट शिक्षक पुरस्कार से उन्हें नवाजा जा चुका है और अखिल भारतीय कथाक्रम कहानी पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। बहुत बहुत बधाई आपको। और अभी वो हिंदी विभाग मणिबेन नानावटी महिला महाविद्यालय में अध्यक्ष हैं, तो आपका हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। प्रोफेसर रविंद्र जी, आइए अपने उद्गार व्यक्त कीजिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, और सबसे पहले विविध भारती का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया। सृजन भारती द्वारा आयोजित आज के इस शानदार कवि सम्मेलन में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया। सभी कवि जिन्होंने कविताएं सुनाई, बहुत ही अच्छी कविताएं थी। मैं पहले भारतीय वायुसेना में था, 12 साल 2 महीने 20 दिन, और उसके बाद मैं गोवा विश्वविद्यालय में 5 साल रहा, फिर एक वर्ष पुणे विश्वविद्यालय में रहा, उसके बाद SNDT महिला विश्वविद्यालय में 2004 से आया, और फिर मैं अभी नानावटी कॉलेज में पिछले 17-18 साल से हूँ। तो ये तो मेरी यात्रा है। मित्रों, कविता मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे जीवन की गीत संगीत और रोज की चीजों में जो प्रेम है, दर्द है और जो हमारी भावनाएं हैं, उनमें कविता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारतेंदु मिश्र की एक कविता है, 4 लाइनें हैं कि सिर्फ आक्रोश ही न कविता है, गीत संगीत ही न कविता है, जो स्वयं भूत और भविष्यत है, पंक्ति वाह काल जयी कविता है। तो काल जयी कविता स्वयं भूत होती है, जिसके बारे में कहा गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो आप सब इस चीज को जान चुके हैं, यहाँ पर लिखा है कला ही जीवन है। मित्रों, भारतीय वाङ्मय में कलाएं तो आपको पता ही है कि 64 कलाएं होती, और उन कलाओं में भी जो सर्वश्रेष्ठ कलाएं हैं वे हैं 5, जिनमें काव्य कला, संगीत कला, नृत्य कला, वास्तुकला और चित्रकला। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कला का स्थान काव्य कला यानी साहित्य को ही दिया गया है। तो इस काव्य कला का आनंद लेने के लिए, उसके लिए भी बहुत सारा साहित्य लिखा गया है। ये आनंद की जो परम अवस्था होती है, जो साहित्य से, कलाओं के आस्वादन से प्राप्त होती है। शायद आप सब जानते ही होंगे कि आचार्य मम्मट, जो संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने कहा है इसी काव्य के आस्वादन के लिए, काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत्र क्षते सद्या पर निवृत्ते कांता सम्मितोपदेश युजे। इसमें सब कुछ तो है, लेकिन सबसे मुख्य दो बातें हैं, कांता सम्मित उपदेश और परम आनंद की प्राप्ति। तो ये साहित्य हमें परम आनंद देता है और कांता सम्मित उपदेश भी देता है। परम आनंद तो आप समझ सकते हैं कि जो अनिर्वचनीय है, जो ब्रह्म के आनंद की तरह प्राप्त होता है, जिसके लिए कहा गया है कि आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है और हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, और हृदय की इसी मुक्तावस्था की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है। तो जब हम काव्य का, साहित्य का, कलाओं का आस्वादन करते हैं तो परम आनंद की स्थिति होती है। तब हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बगल में कौन बैठा है, हमने क्या पहना है, हमें भूख लगी है या प्यास लगी है, हम किस मौसम में बैठे हैं। वो एक परम आनंद की अनिर्वचनीय सुख की स्थिति होती है, और कलाएं ये सुख हमें देती हैं। भले ही वो हास्य हो, क्रोध हो, वीर रस हो या कोई भी रस का परिपाक हो, लेकिन आनंद का जो सर्वश्रेष्ठ है, हमें ये कविताएं और कलाएं देती हैं। मित्रों, इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग याद रखें कि जो साहित्य और कलाएं हैं, वे हमें जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन दूसरों को देने के लिए, उस आनंद, उन मानवीय भावों को अनुभव करने के लिए आवश्यक हैं। और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, वे हमें यह सिखाते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति सद्भाव, सहृदयता से रहें, और उसके साथ जो मानवीय भाव हैं उनको साझा भी करते रहें। मानवीय भावों को साझा इसलिए भी करना आवश्यक है क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। हम कीड़े मकोड़े और मच्छर मक्खी और पक्षियों से, जानवरों से सबसे श्रेष्ठ इसीलिए हैं क्योंकि हम इन भावनाओं का, इन भाषा और साहित्य की, इन कलाओं का आस्वादन पूरे मन से कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने आज इस सृजन भारती में ये जो साहित्य की सरिता में अवगाहन किया है, हम जो इसमें डूबे हैं, उसके लिए हम सबसे पहले ममता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, विविध भारती को बहुत धन्यवाद देते हैं, और अंत में सच्चे मन से इन सभी कवियों को बहुत धन्यवाद देते हैं। कविता का आनंद तो हम सबने लिया ही है, हास्य हो, व्यंग्य

0: हो, लेकिन जो उदात्तता इनकी कविताओं में है, जो जीवन की श्रेष्ठता है, और हमने जिस आनंद का इस समय अवगाहन किया है, उसका आस्वादन लिया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ।
1: दोस्तों, हिंदी पखवाड़े पर ये था कवि सम्मेलन और कवियों ने अपनी अपनी कविताएं आपके सामने प्रस्तुत की। आपको कैसी लगी इन कवियों की कविताएं और ये पूरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। दोस्तों, विविध भारती हिंदी सर्विस है और हिंदी से प्रसारित तमाम कार्यक्रमों को सुन सुनकर लोगों ने अपनी हिंदी का विकास किया है, अपनी हिंदी समृद्ध की है। बहुत सारे हमारे ऐसे श्रोता हैं जो अहिंदी भाषी हैं, इन्होंने विविध भारती के कार्यक्रमों को सुन सुनकर अपनी हिंदी सुधारी है और बहुत सारे श्रोताओं ने विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनकर हिंदी सीखी है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों के तमाम श्रोता भी विविध भारती से जुड़े हैं, तो आप यूं ही जुड़े रहिए और विविध भारती के कार्यक्रमों को सुनते रहिए, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजते रहिए।
2: दोस्तों, विविधा कार्यक्रम में अभी आपने सुना सृजन भारती के तहत आयोजित किया गया कार्यक्रम काव्य तरंग। ये एक कवि गोष्ठी थी जिसमें शामिल थे सुभाष काबरा, देवमणि पांडे, आस्करण अटल और दमयंती दीपा। इस कवि गोष्ठी का संचालन ममता सिंह ने किया और विविध भारती के स्टूडियो में इस कवि गोष्ठी को आपके लिए रिकॉर्ड किया किरण बंग, अनुश्री गुप्ता, समृद्धि नाइक और भावना सिंदल ने। विविधा कार्यक्रम के लिए इस कवि गोष्ठी को संपादित किया मनीषा सिंह ने और विविधा कार्यक्रम को आपके लिए विविध भारती की ओर से प्रस्तुत करती हैं तेजश्री कामले।
1: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में
1: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नरेंद्र मोदी कई रेल परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए चेन्नई पहुंच चुके हैं। श्री मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से तैयार चेन्नई मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी चेन्नई मेट्रो में पोरूर बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन तक की यात्रा भी करेंगे। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बासमुद्रम, परमाकुड़ी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी जलकिंडेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि आज सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
1: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
0: कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने उस वीडियो को भ्रामक बताया है जिसमें एक कथित उपनिरीक्षक ने दिल्ली के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पद से इस्तीफा देने की बात कही है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में दिखाया गया उपनिरीक्षक दिल्ली पुलिस में नहीं है। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप हैं। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने कहा कि मानवाधिकार कार्यालय को निष्पक्षता और बिना किसी पक्षपात के अन्य देशों में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी ध्यान देना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए हैं। इसमें 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई है। गुजरात में गांधीनगर निगम थारा और ओखा नगर पालिकाओं सहित स्थानीय निकाय चुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी अलवर का ये सरिस का चैनल है। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
3: स्वागत है, मैं हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

गंगा की लहरें, इस फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीत चित्रगुप्त का, यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अगला गाना लगान फिल्म से, ये गाना है उदित नारायण, वैशाली, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल हैं।

लगान फिल्म का ये गाना आपने सुना उदित नारायण, वैशाली, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, संगीत A.R. रहमान का। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम जारी है देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का।

0: ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
2: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
3: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
6: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
5: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
6: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
5: पर रेरा तो शहरों में।
6: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गांव का, रेरा सब पर लागू होता है।
5: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
7: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रामलीला इस फिल्म का गाना श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाजों में, सिद्धार्थ गरिमा का लिखा हुआ गाना, संजय लीला भंसाली का संगीत।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति होकर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: रंगी पर उड़ आवी खुशियों संगेला।
3: काई पोछे इस फिल्म का गाना श्रुति पाठक और दिव्य कुमार की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे के बोल, संगीत अमित त्रिवेदी का।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है छोटी बहन, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजें, शैलेंद्र के बोर, शंकर जयकिशन का संगीत।
3: जाना ना ना जाने के जान।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिल ही दिल में इस फिल्म का गाना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, महबूब के बोल संगीत है ए आर रहमान का।

वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प

0: नस्ब किससे?
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जब

आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना सुहाग फिल्म का गाना मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी।
1: वाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दीप के, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियात के तौर पर हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई के आदेश दिए। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार का भरोसा दिलाया है और उन्हें 50,000 रुपए की जमानत पर रिहा किया गया है। माँ दुर्गा की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर के शक्तिपीठों, देवी मंदिरों और घरों में कलश स्थापना की जा रही है। देवी मंदिरों को आकर्षक रोशनी और चुनरी से

बताया गया है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। पहले दिन आज मां दुर्गा के शैल पुत्री रूप की आराधना की जा रही है। मां शैल पुत्री शक्ति, स्थिरता और नई शुरुआत का प्रतीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर मां राजराजेश्वरी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने मां जगदम्बा से प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। विभिन्न स्थानों पर मेले भर रहे हैं। मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए पंडाल लगाए गए हैं, जहां गरबा और डांडिया का आयोजन होगा। इसके साथ ही माता के जगरातों की भी आज रात से शुरुआत होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ये दिन बालिकाओं के लिए लैंगिक समानता, शिक्षा और अवसरों के महत्व पर प्रकाश डालता है। इस वर्ष की थीम बाल विवाह समाप्त करें और बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करें रखी गई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों को बालिका दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बेटियां समाज की प्रगति और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की नींव हैं। उन्होंने बेटियों के सपनों को पंख देने और उन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लेने की अपील की। आज महाराजा अग्रसेन जयंती भी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि महाराजा अग्रसेन सामाजिक सद्भाव के अग्रदूत थे। श्री मोदी ने कहा कि उनके विचार भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से समाज में समानता, सेवा और परोपकार की भावना को मजबूत करने वाले महाराज अग्रसेन की जयंती पर उन्हें नमन किया है। इस उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक सरोकारों से जुड़े आयोजन हो रहे हैं, साथ ही शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं। विभिन्न जिलों में शिक्षा, कला, संस्कृति और सामाजिक कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और वृद्धजन के प्रतिभा सम्मान समारोह रखे गए हैं। इसके अलावा महिला मंडलों की ओर से मेले लगाए गए हैं, जिनमें विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री की जा रही है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघ T108 के चेहरे के पास चोट के निशान दिखाई दिए जाने के बाद वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। उपवन संरक्षक मानस सिंह ने बताया कि यह चोट किसी अन्य नर बाघ के साथ क्षेत्रीय वर्चस्व को लिए हुए संघर्ष के दौरान हो सकती है। उन्होंने बताया कि वन विभाग की ओर से बाघ T108 की गतिविधियों और स्वास्थ्य की लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। ज्यादातर जिलों में दिन और रात के तापमान में अंतर बना हुआ है। कुछ स्थानों पर दिन के समय तेज धूप और उमस से लोग परेशान हैं। भीलवाड़ा और बाड़मेर में सूरज के तीखे तेवर बने हुए हैं। इस बीच आज सुबह श्रीगंगानगर जिले में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज 6 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों में बादल छाए रहने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। रांची में खेले गए दूसरे मैच में वेस्टइंडीज की भारत पर 6 विकेट से जीत के बाद 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 139वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

अमिताभ बच्चन, राखी और विनोद मेहरा पर फिल्माया गया बेमिसाल फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारे लिखते हैं कि आज की इबारत में कोई साधारण पंक्तियां नहीं लिखी गई है, बल्कि इसमें दिल के एक पूरे सफर का निचोड़ है, जिसमें तस्वीर की खूबसूरती से शुरू होकर मन को छूने वाली मासूमियत है। बिंदिया की चमक में बसे प्यार का इकरार, ख्वाबों की मीठी उड़ान और दोस्ती यारी की अटूट कसम तक सब कुछ सिमटा हुआ है। फिर उसी में जुदाई का दर्द भी है कि तेरे बिना जीना कैसा। तो कभी कभी उठता वो गहरा सवाल भी कि क्या सोचा हुआ सच में होता है, और इसी उलझन के बीच वो अनजाना सा एहसास जब इंसान हौले हौले किसी हसीन चीज का तलबगार बन जाता है, तड़प इंतजार और आखिर में अपनी पहचान की तलाश। सच कहें तो आज की इबारत एक आशिक, एक दोस्त और एक सोचने वाले इंसान की पूरी कहानी कह जाती है। जी हाँ, आज अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है, तो उनको शुभकामनाएं देते हुए उन्हीं की फिल्म के गाने हम आपको सुनवाएंगे, और या यूं कहें कि सुनवा रहे हैं। एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि जिनकी फिल्मों ने मात्र मनोरंजन ही नहीं किया, समाज को एक दिशा भी दी है। उनका भी शुरू का सफर बड़ा आसान नहीं रहा है, लेकिन वे संघर्ष करते रहे और प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर उनके जीवन में एक तूफान सरीखी आई, जिसने फ्लॉप हीरो का ठप्पा हटा दिया और वे रातों रात एक स्टार बन गए। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। उनकी फिल्मों का दर्शकों को इंतजार रहता था और सिनेमा घरों में लगने वाली फिल्मों के टिकट एडवांस में बिक चुके होते थे। उस महानायक पर हमें गर्व है। और आज कुछ एक दो सवाल हैं हमारे, वैसे तो आपने बहुत सारी बातें लिख दी हैं, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अमिताभ बच्चन की जो फिल्में हैं, कौन सी फिल्म का कौन सा किरदार आपको बहुत पसंद आया और उसकी क्या खासियत थी, ये आप हमें लिख कर भेज सकते हैं। और बहुत सारे उनके डायलॉग हैं, जिसमें से कुछ तो हमारे श्रोताओं ने लिख के हमें भेज दिए हैं, और भी कोई डायलॉग आपको याद आ रहे हो जो आपको बहुत पसंद आए हो, तो फिल्म के नाम के साथ उस डायलॉग को हमें लिख करके भेज सकते हैं। चलिए अब हम अगला गाना आपको सुनवाते हैं। इस गाने ने सचमुच सभी के मन को छुआ, याराना फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, अनजान के बोल, राजेश रोशन का संगीत। अमिताभ बच्चन के साथ कौन सी अभिनेत्री दिखाई दे रही है ये आप बताइए।

अमिताभ बच्चन के साथ जो अभिनेत्री इसमें दिखाई देती हैं वो है नीतू सिंह। आपके जवाब हम तक पहुंचे, बहुत धन्यवाद। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि ये कश्मीर है ये जो गीत हमने सुना, हाय हाय ये गीत सुनकर तो ठंड लगने लग गई, अब तो भाई रजाई निकालो। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बेमिसाल फिल्म का सदाबहार गीत, ये कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये आपने सुना है आर डी बर्मन द्वारा रचित और आनंद बख्शी द्वारा लिखित एक बहुत ही खूबसूरत ये रचना है और इसमें कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ मानवीय भावना और रिश्तों की गहराई को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाया गया है। एक साथी लिख रहे हैं कि दाग जब दामन की जगह दिल में लगी हो तो कभी कभी हर तस्वीर में दिलरुबा ही नजर आती है, हर किरदार का तलबकार युवा आक्रोश में गुस्सेल विद्रोही दहाड़, व्यवस्था विरुद्ध विद्रोही तेवर, कभी कभी कभी विदूषक तो कभी दिल की तन्हाइयों में एकाकी जूझता एकमात्र लंबी अवधि का सुपर स्टार अमिताभ बच्चन आधारित ये जो सफर है ये हमें पसंद आया। अभिमान फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज़ें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एस डी बर्मन का।

लीजिए, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे डायलॉग हमें लिख करके भेज दिए हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि अमर अकबर एंथनी इस फिल्म में एंथनी गोंसाल्विस के मजेदार अंदाज और हास्यपूर्ण संवाद आज भी लोकप्रिय है। एक साथी लिख रहे हैं नमक हलाल फिल्म का डायलॉग, आई कैन टॉक इंग्लिश आई कैन वॉक इंग्लिश। एक साथी लिखते हैं त्रिशूल फिल्म के लिए मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। और एक साथी लिख रहे हैं हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। एक साथी ने शोले फिल्म के लिए लिखा है ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये फिल्म का मशहूर गीत है जिसे जय और वीरू की दोस्ती के लिए याद किया जाता है। और एक साथी ने जंजीर फिल्म के लिए लिखा है जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। और एक साथी ने अग्निपथ फिल्म का डायलॉग लिख करके भेजा है विजय दीनानाथ चौहान पूरा नाम है मेरा। डॉन फिल्म के लिए डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, ये बात लिखी है।

और शराबी फिल्म का एक डायलॉग उन्होंने लिख करके भेजा है कि मूछें हों तो नत्थूलाल जैसी वरना ना हो। और शहनशाह फिल्म के लिए लिखा है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी है, धन्यवाद आपका। चलिए अगला गाना सुनते हैं, सिलसिला फिल्म का गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, संगीत शिवहरि का, अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, मोहब्बते फिल्म का यह डायलॉग हमारे एक साथी ने लिख करके भेजा है। और एक साथी लिख रहे हैं कि हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, पीटर ये ताला मैं तेरी जेब से ये चाबी निकालकर खोलूंगा, ये डायलॉग उन्होंने लिख के भेजा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि शक्ति मूवी जो है अमिताभ जी की, वो मुझे बहुत पसंद है, मेरे परिवार की कहानी लगती है और मेरे पति भी पुलिस ऑफिसर रहे हैं, मेरे बेटे और पति का संबंध दिलीप कुमार और अमिताभ जी जैसे रहे हैं और मैंने ये मूवी उनकी कई बार देखी है। एक हमारे साथी ये लिख रहे हैं कि कहते हैं ना कि जिसे आप प्यार करो तो उसकी हर चीज अच्छी लगती है, बस दर्द को कितना प्यार था कविता, आप किसी भी रोल में अदा करें लोग उन्हें पसंद करते थे, मुझे भी उनकी बहुत सारी फिल्में पसंद है। उनके किरदार में एक फिल्म है जुर्माना जो मेरे दिल के बेहद करीब है, फिल्म में जब इंदर का अहंकार टूटता है और वो अपनी गलती स्वीकार करता है, नायक को ये घमंड था कि वो अपनी दौलत और पैसे की ताकत से किसी भी इंसान के जज्बात और रिश्ते को खरीद सकता है, तो इस तरह की जो कहानी है ये उन्हें बहुत पसंद आई। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि सिनेमा घरों की टिकट खिड़कियों पर कभी लंबी कतारें लगना उनकी लोकप्रियता का सबूत था, लेकिन चार दशकों से भी अधिक समय से हर रविवार को उनके बंगले के बाहर जुटने वाली जो भीड़ है वो इस बात की गवाही देती कि रिश्ता महज अभिनेता और दर्शक का नहीं बल्कि गहरी आस्था और अपनेपन का है, और ये अमिताभ जी ने अपने सरल स्वभाव से कमाया है, ईश्वर उन्हें दीर्घायु बनाए। एक साथी ने हमारे ये लिखा है कि आपने अभी तक नवरात्रि की शुभकामनाएं नहीं दी है, तो क्या आपको नहीं लगता कि देना चाहिए? अगर आपने हमारे इससे पहले वाला कार्यक्रम अगर सुना होगा तो हमने नवरात्रि की बहुत सारी आपको शुभकामनाएं दी हैं और बहुत सारे गीत भी नवरात्रि से संबंधित सुना है, लेकिन एक बार फिर हम आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। चलिए अगला गाना शोले फिल्म से है, किशोर कुमार मन्ना डे की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीत है आर डी बर्मन का।

एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायलॉग की जहाँ तक बात है तो उन्होंने लिख करके भेजा है कि ये क्या है, कोल्हापुरी कितना नंबर है, 9 नंबर। और एक और डायलॉग, मुंशी जी हमारी जिंदगी का तंबू 3 बंबुओं पर खड़ा है, फिल्म शराबी का ये डायलॉग है। और एक और शोले का डायलॉग, अब क्या करूं मौसी मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, ये इन्होंने लिख करके भेजा है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आए तुम याद मुझे गाने लगी हर धड़कन, मिली फिल्म का ये जो गाना है ये किशोर कुमार का गाया हुआ और एक बेहद मधुर और भावुक गीत है जो प्रेम याद और दिल की कोमल भाव भावनाओं को दर्शाता है। जब प्रिय व्यक्ति की याद आती है तो भीतर का सुनापन संगीत में बदल जाता है और जीवन में एक अलग ही ताजगी आ जाती है, इसलिए ये मुझे बड़ा पसंद है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि अमित जी ने अपनी इस लंबी पारी में एक से बढ़कर एक नायाब किरदार निभाए हैं, लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है मुझे मुकद्दर का सिकंदर के बहुत मुतासिर हुआ हूं मैं इस फिल्म से। इस फिल्म में अमित जी ने जो बेमिसाल अभिनय किया है उसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। अकेलेपन का दर्द, एक तरफा प्यार की कशिश, दोस्त और माँ बहन के लिए असीम प्यार, इन सभी भावनाओं को उन्होंने जिस शिद्दत के साथ बयान किया है उसके बारे में क्या कहें। इस फिल्म के गीत के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। चलिए इसी फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं, मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म का किशोर कुमार की आवाज, अनजान के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

सिकंदर का, सिकंदर फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें जो अभिनेत्री हैं वो हैं राखी। एक साथी लिख रहे हैं कि बागबान फिल्म मुझे बहुत पसंद है, इस परिवार की फिल्म लगती है, ये आम आदमी की, हमारी खुद की फिल्म जब भी देखने बैठते हैं तो उठने का मन नहीं करता, हेमा मालिनी जी और अमिताभ जी का बिछड़ना दिल को छू जाता है। और एक डायलॉग लिखा है कि जय और वीरू ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये जो शोले फिल्म में का की बात इन्होंने लिखी। और लिखा है कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ये भी एक डायलॉग है शायद, वो उन्होंने लिखा है। और एक साथी हमारे ये लिख रहे हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन जी से मैं स्वयं और हम सभी ये प्रेरणा ले सकते हैं कि व्यक्ति की उम्र कभी भी उस व्यक्ति के काम में बाधा नहीं बन सकती है, अगर उसमें इच्छा शक्ति है, समर्पण है, काबिलियत है, समय के पाबंद है और मधुरभाषी है तो सफलता उसके कदम चूमती ही है। ये बात इन्होंने लिखी है। और शोले के एक डायलॉग के बारे में लिखा है कि अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भूंज के रख दूंगा जेल में पिस्तौल, डिचुम डिचुम जय तुम्हारा नाम क्या है बसंती, ये इन्होंने डायलॉग लिख करके भेजा है। चलिए आपका धन्यवाद। और एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि भारतीय सिनेमा के महानायक जिनके लिए रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि उनका रुतबा है, जिन्होंने सिखाया है कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, जिनकी कड़क आवाज जब गूंजती है तो आज भी डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है का रोमांच सर चढ़कर बोलता है, एक ऐसा व्यक्तित्व जो स्वाभिमान से कहता है कि मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, जिसका पूरा नाम सुनते ही उनकी विजय दीनानाथ चौहान की दमदार छवि आंखों के सामने तैर जाती है। सच उनके इस अंदाज के लिए दिल बस यही कहता है कि आप जिए हजारों साल, ये इनकी बात है। चलिए धन्यवाद। मजबूर फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: क्या करती है।
1: एक साथी ने हमारे ये बात लिखी है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने, मोहम्मद रफी साहब और लता जी की आवाज का गाया हुआ फिल्म एक नजर का ये गीत अमिताभ बच्चन और जया जी पर फिल्माया गया है, जो मेरे दिल के बेहद करीब है। इस गीत में दोनों की ही मासूमियत मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ फिल्मों में अभिनय नहीं करते, वे अपने किरदारों से लोगों के दिलों में घर बना लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी की दमदार आवाज, संवाद बोलने का अंदाज और दशकों तक दर्शकों से जुड़ाव उनकी खास पहचान है। समय बदलता रहा, पीढ़ियां बदलती रही, लेकिन उनके प्रति लोगों का प्यार आज भी कायम है। तो इसी के साथ हम अगला गाना शक्ति फिल्म का आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार, लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीता आरडी बर्मन।

एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि कालिया मूवी में जब वो कहते हैं कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, होठों पर मुस्कान आ जाती है। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा के शहंशाह, सदी के महानायक और आज तक भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार हैं। शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष रहा, जहां तक रेडियो जॉकी में उनकी आवाज की रिजेक्ट कर दिया गया, वहीं पहली 10-12 फिल्मों की असफलता के बाद जब फिल्म जंजीर बनी तो भारतीय फिल्मों का को एक ऐसा एंग्री यंग मैन मिला जिसके अभिनय का जादू सारे जहान में छा गया। दीवार, डॉन, त्रिशूल, अमर अकबर, एंथनी, लावारिस और भी कई ऐसी फिल्में हैं अमिताभ बच्चन की जिसने सिने दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। और आज भी अमिताभ जी बेशक 80 बरस के ऊपर हो गए लेकिन फिल्मों और टीवी प्रोग्राम में वो सक्रिय हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, सौदागर फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। किशोर कुमार की आवाज, गीत और संगीत है रविन्द्र जैन का।

अमिताभ बच्चन यानी अभिनय की यूनिवर्सिटी और एक नेक इंसान महान व्यक्ति, तो ये हमारे एक साथी ने लिखा है। और ये भी लिखा है कि फिल्म कोहराम में अमिताभ जी और नाना पाटेकर जी का शानदार अभिनय हमें देखने को मिला। एक साथी ने फिल्म बागबान का एक डायलॉग लिखा है कि औलाद शायद ये भूल रही है कि जो आज हमारा है वो कल उनका भी होगा, आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। मैं कभी किसी युवा को बुजुर्गों का अपमान करते हुए देखता हूँ तो यही बात मैं बोलता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, स्वयं भी सभी बुजुर्गों की इज्जत करता हूँ। ये साथियों ने हमारे बात लिखी। और ये भी लिखा है कि अमिताभ हमारे सदी के वे अभिनेता हैं जो किसी ख्वाब के पूरे होने की दास्तान है। उन्होंने पर्दे पर न जाने कितनी तरह के रंग बिखेरे और दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी दो जिंदगी है, एक पर्दे के बाहर की और पर्दे के भीतर की, और दोनों ही तरफ उन्होंने खूब शोहरत बटोरी। अमिताभ में एक आभा है और अपने काम के प्रति गहरा समर्पण, ये दो चीजें ही हम सबका समय समय पर मन मोहती रहती है। और गजब की बात यह कि जिस उम्र में लोग रिटायर होकर आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं उस उम्र में भी वो खूब सक्रिय है। चलिए आगे, सत्ते पे सत्ता इस फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज, गुलशन बावरा के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

अमिताभ बच्चन सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, वे इस बात का जीवंत प्रमाण है कि प्रतिभा, अटूट अनुशासन और असफलताओं से सीखकर दोबारा खड़े होने की जिद इंसान को कैसे अमर बना देती है। वे भारतीय सिनेमा के सूर्य हैं जिनकी चमक का दायरा कभी कम नहीं होता। उनके संवाद, उनकी आवाज का जादू ऐसा है कि साधारण से साधारण पंक्ति के भी सिनेमाई इतिहास का हिस्सा बन जाता है। और एक साथी ने ये लिखा है कि उम्र उनके चेहरे पर लकीरें खींच सकती है, वक्त उनके कदमों की रफ्तार बदल सकता है, लेकिन करोड़ों दिलों में उनके लिए जो मोहब्बत है उसे कभी कम नहीं कर सकता, क्योंकि अमिताभ बच्चन सिर्फ एक नाम नहीं, हमारे कई पीढ़ियों की यादों में बसी एक आवाज है, एक ऐसा जादू जो पर्दा गिरने के बाद भी खत्म नहीं होती। चलिए अगला और अंतिम गाना डॉन फिल्म का गाना।

0: Kolkata welcomed the arrival of Goddess Durga with a spectacular celebration at Eden Gardens yesterday. The program Uma Agamoni, organized by the West Bengal government on Mahalaya, marked the formal beginning of this year's Durga Puja festivities. Here is a report from a Kolkata correspondent.
1: The beats of Durga Puja drums heralded the arrival of the festive season in Kolkata with the beginning of Devi Paksha. Chief Minister Shubhendu Adhikari formally inaugurated the Durga Puja festivities through the program featuring dance, music, a drone show and fireworks. The highlight was a record-setting gathering of 3,000 dhakis, earning the event a place in the Guinness World Records. A stunning drone display illuminated the sky with an image of Goddess Durga as Mahishasuramurdini. Musical performances by Shantanu Maitra, Shan and the Dohar band added to the celebrations. Tundipan Dashutto, Akashvani News, Kolkata.
0: The India Meteorological Department IMD has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Kerala, Mahe, Lakshadweep, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Tuesday. Similar weather conditions are expected over Andhra Pradesh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Odisha and West Rajasthan today. IMD has also said that hot and humid weather conditions is likely at isolated places over coastal Karnataka, Konkan and Goa for the day. In men's cricket, India will face West Indies in the third T20 International at Holkar Stadium in Indore today. The match will begin at 7 p.m. Indian Standard Time. The five-match series is currently level at 1-1. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Punnamalli Vadapalani stretch of Phase 2 of Chennai Metro Rail Project. Prime Minister to launch development projects worth over 13,000 crore rupees in Chennai this afternoon. India condemns repeated attacks on Riyadh Airport, expresses concern over loss of lives and damage to property. Supreme Court directs authorities to prevent illegal detention of peaceful gatherers, ensure free movement of people and uninterrupted internet services. Nepal issues evacuation warnings along Buri Gandaki River after rising water sweep away houses in Gorkha district. And in men's cricket, India to take on West Indies in the third T20 International in Indore this evening. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वडापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। नेपाल ने गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी बढ़ने से कई घरों के बह जाने को देखते हुए लोगों से सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे। वे आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय, उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों, अन्ना द्रमुक महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी सहित अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने चेन्नई में रोड शो किया और पोरुर पूनमल्ली मेट्रो रेल सेवा को रवाना किया। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो की यात्रा की। लगभग 4.25 किलोमीटर लंबे पुनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में बिना ड्राइवर के डबल डेकर मेट्रो संचालन के लिए उन्नत सिग्नलिंग प्रणाली लगाई गई है।

0: प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें पलानी, वेल्लोर छावनी, अम्बास समुद्रम, परमाकुडी और नमक्कल में स्थित 5 अमृत स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया गया है। श्री मोदी परिसर में बना सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य समुद्री अवसंरचना को मजबूत करना, माल ढुलाई क्षमता का विस्तार करना और लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली रिफाइनरी में ल्यूब ऑयल बेस स्टॉक्स परियोजना की शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कामराजर बंदरगाह पर अतिरिक्त कोयला बर्थ परियोजना का उद्घाटन करेंगे। वे जयगोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लेने और यातायात को सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार बनाए रखने और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना कार्यवाही करने वाली याचिका पर न्यायालय ने कहा कि वो सभी पक्षों की बात सुनेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि किसी को कोई असुविधा ना हो। कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास को रिहा कर दिया गया है। इन तीनों को कल एहतियातन हिरासत में लिया गया था। नई दिल्ली में विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने आज उनकी रिहाई का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार तीनों ने एक वर्ष तक शांति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्हें 50,000 रुपये की जमानत पर रिहा किया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को उनकी दादी के निधन की सूचना कल ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार दिपके को मानवीय आधार पर उनके पैतृक शहर जाने के लिए हर संभव सहायता की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने ये सहायता लेने से इनकार कर दिया। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली और निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अनवरत अटूट वचनबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन को केंद्र में रखकर सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का ये प्रयास लोगों के जीवन को परिवर्तित कर रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में चर्चा पद्म पुरस्कारों की, जिसकी चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए व्यापक बदलाव किए गए।
3: 2014 के बाद पद्म पुरस्कारों की चयन प्रक्रिया में व्यापक बदलाव किया गया। देश के इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को अधिक पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाया गया है। अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी योग्य व्यक्ति को नामांकित कर सकता है। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नामांकित करने के अवसर हैं। सभी नामांकन पूरी तरह से ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इन व्यापक सुधारों ने पद्म पुरस्कार को एक सीमित दायरे से निकालकर जन पुरस्कार के रूप में बदल दिया और दूर दराज, ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के जमीनी स्तर पर असाधारण काम करने वाले गुमनाम नायकों को सम्मानित करने का नया मानक स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के एक एपिसोड में पद्म पुरस्कारों का उल्लेख करते हुए कहा कि अब ये पीपुल्स पद्म बन चुका है।

0: पद्म सम्मान का सिस्टम पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये पीपल्स पद्मा बन चुका है। पद्म सम्मान देने की व्यवस्था में कई बदलाव भी हुए। अब इसमें लोगों के पास खुद को भी नॉमिनेट करने का मौका रहता है।
1: पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की।
2: भारत सरकार ने निसंदेह 12 वर्षों से ये प्रयास किया है कि भारत की मिट्टी के जो सच्चे सेवक हैं उनको सम्मान मिले और उनके बारे में बताना मुझे लगता है कि इसकी जितनी भी सराहना करें वो कम है।
1: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका और वर्ष 2026 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित मंगला कपूर ने भी पद्म पुरस्कारों की प्रक्रिया को आसान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि अब एक आम आदमी के मन में यह विश्वास मजबूत हुआ है कि वह किसी भी क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य कर रहा है तो उसे भी पद्म पुरस्कार मिल सकता है। प्रेमचंद्र गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
3: भारत ने कहा है कि नई दिल्ली में हाल की घटनाओं के संबंध में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की टिप्पणियां अनुचित और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य हस्तक्षेप हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां संविधान शांतिपूर्ण प्रयोजन से एकजुट होने की अनुमति देता है, लेकिन अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह भारत में भी इन अधिकारों का प्रयोग सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। भारत ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आम नागरिकों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा के लिए वहां की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। भारत ने आशा व्यक्त की है कि क्षेत्र में जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल होगी। सऊदी अरब ने एक बयान में बताया कि हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 लोग घायल हैं। मृतकों में 4 सऊदी नागरिक और 8 विदेशी नागरिक हैं। विदेशी मृतकों में बांग्लादेश के 2 और अमरीका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, फिलिस्तीन तथा सूडान का 1-1 नागरिक है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि दम्माम स्थित किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी हवाई हमला हुआ। एक रिपोर्ट।
4: शनिवार को रियाद एयरपोर्ट पर हूतियों का हमला इस हफ्ते का तीसरा हमला था। यह पिछले करीब 10 साल में सऊदी अरब पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के अलर्ट सिस्टम से कोई खतरे का अलर्ट जारी नहीं हुआ था। शनिवार को रियाद आने जाने वाली करीब 260 फ्लाइट्स रद्द होने की खबर है। इस हफ्ते हुए पहले के हमलों में भी लोगों की जान गई थी और एयरपोर्ट पर खड़े सऊदी अरब के एक कमर्शियल विमान को नुकसान पहुंचा था। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने दम्मम एयरपोर्ट और अल खर्ज को भी निशाना बनाने की कोशिशों की जानकारी दी है। गठबंधन ने सऊदी क्षेत्र पर हुए इन हमलों का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
3: अमेरिका यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई में शामिल होने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने के इच्छुक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शांति स्थापित करने के अवसरों को बार बार गंवाया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में पानी अचानक बढ़ने के बाद तटवर्ती बस्तियों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा गया है। आज तड़के जलस्तर बढ़ने से कई मकान बह गए। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जलस्तर में अचानक वृद्धि का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच नेपाल में बाढ़ को देखते हुए बिहार के सीमावर्ती जिले पश्चिम चंपारण में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालांकि बिहार पर इस बाढ़ का असर होने की संभावना बहुत कम है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के जिलाधिकारी तरणजोत सिंह ने कहा कि जिले में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका नहीं है।
5: लोगों ने अलर्ट किया है लेकिन पानी कोई बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, देवघाट पर भी मॉनिटर कर रहे हैं। एक देवघाट से भी पीछे काली खोला करके जगह है, वहाँ पर पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ के लगभग 50 सेंटीमीटर बढ़ के अब फॉल करना शुरू कर गया है।
3: गुजरात में गांधीनगर, ओखा और थारा नगर निगम चुनाव तथा खिरालू, छोटा उदयपुर और बायद नगर निगम उपचुनाव, देवभूमि, द्वारका जिला पंचायत, पड़धारी

0: कतलासना और हरिज तालुका पंचायत के उपचुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान जारी है। गांधीनगर नगर निगम के 11 वार्ड में अब तक औसतन 31.9% मतदान दर्ज किया गया है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है, जिसे लोग उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कल कोलकाता में ईडन गार्डन्स में महालया के अवसर पर आयोजित भव्य उमा आगमोनी कार्यक्रम के साथ देवी दुर्गा के आगमन का स्वागत किया।
1: कोलकाता में देवी पक्ष की शुरुआत के साथ ही दुर्गा पूजा की रौनक बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को ईडन गार्डन्स में उमा आगमन कार्यक्रम आयोजित किया। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने इस कार्यक्रम के साथ दुर्गा पूजा उत्सव की औपचारिक शुरुआत की। 3000 ढाकियों ने एक साथ पारंपरिक ढोल बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ड्रोन शो में आसमान पर देवी दुर्गा की महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की छवि दिखाई गई। उत्सव की रौनक रोड पर भी देखने को मिली, जहां विभिन्न पंडालों में पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया गया। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद सभी को शक्ति, साहस और सद्बुद्धि प्रदान करे। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि देवी मां का आशीर्वाद देशवासियों में धैर्य और आत्मविश्वास की भावना को प्रेरित करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। 5 मैचों की इस श्रृंखला में दोनों टीम एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पूनमल्ली वजापलानी खंड का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत ने रियाद हवाई अड्डे पर हमलों की निंदा की और जानमाल तथा संपत्ति के नुकसान पर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और भारत तथा वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 मैच आज इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है आओ प्यार करें। इस फिल्म से आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है उषा खन्ना का।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपकी परछाइयां इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहंदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में असद भोपाली का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म आया तूफान।

0: संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। चित्रलेखा इस फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रोशन का।

संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीत

शकील बदायूनी का लिखा और रवि का संगीतबद्ध किया ये गाना आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है दूर की आवाज़।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना आइए अब सुनते हैं। शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम आई मिलन की बेला।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बेटी बेटे। इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहेगी
0: आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे। मंजू द्विवेदी के साथ आप सभी का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
3: हम अपनी हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: तो चलिए आज के इस मनचाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला गीत सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गाना। आशा भोसले की आवाज, आनंद बख्शी की बोल और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहते हैं रमन अग्रवाल लुधियाना।

याना से। और इसके अलावा फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं विवेक देशमुख, दीपक विज देशमुख और अनिरुद्ध देशमुख। आपका पत्र आया है समता कॉलोनी कठोरा रोड अमरावती महाराष्ट्र से। और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा ने फरमाइश भेजी है। और प्रणाम सिटी खंडवा से सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश, अंजलि और पिंटू खंडाले का पत्र हमें मिला है। आइए सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गाना।

मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना है धरती फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे पास आई है बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी और

श्रद्धानंद केशरी की, श्री रामपुर भोकर से हरिभाऊ बिड़वे, पूजा अनिकेत, शुभांगी श्रावण और अनीता बिड़वे की, और बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश रिंकी, कपिल वेदराम, कैलाश सुनील, खुशबू एरोही और स्वाति मौर्य, ग्राम जंजगिरी दुर्ग से मयंक कुमार मैथिल और विनय कुमार मैथिल, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। आपकी पसंद का है धरती फिल्म का ये गाना।

अगला जो गीत है वो लता मंगेशकर और बप्पी लहिरी की आवाजों में आपकी खातिर इस फिल्म का गाना है, शैली शैलेंद्र के बोल और संगीत बप्पी लहिरी का। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है धाड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे ने, और इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने, आजाद नगर बक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां ने, और इसके अलावा विनोद कुमार अफ्रीका वाला, इनका पत्र आया है पातड़ी जिला सुरेंद्र नगर गुजरात से, और नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना गौरव, प्रतीक्षा शिवानी, चंचल और खुशी आनंद का। आपकी पसंद का है आपकी खातिर इस फिल्म का ये गाना।

अगला जो गीत है जिसकी फरमाइश हमें श्रोताओं ने लिख भेजी है वो है दीवाना फिल्म का गाना, कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरोल, रणपिस नेग अकोला से शिवराज भारती, टीना, तनीषा, राज भारती, रीनाताई, रोहित और राज भारती। इसके अलावा नरोत्तम गोड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं और रथ चौक बहादुरपुर से संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र दड़गंगवाल, रविंद्र सोनार, सन्नी मुन्ना और बंडू दादा। इसके अलावा एरोड्रम थाने से इंदौर से ये पत्र आया है, रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की रघुवंशी का, स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश, कार्तिक, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे का, आपकी पसंद का ये गाना दीवाना फिल्म से।

0: दीवाना फिल्म का ये गाना यही था आज के मंचाई गीत कार्यक्रम का अंतिम गाना। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम सहयोग हमें मिला धनश्री साठे से और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: मन चाहेगी।

0: चाहेगी।
1: मन चाहेगी यह है विविध भारती।
0: नाट्य तरंग। श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं प्लास्टिक की घास, सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। निर्देशक दीना नाथ।
2: मिस्टर शर्मा करमारकर के दफ्तर से निकलकर बिरला मंदिर की तरफ रवाना हुए। चलते चलते मन में कई किस्म के विचार उठ रहे थे।
3: करमारकर साहब जरूर मेरी मदद करेगा, पर बड़ी गलती हुई। करमारकर साहब के पास जाते हुए मुझे कुछ फल वल ले जाने चाहिए थे। फल कितने महंगे हो गए हैं। कुछ भी हो, ऐसे मुश्किल वक्त में पैसे का मुंह नहीं देखना चाहिए।
4: और देख के चलो, तुरी जाना है तो तू उत्ते पहुंच जाना सी।
5: केड़े पिंडो आया?
4: पता नहीं तेनू, शहर विच लोकी फुटपाथ ते चलदे ने।
2: अपने ही शहर में मिस्टर शर्मा आज परदेसी लग रहे थे। थके हारे घर पहुंचे तो मिसेस शर्मा बाहर ही खड़ी थी।
6: जो जी, कुछ बात बनी?
3: हाँ, आज करमारकर साहब से मिला था।
6: क्या कहते हैं?
3: कहते हैं ऑल द बेस्ट।
6: इसका मतलब?
3: सब कुछ ठीक हो जाएगा।
6: हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो बला कटी।
7: ये कैसे समझ गया तुमने कि बला टली? करमारकर साहब ने सिर्फ यही तो कहा है कि उनकी प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा।
6: यानी वो खुद कुछ नहीं करेंगे?
3: कोशिश करेंगे।
6: तो आज के जमाने में ये भी कौन करता है? दोपहर को पड़ोसन आई थी, कह रही थी भटनागर साहब की भी एक बार ट्रांसफर हुई थी, मगर उन्होंने रुकवा ली थी।
3: हो सकता है।
6: कह रही थी भाई साहब से कहना, उनसे सलाह मशवरा कर ले।
7: अरे तुम तो जानती हो वो शराबी कबाबी आदमी है। पिताजी कहा करते थे शराब की इल्लत से बचने के लिए जरूरी है कि शराबी की संगत से बचो।
6: हाय हाय, जरा सी सलाह।

0: लेने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्या? जा जाओ, मिलाओ ना दो मिनट।
1: ओहो, लेकिन वो
0: दो मिनट बात करने में क्या हर्ज है, तो अपना पड़ोसी ही ना।
1: अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ।
2: अरे आइए आइए शर्मा जी।
3: नमस्ते
2: नमस्ते नमस्ते। अरे साहब, धन्यभाग्य हमारे आप हमारे घर पधारे।
3: अरे साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप,
2: इतने करीब रहकर भी कभी आए नहीं हैं।
3: आप तो जानते ही हैं, दिन भर दफ्तर में ही निकल जाता है, काम इतना है कि घर पर भी लाना पड़ता है।
2: हाँ, आप बैठिए।
3: हाँ बस मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ।
2: और सुनाइए।
3: वो बस ऐसा था कि
2: पहले ये बताइए कि क्या लेंगे आप?
3: नहीं,
2: पानी है सोडा?
3: नहीं नहीं, मैं नहीं लेता ये, मैं नहीं लेता।
2: मैं भी नहीं, आई डोंट ड्रिंक।
3: वो बात ये है, मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता था, योर एडवाइस।
2: आई डोंट ड्रिंक।
3: हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है, दरअसल हुआ क्या कि अचानक
2: यू नो मिस्टर शर्मा, आई डोंट ड्रिंक।
3: हाँ हाँ,
2: आप इसे अपना ही घर समझ।
3: जी हाँ जी हाँ, मैं अपना ही घर समझ कर आया हूँ, क्या बताऊँ, बहुत विपत्त।

0: I don't drink.
1: वो बात ये है, मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता था. Your advice.
0: I don't drink.
1: हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है. दरअसल हुआ क्या कि अचानक
0: you know Mr. Sharma, I don't drink.
1: हाँ हाँ
0: आप इसे अपना ही घर समझ.
1: जी अच्छा, मैं अपना ही घर समझ कर आया हूँ. क्या बताऊँ, बहुत विपता आन पड़ी है. मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं.
0: बहुत बुरी बात, मैंने बस सब छोड़ दिया है. I don't drink.
1: सुना है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि
0: क्या हुआ?
1: सुना है आपके भी ट्रांसफर का कुछ चक्कर चला था.
0: चक्कर? घनघोर चक्कर. But I don't drink.
1: मैं वो ट्रांसफर की बात कर रहा था.
0: ट्रांसफर करना किसी को घर से उजाड़ना, बहुत कोशिश की हूँ, बहुत कोशिश की.
1: फिर आपने क्या किया?
0: बहुत कोशिश की हूँ.
1: फिर आपने क्या किया?
0: मैंने
1: हाँ हाँ आपने क्या किया?
0: मैं ऊपर गया.
1: हाँ
0: और कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी.
1: फिर
0: मैंने उनसे कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी है.
1: तो आपकी ट्रांसफर रोक दी गई?
0: नहीं.
1: फिर
0: मैं और ऊपर गया.
1: अच्छा फिर
0: वहां भी न रुके.
1: तो
0: मैं और ऊपर गया.
1: और वहां हाँ फिर वहां क्या हुआ?
0: वहां क्या होना था? आई डोंट ड्रिंक.
1: और वो लोग?
0: और वो लोग नहीं माने.
1: फिर आपने क्या किया?
0: करना क्या था? कह दिया उनसे.
1: क्या
0: कह दिया उनसे? नहीं मानते तो कर लो ट्रांसफर. पहले इसके के ऑर्डर मेरे दफ्तर पहुंचे, मैंने लीव ले ली.
1: छुट्टी ले ली? कितनी?
0: पहले एक महीने की, फिर दो महीने की, फिर तीसरे महीने की.
1: लेकिन इतनी लंबी लीव?
0: मेडिकल.
1: यानी आपने ऐसे ही सर्टिफिकेट वगैरह?
0: नो मिस्टर शर्मा, आई डोंट ड्रिंक.
1: जी जानता हूँ, लेकिन वो सर्टिफिकेट?
0: पहले तीन महीने का झूठा सर्टिफिकेट और उसके बाद का सच्चा.
1: क्या मतलब?
0: तीन महीने की छुट्टी थी, काम का कुछ था नहीं. ऐसे ही कभी कभार जरा सा शौक कर लेता था. वैसे यू नो आई डोंट ड्रिंक. बस तीसरे महीने लीवर, यू नो मिस्टर शर्मा, लीवर.
1: जिगर जिगर.
0: बस बोल गया, हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा. छूटे सर्टिफिकेट की जरूरत भी खत्म हो गई.
1: हाँ और आपके ट्रांसफर ऑर्डर्स?
0: जब दफ्तर ज्वाइन ही नहीं करूंगा तो ऑर्डर सर्व कैसे करेंगे? सारे कहते थे ट्रांसफर रुक नहीं सकती, अब रुकी है ना साल भर से के नहीं रुकी है बराबर.
2: हाँ जी मिला है. क्या मशवरा दिया उन्होंने?
1: शराब पियो, अपना जिगर खराब करो, अस्पताल में दाखिल हो जाओ. सरकारी ट्रांसफर तो अपने आप रुक जाएगा, इस दुनिया से ट्रांसफर भले ही हो जाए.
3: मैंने तो आपको पहले ही कहा था पिताजी, ये सब एक्शन बेकार है. सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता, बिना ढोल बजाए कोई नहीं सुनता.
1: तो क्या करूं फिर?
3: मेरी मानिए तो यूनियन लीडर से मिलिए.
1: यूनियन? मैंने तो आज तक किसी यूनियन को ज्वाइन नहीं किया.
3: यही यही यही तो गलती की है आपने. अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है. मेरी मानिए, कल सुबह यूनियन के लीडर से मिलिए. जो काम ऑफिसर्स नहीं कर सके ये मिनटों में कर लेते हैं.
1: लेकिन हमारी यूनियन का लीडर तो शायद घनश्याम है.
3: ओ, जो कोई भी हो उसके घर जाकर उसे फौरन मिलिए.
1: ये कैसे हो सकता है, वो तो क्लास फोर है.
3: और बस बस यही तो कमजोरी है हम लोगों में. हम लोग क्लासों के चक्कर में फंस कर बढ़ गए. क्लास वन क्लास टू से नहीं मिलता, क्लास टू क्लास फोर से बात नहीं करना चाहता. और इसी बात का फायदा उठाकर वो आप पर वार करते हैं, इंसानों को उंगलियों पर न चाहते हैं.
2: ठीक ही तो कहता है किशन, उस नीच को भूल के जहां से भी मदद मिलती हो ले लेनी चाहिए. जरूर मिल आई जाकर सुबह उससे.
1: अच्छा अगर तुम लोग कहते हो तो मिल आऊंगा. हाँ लेने आ गया क्या?
2: वो बेचारा भी इसी चक्कर में किसी से मिलने गया है.
1: और उषा?
2: उषा उसने तो कल से रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा है, ना कुछ खाया है ना पिया है.
1: इस ट्रांसफर से उसे इतना सदमा हुआ?
2: मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, उसके तो आंसू भी नहीं थमते.
4: अरे बस बस उषा, धीरज रखो. क्यों रो रो कर अपना मन हलकान कर रही हो?
5: ना जाने तुम किस पत्थर के बने हो. मैं तो ये सोच कर कि हम हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं, बस होश ही गवा बैठी हूँ. पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो आंखों में पानी भर आता है और तुम्हारी सूरत डूबती नजर आती है.
4: मौत से पहले मन में कायरों का काम है, जब जुदा

0: आएगा तब जुदाई की आग में जलकर जी लेंगे। लेकिन अभी तो तुम मेरे पास हो, फिर अभी से रोना धोना क्यों?
1: तुम मतलब होते ही बेवफा हो, बस सिर्फ इस पल के जीने को जीना समझते हो। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीने के ख्वाब देखे हैं, लेकिन पिताजी के इस ट्रांसफर ने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए।
0: घबराओ नहीं उषा, भगवान ने चाहा तो ये ट्रांसफर जरूर रुक जाएगा और तुम्हारे ख्वाब चकनाचूर होने से बच जाएंगे। तुमने सुना नहीं, सच्चे प्रेमियों की आहो पुकार में बड़ी शक्ति होती है। आओ हम और तुम मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि वो दो दिलों को टूटने से बचा ले और इस ट्रांसफर को रुकवा दे।
1: राकेश, भगवान हमारी सुन लेंगे।
0: अगर प्यार हमारा सच्चा है तो
1: मेरा तो बिल्कुल सच्चा है।
0: और मेरे प्रेम पर कोई संदेह है तुम्हें?
1: संदेह ना करूं तो और क्या करूं? हम लोग इतनी विपदा में फंसे, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने का खतरा है और तुम सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने को कहते हो।
0: हाँ हाँ, उसकी दो वजह है, एक भगवान की शक्ति अपरंपार है और दूसरे उसका सेवा मैं कर ही क्या सकता हूँ। मैं किसी बड़े आदमी का बेटा नहीं हूँ जो इस ट्रांसफर को रुकवा सकूं।
1: मुझे पहले पता होता तो मैं ये भूल कभी ना करती।
0: कैसी भूल उषी?
1: किसी कवि की बजाय किसी बड़े आदमी के बेटे से प्रेम कर।
0: हाँ तो अभी क्या बिगड़ा है, जाओ ढूंढ लो कोई।
1: तुम जानते हो ना, कोई शरीफ लड़की बार बार प्रेम नहीं कर सकती, इसीलिए ऐसा कह रहे हो।
0: उषा चुप करो, चुप कर जाओ मेरी प्यारी, मेरी जान से दुलारी, अब चुप कर जाओ। जुदाई के वक्त तो रोना ही रोना है, कुछ आंसू उस वक्त के लिए मैं बचा के रखू। मैं वचन देता हूँ, अगर तुम आगरे चली गई तो मैं संडे के संडे तुमसे मिलने वहां आया करूंगा।
1: आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, मुझे यकीन है मेरे जाते ही तुम मुझे भूल जाओगे।
0: उषा, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ
1: तो
0: तुम भी मुझे हमेशा के लिए भुला देना।
1: मैंने तुमसे प्रेम भूलने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए किया है। सुनो, मुझे एक तरकीब समझ में आई है।
0: क्या?
1: हम शादी कर ले।
0: ये कैसे हो सकता है?
1: बारात लाकर, बाजी बजाकर।
0: नहीं, मेरा मतलब है, मेरे माँ बाप तैयार हूँ, तुम्हारे माँ बाप माने तो।
1: मैं कह दूंगी अपने पिताजी से, या तो अपनी ट्रांसफर रुकवाएं, या दिल्ली छोड़ने से पहले मेरी शादी तुम्हारे साथ करते जाएं। बस मैंने फैसला कर लिया है।
2: सुना, आपकी बेटी क्या कह रही है?
3: क्या बात है?
2: कहती है अगर ट्रांसफर ना रुकी तो वो यहाँ किसी से शादी कर लेगी।
3: लेकिन मैंने तो अभी उसकी शादी कहीं तय नहीं की।
2: राम जाने क्या उल जरूल बक रही है।
3: हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। जरा सा संकट आया तो सारा परिवार ही मेरी जान का दुश्मन हो रहा है।
4: इस छछुंदर की अकल तो मैं ठिकाने लगा दूंगा। आप जल्दी से जाइए, घनश्याम जी से मिलिए।
3: घनश्याम जी?
4: ओफो पिताजी, समझा कीजिए। लीडर यूनियन का हो या देश का, उसके साथ जी लगाया ही जाता है।
3: जी
4: जी।
5: आज 19 जून है और सुबह सवेरे ही मिस्टर शर्मा चले हैं यूनियन लीडर घनश्याम जी से मिलने।

0: आइए आइए बड़े बाबू, धन्य भाग हमारे, आपके चरण हमारी कुटिया पर पड़े। आपने कष्ट क्यों किया, सेवक को बुला भेजा होता।
1: अरे तुमने मुझे पहचान लिया घनश्याम जी?
0: क्या बात करते हो बड़े बाबू, 15 साल पहले मेरी पोस्टिंग आपके ही दफ्तर में तो थी। क्यों?
1: मुझे तो याद है, पर बहुत वक्त गुजर गया था इसलिए मैंने सोचा कि शायद।
0: क्या पियेंगे आप, ठंडा या गर्म? अरे सुनती हो, जरा देख तो कौन आया है, जरा शरबत वरबत तो
1: नहीं? नहीं, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है।
0: हा?
1: मुझे जरा जल्दी ही वापस भी जाना है। हाँ, वो मैं अपने निजी काम से आया था।
0: हुक्म दें।
1: वो ऐसा है कि मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
0: ट्रांसफर और आपकी? राम राम राम, ये किस दुष्ट का काम है?
1: ट्रांसफर जिस किसी ने भी किया है वो खुद ही भुगतेगा। हाँ, तो बात इतनी सी है कि किसी तरह अगर ये ट्रांसफर रुक जाए तो।
0: किसी तरह से क्या बड़े बाबू, हर तरह से ये ट्रांसफर रुक नहीं होगी। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आज ही ऊपर जाता हूँ और ये ट्रांसफर रुकवाता हूँ। अगर सीधी तरह नहीं माने तो परसों से स्ट्राइक, फिर नहीं माने तो हंगर स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक।

0: अरे यहाँ क्यों खड़ा है?
1: कुछ नहीं, वो
0: इस जुलूस के साथ है?
1: नहीं नहीं, मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ।
0: तो भैया जाओ जाओ अपने काम पर जाओ, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो?
1: हाँ मैं जा रहा हूँ,
2: मैं तो जा रहा हूँ। मैं ले गया
1: क्यों भाई साहब? ये मिस्टर घनश्याम जी का क्वार्टर
3: वो सामने जहाँ बहुत से लोग बैठे हैं।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
4: कहिए
5: कहिए क्या बात है
1: जी? वो घनश्याम जी का निवास।
5: ठीक है बोलिए।
1: उनसे मिलना है।
5: अपॉइंटमेंट लिया है?
1: नहीं अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया।
5: फिर मुश्किल है, किसी और रोज आना।
1: लेकिन काम बहुत जरूरी था।
5: बिना जरूरी काम के तो यहाँ कोई आता नहीं। घनश्याम जी इस वक्त एक उपमंत्री जी से टेलीफोन पर बातचीत कर रहे हैं, इसके बाद दो MP उनसे मिलने के इंतजार में, और फिर वह दूसरी UN के सेक्रेटरी साहब भी आए हुए हैं।
1: कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूंगा।
5: आपका नाम?
1: HP शर्मा।
5: ठीक है, बाहर लान पे बैठ जाइए, मौका मिला तो बुला लूंगा।
1: थैंक यू। सुनिए, यहाँ एक गिलास पानी मिलेगा?
5: इधर पीछे नल है।
1: थैंक यू।
5: मिस्टर शर्मा अंदर आइए।
1: थैंक यू। नमस्कार घनश्याम जी।
6: आइए रतनलाल जी, कहिए।
1: जी मैं HP शर्मा।
6: हाँ काम बताइए।
1: घनश्याम जी बहुत अनर्थ हुआ है मेरे साथ।
6: वही तो पूछ रहा हूँ
1: जी। मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं 17 जून को सुबह 10:29 पर, जब मैं दफ्तर में।
6: साल में कितनी बार होती है ऐसी ट्रांसफर?
1: 25 साल में पहली बार, पूरे 25 साल बाद।
6: तो फिर अनर्थ कैसा?
1: लेकिन जब इतने साल नहीं किया तो अब क्यों?
6: भाई वो तो सरकार की मर्जी है।
1: लेकिन हमारी मर्जी भी तो उन्हें पूछनी चाहिए थी, अगर आप चाहें तो।
6: देखो रतनलाल
1: जी, HP शर्मा हूँ। HP शर्मा, देखिए 15 साल पहले आपकी पोस्टिंग मेरे ही डिपार्टमेंट।
6: ठीक है आप ऐसा कीजिए, अपनी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास छोड़ जाइए, मैं देख लूंगा।
1: लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो मैं लेकर नहीं लाया हूँ
6: जी। बड़े अजीब आदमी है आप भी, रिप्रेजेंटेशन साथ तक नहीं लाए।
1: मैंने सोचा आपसे जबानी।
6: अरे साहब इतनी बड़ी यूनियन का पूरा बोझ है मेरे कंधों पर, जरा सोचिए जुबानी में क्या क्या याद रख सकता हूँ।
1: मैं अभी लिख लाता हूँ।
6: उधर बाहर बाबू को दे दीजिए। जी सुनती हो?
1: नहीं नहीं पानी वानी का कष्ट न करें मैं।
6: हमारी यूनिफॉर्म भिजवा दो, दफ्तर को देर हो रही है।
7: जिस दौड़ धूप में 17, 18 और 19 जून गुजरे, उसी दौड़ धूप में 20 जून भी गुजर गई, लेकिन शर्मा जी को अपनी समस्या का अभी तक कोई हल नजर नहीं आया। दिन भर शर्मा जी इस दफ्तर से उस दफ्तर की खाक छानते रहे। उषा शर्मा राकेश का हाथ पकड़ पकड़ कर शादी के लिए मनाती रही, शादी न हुई तो अपनी जान दे देने की धमकी देती रही। उधर कृष्ण कुमार सिगरेट पे सिगरेट फूंक सारी दुनिया फूंक डालने की तरकीबें सोचता रहा। मिसेस शर्मा हर तरह से मिस्टर शर्मा को यकीन दिलाने लगी कि ये मामला अब इंसान के बस से बाहर हो चुका है, इसे अब या तो सिर्फ भगवान या भगवान का कोई पहुंचा हुआ भगत ही हल कर सकता है, यानी नक्षत्र बाबा को बुलवाकर यज्ञ करवाया जाए। विनय हर शाम मिस्टर शर्मा को अपने दोस्त के डैडी से मिलने के लिए तैयार करता रहा।
8: आइए आइए मिस्टर शर्मा, मैं तो कई दिनों से आपके आने की राह देख रहा था। वो विनय ने बताया था मुझे कि
1: आना तो था, बस
8: ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। वैसे आजकल आपके मिनिस्टर कौन है?
1: जी वो मिनिस्टर तो, लेकिन ऑर्डर्स तो किसी अफसर ने।
8: नो नो नो, मैं ये अफसरों को मुंह बिल्कुल नहीं लगाता। यू नो आई कीप ओनली टॉप कॉन्टेक्ट्स।
1: जी
8: आप बिल्कुल फिक्र न कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप मुझे जरा तमाम डिटेल्स लिखकर दे दीजिएगा, मैं आज ही आदमी काम पर लगाता हूँ। यू नो अंग्रेजों का जमाना इस लिहाज से बहुत अच्छा था, रिश्वत देकर सब काम हो जाते थे, लेकिन अब आजकल तो ये सब चलता नहीं है, बस कॉन्टेक्ट की बात है।
1: जी
8: कॉन्टेक्ट मैं करूंगा, आप सिर्फ डिटेल्स दे दीजिएगा। बाकी जो हमारे आदमी इधर उधर जाएंगे उनके खर्चे वगैरह के लिए, वो आप ऐसा कीजिए कि अभी कोई 5,000 रुपए छोड़ जाइए, बाकी खर्चा मैं कर लूंगा, बाद में आता रहेगा।
1: 5,000?
8: हाँ बस मेरा ख्याल है कि इतना ही खर्चा और आएगा।
1: वो तो
8: क्या किया जाए,
1: वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो इतना।
8: अरे शर्मा जी ये कोई खर्चा थोड़े ही है, ये तो इन्वेस्टमेंट है, इस सीट पर रहेंगे तो कई 5,000 आ जाएंगे।
1: ना ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई सीट नहीं है ये।
8: तो फिर ट्रांसफर से परेशान क्यों है?
1: मुझे

0: मैं अपने घर से बेघर हो जाना नहीं चाहता। देखिए ना, मेरा सारा घर बर्बाद हो रहा है, सारा परिवार बिखर जाएगा।
1: अम्बक, ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे आपकी मर्जी है। बात यह है शर्मा जी कि मेरा बिजनेस ही पब्लिक रिलेशंस का है। आपका यह काम 1500 में हो सकता होता तो ना मानता, लेकिन खर्चा तो 10,000 हो सकता है। अब इतना पैसा मैं भी कहां से, आप भी सोचिए।
0: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस में होता तो इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए 20,000 भी खर्च कर डालता, लेकिन क्या करूं, सारी जिंदगी की जमा पूंजी भी इतनी नहीं कि 5,000 खर्च कर सकूं।
1: आई सी, अरे मैं तो भूल ही गया था, आपके लिए ठंडा मंगवाओ।
0: नहीं नहीं, बस शुक्रिया, फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा।
1: आपका अपना ही घर है, वैसे कभी कोई काम हो तो बिना झिझक चले आइएगा। कॉन्टेक्ट मांगने मुझसे बेहतर आपको कोई ना मिलेगा।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: नक्षत्र बाबा कह रहे थे बड़ा ही अच्छा मुहूर्त निकला है यज्ञ का।
0: यज्ञ तो ठीक है, पर पीछे ये हलवाई वगैरह।
2: 201 ब्राह्मणों का भोज करवाना है यज्ञ के बाद।
0: 201 ब्राह्मणों का?
2: हलवा पूरी समेत कुल 7 पकवान पकेंगे। वो तो कह रहे थे वनस्पति में बनवा लो, पर मेरा मन नहीं माना। देवताओं का यज्ञ है, यहाँ कंजूसी कैसी। मेरी देसी घी के भी कनस्तर मंगवा लिए,
0: मगर इतना पैसा।
2: अरे तो कौन सा अभी दे देना है, जब तनख्वाह आएगी हिसाब चुका देंगे।
3: पिताजी, कोई आपसे मिलने आए?
4: अरे भाई जिजमान, आओ आओ, पूर्ण आहुति का समय हो गया है।
0: जो भी हो उसे बैठाओ, मैं यज्ञ करवा लूँ।
2: नक्षत्र बाबा, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, आप भी यज्ञ में कोई कमी ना छोड़ें। ये ग्रह तो किसी तरह टलना ही चाहिए।
4: कैसी बातें करती हो देवी, नक्षत्र बाबा के यज्ञ कभी निष्फल नहीं जाते।
2: बाबा ग्रह टल जाएंगे ना।
4: भाई अन्य महात्मा संत ग्रहों से प्रार्थना कर अपने जिजमानों के काम निकलवाते हैं, लेकिन नक्षत्र बाबा अपने योग बल से ग्रहों के ऑर्बिट बदल डालते हैं। ऑर्बिट? ऑर्बिट का मतलब समझती है न देवी?
0: मैं समझता हूँ महाराज।
4: तो ये भी समझ ले हर प्रसाद कि तेरी जगह आने वाले दुष्ट के नक्षत्र बहुत बलवान हो रहे थे, हमने अभी अभी अपनी तपस्या के योग बल से देखा।
3: सच बाबा?
4: हाँ, देवी को बताया था हमने कि कर 1.5 तोले सोने का दान।
0: 1.5 तोला सोना?
4: देवी के दान करते ही अपने यज्ञ बल से हमने दुष्ट के ग्रहों के ऑर्बिट ऊपर नीचे कर डाले।
3: राजवंती, 1.5 तोला सोने का दान?
2: ये वक्त क्या सोने का मुंह देखने का है। बाबा अब तो ट्रांसफर रुक जाएगी ना?
4: अवश्य रुक जाएगा, अवश्य रुक जाएगा।
3: सच कह रहे हैं आप?
4: अरे ग्रहों के ऑर्बिट बदलते ही वो दुष्ट अपनी बुद्धि खो बैठेगा, फिर रास्ता खो बैठेगा, और फिर भी अगर उसने इधर आने की हिम्मत की तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। बोलो, जब चार्ज लेने वाला ही नहीं आएगा तो चार्ज देने वाला कहाँ जाएगा।
0: धन्य हो बाबा, धन्य हो।
5: माजी माजी माजी,
2: क्या बात है, ऐसा परेशान क्यों हो रहे हो?
5: माजी पूरे 200 ब्राह्मण तो जीन चुके हैं, परंतु 201वां ब्राह्मण नहीं मिल रहा है और मुहूर्त निकलता जा रहा है।
2: हाय भगवान, ये कैसा अपशकुन है, अब क्या होगा?
6: मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ?
7: पिताजी, ये आपसे मिलने आए थे।
0: ओह, आप क्या
6: 100% ब्राह्मण चंद्रकांत यादव?
2: तेरी महिमा अपरंपार है भगवान, क्या समय पर ब्राह्मण भेजा है। जाओ बेटा, ले जाओ इन्हें और आदर सम्मान के साथ भोज करवा।
7: आइए चंद्रकांत जी।
2: देखा आपने, आज का दिन कितना शुभ है, हर कार्य अपने आप संपन्न हो रहा है। एक ब्राह्मण कम हो गया तो मानो स्वयं भगवान ब्राह्मण का रूप धर कर मेरे घर में आए।
3: चंद्रकांत, चंद्रकांत यानी सीके यादव? नहीं नहीं नहीं, ये चंद्रकांत
2: क्या ब्राह्मण नहीं?
3: सीके यादव है
2: तो क्या ब्राह्मण?
3: हमारे लिए भगवान नहीं, यमदूत है। यमदूत?
2: क्या कह रहे हैं आप?
3: ये हमारे लिए यमदूत है, ये वही है, वही है।
0: नक्षत्र बाबा तो कहते थे कि छिन्न भिन्न हो जाएगा, रास्ता भूल जाएगा, अरे ये दुष्ट तो साक्षात घर में आधम का और भोजन भी खा गया।
2: क्या कह रहे हैं आप?
0: यही है वो चंद्रकांत यादव, यानी सी के यादव, जिसने कल मुझसे चार्ज ले मुझे यहाँ से रिलीव करना है। बस लाजवंती, अब राम नाम ही बोलो, अंतकाल आ गया।
2: राम, कैसा अंधेरे, अरे कोई नक्षत्र बाबा को तो बुला के लाओ जल्दी।
5: नक्षत्र बाबा तो जीम कर कभी के जा भी चुके।

0: यक भोजन दक्षिणा सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया।
1: अब रोने धोने से क्या फायदा माँ?
2: बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शर्मा। ये क्या हुआ, आप लोग इस कदर उदास क्यों हैं?
0: अब हम तो चंद घड़ियों के ही मेहमान हैं।
2: लेकिन हुआ क्या है मिस्टर शर्मा?
1: खा पी कर कितना भोला बनता, पहले मालूम हो जाता कि तुम कौन हो तो हलवे पूरी के बजाय किसी और तरह से तुम्हारी खातिर करते।
2: लेकिन मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है?
1: तो सच सच बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो?
2: आप तो जानते हैं मिस्टर शर्मा, मैं इंदौर से आया हूँ और कल मुझे आपसे चार्ज लेना है।
0: तुम सचमुच आ गए हो?
2: क्या मुझे नहीं आना चाहिए था?
3: कहाँ के रहने वाले हो?
2: इंदौर का।
3: और तुम्हारे पिताजी?
2: इंदौर के।
3: और तुम्हारे दादा?
2: दादा, परदादा और लकड़ दादा सभी इंदौर के।
3: फिर भी तुम मुंह उठाए यहाँ चले आए?
2: लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सरकारी नौकर हूँ, जहाँ भी ट्रांसफर होगा जाऊँगा।
3: इसलिए कि तुम लोगों का अपनी धरती अपनी सभ्यता से कोई लगाव नहीं है। अगर जरा भी मान सम्मान वाले होते तो अपने पूर्वजों का घर छोड़ने से पहले अपने प्राण दे देते।
0: और यमदूत की तरह यहाँ के हमारा घर बांधना उजाड़ देते।
2: लेकिन मैंने किसका घर बार उजाड़ा है?
0: किसका नहीं उजाड़ा है पिताजी, पिताजी अब क्या होगा?
3: जाने का समय आ गया है बेटा।
1: सब तरकीबें नाकाम हुई, कुछ भी न वफा ने काम किया।
0: जाने से पहले मेरे हाथ तो पीले करते जाइए, आप ना हुए तो कन्यादान कैसे होगा पिताजी?
1: फिक्र ना करो उषा, बहन दान का कर्तव्य मैं निभा दूंगा।
4: बट पिताजी, आई कांट गो टू आगा विद यू।
3: ठीक ही कहते हो बेटा, इस संसार में कौन किसके साथ गया है।
2: दिल्ली से आगरा 100-125 मील का फासला भी नहीं शर्मा जी, इस मामूली से ट्रांसफर से आप इस कदर परेशान हैं?
3: सारा परिवार तबाह हो गया है, घर से बेघर हो गया हूँ और तुम इसे मामूली सा ट्रांसफर कहते हो? तुम उन लोगों में से हो जिन्हें अपनी सभ्यता, अपनी धरती, अपने घर से कोई लगाव नहीं। तुम लोग अपनी धरती माँ से अपना संबंध तोड़ चुके हो।
2: शायद आप ठीक ही कहते हैं, लेकिन आज चौथाई इंच की जड़ों वाली दूब बनकर धरती से चिपके रहने का युग नहीं, आज मॉडर्न युग है। मॉडर्न युग में रहने के लिए जब हमने सूती कपड़े छोड़ प्लास्टिक के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं शर्मा जी, तो अपना जीवन प्लास्टिक की घास होना चाहिए, यहां उखड़े वहां लगे, सदा हरी भरी।
4: प्लास्टिक की घास कहां मिलती है पिताजी?
3: चंद्रकांत जैसे बेवकूफों के सर पर।
5: 22 जून साल का सबसे लंबा दिन चढ़ चुका था। सुबह के 6 बजे थे। लोधी रोड के क्वार्टर नंबर F2 15/614 के सामने एक 3-व्हीलर खड़ा था, जिसमें मुख्तसिर सा सामान रखा जा रहा था। HP शर्मा सिर झुकाए बाहर निकले। सारा परिवार गुम सुम उन्हें नई दिल्ली स्टेशन के लिए रवाना होते हुए देख रहा था। लाचार बेबस शर्मा जी ने बड़ी हसरत से क्वार्टर पर लगी अपनी छोटी सी नेम प्लेट की तरफ देखा और 3-व्हीलर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता

0: प्लास्टिक की घास, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आप सुन रहे थे। सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक के निर्देशक थे दीनानाथ। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।

0: ये है विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
1: पेंटर बाबू
0: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर दास्तान, बेमिसाल संगीत की
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का चौथा भाग। उत्तम जी नमस्कार, एक बार फिर से विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद जी, नमस्कार जी, आप सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
0: उत्तम जी, एक बहुत लंबा प्रोग्रेशन आपका रहा है। आपने 13 साल की उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
6: जी,
0: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक पूरी यात्रा है। और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि उत्तम जगदीश की जोड़ी कैसे बनी थी।
6: ओह, ये भी तो एक हिस्ट्री है।
0: ये भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि यहां से म्यूजिक डायरेक्टरी की यात्रा शुरू होती है और मनोज कुमार की फिल्म पेंटर बाबू आती है।
6: ओ जी, ऐसा है कि आपने एक फिल्म, आपको याद होगी, शिरडी के साईं बाबा।
0: जी हाँ,
6: उसमें दो गाने जो हैं आज भी चल रहे हैं। दो गाने जो हैं, साईं बाबा

0: साथ।
1: नाम उनका शायद जो पांडुरंग दीक्षित थे जो उनका नाम है
2: जी जी,
1: लेकिन गाने ये दोनों जगदीश खन्ना के हैं और ये दोनों गाने मेरे अरेंज किए हुए हैं।
2: अरे क्या बात है,
1: क्योंकि जगदीश आया था, मेरे दो गाने अरेंज करने हैं, मनोज साहब फिल्म बना रहे हैं, दो गाने मुझे अरेंज करने थे, जैसे दूसरे में जो अटराते थे ये भी आ गया, तो मैंने इनके दो गाने अरेंज करे, दो गाने हिट हो गए, वो ऐसे हिट हुए कि आज तक चल रहे हैं।
2: बिल्कुल,
1: तो ये फिल्म उनकी हिट हो गई, मनोज साहब की, मनोज साहब की क्रांति हिट हो गई थी बहुत बड़ी, क्रांति उनकी बहुत चली, क्रांति के बाद ही वॉन्टेड टू स्टार्ट न्यू फिल्म
2: जी।
1: उस न्यू फिल्म में उनका माइंड चल गया कि छोटे भाई को हीरो बनाया जाए और अपने साले को डायरेक्टर बनाया जाए, तो उन्होंने प्लान किया कि नया म्यूजिक लेंगे, तो म्यूजिक कौन, जगदीश।
2: अच्छा, जगदीश तब तक क्या कर रहे थे?
1: जगदीश उनके घर में टीचर थे बच्चों के,
2: ओ
1: म्यूजिक टीचर थे।
2: अच्छा
1: हाँ, तो उनके साथ बैठ के वो काम करते रहते थे, जैसे ये गाने बना लिए, जैसे और गाने बना लिए
2: जी,
1: तो मनोज जी को पता था कि अच्छा कंपोजर है।
2: अच्छा,
1: क्योंकि ये दोनों गाने जगदीश के बनाए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जगदीश उत्तम को बुला के ले,
2: मनोज जी ने कहा।
1: हाँ, तो जगदीश को पता नहीं चला कि क्यों बुला रहे, तो मैं आया, मैं कहा जी बाबा उत्तम मैं फिल्म शुरू कर रहा हूँ, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, जगदीश म्यूजिक दे रहा है, मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, तो तुम जगदीश के साथ काम करो, मैंने कहा मैं तो कर ही रहा हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं, जगदीश खन्ना उत्तम सिंह।
2: अच्छा,
1: म्यूजिक एक्टर। मैंने कहा पा पा मत बड़े भाई, मैंने कहा पा यू हैव टू गिव मी टाइम। क्यों? मैंने कहा नहीं, मुझे आप टाइम दीजिए सोचने का। अच्छा ले लो। तो मैं बहुत बिजी था, मेरा काम सुबह शाम काम था मेरा, तो 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया। हर चौथे दिन जगदीश आ जाए और उससे बुला रहे हैं, मैंने कहा यार देख रहे हो कैसे काम कर रहा हूँ मैं, सब काम चल रहा है। महीना बीत गया, वो महीने में कम से कम 6-7 दफा 8 दफा ये आ गया जगदीश। तो एक दिन मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो डैडी के पास बैठा मैं, मैंने कहा डैडी ऐसे ऐसी ऑफर आई है। क्या ऑफर है? मैंने कहा ऐसे ऐसे वो पिक्चर बना रहे हैं VIP,
2: मनोज जी का बैनर VIP,
1: राज कपूर VIP मतलब
2: जी,
1: इंडस्ट्री के टॉप बैनर
2: जी,
1: इनसे ऊपर कोई है ही नहीं, तो वो चाह रहे हैं कि मैं म्यूजिक एक्टर बनूं लेकिन जगदीश खन्ना के साथ बनूं, जगदीश खन्ना ट्यून बनाएगा और मैं अरेंजमेंट करूंगा। मैंने ये बात मनोज, मैं मनोज जी मैं तो अरेंजर हूँ, आप मुझे क्यों म्यूजिक एक्टर बना रहे हैं? बोलते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी म्यूजिक एक्टर हैं, लक्ष्मी जी ट्यून बनाते हैं और प्यारेलाल जी अरेंजमेंट करते हैं, ऐसे ही तुम जगदीश के साथ जगदीश का ट्यून बनाएगा और तुम अपना जो काम करते हो वो करो, लेकिन तुम दोनों का नाम आए। तो ये बात मैंने जाके डैडी को कही, तो डैडी बोलते हैं तुमको क्या लगता है? मैंने कहा नहीं नहीं आप बताइए। बोलते देखो म्यूजिक एक्टर बनना है तो ये लास्ट स्टेज है, तो ये लास्ट सीढ़ी है, जहाँ पे लोग म्यूजिक खत्म होते हैं वहां से तुम शुरू कर रहे हो
2: जी जी,
1: और अगर नहीं बनना तो मना कर दो, तुम काम तो कर ही रहे हो। मैंने कहा आपकी क्या इच्छा है?
2: वाह।
1: बोलते मैं तो चाहता था कि तुम म्यूजिक एक्टर बनो। तो मैंने कहा आपने मुझे ये बात कभी बोली नहीं। बोले कभी मौका ही नहीं आया।
2: अरे
1: आप तो मुझे म्यूजिशियन बनना चाहते, तो आपने देख लिया, अरेंजर भी आपने देख लिया, तो म्यूजिक एक्टर बनने के लिए आपने बोला क्यों नहीं? बोलते नहीं ऐसा कभी मौका ही नहीं आया, आज मौका आया तो बोल रहा हूँ तुमको कि मैं चाहता हूँ तो कि तुम म्यूजिक एक्टर बनो।
2: ये पिताजी की बात है,
1: पिताजी की बात। तो मैं हाँ बोलता हूँ, हाँ बोल दो। फिर मैं गया मनोज जी के पास 1.5 महीने के बाद
2: जी जी,
1: 1.5 महीने के बाद जाके मैंने बोला कि मैं करता हूँ। तो पहला गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ विंटर बाबू का, तू रख ले नाम, रख ले नाम, मुकद्दर सिकंदर होता है हाँ, हाँ वक्त सिकंदर नहीं होता, ऐसा कुछ गाना है
2: राधा हाँ,
1: जी का और महेंद्र कपूर का
2: हाँ,
1: उसमें ऑलमोस्ट शायद 100 के ऊपर म्यूजिशियन था और 30-40 कोरस था। हमने सुबह 9 बजे शुरू किया और 5 बजे तक गाना खत्म हुआ, लता जी महेंद्र जी चले गए और हम लोग रात को 2 बजे वो गाना खत्म हुआ।

0: क्या बात है,
1: हम कुछ भी रख लें नाम उसका, इंसान का मुकद्दर होता है। दुनिया में सिकंदर कोई नहीं, हाँ वक्त सिकंदर होता है। ये गाना।

0: इस फिल्म के दो तीन गाने बड़े हिट हुए थे,
1: बड़े हिट हुए थे,
0: जिसमें से कब तलक शम्मा जली,
1: तलक शम्मा जली, ये पूरी कंपोजिशन
0: थोड़ा हमारे लिए गाइए ना सर ये गाना।
2: तो हमने पेंडर बाबू शुरू की, तो पहला गाना
0: वो किया,
2: वो रिकॉर्ड किया के वक्त सिकंदर होता है
0: जी।
2: उसके बाद कतिल सफाई जी का गाना लेके आई है मनोज साहब, और मुझे जगदीश ने गाना सुनाया
0: जी।
2: मैं और ये है गजल
0: बिल्कुल,
2: और उसको
0: गाने की शक्ल
2: गीत में गाना देना।

0: कितना मुश्किल है।
1: क्या बात है, मतलब गजल को लेके आपने उस वहां ले गए और फिर पूरा वो एक ब्रेक आता है, सारा
0: ब्रेक आता है,
1: फिर आता है,
0: ब्रेक आता है, फिर आता है, और फिर इसके अंतरे और फिर इसमें, और बहुत बड़ा गाना था, चार अंतरों का गाना था।
1: जी जी,
0: मैंने कहा मनोसा चार शेर है, एक शेर कम करे ना, तुम
1: कुछ हटेगा,
0: लाजवाब शेर है
1: जी,
0: इनको कम नहीं कर सकते।
1: अदायगी भी कमाल थी,
0: कमाल थी। कपूर फिर देखिए, फिर अपना हमने पूरे चार के चार अंतरे रखे, चारों के चारों म्यूजिक देखिए कितना डिफरेंट है, कहीं क्लैप बज रही है, कहीं चुटकियां बज रही है, कहीं घुंघरू बज रहा है, कहीं सारंगी बज रही है, कहीं वायलिन बज रही है, कहीं लता जी का आलाप है। विद म्यूजिशियन वन टेक है ये गाना।
1: क्या बात है,
0: छह साढ़े छह सात मिनट का गाना है।
1: जी जी जी,
0: और आप उसको सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत म्यूजिशियन है इसमें तो।
1: हाँ,
0: खाली मेरे कहने से नहीं, आप गाना सुनो आपको लगेगा कि यस म्यूजिशियन बहुत है।
1: जी जी जी।

0: यहाँ से एक संगीतकार की जर्नी शुरू हुई।
1: बिल्कुल, और ये तय कैसे हुआ कि नाम जगदीश उत्तम होगा या उत्तम जगदीश होगा?
0: वो उन्होंने कर दिया अपने आप,
1: मनोज जी ने कर दिया उत्तम जगदीश,
0: उत्तम सिंह जगदीश करना, बाद में उत्तम जगदीश हो गया वो।
1: अच्छा,
0: शॉर्ट। अच्छा। बहुत हलचल मच गई थी। और मैं आपको बताऊं कि जब ये गाना बाहर गया है कब तक क्षमा जली
1: जी,
0: तब कोई बहुत बड़ी डांसर थी उस टाइम, उन्होंने बोला क्या गाना है, बड़े मिजर्टर ही होते हैं।
1: ओहो,
0: उनको लगा कि ये शायद किसी और बड़े मिजर या एलपी का गाना या किसी और का गाना।
1: हाँ हाँ।
0: तो उन्होंने कहा ये नए मिजर्टर है, ऐसा गाना नए मिजर्टर, मिजर्टर नहीं थे लेकिन पीछे अरेंजर तो पुराना था ना
1: जी,
0: अरेंजर को तो सालों साल बीत गए थे अरेंजमेंट करते हुए। तो यहाँ पे हमारे लिए एक बात फैलाई गई।
1: क्या?
0: हमारे लिए फैलाई गई ये बात कि कंपोजर तो बहुत अच्छे हैं, गाने भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन महंगे बहुत हैं।
1: ओ, मतलब कहीं ना कहीं कोई अड़चन पैदा करनी है।
0: महंगे बहुत है, मतलब उनकी रिकॉर्डिंग जो है वो सुबह शुरू होती है, रात को 2 बजे खत्म होती है।
1: जी जी,
0: महंगे बहुत है। मेरे को तो इन चीजों का कभी लाइफ में फर्क नहीं पड़ा, किसी ने महंगा बोला किसी ने कुछ बोला, हम अपना काम करते चले गए और आज भी काम कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो मनोज जी वॉज वेरी हैप्पी विद म्यूजिक, और म्यूजिक बहुत हिट हुआ था इसका।
1: इसका एक और गाना मैं याद करना चाहता हूँ, जब याद की बदली छाती,
0: जब याद की बदली छाती
1: तो आंख मेरी भर आती है।
0: तो मुझे उन्होंने गाना सुनाया जब याद की बदली छाती है, इतना का वाह वाह वाह क्या बात है, क्योंकि उन दिनों में उनके गाने फिल्मों में एक सैड गाना होते ही था, और वो बरसात का गाना सैड गाना। तो जब जगदीश ने सुनाया मुझे गाना, मैं कहा जगी बहुत अच्छा तुम्हारा कंपोजिशन। तो कंपोजिशन ऐसी थी, जब याद की

0: देखिए इतने मुखड़ा है
1: जी
0: बाकी अंतरे हैं, मुखड़ा इतना ही है।
1: बिल्कुल।
0: और इसमें वायलिन सोलो आप सुनेंगे वो भी मेरी बजाई हुई है,
1: बहुत शानदार, एकदम गाढ़ा वायलिन,
0: गाढ़ा वायलिन। और इस गाने को इतना अच्छा उन्होंने पिक्चराइज किया था, तो क्यों ना हम अपने दोस्तों को ये गाना सुनाए।
1: जरूर, बिल्कुल सुनते हैं।

0: जी जी
1: 84 में ये फिल्म मुझे क्यों मिली थी, क्योंकि इन लोगों की इस ग्रुप की, पीपट के ग्रुप की एक फिल्म आई थी चंद प्रदेशी पंजाबी।
0: हाँ,
1: सुपर पंजाब की बहुत बड़ी
0: सुपर हिट फिल्म थी,
1: जैसे नानक नाम जहाज
0: जी,
1: चंद प्रदेशी, ये उस कैटेगरी की। उसका काम सारा अरेंजमेंट भी मैंने किया था, सुरेंद्र कोहली का म्यूजिक था और बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने किया था।
0: अच्छा,
1: उसमें बकायदा आपको नाम मिलेगा उत्तम सिंह
0: जी जी,
1: बैकग्राउंड म्यूजिक का। तो वहां से वो ग्रुप जो है वो मेरे पहचान में आ गया और वो मुझे पसंद करने लग पड़ा
0: जी।
1: तो उन्होंने वारिस शुरू की, तो वारिस के लिए मेरे पास उन्होंने आए थे।
0: और ये पूरी पंजाबी पृष्ठभूमि की
1: पूरी पंजाबी, हाँ।
0: स्मिता पाटिल और राजबब्बर,
1: राजबब्बर की फिल्म थी वो, उसके गाने आज भी चल रहे हैं।
0: इसमें आपने एक बड़ा कमाल किया था, एक व्यक्ति को गायक बना दिया था
1: मनमोहन सिंह
0: जी, जो कि कैमरामैन थे।
1: कैमरामैन थे, यस।
0: ये बताइए,
1: कैमरामैन थे, क्या हुआ कि ये गाना जो है ना, दीदी का, लता जी का गाना
0: जी,
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी, कितना ऊपर है और कितनी ईज लग रहा है
0: जी जी जी जी,
1: क्या लोग थे,
0: क्या बात है।
1: तो ये मैं गाना सुना था, ये ऐसा था कि ये गाना रिकॉर्ड कैसे हुआ कि हम लोग कुछ बैठ के काम कर रहे थे, दीदी का मैसेज आया
0: जी,
1: कल, हाँ कल सुबह स्टूडियो खाली है, मेरी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई है, तुम चाहो तो गाना कर सकते हो। क्योंकि मैं इस गाने के लिए एक महीने से उनके पीछे पड़ा हुआ था। सामने से मैसेज आया कि गाना कर लो, तो गाना सिर्फ मुखड़ा बना था बस,
0: सिर्फ इतना, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी।
1: फिर ये उनको अपना बुलाया, अपना वर्मा मलिक जी को
0: जी,
1: ताकि आदमी लेके, उन्होंने फोन तो हुआ नहीं करते, फोन तो मोबाइल थे नहीं, बुलाया उनको, बैठे हम लोगों ने गाना बनाया, म्यूजिशियन बुक किए, सुबह दीदी आई, दीदी का पार्ट कर लिया हमने।
0: अच्छा अच्छा,
1: दीदी के पार्ट हमने इस गाने में रिकॉर्ड कर लिए।
0: अब मेल वॉइस रह गई,
1: अब मेल वॉइस कौन गाएगा, किसको गवाए, उसको गवाए, उसको गवाए, उसको गवाए, नहीं यार ये सब आवाजें जो है ये सब सुनी सुनाई है, कुछ अलग होना चाहिए। तो इस बात को भी 7-8 दिन गुजर गए, गाना रिकॉर्ड हो गया,
0: फीमेल पार्ट है आपके पास,
1: फीमेल पार्ट है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह सब हो गया, बढ़िया, क्या लग रहा है गाना। जब वो साइलेंट हो जाए मेल की आवाज, खाली म्यूजिक चल रहा है, दिन कड़क, दीदी की आवाज आ रही, तो ऐसा लग रहा है। फिर मैंने कहा यार, सबको बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं, मनमोहन सिंह भी आके बैठते थे, मैंने कहा मनजी आप गाइएगा,
0: जबकि वो तो कैमरामैन थे ना,
1: कैमरामैन थे
0: और गायकी शौकिया थी,
1: गायक शौकिया थी, और उन्होंने उससे पहले एक उषा खन्ना का भी गाना गाया था और एक किसी और म्यूजिक का

0: तो मैंने कहा ब्रह्मन जी आप गाओ। बोलते मैं कैसे गाऊं इतना मुश्किल गाना। मैं कहा गाओ तो सही, ट्राई तो करो। घर में रिहर्सल किया।
1: अच्छा।
0: हाँ रिहर्सल किया और माइक्रोफोन पर गए, अच्छी आवाज लग रही है और नई आवाज लग रही,
1: और राजबब्बर पे फिट हो रही है।
0: राजबब्बर पे फिट हो गई और मुझे लगता है शायद 3-4 घंटे में गाना रिकॉर्ड हो गया उनका।
1: क्या बात है,
0: वो आज भी हिस्ट्री है गाना।
1: और ये गाना बड़ा हिट है।
0: बहुत हिट है, आज भी चलता है गाना
1: जी।
0: सुना जाए इसको
1: जरूर। आप थोड़ा गाएंगे?
0: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। मैं काम करता हूँ इसको, आप जो है वो बजाएगा, मैं लोग आता हूँ
1: जी। ठीक है।

है खत्म, तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम, तेरी खुशी से है खुशी, तेरे गम से है गम, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म।

0: वारिस के और भी गाने थे जो बहुत लोकप्रिय हुए थे। मुझे याद आता है कि किशोर कुमार का एक गाना था, हुस्न की वादियों में प्यार पलता, बड़े ऊंचे सुर का गाना था, बहुत अलग तरह का गाना था। फिर घटा छा गई है, बहार आ गई है, दुनिया तू याद रखना, और एक बच्चे को खिलाने वाला गाना आशा भोसले ने गाया था, आरे मुंजे तारे मुंजे। तो वारिस फिल्म के इन गानों के हिट होने का कुछ फायदा मिला?
1: खास नहीं।
0: क्यों?
1: ये फिल्म भी ज्यादा नहीं चली थी,
0: डिले बहुत हो गई थी।
1: डिले भी हो गई थी और ये फिल्म आई थी उसके साथ तुझे याद करेगा
0: कयामत
1: पापा कहते हैं। हाँ, दोनों सेम डे रिलीज हुई थी।
0: जी जी,
1: वो कयामत से कयामत तक पहुंच गई थी और बारिश हमारी पीछे रह गई।
0: जी जी जी।
1: तो इससे भी कुछ संगीतकार की जोड़ी को कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ।
0: जी जी जी।
1: लेकिन मुझे इस चीज का फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं लगा हुआ था अपने काम में।
0: जी जी। अब जगदीश खन्ना का जिक्र हमारी बातचीत में इस समय बहुत सारा आया है, तो पेंटर बाबू और उसके बाद कुछ फिल्मों में उत्तम जगदीश साथ में आते हैं
1: जी।
0: और फिर जब जगदीश नहीं रहते उसके बाद आपकी एक इंडिविजुअल जर्नी है और
1: दिल तो पागल से शुरू होती
0: जी,
1: है।
0: दिल तो पागल है से, तो टीम में काम करना और फिर स्वतंत्र रूप से काम करना, इसमें क्या फर्क रहा?
1: देखिए, टीम में काम करने से क्या है कि भार बहुत कम पड़ जाता है क्योंकि गाना वो बना रहा है तो मैं अपना म्यूजिक बना रहा हूँ जो मैं काम कर रहा था इतने सालों से।
0: जी जी।
1: तो मुझे कभी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं जमीन प्रोड्यूस कर सकूंगा।
0: जी।
1: जमीन के ऊपर फूल लगाना वो तो मालिक का काम है, लेकिन जमीन खरीदना बहुत बड़ी बात होती है।
0: जी।
1: तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं गाने इतने आराम से और ऐसे बन जाएंगे, मुझसे गाने ऐसे इजिली बन जाएंगे।
0: जी।
1: लेकिन मैं आपको सच बात बताऊं, आई एम एंजॉयिंग दैट साइड ऑल्सो एंड दिस साइड ऑल्सो।
0: जी, दोनों काम अब आपको खुद ही।
1: उत्तम जगदीश के साथ भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई काम करने में, बहुत मजा आया काम करने का। पेंटर बाबू क्लर्क हो गया क्योंकि उसमें मैं तो साथ था ही।
0: हाँ।
1: ट्यून मैं भी बना रहा था, उसके भी आइडिया आ रहे थे, तो एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन बन रहा था और बना भी, जितना भी हुआ, चला नहीं चला वो अलग बात है। तो अभी देखिए, गाना है भूपेंद्र जी का, उस गाने में मुखड़ा नहीं है।
0: जी,
1: मुखड़ा नहीं है, अंतरा नहीं है, वो फ्री वर्स है।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो आप सुनिएगा उसको, वो फ्री वर्स है, मतलब जैसे स्टोरी लिखते हैं ना ऐसे मनोज जी की लिखी हुई है वो।
0: गजब।
1: तो मनोज जी ने मुझे बोला, उत्तम ये मेरी एक स्टोरी है, क्या इसमें गाना बन सकता है? तो मैं पूरी उनसे वो लिख के घर आया और घर आते ही वो शुरू हो गया।
0: अच्छा।
1: हाँ, घर आते ही मैं बाजे पे बैठा और वो शुरू हो गया। अब ये आप गाना सुनाइए लोगों को, ये गाना इस माइंड से सुनिए कि इस गाने में ना मुखड़ा है ना अंतरा है, कुछ नहीं है, फ्री वर्स है। वो फ्री वर्स को देखिए कैसे टुकड़ों टुकड़ों में बांट के ये गाना बना है।
0: क्लर्क क्यों? तुमसे जो बात हुई,
1: तुमसे जो बात,
0: ये जरूर, ये गाना आप बोल रहे हैं तो जरूर हम अपने सुनने वालों को सुनवाते हैं ये गाना।
1: जी।

0: तुम जगदीश की जोड़ी बहुत ज्यादा काम क्यों नहीं कर पाई?
1: इसको आप ईगो कह दीजिए या इसको मेरी भावना कह दीजिए, यूनुस जी मैंने आज तक किसी से काम मांगा नहीं।
0: जी जी,
1: कभी नहीं मांगा। कि जितना भी आप मेरा काम देख रहे हैं, जितना भी मेरा म्यूजिशन का काम देख रहे हैं, सब घर चल के आया है।
0: जी जी,
1: मैंने वायलिन सुनाई, फादर ने कहा कि इसको सुन लीजिए, इसको काम दीजिए, ये वर्ड कभी नहीं आया।
0: जी जी,
1: तो मैंने वायलिन सुनाई, उसके बाद मैंने उनके मरने तक काम किया, चाहे वो अन्ना हो,
0: जी
1: वसंत देसाई हो, या चित्रगुप्त जी हो, या कोई भी हो, मैं इनको सबको वायलिन सुनाई थी मैंने।
0: जी,
1: क्योंकि वो काम को काम दे रहे थे।
0: जी जी,
1: मेरी प्लेइंग को वो काम दे रहे थे। अरेंजमेंट हुआ, अरेंजमेंट किया, उससे उसको पता चला कि वो अरेंजमेंट अच्छा करता है, उससे उसको पता चला, तो एक काम बढ़ता चले गया मेरा, एज ए अरेंजर काम बढ़ता चले गया।
0: जी,
1: फिर काम चलते चलते चलते चलते म्यूजिशियन हो गई जिसकी भी हम बात कर रहे हैं।
0: जी,
1: तो काम हम ज्यादा क्यों नहीं कर सके, क्योंकि हम किसी के पास गए नहीं काम मांगने, और ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये कहती है कि आप आओ तो हम काम देंगे। आज तो बहुत ज्यादा है।
0: जी,
1: पहले भी थी, हम किसी के पास गए नहीं, और हमको लगा कि मनोज जी की फिल्म कर लिया तो मतलब तो टॉप एंड है ना।
0: जी जी,
1: टॉप एंड से शुरू होंगे तो अपने आप
0: काम आएगा,
1: काम आएगा, बट क्योंकि फिल्म नहीं चली, म्यूजिक बहुत चला, फिल्म पंजाब में चली।
0: जी जी,
1: बट मंडी हाउस में फिल्म नहीं चली। मंडी हाउस मतलब मुंबई बॉलीवुड, जिसको आज आप बॉलीवुड बोलते हैं।
0: जी जी,
1: वरना ये पहले फिल्म इंडस्ट्री थी।
0: जी,
1: फिल्म इंडस्ट्री में हिट होना बहुत जरूरी होता था, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हिट हो गए तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा।
0: जी,
1: तो फिल्म इंडस्ट्री में ये फिल्म चले नहीं थी,
0: उस वजह से वो काम में कन्वर्ट नहीं हुआ,
1: काम में कन्वर्ट नहीं हुआ। और फिल्में मिली भी तो मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ यहाँ पे।
0: जी,
1: पेंटर बाबू का जब पहला गाना रिकॉर्ड हुआ ना, ये वक्त सिकंदर होता है, तो हंगामे हो गए थे इंडस्ट्री में, बहुत कमाल का गाना हुआ, और मनोज कुमार का गाना करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो सेकंड डे पंचम की रिकॉर्डिंग थी आर.डी. बर्मन की, तो मैं अपनी वायलिन लेके जा रहा था, तो सेकंड फ्लोर में स्टूडियो था, ऐसे जा रहा था तो सामने से बहुत बड़े उस टाइम के एडिटर थे, दो लोग थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत बड़े एडिटर थे, तो वो आ रहे थे सामने। अरे उत्तम, मैंने कहा हाँ, तुम वायलिन बजाने आ रहे हो? मैंने कहा हाँ, क्यों क्या हुआ? जहां से संगीतकार खत्म होते हैं वहां से तो तूने शुरू किया कल, और पूरी इंडस्ट्री में हंगामा हो गया, और सेकंड डे तुम वायलिन बजाने आ गए। तो मैंने कहा जी बात ऐसी है कि संगीतकार का आना जाना है, वायलिन का यहाँ रहना है।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: मैंने कहा ये वायलिन जो है ये
0: कायम रहेगी,
1: मेरे साथ कायम रहेगी, वो संगीतकार तो आना जाना है, कभी आएंगे कभी जाएंगे।
0: ये जो वायलिन आप अपने साथ लेकर आए हैं, इसकी भी एक दास्तान है।
1: जी, इसकी दास्तान मैं बताता हूँ आपको।
0: जी,
1: आज मोदी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है।
0: जी,
1: कि आप कितना भी पढ़ लिख लो लेकिन आपके पास हाथ का हुनर होना बहुत जरूरी है।
0: जी जी,
1: अगर आपके पास हाथ का हुनर है तो आप भूखे नहीं मरोगे, और वो चीज प्रूफ हो रही है आज।
0: बिल्कुल,
1: एक चाय वाला करोड़ोपति बन गया, एक भेल वाला अरबोपति बन गया, एक बड़ा पाव वाला बिल्डिंग बना ली, तो काम छोटा लगता है लेकिन मेहनत के पीछे फल है।
0: जी,
1: तो मेरी यही जो मेहनत है वो मुझे आज तक यहाँ ले आई। मुझे लता मंगेशकर पहला अवार्ड मिला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट का।
0: जी,
1: लता मंगेशकर अवार्ड तो मुझे दिया गया, तो स्टेज पे मैंने बोला, मैं कहा जी मेरे पिताजी ने मेरे हाथ में वायलिन दी थी।
0: जी,
1: बोला बेटा ये वायलिन तेरे को दे दी है, वो सामने रास्ता है, रास्ता का एंड नजर नहीं आ रहा, ये रास्ता तो कहां तक पार करेगा तेरे ऊपर है।
0: हमने तो वायलिन दे दी,
1: हमने तो तेरे को वायलिन गाड़ी दे दी है।
0: जी,
1: अभी गाड़ी को कहां तक ले जाता है? तो मैंने कहा जी उनका वायलिन दी हुई मैं आज स्टेज पे बैठ पहुंच गया कि आज मुझे लता मंगेशकर का अवार्ड मिल रहा है।
0: क्या बात है,
1: ये तो मेरे लिए पद्मा से भी ऊपर अवार्ड, लता मंगेशकर के नाम का अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है। और मुझे तीन तीन लता मंगेशकर के अवार्ड मिल गए।
0: जी,
1: एक यहाँ का मिला, इंदौर गवर्नमेंट का मिला, अभी एक रायपुर

0: म्यूजिक डायरेक्टरी की यात्रा दोबारा शुरू हुई उत्तम सिंह के नाम से जब यश जी ने अपनी एक फिल्म बनाई।
1: जी जी, उन्हें वो
0: कहानी
1: वो बात की बात है। क्या हुआ कि उत्तम जगदीश थोड़ा थोड़ा काम कर रहे थे, मेरा अरेंजमेंट चल रहा था
0: जी।
1: तो जगदीश मेरे साथ कभी कोरस भी गा लेता था, कभी रिदम भी बजा लेता था, तो उसका घर भी चल रहा था, मेरा घर भी चल रहा था। तो 92 में एक फिल्म शुरू हुई तीर अंदाज करके
0: जी,
1: कवन मुकुट उसके प्रोड्यूसर थे
0: जी,
1: और मनमोहन सिंह डायरेक्ट कर रहे थे।
0: अच्छा।
1: और उसकी स्टार कास्ट थी श्रीदेवी और सनी देओल। बहुत बड़ी फिल्म थी वो फिल्म बन जाती तो एक जैसे मुगल आजम याद है ना
0: जी,
1: ऐसे लोग इस फिल्म को याद रखते हैं, इतनी बड़ी फिल्म थी वो। तो फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड हो गया, दूसरा गाना हम लोग के लिए सुबह 9 बजे का टाइम था। तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मैं, राइटर, कवर जलालाबादी राइटर थे, वो बैठे थे हम लोग। तो फोन की घंटी बजी लैंडलाइन की, तो जगदीश 9 बजे आ जाते, 9:15 बज गए थे, 9:15 बजे घंटी बजी कि जगदीश खन्ना ऑफ हो गए।
0: अरे अरे अरे,
1: हम सब हैरान हो गए, सब सिटिंग मीटिंग में ही छोड़ी, उनके घर गए तो पता चला जी कि वो निकल रहे थे सिटिंग में आने के लिए, तो तुलसी को पानी डाल रहे थे, तुलसी के पेड़ को, वहीं पीछे गिर गए।
0: अरे बाप रे।
1: और वहीं खत्म हो गए,
0: हार्ट अटैक आया।
1: और बहुत बड़ी फिल्म थी, इतनी बड़ी फिल्म कर रहे थे तो बड़ी खुशी थी। वो फिल्म बंद हो गई
0: जी,
1: वो फिल्म बनी नहीं, जिंदगी चलती रही। 93 या 94 में मुझे उषा मंगेशकर जी का फोन आया कि उत्तम भैया, मैंने कहा जी, दीदी का एल्बम करना है साईं बाबा का।
0: अच्छा।
1: मैंने कहा जी ठीक है, करते। तो मैं घर गया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, इसलिए मैं आपको बड़े प्यार से पूरी बता रहा हूँ।
0: यस यस बिल्कुल।
1: तो मैंने कहा जी ठीक है, तो इसमें बात हुई और एक साल निकल गया। एवरीबडी लव साइंस गाना है उसके अंदर, वो मनोज जी का लिखा हुआ और वो जगदीश खन्ना का बनाया हुआ है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो उसको मैंने ठीक ठाक करके उसको रिकॉर्ड किया, तो दीदी भी खुश हो गई, टिप्स वाले भी खुश हो गए, मनोज जी भी खुश हो गए। फिर उसके बाद दूसरा गाना बना, तो वो भी मुखड़ा था इसका, जगदीश का
0: जी,
1: अंतरे उसने बनाए, तो अंतरे मैंने बनाए
0: जी।
1: दूसरा गाना भी रिकॉर्ड हो गया, अब जगदीश की कोई कंपोजिशन नहीं है। तो तीसरा गाना शुरू हुआ तो मैंने बनाया, तो मैंने जाके मनोज जी से लिखवाया, फिर उसमें उन्होंने भी लिखा, भरताचार्य ने लिखा
0: जी।
1: तो वो गाना जब मैं रिकॉर्ड करने गया तो दीदी आई, उन्होंने गाना लिखा, रिकॉर्ड किया, तो संजीव कोहली मुझे पूछते ये किसका बनाया हो, मैंने कहा ये मेरा। तो जगदीश का, जगदीश के पहले दो गाने हो गए, ये आपने बनाया, मैंने कहा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 गाने रिकॉर्ड किया हमने
0: जी, उसमें से 2 जगदीश जी के थे,
1: डेढ़ जगदीश का था,
0: डेढ़ थे जी हाँ।
1: तो आप सोचिए कि कितना कॉन्फिडेंस होगा दीदी को मेरे ऊपर कि वो आती थी, क्या बन रहा है उनको पता नहीं
0: जी,
1: टिप्स वालों को क्या बन रहा है पता नहीं, मनोज जी बोले ये लिख लिया, उत्तम ये लिख लिया, हो गया। नारायण अग्रवाल का एक गाना है
0: जी, जी।
1: तो दीदी आती थी, मैं रिहर्सल कराता था, आती थी चले जाते थे। 12 गाने हमने रिकॉर्ड किए, हर गाने में मुझे संजीव कोहली पूछे कि ये गाना आपका है, मैंने कहा है मेरा, और वो गाना, वो एल्बम हिट हो गई बहुत
0: जी जी,
1: दीदी की वो आज भी वो एल्बम बहुत बड़ी हिट है जी।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का 4th भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को यह भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलो।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।

103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिश्का चैनल है। शाम के ठीक 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फुलवारी।

हेलो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आपकी दोस्त अनामिका आज फिर से ले आई हूं आपके लिए आपका मनपसंद फुलवारी प्रोग्राम, जो हर शनिवार रविवार को आप तक पहुंचता है। सबसे पहले सारे बच्चों को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आप सभी के जीवन में सुख, खुशियाँ और ज्ञान का प्रकाश भरे। आप जानते हैं बच्चों, नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। अच्छा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही खास दिन के बारे में, और ये दिन है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। बच्चों, जब आपके घर में नन्ही सी प्यारी सी बहन आती है तो घर खुशियों से भर जाता है। उसकी प्यारी सी मुस्कान, उसकी हंसी की खिलखिलाहट और उसकी छोटी छोटी शरारतें पूरे घर को खुश कर देती है। आप उसके साथ खेलते हो, उसके साथ मस्ती करते हो, और जब वो बड़ी हो जाती है तो उसे साथ स्कूल लेकर जाते हो, उसका बहुत ख्याल रखते हो। बेटियां हमारे परिवार का बहुत प्यारा और अटूट हिस्सा होती है। ये केवल घर में खुशियां नहीं लाती, बल्कि अपने सपने पूरे करके अपने देश का नाम भी ऊंचा करती है। दोस्तों, बेटियां भी बेटों की तरह डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस ऑफिसर और टीचर बन सकती है। इसीलिए हमें यह समझना चाहिए कि लड़कियों और लड़कों दोनों को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलने चाहिए। बेटियों को भी पढ़ने का पूरा अधिकार है। उन्हें स्कूल जाने, खेल खेलने, नई चीज़ें सीखने और अपनी पसंद के काम करने के अवसर ज़रूर मिलने चाहिए। जब एक बेटी पढ़ती है तो वह अपने साथ पूरे परिवार को आगे बढ़ाती है। शिक्षा उसे आत्मविश्वासी बनाती है और उसे सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करती है। हमें अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई लड़की किसी काम में अच्छी है तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किसी काम को सिर्फ लड़कों का काम नहीं कहना चाहिए। लड़कियां भी आज अपनी क्षमता से आगे जाकर काम कर रही हैं, इसलिए उनका हौसला ज़रूर बढ़ाएं। आज की बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, खेलों में मेडल जीत रही हैं, अंतरिक्ष तक अपनी यात्रा तय कर रही हैं, वैज्ञानिक बनकर नए रिसर्च कर रही हैं। आज का दिन हमें यही संदेश देता है कि हर बच्ची को प्यार, सुरक्षित बचपन

अच्छी शिक्षा, देखभाल, सम्मान और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हम एक सुंदर संकल्प लें, हर बेटी का सम्मान करेंगे, आगे बढ़ने और उसके सपनों को उड़ान देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि बेटियां हैं तो खुशियां हैं, बेटियां हैं तो सपने हैं, और जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तो देश भी तरक्की करेगा। इसी विषय के साथ चलिए सुनते हैं हमारे प्रोग्राम का पहला और ये सुंदर सा गीत, जो है बेटियों को समर्पित।

0: भैया सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: दोस्तों, आप सभी ने घर पर इंडोर गेम्स तो जरूर खेले होंगे, जैसे लूडो, कैरम, सांप सीढ़ी और पहेलियों वाले खेल। बच्चों, ये खेल हमारा मनोरंजन करने के साथ साथ हमारी सोचने और समझने की शक्ति भी बढ़ाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको मिलवाती हूँ आपके दो प्यारे प्यारे दोस्तों से, और उनसे जानते हैं कि वे कौन कौन से इंडोर गेम्स खेलते हैं।
2: हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अव्यांश, क्लास टीचर में पढ़ता हूँ।
3: अच्छा अव्यांश, आप घर में बहुत सारे गेम प्ले करते होंगे, तो आपको कौन सा गेम सबसे अच्छा लगता है?
2: सीक्रेट रूम।
3: ये क्या होता है? सीक्रेट रूम में क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हो? आपको पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और क्या करते हो? और अपने हाउस में और कौन सा गेम प्ले करते हो आप?
2: छुपन छुपाई।
3: ये छुपन छुपाई खेलना भी आपको बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा अभियांश, आपको कोई पोयम आती है जो आप अपने दोस्तों को सुनाना चाहोगे? ABCD वाली पोयम आती है।
2: E for elephant, F for fish,

0: N for less, O for orange, E for parrot, Q for quail, R for rabbit, S for sun.
1: बताओ आपका नाम क्या है?
0: श्रेयांशी.
1: श्रेयांशी है आपका नाम. आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो श्रेयांशी?
0: PP1.
1: PP1 में पढ़ते हो. अच्छा श्रेयांशी, आप घर में बहुत सारे गेम प्ले करते होगे. आपको कौन सा गेम सबसे अच्छा लगता है जो आप घर में प्ले करते?
0: पूला पराठे, टेम, किचन सेट.
1: किचन सेट से गेम प्ले करते हो? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है. आपके और फ्रेंड्स भी होंगे आपके साथ फिर तो किचन सेट गेम प्ले करते हो तब? अच्छा, आपके बहुत सारे दोस्त आपके साथ प्ले करते हैं. और क्या करते हो? मम्मा की हेल्प करते हो किचन में? आप मम्मा की हेल्प करते हो, बहुत अच्छी बात है ये तो. और बताओ, आपको कोई पोयम आती है श्रेयांशी?
0: दो चूहे.
1: अच्छा, दो चूहे वाली. अच्छा सुनाओ सुनाओ.
0: दो चूहे थे, मोटे मोटे थे, छोटे छोटे थे, नाच रहे थे, धूल रहे थे, तेल रहे थे. बिल्ली ने कहा, माँ माँ मैं आ जाऊँ अंदर, ना मुझे ना, हमें माँ चाहूँगी, हमें ता चाहूँगी, हम तो नहीं आए थे, हम तो पास जाए थे.
1: वेरी गुड श्रेयांशी, आपने बहुत अच्छी पोयम सुनाई है. और आप अपनी मम्मा की हेल्प भी करते हो किचन में, बहुत ही हेल्पफुल नेचर के हो. इसका मतलब आप बहुत अच्छे, बहुत समझदार बच्चे हो. ठीक है, आपके सभी दोस्तों को आपकी पोयम बहुत पसंद आई होगी. आपकी आवाज़ सभी सुन रहे हैं आज, हमारे सभी दोस्त.
2: तो बच्चों, सुनिए आपने अपने प्यारे प्यारे दोस्तों की बातें. इन्होंने तो बता दिया भाई कि इन्हें कौन कौन से इंडोर गेम्स पसंद है. अब आप भी घर पर अपने पसंदीदा इंडोर गेम्स जरूर खेलें और खूब मजे करें. चलिए इसी के साथ सुनते हैं एक और प्यारा संगीत.
3: उठ सबके कदम, देखो रम पम पम

0: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है, तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं,
1: ओ
0: जैसे UPI से।
1: अच्छा
0: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
1: वो क्या है मम्मी जी?
0: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
1: हम भी ना मम्मी जी।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
0: हर लेन देन अब है आसान।
3: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
4: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
5: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
6: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
7: चलो बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में ले चलती हूँ जहाँ आपको राजा रा

यानी हाथी घोड़े सैनिक मिलेंगे। लेकिन जरा रुकिए, ये कोई असली राजमहल नहीं है और ना ही यहाँ है सचमुच की लड़ाई होती है। ये है बच्चों एक अनोखी दुनिया जहाँ दिमाग से लड़ाई होती है, अस्त्र शस्त्रों से नहीं। यहाँ समझदारी की जीत होती है और हर चाल हमें कुछ नया सिखाती है। कुछ बच्चे हमारे बहुत समझदार हैं, झट से जान गए होंगे कि मैं किस खेल की बात कर रही हूँ। बिल्कुल सही समझा आपने, मैं शतरंज खेल की बात कर रही हूँ। अच्छा, आप लोगों ने कभी शतरंज खेला है? चलिए आज मैं आपको इस खेल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताती हूँ। इसमें एक चौकोर बिसात होती है जिसमें 64 खाने होते हैं। कुछ खाने काले रंग के होते हैं तो कुछ सफ़ेद रंग के। खेल में दो खिलाड़ी आमने सामने बैठकर अपनी अपनी गोटियों से चाल चलते हैं। शतरंज में राजा, रानी, हाथी, ऊंट, घोड़ा और प्यादे होते हैं। हर गोटी की अपनी अलग चाल होती है। राजा एक बार में एक खाना चलता है, रानी सीधी, आड़ी और तिरछी दिशा में चाल चल सकती है, हाथी सीधा सीधा चलता है, ऊंट तिरछा चलता है और घोड़ा अपनी खास टेढ़ी चाल चलता है। प्यादा आगे बढ़ता है और सामने आने वाली चुनौती का सामना करता है। लेकिन दोस्तों, शतरंज में केवल गोटियों की चाल जानना ही काफ़ी नहीं है, इसमें ज़रूरी है कि हम सोच समझकर अगली चाल चले। हमें ये भी सोचना पड़ता है कि अगर हमने एक चाल चली है तो सामने वाला खिलाड़ी क्या कर सकता है। यही तो इस खेल की सबसे असली बात सिखाती है। दोस्तों, ज़िंदगी में भी हमें कई बार ऐसी स्थितियाँ आ जाती है जब हम हार जाते हैं। क्या हारने पर हमें रोना चाहिए या फिर कोशिश भी छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। हार हमें सिखाती है कि हम कहाँ गलती कर बैठे हैं। जब हम अपनी गलती समझकर दोबारा कोशिश करते हैं तो पहले से भी बेहतर बनते हैं। शतरंज खेल हमें धैर्य रखना भी सिखाता है। इसमें जल्दीबाजी करने से हमारी गोटी खतरे में बढ़ सकती है, इसीलिए हमें शांतिपूर्वक निर्णय लेने चाहिए। कभी निराश नहीं होना चाहिए। अपने साथी खिलाड़ी का सम्मान करना भी एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है। भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद का नाम आज बहुत सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया और आज भी बहुत से बच्चे उन्हें देखकर शतरंज सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आपको शतरंज है पसंद तो अपने माता पिता, भाई बहन और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर खेलें। शुरुआत में आपको कुछ चालें कठिन लग सकती हैं, लेकिन अभ्यास करते करते आप इसमें अच्छे हो सकते हैं। याद रखें, शतरंज केवल एक खेल नहीं है, बल्कि ये हमें धैर्य, एकाग्रता, अनुशासन और समझदारी का पाठ भी पढ़ाता है।

बच्चों अब समय है आपको एक सीख भरी कहानी सुनाने का। तो पहले आप कहानी सुनो और फिर खुद डिसाइड करना कि इस कहानी की सीख को आपको अपने जीवन में उतारना चाहिए या नहीं। एक बार एक माली ने बगीचे में एक छोटा सा अनार का बीज डाला। उसके साथ और फलों के भी बीज डाले, जैसे संतरा, पपीता, सेब, चीकू, आम, अमरूद आदि के। सभी बीजों को बगीचे में डाल दिया गया। समय बीतता गया। अनार को छोड़कर सभी फलों के बीजों से नन्हे नन्हे पौधे निकल आए। अनार का बीज बहुत उदास हुआ कि मैं कब बड़ा बनूंगा, सब मुझसे बड़े हो गए हैं। सभी पौधे लहलहाते हैं, खुश होते हैं और देखो मैं बड़ा ही नहीं हो रहा, मुझ में से नन्हे पौधे ही नहीं निकल रहे। अनार का बीज बस ऐसे दुखी रहता। तेज गर्मी में सभी पौधे मुरझाने लगे, लेकिन फिर अनार का बीज मिट्टी में दबने के कारण ठंडक महसूस करता और बाकी पौधों को देखकर सोचता कि देखो ये बड़े हैं मुझसे और इनको पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन इन्हें पर्याप्त पानी ही नहीं मिल पा रहा, ये कितने दुखी हैं। और वो ईश्वर से उनके लिए वर्षा करने के लिए प्रार्थना करता। एक दिन रात को जब अनार का बीज सो रहा था, तभी बारिश होने लगी और सारे पौधे मिलकर झूमने लगे, खुशियाँ मनाने लगे। अगली सुबह जब अनार का छोटा बीज ने देखा, अपनी आंखें खोली तो उसे बाहर की ताजगी और रोशनी महसूस हुई। उसने देखा कि अब वह भी एक नन्ना पौधा बनकर हवा में झूल रहा है। उसकी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना ही ना था। आज वो बहुत खुश था। तो बच्चों देखा आपने, अनार के एक छोटे से बीज ने कितना धैर्य रखा, कोई जल्दीबाजी नहीं की पौधा बनने की, और वो इंतज़ार करता रहा अपने समय का। उसके अच्छे होने की वजह से भगवान जी ने भी उसके सभी दोस्तों को वर्षा करके पानी दिया और इसका फल अनार के बीज को भी मिल गया, क्योंकि अब वह भी बड़ा हो गया था। आपको भी प्यारे दोस्तों हमेशा एक अच्छा इंसान बनना है।

कभी किसी पर नहीं हंसना है, बल्कि दूसरों के दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहना है। और जीवन में धैर्य रखें कि आपका अच्छा समय भी आएगा, लेकिन अपने अच्छे समय में भी आपको किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना है, क्योंकि सच्चे और अच्छे लोग हमेशा अच्छे बने रहते हैं। तो चलिए, मेरी कहानी की इस प्यारी सी सीख के साथ ही आपकी दोस्त अनामिका को दीजिए जाने की इजाज़त। तो सुनते रहिए मेरे प्यारे दोस्तों, हर शनिवार और रविवार आपका अपना प्रोग्राम फुलवारी। बच्चों की धुन प्यारे बच्चों को अपने घर में

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम फुलवारी FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। 5:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजी कशिश और स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका आप सभी को रहता है बेसब्री से इंतजार। जी हां, आपके मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की बात थोड़ी दिल से करेंगे क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी भावना की जो हम सभी ने कभी न कभी महसूस की है और वो है क्रोध। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं, क्यों गुस्सा हो जाते हैं? कोई जरा सी बात कह दे तो उनका मूड खराब हो जाता है, कोई उनकी बात ना सुने तो वो चिढ़ जाते हैं और कभी कभी तो वे उन लोगों पर भी गुस्सा हो बैठते हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन क्या हर गुस्से के पीछे सिर्फ नाराजगी होती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, कई बार उस गुस्से के पीछे एक ऐसी तकलीफ छिपी होती है जिसे इंसान शब्दों में बयां ही नहीं कर पाता। आज की बात है, जो मन की तकलीफों को नहीं बता पाता उसे ही क्रोध सबसे अधिक आता है। जरा सोचिए दोस्तों, एक इंसान पूरे दिन काम करता है, दूसरों की जरूरतों का ध्यान रखता है, सबकी बातों को सुनता है, सबकी मदद करता है, लेकिन जब उसी इंसान का मन उदास होता है तो उससे कोई नहीं पूछता कि तुम ठीक हो या नहीं। वह भी चाहता है कि कोई उसके चेहरे के पीछे छिपी थकान को समझे, कोई बिना बताए उसकी परेशानी जान ले, कोई उससे कहे कि तुम्हें हर वक्त मजबूत बने रहने की जरूरत नहीं है, तुम भी अपनी तकलीफ बता सकते हो। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो धीरे धीरे मन में बातें जमा होने लग जाती हैं और फिर एक दिन किसी छोटी सी बात पर गुस्सा बाहर आ जाता है। सामने वाले को लगता है कि इतनी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों, लेकिन उसे क्या पता कि यह गुस्सा सिर्फ उस एक बात का नहीं बल्कि उन तमाम बातों का है जिन्हें उस इंसान ने लंबे समय से अपने भीतर दबा कर रखा है। दोस्तों, कभी कभी हम कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, जबकि दिल के किसी कोने में हम चाहते हैं कि कोई हमारे पास बैठकर हमसे पूछे कि क्या हुआ, मुझे बताओ। कभी हम कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं, जबकि सच तो यह होता है कि हमें भी किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके सामने हम बिना किसी डर के अपने मन की बातें कह सके। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, हम अक्सर अपने सबसे करीबी लोगों के सामने ही अपना गुस्सा निकाल देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वे हमें छोड़कर नहीं जाएंगे, वे हमें समझेंगे। लेकिन दोस्तों, किसी से प्यार करने का मतलब यह नहीं कि हम उसे अपनी तकलीफों के नाम पर चोट पहुंचाएं और किसी का गुस्सा देखकर उसे हमेशा गलत समझ लें। हमें यह समझना होगा कि गुस्सा कभी कभी एक संकेत होता है कि मन के भीतर कुछ ऐसा है जिसे ध्यान, समझ और बातचीत की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी तकलीफ किसी से कह नहीं पाते तो आज से एक छोटी सी कोशिश कीजिए। जब गुस्सा आए तो तुरंत एक्शन देने के बजाय कुछ पल रुकिए, खुद से पूछिए क्या मैं सच में इस बात से नाराज हूँ।

या मेरे मन में कोई और तकलीफ है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है, तो कभी उससे प्यार से पूछ कर देखिएगा, सब ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं। हो सकता है आपके यह कुछ शब्द किसी के दिल का बोझ हल्का कर दें, क्योंकि दोस्तों हर गुस्से इंसान बुरा नहीं होता। कई बार वह बस थका हुआ होता है, परेशान होता है, या फिर बहुत कुछ सहते सहते अपनी भावनाएं सही तरीके से व्यक्त करना भूल जाता है। हर गुस्से के पीछे नफरत नहीं होती, हर खामोशी के पीछे राहत नहीं होती। कभी समझने की कोशिश भी की जाए जनाब, हर मुस्कुराते चेहरे की जिंदगी आसान नहीं होती। तो दोस्तों इसी के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

उम्मीद है दोस्तों आपको यह गीत पसंद आया होगा। दोस्तों अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक ऐसी परेशानी की जिसका सामना हम जैसे कई लोग करते हैं। जरा सोचिए, आप अपने पसंदीदा गाना सुन रहे हैं या किसी जरूरी कॉल पर बात कर रहे हैं और अचानक आपके ब्लूटूथ ईयरबड्स डिस्कनेक्ट हो जाएं। ऐसे में गुस्सा आना तो लाजमी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? तो चलिए जानते हैं ब्लूटूथ बार बार डिस्कनेक्ट होने के 5 बड़ी वजह। दोस्तों ब्लूटूथ की एक निश्चित रेंज होती है, कई डिवाइस लगभग 10 मीटर तक काम कर सकते हैं, लेकिन यह दूरी डिवाइस और आसपास के माहौल पर निर्भर करती है। अगर आप फोन से दूर चले जाते हैं या बीच में दीवार जैसी रुकावट आती है तो सिग्नल कमजोर पड़ता है, इसीलिए फोन और ब्लूटूथ डिवाइस को पास रखकर देखिए। हमारे घरों और ऑफिस में वाईफाई राउटर और कई दूसरे वायरलेस डिवाइस मौजूद होते हैं। कुछ परिस्थितियों में ये ब्लूटूथ सिग्नल को प्रभावित कर सकते हैं। अगर कनेक्शन बार बार टूट रहा है तो अपने डिवाइस को वाईफाई राउटर से थोड़ा दूर करके देखिए। दोस्तों कई बार हमारे ईयरबड्स या स्पीकर पहले किसी दूसरे फोन से पेयर किए गए होते हैं। अगर वह फोन आसपास मौजूद है तो डिवाइस उससे दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है, इससे आपके फोन का कनेक्शन प्रभावित हो सकता है। ऐसे में पुराने या अनचाहे कनेक्शंस को हटाना मददगार हो सकता है। कई बार हम फोन की सेटिंग्स में समस्या ढूंढते रहते हैं, जबकि परेशानी ब्लूटूथ डिवाइस की कम बैटरी में होती है। इसीलिए अपने ईयरबड्स स्पीकर या स्मार्ट वॉच की बैटरी चेक करें और जरूरत पड़ने पर उसे चार्ज करें। और अगर आपका ब्लूटूथ डिवाइस काफी पुराना है या उसकी पेयरिंग में समस्या आ गई है तो कनेक्शन स्थिर हो सकता है। ऐसे में फोन के ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाकर डिवाइस को फॉगॉट या अनपेयर करें और फिर दोबारा कनेक्ट करें। उपलब्ध सॉफ्टवेयर अपडेट भी चेक करना ना भूलें। तो दोस्तों अगली बार ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले दूरी, बैटरी और दूसरे डिवाइस से कनेक्शन चेक कीजिए। ब्लूटूथ को बंद करके दोबारा चालू करना भी मददगार हो सकता है। अगर इसके बाद भी समस्या बनी रहती है तो अपने ब्लूटूथ डिवाइस को किसी दूसरे फोन से कनेक्ट करके देखें। इससे आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि परेशानी फोन में है या डिवाइस में। याद रखिए, हर तकनीकी परेशानी के लिए नया डिवाइस खरीदना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही वजह पहचान कर छोटी सी सेटिंग बदलने से हर समस्या का हल हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

उम्मीद है आप सभी को गीत पसंद आया होगा। दोस्तों, आज के डिजिटल दौर में हमारा मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत करने का जरिया नहीं, बल्कि बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट, सोशल मीडिया और कई जरूरी सेवाओं का हिस्सा बन चुका है। और इन सभी में एक छोटी सी चीज की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसे हम सिम कार्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिम कार्ड से जुड़ी कुछ छोटी छोटी लापरवाहियां आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती हैं? तो आइए जानते हैं सिम कार्ड से जुड़ी कुछ जरूरी बातें जिनका ध्यान रखना हर मोबाइल यूजर के लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, सिम का पूरा नाम है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। यह एक छोटी सी चिप होती है जो मोबाइल नेटवर्क पर आपकी पहचान करने में मदद करती है। इसी की मदद से आप कॉल कर सकते हैं, SMS भेज सकते हैं और मोबाइल नेटवर्क के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल पारंपरिक फिजिकल सिम के अलावा ई सिम का विकल्प भी उपलब्ध है। ई सिम फोन के अंदर लगी डिजिटल सिम टेक्निक है, जिसे सपोर्ट करने वाले डिवाइस में बिना अलग से कार्ड लगाए एक्टिवेट किया जा सकता है। दोस्तों, कई बार हम अपना मोबाइल नंबर दोस्तों या परिवार के लोगों के साथ साझा तो कर लेते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रखते कि हमारा नंबर किन किन ऑनलाइन अकाउंट से जुड़ा हुआ है। बैंकिंग सेवाओं और सोशल मीडिया अकाउंट्स में मोबाइल नंबर का इस्तेमाल OTP और अकाउंट रिकवरी के लिए किया जा सकता है। इसीलिए अपना OTP, सिम से जुड़ी संवेदनशील जानकारी या मोबाइल अकाउंट का पिन किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा ना करें। कोई व्यक्ति बैंक अधिकारी या टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी बनकर आपसे जानकारी मांगे तो भी सावधान रहे। दोस्तों, इसमें धोखेबाज आपकी जानकारी का गलत इस्तेमाल करके आपके नंबर की दूसरी सिम एक्टिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो आपके नंबर पर आने वाले कॉल और SMS प्रभावित हो सकते हैं। इससे OTP के जरिए होने वाली धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ सकता है। अगर आपके फोन में अचानक नेटवर्क आना बंद हो जाए तो लंबे समय तक कॉल या SMS ना आए तो इसे नजरअंदाज ना करें। अपने टेलीकॉम ऑपरेटर से तुरंत संपर्क करें, जांच करवाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके नाम पर कितने मोबाइल कनेक्शन जारी है? भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की संचार साथी वेबसाइट के माध्यम से आप अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शंस की जानकारी देख सकते हैं। अगर कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जिसे आप नहीं पहचानते या जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते, तो पोर्टल उपलब्ध विकल्पों के जरिए उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। इससे आपको अपने नाम पर जारी मोबाइल कनेक्शन की निगरानी करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि सिम कार्ड आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन आपकी डिजिटल

पहचान और निजी जानकारी की सुरक्षा में इसकी भूमिका बेहद अहम है। इसीलिए अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल समझदारी से करें, अनजान कॉल्स पर सावधान रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि नजरअंदाज ना करें। दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक बेटी को अपने सपनों के लिए पूरा आसमान मिल जाए तो वो कितनी ऊंची उड़ान भर सकती है। वो सिर्फ एक बेटी नहीं, हजारों सपनों की उड़ान है। वो सिर्फ एक मुस्कान नहीं, आने वाले कल की पहचान है। उसके हौसलों को पंख दीजिए, वो आसमान छू जाएगी। एक मौका तो देकर देखिए, वो दुनिया बदल कर दिखाएगी। और दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं उन सपनों की, उन हौसलों की और उन संभावनाओं की जो हर बेटी अपने भीतर समेटे हुए है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया की हर उस बेटी के नाम है जो अपने सपनों को सच करना चाहती है, अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती है और अपनी मेहनत से दुनिया में कुछ नया कर दिखाना चाहती है। दोस्तों हर बेटी की अपनी एक कहानी होती है। कोई डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती है, कोई वैज्ञानिक बनकर नई खोज करना चाहती है, कोई खिलाड़ी बनकर देश के लिए मेडल जीतना चाहती है, तो कोई कला, संगीत, पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाना चाहती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर सपना अपने आप में खास है। आज हमारी बेटियां शिक्षा, विज्ञान, खेल, कला, तकनीक और नेतृत्व जैसे हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। वे नई ऊंचाइयां छू रही हैं और अपनी मेहनत से दूसरों के लिए प्रेरणा बन रही हैं। दोस्तों एक बेटी को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? भरोसा, प्रोत्साहन और सीखने का अवसर। जब परिवार अपनी बेटी से कहता है तुम कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसके आत्मविश्वास को एक नई ताकत मिलती है। जब शिक्षक उसकी प्रतिभा को पहचानते हैं तो उसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास होने लगता है और जब समाज उसकी मेहनत की सराहना करता है तो उसके सपनों को नई उड़ान मिलती है। इसीलिए बालिकाओं की शिक्षा और उनके कौशल को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देती बल्कि सोचने, समझने, निर्णय लेने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की शक्ति भी देती है। और दोस्तों आत्मनिर्भरता की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। अपनी बात आत्मविश्वास से रखना, नई चीजें सीखना, अपनी प्रतिभा को पहचानना और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना, यही कदम एक मजबूत भविष्य की नींव रखते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आइए हम एक बेटी के सपनों का सम्मान करें, उसे सवाल पूछने दें, नई चीजें सीखने दें, अपनी पसंद तलाशने दें और अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाने का अवसर दें, क्योंकि हर बेटी के भीतर कुछ खास करने की क्षमता है। जरूरत है तो बस उस क्षमता को पहचानने और उसे निखरने का अवसर देने की। और दोस्तों अंत में कुछ पंक्तियां हर उस बेटी के नाम जो अपने सपनों को सच करने की राह पर है। तेरे सपनों को नई उड़ान मिले, तेरी मेहनत को एक नई पहचान मिले, हर कदम पर तेरा हौसला बढ़ता रहे, तेरी दुनिया को खुशियों का आसमान मिले। याद रखिए हर बेटी खास है, हर सपना कीमती है और हर बालिका का एक बेहतर कल की उम्मीद है। तो दोस्तों इसी के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

उम्मीद है आप सभी को गीत पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब समय आ गया है आप सबसे विदा लेने का। आशा करती हूँ आप यूं ही मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, स्वस्थ रहे। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: मेहमान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के सहयोग से यह यात्रा जारी रहेगी। इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वड़ा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडिया चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्र लोगों को अवैध हिरासत में न लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अक्वेजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अक्वेजम की सेवाएं समाप्त कर दी थी। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए और सांसद के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और तत्काल निलंबित करने की मांग की। दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पुष्टि की है कि तेल टैंकर MTGEM पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 22 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ये घटना रास अल खैमा तट के पास जहाज में आग लगने के बाद हुई। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। मृतकों में 4 सऊदी और 8 विदेशी नागरिक हैं। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। भारत ने संप्रभुता की रक्षा के लिए सऊदी अरब की जनता और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में आज सवेरे अचानक आई बाढ़ से अनेक पुल और घर बह गए। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। लगभग 50 लोगों को बचाया गया है और 10 लोग अब भी लापता हैं। खोज और बचाव अभियान जारी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से इंदौर में खेला जाएगा। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षि कश्यप को हराया। उधर मिस्र में उदयवीर सिद्धू ने निशानेबाजी विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर

0: एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। लद्दाख पुलिस बाइक रैली टीम गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए रवाना हो गई है। रैली का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, एकजुटता और नशा मुक्त भारत को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना का जहाज सह्याद्री अभ्यास इंद्र 2026 में शामिल होने के लिए रूस के व्लादिवोस्तोक पहुंच गया है। ये द्विपक्षीय अभ्यास 13 से 18 अक्टूबर तक चलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

श्रोताओं, अब से कुछ देर बाद यानी कि शाम 6:10 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे।

श्रोता 7 बजे सुनेंगे स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम ग्राम भारती। प्रायोजकता है जिसकी सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर।

सात बजे सुनिएगा श्रोताओं फिल्म संगीत और 8:15 पर आप आनंद लेंगे लोक संगीत का। आज के फनकार हैं माता दीन व साथी।

8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली से रिले समाचार संध्या, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार 9 बजे, और 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 11 बजे सुनेगा हिंदी में समाचार, और 11:05 पर आज की सभा का समापन होगा।

श्रोताओं, कल की सभा के बारे में आप सुनिए। 6 बजे आप सुनेगा हिंदी में समाचार दिल्ली से, और वंदनवार चिंतन भक्ति संगीत के कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:05 पर विविध भारती से।

रामचरितमानस गान 6:25 पर और 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता। सवेरे ठीक 7 आप सुनेगा नमस्कार अलवर कार्यक्रम। श्रोताओं, फिल्म संगीत का समय रहेगा सवेरे ठीक 7:30 पर और 8 सुनेगा हिंदी में समाचार प्रभात। सुगम संगीत सुनेगा 8:15 पर। सुनेगा हिंदी में प्रादेशिक समाचार और 9:10 से आप सुनेंगे विविध भारती सेवा के कार्यक्रम।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। शाम के 6:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में पहली पेशकश सनम तेरी कसम का गीत है, किशोर कुमार की आवाज में, आर डी बर्मन का संगीत।

अभी आपने सुना सनम तेरी कसम फिल्म में किशोर कुमार को। गीत के बोल लिखे थे गुलशन बावरा ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने।

और आइए सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार शानू को फिल्म सनम में आनंद मिलिंद का संगीत और गीत के बोल समीर ने लिखे हैं।

में सुना सागर फिल्म में किशोर कुमार को, और आइए सुनते हैं कार्यक्रम के अंत में साजन फिल्म का ये गीत।

है फिल्म संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, भारत की प्रगति समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों का परिचायक है। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। शारदीय नवरात्र पर प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास, दुर्गा पूजा और गरबा के आयोजनों की धूम और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में आईआईटी मद्रास में आयोजित कार्यक्रम में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें सड़क और रेल परिवहन, बंदरगाह अवसंरचना, पेट्रोलियम और वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाएं शामिल है। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे और राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वैज्ञानिक उपलब्धियों और आधुनिक बुनियादी ढांचे से ताकत मिलती है।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पुनमल्ली वडा पलानी हिस्से का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने मेट्रो ट्रेन में यात्रा भी की। श्री मोदी ने आईआईटी मद्रास में सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर देश को समर्पित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध रूप से हिरासत में न लेने और यातायात को सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार बनाए रखने और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय का फैसला ऐसे वक्त आया है जब नई दिल्ली में कुछ युवा संगठनों और छात्रों की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन की कोशिश की जा रही है। इधर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद सभी 45 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल है। उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि सभी रेलगाड़ियां निर्धारित समय सारणी के अनुसार चल रही हैं। देश में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों को जोड़ने के लिए और इनको पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट सहित कई थीम आधारित सर्किट विकसित किए गए हैं। पर्यटन

0: मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना भी शुरू की। आइए जानते हैं इसके बारे में।
1: मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य देश में आध्यात्मिक बौद्ध कृष्ण रामायण तीर्थंकर जैसे चिन्हित धीम आधारित पर्यटन क्षेत्रों के अंतर्गत पर्यटन अवसंरचना का विकास करना था। इसके अलावा मंत्रालय ने 2014-15 में ही चिन्हित तीर्थ स्थलों और विरासत स्थलों पर एकीकृत विकास के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा पुनरुद्वार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान भी शुरू किया था। केंद्र सरकार ने राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता, वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास के तहत 40 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन पर्यटन सर्किटों में राजस्थान के जिन स्थलों को शामिल किया गया है, उनमें जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर, सीकर के खाटू श्याम जी और राजसमंद का नाथद्वारा मंदिर भी शामिल है। आध्यात्मिक सर्किट के तहत सालासर बालाजी, सामूत के बालाजी, विराट नगर में बीजक जैनसिया और अंबिका मंदिर, भरतपुर का कामा क्षेत्र, धौलपुर का मचकुंड और दौसा के मेहंदीपुर बालाजी तथा चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर का विकास भी किया जा रहा है। सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल से देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। समाचार कक्ष से मैं दीपेंद्र सिंह खंगारू।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित।

0: के उद्देश्य से तीर्थ यात्रा पुनरुद्वार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान भी शुरू किया था। केंद्र सरकार ने राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता, वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का विकास के तहत 40 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन पर्यटन सर्किटों में राजस्थान के जिन स्थलों को शामिल किया गया है उनमें जयपुर के गोविंद देव जी का मंदिर, सीकर के खाटू श्याम जी और राजसमंद का नाथद्वारा मंदिर भी शामिल है। आध्यात्मिक सर्किट के तहत सालासर बालाजी, सामूद के बालाजी, विराट नगर में बीजक जैनसिया और अंबिका मंदिर, भरतपुर का कामा क्षेत्र, धौलपुर का मचकुंड और दौसा के मेहंदीपुर बालाजी तथा चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर का विकास भी किया जा रहा है। सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल से देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। समाचार कक्ष से मैं दीपेंद्र सिंह खंगारू।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हुए। इस बार तिथि वृद्धि के चलते नवरात्र 10 दिन के रहेंगे। शुभ मुहूर्त में घरों और मंदिरों में घट स्थापना की गई। धार्मिक अनुष्ठानों के साथ दुर्गा पूजा के आयोजन भी विधिवत रूप से शुरू हुए। आज पहले दिन मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की आराधना की जा रही है। उत्तर भारत के प्रमुख शक्ति पीठों में शामिल बीकानेर के देशनोक करणी माता मंदिर, करौली में कैला देवी, सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा और राजधानी जयपुर की शिला माता मंदिर सहित प्रदेश की सभी छोटे बड़े दुर्गा मंदिरों में विशेष आयोजन रखे गए हैं। कई जगह मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे बालोतरा संवाददाता ने बताया कि पश्चिमी क्षेत्र के प्रसिद्ध नागणेची माता मंदिर में पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। वहीं बांसवाड़ा के त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्तगणों का आना जारी है।
2: बांसवाड़ा जिले भर के देवी मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से भव्य सजाया संवारा गया है, तो वहीं वागड़ अंचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी माता के दरबार में आज सुबह भव्य मंगला आरती की गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु माता रानी के जयकारों के साथ आरती में सम्मिलित हुए। दोपहर में विधि विधान के साथ मंदिर में घट स्थापना की गई। पहले दिन माता के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहा और मेले की रौनक भी शुरू हो गई, तो वहीं गरबों का भी आयोजन शुरू हो गया है। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा।
1: अलवर के बाला किला रोड स्थित प्राचीन करणी माता मंदिर में तड़के से ही श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में आने वाले इस मंदिर में वन विभाग की ओर से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नवरात्र के साथ ही प्रदेश भर में गरबा के आयोजन भी शुरू हो गए हैं। गुजरात से लगते राज्य के जिलों के साथ ही राजधानी जयपुर में भी विभिन्न संगठनों की ओर से गरबा महोत्सव रखे गए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने निवास स्थित मां राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर आमजन की खुशहाली के लिए कामना की। अरावली के संरक्षण और विकास में संतुलन बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी आज डूंगरपुर पहुंची। कमेटी के सदस्यों ने हितधारकों के साथ संवाद किया और वन, जल संरक्षण, आजीविका और खनिज गतिविधियों पर चर्चा की। कमेटी ने पर्यावरण संरक्षण की चुनौतियों और विकास संभावनाओं पर भी बात की। कमेटी में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री देहरादून की महानिदेशक कंचन देवी सहित वन और पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ शामिल थे। आज प्रसिद्ध समाज सुधारक और राष्ट्र निर्माता नानाजी देशमुख की जयंती है। भारत रत्न से सम्मानित नानाजी देशमुख ने ग्रामीण विकास, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और वंचितों की सशक्तिकरण के लिए जीवन पर्यंत प्रयास किया। राष्ट्र सेवा में असाधारण योगदान के लिए उन्हें 2019 में मरणोपरांत देश के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी चिंतक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भी जयंती है। जयप्रकाश नारायण ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दोनों महापुरुषों की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नानाजी देशमुख

0: दृष्टिकोण समावेशी और सतत विकास की दिशा में प्रेरित करता रहेगा। लोकनायक को श्रद्धांजलि देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक जीवन, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और जन सशक्तिकरण के प्रति जयप्रकाश नारायण की अटूट प्रतिबद्धता आज भी राष्ट्र के लिए प्रेरणा बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आज राज्य भर के में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के तहत ब्यावर में महिला अधिकारिता विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें बालिका शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण का संदेश दिया गया। इस दौरान बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और बालिकाओं को सम्मान तथा शिक्षा की समान अवसर दिलाने की शपथ भी दिलाई गई। धौलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए महिला पुलिस कमांडो द्वारा बालिकाओं की सुरक्षा, सोशल मीडिया पर व्यवहार और कई अन्य जानकारियां दी गई। सिरोही में भी कई कार्यक्रम हुए। भरतपुर में आयोजित जागरूकता रैली में स्कूलों की छात्राओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मैच होलकर स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद शाम 7 बजे से शुरू होगा। इससे पहले रांची में खेले गए दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने भारत पर 6 विकेट से जीत दर्ज की थी। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 139वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, भारत की प्रगति समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों का परिचायक है। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा हुए लोगों की अवैध हिरासत रोकने, सामान्य आवाजाही और निर्बाध इंटरनेट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। शारदीय नवरात्र पर प्रदेश भर में धार्मिक उल्लास, दुर्गा पूजा और गरबा के आयोजनों की धूम। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आज राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख राजेश सोनी ने तैयार किया है। जिले में इन दिनों पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। ग्रामीण अंचलों में पंच, सरपंच और जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनावी सरगर्मियां और दांव पेच शुरू हो गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिला प्रशासन की ओर से चुनाव प्रक्रिया को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इससे पहले नगर निकाय चुनाव में लोगों ने निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान किया और अपने पसंद की सरकार बनाई। जिले में जोश कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर स्वास्थ्य भवन स्थित कार्यालय में कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया। इस दौरान मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भरतराम मीणा तथा जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर पीके वर्मा सहित माय भारत युवा और एनसीसी के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को निक्षय शपथ दिलाई गई। साथ ही जोश कार्यक्रम से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया गया। अधिकारियों ने टीबी उन्मूलन के लिए युवाओं और आमजन की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और जिले को टीबी मुक्त बनाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा के निर्देशों के अनुसार विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा परतापुर स्थित विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर 2 प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कुल 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। बांसवाड़ा में सही खानपान स्वस्थ राजस्थान अभियान के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की जिला स्तरीय टीम ने विभिन्न विद्यालयों का दौरा कर विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने बच्चों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की प्रारंभिक जांच, पौष्टिक खानपान और स्वच्छता संबंधी आदतों के बारे में जानकारी दी। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अभियान के तहत विद्यार्थियों को स्वस्थ टिफिन, पौष्टिक नाश्ता, श्री अन्न और मोटे अनाज के फायदे बताए गए। वन्य जीव सप्ताह के तहत वन विभाग की ओर से बांसवाड़ा के श्यामपुरा वानिकी उद्यान में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें शहर के सरकारी और निजी विद्यालय के विद्यार्थियों ने भाग लिया।

0: नगर परिषद बांसवाड़ा द्वारा शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने, प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री के उपयोग और बिक्री पर रोक लगाने के उद्देश्य से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगर परिषद बांसवाड़ा की टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की। इस दौरान 15 प्रतिष्ठानों से कुल 200 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक सामग्री जब्त की गई और कुल 14,800 रुपए के चालान की वसूली की गई। जिले में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और किसानों को कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराने की दिशा में कसारवाड़ी सौर सिंचाई परियोजना महत्वपूर्ण साबित होगी। इस परियोजना के माध्यम से 525 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इससे क्षेत्र के किसानों को खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध होगा और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। जिले के कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सज्जनगढ़ तहसील में अनास नदी पर कसारवाड़ी एनिकट और सौर आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना पर काम किया जा रहा है। परियोजना के तहत 67 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर फव्वारा पद्धति से पानी खेतों तक पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही बिजली खपत कम करने के उद्देश्य से 700 किलोवाट का सोलर प्लांट भी लगाया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से HPV टीकाकरण को लेकर जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में भापौर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 26 बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगाई गई। पिछले दिनों समाज कल्याण सप्ताह के तहत अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में वृद्धजनों के सम्मान के साथ उनके अनुभव और समाज में योगदान पर चर्चा की गई। शारदीय नवरात्र पर्व परंपरानुसार आज से शुरू हुआ। प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में मंगला आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दोपहर को मंदिर में अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना के साथ धार्मिक अनुष्ठानों का शुभारंभ किया गया। गांव से शहर तक विभिन्न देवी मंदिरों को भव्य और शानदार रंग बिरंगी रोशनी से सजाया संवारा गया है। मंदिर के प्रांगण में गरबा आयोजन के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी के साथ बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पेश है सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपयों बत्तीरी विकास परियोजनाओं रो लोकार्पण और नींव धरी। कयो भारतरी प्रगति समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक कामयाबियां रो परिचायक है। सर्वोच्च न्यायालय अहलकारा ने शांतिपूर्ण तरीकाओं भेड़ाविया लोगारी गैरकानूनी हिरासत रोकण सामान्य आवाजाही और बेरोकटोक इंटरनेट तय करण रा निर्देश दिया। शारदीय नवरात्रा माथे प्रदेश भर में धार्मिक उमाव, दुर्गा पूजा और गरबारा आयोजनारी धूम और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस माथे आज राज्य भर में न्यारा न्यारा कार्यक्रम हुआ। समाचार साथ है मैं शंभू सिंह और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई रा IIT मद्रास में विया कार्यक्रम में 13,000 करोड़ रुपयों बत्तीरी विकास परियोजनाओं रो लोकार्पण करियो और नींव धरी। इन में सड़क और रेल परिवहन, बंदरगाह अवसंरचना, पेट्रोलियम और वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनावा भेड़ी है। प्रधानमंत्री इनने ऐतिहासिक मौको बतावता कहो कि आप परियोजनावाओं संपर्क सुविधा चौकी होवेला, उद्योग और कारोबार मजबूत होवेला और राज्य रा नौजवान सारू रोजगार रा मौका मुहैयावेला। श्री मोदी कहो कि सरकार रा खास रा तौर माथे वना 25 साल पूरा कर लिया है। प्रधानमंत्री बननु पहला वना अक्टूबर 2001 में गुजरात रा मुख्यमंत्री री शपथ ली ही। श्री मोदी कहो कि भारत री प्रगति ने आपरी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, वैज्ञानिक कामयाबियां और आधुनिक बुनियादी ढांचाओं ताकत मिले है।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इनो पहला श्री मोदी चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना रा दूजा चरण रा पुन्नमल्ली वड़ा पल्लानी हिस्सा रो उद्घाटन करियो। प्रधानमंत्री और तमिलनाडु रा मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय मेट्रो

0: रेल मांझा ट्राई करी श्री मोदी आईआईटी मद्रास में सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर देश ने समर्पित करियो। सुप्रीम कोर्ट शांतिपूर्ण तरीकाओं भेड़ा होने वाला लोगों ने गैरकानूनी हिरासत में नहीं लेवण और यातायात ने सुचारू तरीकाओं चालता रखने का हुक्म दिया है। न्यायालय दिल्ली में बैरिकेटिंग बंदोबस्त की समीक्षा करण मेट्रो सेवा में टाइम टेबल मुजब बनाई राखण और इंटरनेट सेवाई बरोबर चालता राखण ने कहो है। न्यायालय रो फैसलो उन वक्त आयो है जद नवी दिल्ली में कुछ युवा संगठन और पढ़ेसना कानियों न्यारी न्यारी मांगन ने लेर जंतर मंत्र माथे प्रदर्शन री कोशिश करी जावे। अठीने दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में कानून बंदोबस्त ने देखना आज ही यातायात सलाह काढ़ी है। पुलिस लोगों ने गैर जरूरी यात्राओं बचण और यात्राओं पहला यातायात बारा में जानकारी लेवण री सलाह दी है। देश में धार्मिक और सांस्कृतिक थड़ा ने जोड़न सारू और वाने सैलानी ठोड़ा रा रूप में विकसित करण सारू सरकार कानियों खास जतन करिया जावे। इन कड़ी में आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट समेत कई थीम वाला सर्किट विकसित करी जा है। सैलानी मंत्रालय स्वदेश दर्शन योजना शुरू करी है। आवो जाना ई बारा में
1: मंत्रालय अपनी न्यारी न्यारी योजनाओं रे मार्फत राज्य सरकार ने रोकड़ मदद देवे है। मंत्रालय साल 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना शुरू की नहीं। इनरो मकसद देश में आध्यात्मिक बौद्ध कृष्ण रामायण और तीर्थंकर री थीम माते सैलानियों ने हर कार्य तहत पर्यटन अवसंरचना रो विकास करना हो। इनरो अलावा मंत्रालय साल 2014-15 में ही तीर्थ और विरासत थाला माते एकीकृत विकास रा मकसद हो तीर्थ यात्रा पुनरुद्वार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान भी शुरू करियो हो। थीम माते नामी सैलानी केंद्र रे विकास रे तहत देश 40 परियोजनाओं की मंजूरी दी है। आ पर्यटन सर्किट में राजस्थान रा जिन थोड़ा ने मिले करी जिया है वहां रे माए जयपुर रा गोविंद देव जी मंदिर सीकर रा खाटू श्याम जी और राजसमंद रा नाथद्वारा मंदिर ही शामिल है। आध्यात्मिक सर्किट रे तहत सालासर बालाजी सामूतरा बालाजी विराटनगर माए विजय जैनसरिया और अंबिका मंदिर भरतपुर रा काम हड़गा माए धौलपुर रा मचगंड और दौसा रा मेहंदीपुर बालाजी के सागे ही तोड़गढ़ रा सामणिया सिंह मंदिर रो विकास भी करण रो शामिल है। सरकार की महत्वपूर्ण पहल शू देशी विदेशी सैलानियों रा तादाद बढ़वार दर्ज हुई है। सागे ही पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों ने भी घणो फायदो मिल रियो है। समाचार कक्ष सु मैं दीपेंद्र सिंह खानारो।
0: ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। शक्ति री आराधना रो त्योहार शारदीय नवरात्रि आज शुरू हुई हो। ई बार तिथि बढ़वारे चालता नवजात्रा 10 दिन रा वेला शुभ मुहूर्त माए घरा और मिंद्रा माए घट थापना करी जी। धार्मिक अनुष्ठान रे साथ ही दुर्गा पूजन रा आयोजनी विधि पूर्ण शुरू हुआ। आज पहले दिन माँ दुर्गा रा नौ रूपा मायू पहला रूप माँ शैलपुत्री री आराधना करी जावे। उत्तराध भारत रा नामी शक्ति पीठा माए भेड़ा बीकानेर रा देशनो करणी माता मिंदर करौली माए केला देवी सवाई माधोपुर रा चौथ का बरवाड़ा और राजधानी जयपुर रा शीला माता मिंदर समेत प्रदेश रा सगला छोटा मोटा दुर्गा मिंदरा माए खास आयोजन राखी जा है। कई थोड़ा मेला ही भरी जाए। मारा बालोतरा खबर नवीस बतायो के आथोणी हलकारा नामी नागणेची माता मिंदर माए पहले दिन घनी तादाद माए श्रद्धालु पूग्या। वठे बांसवाड़ा रा त्रिपुर सुंदरी माता मिंदर माए घनी तादाद माए भक्तों रो आवणो लाग्योड़ो है।
2: बांसवाड़ा जिले भर के देवी मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से भव्य सजाया संवारा गया है। तो वहीं वागड़ अंचल के प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां त्रिपुरा सुंदरी माता के दरबार में आज सुबह भव्य मंगला आरती की गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु माता रानी के जयकारों के साथ आरती में सम्मिलित हुए। दोपहर में विधि विधान के साथ मंदिर में घट स्थापना की गई। पहले दिन माता के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहा और मेले की रौनक भी शुरू हो गई। तो वहीं गरबों का भी आयोजन शुरू हो गया है। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा।
0: अलवर रा बाला किला रोड रा पुराना करणी माता मिंदर माए तड़का हुई श्रद्धालु माता रा दर्शन सारू पूग्या। सरिस्का अभयारण्य हल्का माए आवण वाला ई मिंदर माए जंगलात महकमा कानियो हिफाजत रा चोखा बंदोबस्त करी जा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेशवासियों ने शारदीय नवरात्रा री शुभकामना दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपरा रहवास माते मां राज राजेश्वरी मिंदर माए पूजा अर्चना करने लोगों री खुशहाली सारू कामना करी। अरावली रा संरक्षण और विकास माए संतुलन बनाया राखण सारू सुप्रीम कोर्ट हाई पावर कमेटी आज डूंगरपुर पूगी। कमेटी रा सदस्य हितधारकों रे साथे बतल करी और जंगलात जल संरक्षण आजीविका और खनिज गतिविधियां माथे चर्चा करी। कमेटी पर्यावरण संरक्षण री चुनौतियां और विकास री आस माथे बात करी। कमेटी माए इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री देहरादून री महानिदेशक कंचन देवी समेत वन और पर्यावरण हल्काओं जुड़े

0: जानकार भेड़ाहा। आज नामी समाज सुधारक और राष्ट्र निर्माता नानाजी देशमुख की जयंती है। भारत रत्नों सम्मानित नानाजी देशमुख गांवाई विकास, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और बच्चा तबका ने मजबूत करण सारू आखा जीवन कोशिश करी। राष्ट्र सेवा में असाधारण योगदान सारू वाने साल 2019 में मरणोपरांत देश रा ठावा सम्मान भारत रत्नों सम्मानित करी जाहा। आज स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी चिंतक लोकनायक जयप्रकाश नारायण री जयंती है। जयप्रकाश नारायण भारत रा स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पछे संपूर्ण क्रांति आंदोलन री अगुवाई करी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन दोनों महापुरुषों की जयंती माथे श्रद्धांजलि अर्पण करी है। सोशल मीडिया पोस्ट में वणा कहो के नानाजी देशमुख रो नजरियो समावेशी और सतत विकास ने प्रेरित करतो रहेला। लोकनायक ने श्रद्धांजलि देवता उपराष्ट्रपति कहो के सार्वजनिक जीवन लोकतांत्रिक सिद्धांता और जन सशक्तिकरण सारू जयप्रकाश नारायण री अटूट प्रतिबद्धता आज ही राष्ट्र सारू प्रेरणा बनी उड़ी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई दोनों जन नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। वणा लोगों राष्ट्र नेताओं रा जीवन सीख लेवण री अर्जी करी। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस रे मौके आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम भीया। इन रे तहत ब्यावर में महिला अधिकारिता महकमा कानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना रे तहत जागरूकता रैली निकाली जी। इन माय बालिका शिक्षा हिफाजत और सशक्तिकरण रो संदेश दिरिजो। ई दौरान बालिवा जसी सामाजिक कुरीतियां ने खत्म करण और बालिकाओं रो सम्मान और शिक्षा रा बरोबर मौका दिरावण री शपथ दिराई जी। धौलपुर में न्यारा न्यारा कार्यक्रम री मार्फत महिला पुलिस कमांडो कानियो बालिकाओं री हिफाजत सोशल मीडिया माथे व्यवहार और कई तरह री जानकारियां दी जी। सिरोई में न्यारा न्यारा कार्यक्रम विया वठी भरतपुर में विया जागरूकता रैली में स्कूलों री छात्रावां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हिस्सों लियो। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल कानियो रेलवे रा बिना काम रा सामान और स्क्रेप ने काम आए लेर मोवणी कलाकृतियां बनाई जी है। मंडल कार्यकारी ई पहलू वेस्ट टू आर्ट रेलवे स्टेशन माथे नुमाइश लगाई जी है। और ब्यूरो हमारा खबर नवीसू।
1: जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक पंकज शर्मा ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर कर्मचारियों की रचनात्मकता की सराहना की। स्प्रिंग बेयरिंग नट बोल्ट और अन्य पुराने पुर्जों से शेर चिंकारा रोबोट हंस स्टीम लोको ट्रॉली और भारत का नक्शा तैयार किया गया। भारत के मानचित्र पर बनी माँ भारत की प्रतिमा विशेष आकर्षण रही। यात्रियों ने कलाकृतियों की तस्वीरें अपने मोबाइल में कैद की और इसकी सराहना की। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: भारत आज इंदौर में वेस्ट इंडीज के साथ है तीजो T20 क्रिकेट मैच खेलेला। वो मैच होलकर स्टेडियम में अबे वो थोड़ी देर पछे संध्या 7 बजे शुरू वेला। इनो पहला रांची में खेली जा दूजा मैच में वेस्ट इंडीज भारत माते 6 विकेटों जीत हासिल करी ही। 5 मैचारी श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 बराबरी माते है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित किया जाने वाला खास कार्यक्रम मन की बात में 25 अक्टूबर दीतवार ने आपरा विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 139वीं कड़ी वेला। ई सारू आप ही 23 अक्टूबर ताई मुफ्त नंबर 1-800-117-800 माथे राय भेज सको हो। इनरे साथ ही नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम री मार्फत ही आप विचार भेज सको हो। ने अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फिर सुन दे रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपयों 32 विकास परियोजनाओं रो लोकार्पण करियो और नींव धरी। कहो भारत री प्रगति समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक कामयाबियां रो परिचायक है। सर्वोच्च न्यायालय एहलकारा ने शांतिपूर्ण तरीकों भेड़ा व्या लोगों की गैरकानूनी हिरासत रोकण सामान्य आवाजाही और बेरोकटोक इंटरनेट तय करण रा निर्देश दिया। शारदीय नवरात्रा माथे प्रदेश भर में धार्मिक उमाव दुर्गा पूजा और गरबा रा आयोजन री धूम। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस माथे आज राज्य भर में न्यारा न्यारा कार्यक्रम भीया। नरेंद्र साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भी हो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जाएला। नमस्कार।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम भारती।

0: ग्राम भारती कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर। सुने सुनाएं,
1: पीत कांति लाएं,
0: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
1: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
0: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
1: सरसों उपजे शानदार।
0: सरसों खेती का उपचार
1: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
0: खेत पौधे और बीजोपचार।
1: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
0: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार।
1: तब जो आए पीत कांति, होगा हम सबका उद्धार,
0: और प्रदेश की खुशहाली का
1: तब होगा सपना साकार।
2: ग्राम भारती सुनबाड़ा सगला श्रोतावा ने करसा भाई भेणा ने और दूर दराज गांव डाणी में चौपाल सुनती सगली सखी सहेलिया ने मधुनाय की ओर सु जय माता दी। और आपने सागे है आज नरपत भाई, तो नरपत भाई आपने भी जय माता दी।
3: सारा ग्राम वासिया ने नरपत सिंह री राम राम, और मधु बहन आपने भी राम राम।
2: और आज जो छे शारदीय नवरात्रा यानी कि पहलो नवरात्रा को दिन है, घट स्थापना चालू काणी हो रही है और पूरा वातावरण का मायने भक्ति की सुगंध आपने महसूस हो रही है। मंदिरा का मायने, घरा का मायने माता रानी का जयकारा गूंज रहा है। हर घर आंगन में पूजा हो रही है और हर हिवड़ा का मायने माँ का स्वागत की जो उमंगा है ना, वह हिलोरा ले रही है। तो नवरात्रा का पावन पर्व की सगला श्रोताओं ने आपा देवा हार्दिक शुभकामना कि माँ की चरणा में शीश झुकावा, मन में श्रद्धारा दीप जड़ावा, माँ की कृपा अपने सबके सागे रेवे, दूर हो जीवन का कष्ट सारा।
3: बिल्कुल सही बताए थे, शारदीय नवरात्रा जदी थे जय माता जी कर रहे हो।
2: बिल्कुल,
3: क्योंकि शारदीय नवरात्रा बार आपने जो आस्था भक्ति शक्ति का प्रतीक छे, ये आपने देश में बड़े धूमधाम से आप मनाओ भी चाह, अपनी यह धार्मिक त्योहार कौन है, यह भारतीय संस्कृति भी चे, परंपरा भी चे, और सामाजिक एकता को भी प्रतीक चे, जिम आपने धैर्य कठिनाइया और विश्वास के साथ में नारी को सम्मान करा, सत्य धर्म के मार्ग पर चला, बुराई को त्याग करा, ये सारी आपने जो परंपरा चे बी का अकॉर्डिंग अपन कार्य करना चे।
2: अरे परंपरा ने निभावा आगे चला, और अपना जो विशेषज्ञ है बस आप ओलखाण भी करावा, जानकारी भी दिलावा।
0: सुने सुनाए,
1: पीत कांति लाएं,
0: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
1: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
0: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
1: सरसों उपजे शानदार।
0: सरसों खेती का उपचार
1: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
0: खेत पौधे और बीजोपचार।
1: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
0: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार।
1: तब जो आए पीत कांति, होगा हम सबका उद्धार,
0: और प्रदेश की खुशहाली का
1: तब होगा सपना साकार।
2: स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भागीरथ राम, प्रधान वैज्ञानिक भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर सेवर से आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। राई सरसों के बीज उत्पादन तकनीकी एवं शस्य क्रियाओं की जानकारी, इस महत्वपूर्ण विषय पर आज आप हमें जानकारी देंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर भागीरथ राम जी, हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका स्वागत, नमस्कार।
4: बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, मेरा सभी को नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब, वैसे तो राई सरसों के बीजों की जानकारी सबको होती है, मगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो राई सरसों के बीज क्या है?

0: और बीज और अनाज में क्या अंतर है?
1: किसान भाइयों, सामान्य भाषा में बीज पौधे का वह भाग है जिसे बोने पर एक नए पौधे को जन्म देता है। वनस्पति विज्ञान में बीज का अर्थ परिपक्व बीजाणु से है जिसमें स्थित भ्रूण, भ्रूण पोषक तथा बीज पत्रों से संरक्षित या उपस्थित भोजन लेकर प्रारंभिक वृद्धि करता है तथा नए पौधों को जन्म देता है। बीज एक जीवित रचना है जिसमें भ्रूणीय पौधों उत्कों की विभिन्न परतों से ढका हुआ रहता है, सुसुप्त अवस्था में रहता है, जो अनुकूल वातावरणीय परिस्थिति जैसे नमी, तापमान, वायु, प्रकाश की सुलभता से मृदा के संपर्क में आने से पौधा विकसित होता है। और वास्तव में बीज एक सूक्ष्म पौधा है। और बीज और अनाज के बारे में जैसे मैडम ने कहा, तो बीज और अनाज जो है अलग अलग तरह से काम में लेते हैं, अलग अलग इसमें कई तरह की भिन्नताएं हैं। तो सबसे पहली इसमें जो डिफरेंस है, बीज हमेशा जीवित अवस्था में रहता है तथा हवा, नमी और प्रकाश के प्रति जागरूक रहता है, जबकि अनाज या तो जीवित अवस्था में या मृत दोनों अवस्था में हो सकता है तथा हवा, नमी, प्रकाश के प्रति जागरूक होना आवश्यक नहीं है। बीज खाने के रूप में काम में लिया जाता है, परंतु उपचारित बीज को खाने में काम में नहीं लिया जा सकता, जबकि अनाज जो है वो केवल खाने के में काम में लिया जाता तथा उपचारित नहीं कर सकते। बीज में आनुवंशिक शुद्धता, अंकुरण क्षमता एवं भौतिक शुद्धता आदि पाई जाती है, जबकि अनाज में इनका होना आवश्यक नहीं है। बीज सामान्यतः अच्छी अंकुरण क्षमता के लिए स्वस्थ बीज का होना अति आवश्यक है, जबकि अनाज में इसमें असामान्य और कमजोर होना जरूरी नहीं है और अंकुरण क्षमता का जरूरत बिल्कुल नहीं है। बीज के जीवन के अच्छे भंडारण, उच्चतम तापमान, आर्द्रता का होना अत्यंत आवश्यक है, जबकि अनाज में इसके लिए इसका सामान्यतः होना जरूरी नहीं है। और बीज को बनाने के लिए बीज प्रौद्योगिकी विज्ञान और कृषि वैज्ञानिकों के निरीक्षण से देखभाल के रूप में इसको बनाया जाता है, जबकि अनाज सामान्यतः इसमें इसकी जरूरत नहीं होती। बीज उत्पादन में बीज अधिनियम का ध्यान में रखा जाता है और जबकि अनाज में इसकी आवश्यकता नहीं है। किसी भी फसल के उत्पादन की विधि प्रमुखतः उस फसल के परागण की विधि पर निर्भर करती है। राई सरसों वर्ग में स्वयं परागण और पर परागण दोनों ही वर्गों की फसलें सम्मिलित हैं, जिसमें राई, जिसको हम लाहा बोलते हैं, जो कि इस वर्ग की प्रधान फसल है, उसमें हमेशा स्वयं परागण तथा तोरिया, जो कि कम समय में पक के तैयार होता है, उसमें पर परागण की प्रक्रिया पाई जाती है। अतः इन दोनों वर्गों में बीज उत्पादन की दृष्टि से अलग अलग विधियां विकसित की गई है।
0: डॉक्टर साहब, बीज और अनाज का जो अंतर आपने इतनी गहराई से और विस्तारित रूप में आपने बताया है, उम्मीद है कि सभी किसानों को ये समझ में आया होगा कि अनाज और बीज में क्या अंतर है। श्रेष्ठ बीजों की जब हम बात करते हैं तो राई और सरसों के उत्तम बीजों की कौन कौन सी श्रेणियां हैं और बीज उत्पादन तकनीक क्या है, किस तरीके से हमारे किसान भाई इसे अपनाएं?
1: किसान भाइयों, उत्तम बीज 4 श्रेणियों में बांटा गया है और इसकी उत्पादन तकनीकी जो है वो अलग अलग होती है। अलग अलग बीज की अलग अलग इसकी सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है। तो सबसे नंबर 1 हम बात करते हैं प्रजनक बीज, ब्रीडर सीड, जो उच्च आनुवंशिक शुद्धता एवं समरूपता वाला बीज जो संबंधित फसल के पादप प्रजनन की देखरेख में न्यूक्लियस सीड से तैयार किया जाता है और इस बीज की थैली व कट्टे पर सुनहरी रंग का टैग लगा रहता है। और दूसरे नंबर का बीज है फाउंडेशन सीड, आधारित बीज प्रजनक बीज से उत्पन्न किया जाता है। इसे बीज निगम संस्थाओं के प्रक्षेत्रों पर आइसोलेशन डिस्टेंस व अन्य सावधानियों को ध्यान में रखते हुए उगाया जाता है और इस प्रकार की बीज की थैली पर कट्टे पर सफेद रंग का टैग लगा रहता है। फिर तीसरे नंबर की श्रेणी में प्रमाणित बीज आता है। प्रमाणित बीज आधारित बीज से तैयार किया जाता है और इसे आधारित बीज से पंजीकृत जो रजिस्टर्ड किसान होते हैं, प्रश्न उसके जो जो जो सरकारी फार्म है, रजिस्टर्ड फार्म है, उनके यहाँ किसानों और बीज के नियमों की पालना करते हुए उसमें उत्पन्न किया जाता है और प्रमाणित बीज ही किसानों को बुआई हेतु दिया जाता है। और इस प्रकार की बीज की थैली कट्टे पर नीले रंग का टैग लगा रहता है। फिर चौथे नंबर का सीड है ट्रूथफुल लेवल सीड, सत्य चिन्हित बीज का उत्पादन किसानों या प्राइवेट संस्था के बिना किसी प्रमाणीकृत संस्थाओं की देखरेख में आप पैदा कर सकते हैं, जिसे प्रमाणीकृत संस्था का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती और ये बीज सत्य चिन्हित बीज कहलाता है और ये बीज प्रमाणित बीज जैसा ही शुद्ध होता है। और उत्तम बीज की जो खास बात है, वो उत्तम बीज जो भौतिक शुद्धता मानकों के अनुसार होना चाहिए, बीज की अंकुरण क्षमता है वो 85% से अधिक होनी चाहिए, बीज की जीवन क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, बीज सुडोल आकार का रंग आकृति में समान होना चाहिए और बीज की जो रोगाणु कीटाणु रहित होना चाहिए, बीज हमेशा डोरमेंसी अवस्था में नहीं होना चाहिए, बीज अधिक उपज हाई यील्डिंग सीड होना चाहिए, बीज विपरीत दशाओं के प्रति रोग रोधी क्षमता रखने वाला होना चाहिए और बीज पूर्ण रूप से जो उसकी मेच्योरिटी पीरियड है वो बिल्कुल सेम रहना चाहिए, एक तरह से यूनिफॉर्म मेच्योर होना चाहिए। और बीज उत्पादन तकनीकी जैसे हम चर्चा कर

0: ते हैं, तो बीज का स्रोत का नियंत्रण का सबसे पहले किसान भाई ध्यान देवे। तो बीज उत्पादन के दौरान ये आवश्यक है कि बीज उपयुक्त स्रोत से लिया जाना चाहिए, जिससे शुद्धता के साथ साथ उसकी वंशावली वर्ग का ज्ञात रहे। और दूसरी प्रमुख बात है खेत का चुनाव कैसे करें। तो ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें पिछले 3 वर्षों से रई सरसों की फसल नहीं ली गई हो, और यदि फसल ली है तो ऐसी किस्म लेवे जिसका आप सीड प्रोडक्शन पहले से ले रहे हैं, या सीड प्रोडक्शन या उस खेती जो है उसी वेराइटी की होनी चाहिए। तीसरी प्रमुख बात है रई सरसों की अन्य खेतों की दूरी, खासतौर से जो आइसोलेशन डिस्टेंस है, इसका बहुत बड़ा महत्व है रई सरसों के बीज उत्पादन में। तो खेत के चुनाव समय ये ध्यान रखना आवश्यक है कि बीज उत्पादन वाला जो रई सरसों का खेत है वो अन्य रई सरसों के खेतों से एक निश्चित दूरी पर होना अत्यावश्यक है, और उत्पादन के खेतों की दूसरी दूरी निर्धारित करने के लिए परागण की प्रक्रिया पर विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। अगर सेल्फ पोलिनेटेड है, जैसे अगर आधारी सीड अगर फाउंडेशन सीड अगर आपको प्रोड्यूस करना है, तो उस केस में आपको 100 मीटर की दूरी एक खेत से दूसरे खेत की दूरी रखनी चाहिए, और प्रमाणित बीज के केस के अंदर आप कम से कम 50 मीटर की दूरी रखें, और ब्रीडर सीड के केस में आप कम से कम 200 मीटर की दूरी रखें। चौथी इसमें खास बात है रोगिंग, जो बीज फसल क्षेत्र से समय समय पर अन्य किस्मों के बीज को निकालते रहना चाहिए, जिसमें परागण रोगों के प्रसार से बीज खराब ना हो पाए। ऐसे पौधों को जड़ों से उखाड़कर कहीं दूर ले जाकर गड्ढे में दबा देना चाहिए, और ऐसे पौधों की ऊंचाई, रंग, आकार आदि के आधार पर पहचाना जा सकता है और रोगिंग के माध्यम में आपसे उसको हटा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसी भी फसल की हम खेती करें, अगर हमारे खेत में या हमारी फसल में कीट रोग व्याधियां आ गई है, तो इसका सीधा असर हमारी पैदावार में, हमारे उत्पादन पर पड़ता है। तो बात हम राई सरसों की कर रहे हैं, तो राई सरसों में ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं या ऐसी कौन कौन सी व्याधियां हैं जिससे हमारी फसलों पर प्रभाव होता है? राई सरसों में हम कीटों का और व्याधियों का कैसे नियंत्रण करें, ये भी आप बताएं।
0: मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमको ध्यान में रखना है कि इसमें कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा बीमारी हमारे राजस्थान के कंडीशन में आती है सफेद रोली रोग, जो सरसों की एक गंभीर समस्या है, जो पत्ती व स्टेक हेड के द्वारा एक सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है। इसमें पत्ती के बाहरी भागों में जड़ के अलावा पौधों पर भूरे रंग के धब्बे, माइसिलियम की वृद्धि हो जाती है, जिससे पत्ती के निचले हिस्से पर सफेद या क्रीमी येलो कलर के पस्टूल डेवलप हो जाते हैं, और ये फरवरी माह में दिखाई देने लग जाते हैं, जिसमें जो टॉप ब्रांचेज हैं उसमें सबसे ज्यादा होते हैं, जो जिनके जो इन्फेक्टेड इन्फ्लोरेसेंस है वो स्टेक हेड में परिवर्तित हो जाते हैं, और जो फूल जो है वो स्टराइल रह जाते हैं और दाने छोटे रह जाते हैं। दूसरी प्रमुख बीमारी है अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया ब्लाइट तभी आती है जैसे हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा हो जाती है। तो इस बीमारी से पौधे की पत्ती के नीचे हिस्से पर व तने पर कंसेंट्रिक रिंग बन जाती है, और ज्यादा इसका इन्फेक्शन होने के समय फली पर दबे पड़ जाते हैं, परिणाम स्वरूप बीज की उपज कम रहती है और कहीं ना कहीं उसके जर्मिनेशन परसेंटेज कम रहती है। तीसरी प्रमुख बीमारी है किसान भाइयों बैक्टीरियल ब्लाइट। इस बीमारी से पत्ती के निचले हिस्से पर वी शेप के घाव पड़ जाते हैं, और ये खास तौर से अर्ली स्टेज में सबसे ज्यादा होती है। जैसे आप फसल की बुआई करते हैं तो उस टाइम इसकी प्रकोप ज्यादा संभावना रहती है, यानी पौधा बिल्कुल छोटा होता है उस समय इस बीमारी का प्रकोप ज्यादा दिखाई देता है, और पौधे की पत्तियां जो है वो गिरना शुरू हो जाती है। फिर चौथी प्रमुख बीमारी है तना गलन, स्क्लेरोटिनिया स्टेम रोट। इस बीमारी के लक्षण खासतौर से स्टंटिंग ग्रोथ रहती है, और समय से पहले ही पौधा जो है वो विल्टिंग के माध्यम से पौधा खड़ा खड़ा ही सूख जाता है, परिणाम स्वरूप तने में ग्रेस व्हाइट और जो ब्लैक स्प्रिगल टाइप के स्कोलोशिया डेवलप हो जाते हैं, जो तने के पिट में जमा हो जाते हैं और पौधा सूख के गिर जाता है। फिर उसके सुरक्षित क्या क्या उपाय हैं, तो मैं इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। तो खासतौर से सबसे प्रमुख बात है गर्मी में खेत की गहरी जुताई करें, जिसके माध्यम से जो सॉइल बॉन्ड जो पैथोजन है और खरपतवार है वो आपके मर सकते हैं। और सरसों की बुआई खासतौर से आप 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में करें, जिससे सरसों की बीमारियां कम से कम आएगी। सरसों की बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। सरसों की फसल जब 60 दिन की हो उस समय पौधे के नीचे की जो पत्तियां हैं 50 दिन पे उसमें आप वैसे उसको तोड़ देवें, जिससे बीमारी नहीं फैलेगी और पैदावार भी अच्छी होगी। फिर इसमें प्रमुख बात है कि पौधे की बीमारी वाले जो स्टेक हेड है, खासतौर से जो वाइट ट्रस्ट के अंदर,

0: और डाउनी मिल्ड्यू में, उनको आप तोड़ के नष्ट कर देवें। और सरसों की बोई से पहले सीड ट्रीटमेंट जरूर करें। सीड ट्रीटमेंट खासतौर से मेटल एक्सेल का एप्रोन 35 SD का 6 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से आप सीड ट्रीटमेंट करें तो निश्चित रूप से आपकी कम से कम बीमारियां होगी। और फसल के 50 से 70 दिन के होने पर आप मैंकोजेब 75 WP एट द रेट ऑफ 0.2% के हिसाब से आप जो इसका स्प्रे करें, छिड़काव करें, जिससे सफ़ेद रोली रोग और बैक्टीरियल ब्लाइट का प्रकोप बिल्कुल नहीं होगा। और अगर संभव हो तो सरसों की फसल के बाद में क्रॉप रोटेशन गेहूं या जौ का करें, जिससे आपको रोगों का प्रकोप कम से कम होगा। और सरसों में 2 सिंचाई से ज़्यादा नहीं देवें और पानी बिल्कुल हल्का देवें, पतला देवें और पानी कम से कम देवें, जिससे तना गलन की बीमारी जो है वो कम से कम होगी। और सरसों की बुआई जो है वो 3 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर गहरी करें। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो फसल सुरक्षा की जो समस्या है वो कम से कम रहेगी।
1: बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी। राई सरसों की बीमारियों से निजात पाने के साथ साथ आपने उन्नत विधि भी बताई, किस तरीके से हम उन्नत विधि अपनाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, फसल कोई भी हो, उसका जो बाजार मूल्य है उसकी गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित होता है। अब जब बात राई सरसों की है तो राई सरसों के बीज की गुणवत्ता कैसे हम नियंत्रित रखें और इसका शस्य क्रियाओं के साथ क्या संबंध है, तो शस्य क्रियाएं कौन कौन सी हैं?
0: किशन भाइयों, बीज उत्पन्न प्रोग्राम में ये ध्यान देने योग्य बात है कि हमेशा बीज की गुणवत्ता को हमेशा बनाए रखना जरूरी है। और बीज की फसल की बुआई की से लेकर विपणन तक संतुलन तक सभी कारकों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको बीज की अच्छी क्वालिटी के लिए आपको अच्छे हमेशा बिल्कुल वैसे दिमाग में रखना पड़ेगा। तो सबसे प्रमुख बात है बीज उत्पादन के दौरान तो गुणवत्ता नियंत्रण आप कैसे करें, तो बीज मान्यता प्राप्त संस्थान से ही ले। खेत के चयन समय ऐसे करना चाहिए जिसमें पिछले 3 वर्षों में फसल नहीं ली गई हो। आइसोलेशन डिस्टेंस का आपको ध्यान में रखना है। फसल सुरक्षा का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अवांछनीय पौधों को जैसे मैंने पहले चर्चा की थी वो आपको निकालना है। कटाई के समय जो मैच्योरिटी पीरियड पे आपको वैसे ढंग से कटाई करनी है। और बीज उत्पादन के जो सामान्य सिद्धांत हैं, खासतौर से बुआई के समय जो तोरिया की बुआई आप खासतौर से सितंबर में के द्वितीय पखवाड़े में कर सकते हैं और सरसों की बुआई जो अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में करें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी मैंने आपको पहले बताया 45 सेंटीमीटर पर रखें। और उर्वरक जो फर्टिलाइजर है वो आप 80, 40 और 60, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश के प्रति हेक्टर के हिसाब से मात्रा से जो रिकमेंडेड डोज है वही देवें। और बीज उत्पादन हेतु 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की के हिसाब से जिंक सल्फेट का प्रयोग जरूर करें। सल्फर प्रदान करने हेतु जो 20 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से सल्फर प्रयोग आप कर सकते हैं, जो जिप्सम के द्वारा आप दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सिंगल सुपर फॉस्फेट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, और क्योंकि इसमें 12% सल्फर पाई जाती है। सरसों में खाद का निश्चित एक तरह से बैलेंस फर्टिलाइजर आपको देना है, ज़्यादा आपको फर्टिलाइजर नहीं देना है। और अगर मोटी मोटी अगर बात करें तो अगर 1 एकड़ में आप 100 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट देवें, 70 किलो यूरिया देवें और 1.5 किलो आप बीज देवें। यूरिया का जो आधा डोज है वो पहली सिंचाई पे देवें और आधा डोज जो है ना वो बेसल डोज आप दे सकते हैं। और फिर उसके बाद में अवांछनीय पौधों को निकाल सकते हैं। फसल सुरक्षा का ध्यान रखें और इसमें खासतौर से जो निरीक्षण है वो आप जरूर करवाएं। जो हमारे जो रजिस्टर्ड फार्म हैं, वैज्ञानिकों टीम से अनुभवी व्यक्तियों द्वारा फूल आने से पूर्व, फूल आने के बाद में आप उसका निरीक्षण जरूर करवाएं और उस निरीक्षण का जरूर आप सुनिश्चित करें। फिर उसके बाद में कटाई और मड़ाई जो है वो खासतौर से फसल की कटाई फलियां पीली पड़ने के साथ ही कर देनी चाहिए। और अधिक नमी अवस्था में फसल काटने से गहाई व सफाई करने में क्षति होती है और कवक व कीड़ों की प्रकोप जल्दी बढ़ सकता है, जिसमें अंकुरण क्षमता प्रभावित हो सकती है। ध्यान देने की बात यह है कि प्रथम चारों ओर से 1 मीटर किनारे के पौधों को काटकर आप अलग से रखें, उनकी अलग से मड़ाई करें, उनका अलग से रखें। फिर उसके बाद में मड़ाई से पूर्व थ्रेसर की सफाई अवश्य करें और घाई जो मशीन की जो कटाई करते हैं मशीन में मजदूर से पहले उसकी सफाई करें, ये बिल्कुल आपको और जिससे इससे आपको जो मैकेनिकल जो डैमेज है वो कम से कम होगा। और प्रोसेसिंग के टाइम पे ये ध्यान दें कि आप जो ग्रेडिंग मशीन है उसका जो ऊपरी छला है गोल वो 3.5 और 3.75 mm व्यास वाला होना चाहिए और निचला छला जो छला बोलते हैं 0.9, 1, 1.5 और 1.4 mm वाला हो। और ग्रेडिंग के लिए विकसित जो किस्म है उसके प्रकार पर डिपेंड करता है, एक

0: जो जो वेराइटियाँ जैसे बॉल सीडेड हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग से ले हुए, और इन सब बातों छोटी छोटी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आपका जो सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा रहेगा, क्वालिटी बढ़ा रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं कि अलग अलग बीजों में हमें बहुत सारे अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलते हैं, राई सरसों बीज के क्या क्या मानक हैं?
0: किसान भाइयों, ये मैडम ने बहुत अच्छा सवाल किया था कि आपको स्टैंडर्ड जो है सीड स्टैंडर्ड जो मिनिमम सीड सर्टिफिकेट स्टैंडर्ड है वो आपको मालूम होने चाहिए। खासतौर से राई सरसों के केस में, सरसों के शुद्ध बीज जो है उसमें आधारित बीज के केस में 97% जो है वो उसकी जेनेटिक प्योरिटी रहनी चाहिए, और सर्टिफाइड सीड में 97%, और जो बाह्य पदार्थ हैं अधिकतम वो 3% तक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फाउंडेशन आधारित बीज, फाउंडेशन सीड में और सर्टिफाइड सीड में 3-3%, और अन्य बीज जो है वो 10 बीज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 किलोग्राम में, आधारित बीज में और प्रमाणित बीज में 20 बीज तक हो सकते हैं, और कुल खरपतवार के बीज जो है वो 10 बीज से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं आधारित बीज में, और 20 बीज से ज़्यादा नहीं हो सकते प्रमाणित बीज में, और अंकुरण क्षमता जो है जर्मिनेशन परसेंटेज है वो 85% से अधिक होनी चाहिए आधारित बीज में और सर्टिफाइड सीड में, और नमी की मात्रा जो है वो 8% से ज़्यादा नहीं हो आधारित बीज में और सर्टिफाइड सीड में, और नमी खासतौर से आपको ध्यान में रखनी है, और भंडारण हेतु जो वाष्प रहित कंटेनर है उसमें आप 3% के हिसाब से अगर आधारित बीज में आप इसमें जैसे कंटेनर में डालें तो 3% तक आप रखें, प्रमाणित बीज में 5% तक, और बीज संसाधन जो कटाई के समय बीजों की नमी प्रतिशत मात्रा अधिक सभी का आप बिल्कुल ध्यान में रखें, इन सब बातों का ध्यान में रखें तो निश्चित रूप से आपकी जो सीड की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी रहेगी, और फिर उसमें बोराबंदी आप कर सकते हैं।
1: डॉक्टर भागीरथ राम, प्रधान वैज्ञानिक, भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर सेवर से आज आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में अपने कीमती समय से समय निकाल कर आए हैं, राई सरसों के बीज उत्पादन तकनीकी एवं शस्य क्रियाओं की जानकारियां आज आपने हमारे श्रोताओं को और किसान भाई बहनों को दी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
2: सुने सुनाए,
3: पीत कांति लाए,
2: उन्नत तकनीकें अपनाए,
3: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
2: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
3: सरसों उपजे शानदार,
2: सरसों खेती का उपचार
3: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
2: खेत पौधे और बीजोपचार,
3: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
2: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार,
3: तब जो आए पीत कांति होगा हम सबका उद्धार,
2: और प्रदेश की खुशहाली का
3: तब होगा सपना साकार।
4: बहुत ही चौकी जानकारी दिलाया डॉक्टर भागीरथ राम जी से, तो मधु बहन आपको गणो गणो धन्यवाद, और डॉक्टर साहब था को भी, तो आपा कोरो कोरो धन्यवाद, कुंदिया सुना दे एक चौको सो गीत।
5: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
6: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
5: वो कैसे?
6: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
5: कॉल 1800 1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।

0: सुने सुनाए,
1: पीत कांति लाएं,
0: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
1: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
0: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
1: सरसों उपजे शानदार।
0: सरसों खेती का उपचार
1: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
0: खेत पौधे और बीजोपचार।
1: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
0: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार।
1: तब जो आए पीत कांति, होगा हम सबका उद्धार,
0: और प्रदेश की खुशहाली का
1: तब होगा सपना साकार।
2: तो बहुत बढ़िया जानकारी अपना कार्यक्रम में आज डॉक्टर भागीरथ राम जी दिया, और देखो आपा जानकारी भी ले लिया और माता जी को भजन भी सुन लिया, क्योंकि आज घट स्थापना छे और हर घर घर में माता रानी को जो छे जयकारो आज गूंज रहे छे। तो ई जयकारा के साथ ही आज घड़ी की सुइयां जो है वह इशारो करिए कि कार्यक्रम ग्राम भारती को टाइम अठे पूरा होते जा रहे हो। तो अगला कार्यक्रम जो कि खेती बाड़ी में आपा उजू मिल छा अपना करसा भाई बहना के साथ गए, तो ग्राम भारती में दियो आ गया मधु नायक ने
3: और नरपत सिंह ने
2: चाला और करा
3: राम राम सा।
0: ग्राम भारती कार्यक्रम के प्रायोजक थे सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर। सुने सुनाए,
1: पीत कांति लाएं,
0: उन्नत तकनीकें अपनाएं,
1: सरसों का उत्पादन बढ़ाएं।
0: सुनो किसानों, चाहे खेत हो बेकार,
1: सरसों उपजे शानदार।
0: सरसों खेती का उपचार
1: बढ़ाने, सरसों की पैदावार,
0: खेत पौधे और बीजोपचार।
1: सुनते रहो ये कार्यक्रम,
0: अपना कर उन्नत तकनीकें, बढ़ाओ सरसों का व्यापार।
1: तब जो आए पीत कांति, होगा हम सबका उद्धार,
0: और प्रदेश की खुशहाली का
1: तब होगा सपना साकार।

अभी श्रोता सुन रहे थे जयपुर से स्पॉन्सरशिप कार्यक्रम ग्राम भारती। ये आकाशवाणी अलवर का सर इसका चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में पहली पेशकश ली है हमने सौदागर फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया है और आवाज़ है कविता कृष्णमूर्ति की।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: और आइए श्रोताओं सुनते हैं आशा भोसले और सुरेश वाटेकर को फिल्म सत्या में, विशाल का संगीत और गुलजार के बोल।

और आइए श्रोताओं, सुनते हैं सत्ते पे सत्ता फिल्म का ये गीत, आशा भोसले, किशोर कुमार और आर डी बर्मन का संगीत। संगीत दिया है आर डी बर्मन ने, फिल्म का नाम सत्ते पे सत्ता।

0: जाए
1: अटक गया
2: क्यों
1: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
3: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
0: दुखी बेदुखी

0: अभी आपने सुना आशा भोसले, किशोर कुमार और आर डी बर्मन को फिल्म सत्ते पे सत्ता फिल्म में। आइए अगला नगमा सुनते हैं सरफरोश फिल्म का, आमिर खान और अलका याग्निक की आवाज।
1: बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
2: बिल्कुल आती है, सुनाओ।
1: सुना।
2: अर्ज है, दवा भी काम ना आए, कोई दुआ ना लगे। दवा भी काम ना आए, कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: अभी आपने सुना आमिर खान और अलका याग्निक को फिल्म सरफरोश में। आइए श्रोताओं, अगला नगमा सुनते हैं संजोग फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

अभी आपने सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ गीत, जिसे लिया था हमने संजोग फिल्म से। आवाज़ थी लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं सनम फिल्म का एक गीत, जिसे गाया है अलका याग्निक और कुमार शानू ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सनम फिल्म में अलका याग्निक और कुमार शानू को। आइए श्रोताओं, सुनते हैं सनम तेरी कसम फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और आर डी बर्मन ने।

अभी आपने सुना आशा भोसले और आर डी बर्मन को फिल्म सनम तेरी कसम में। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत FM बैंड 103.1 MHz पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत। आज के फनकार हैं माता दीन

0: और साथी, लेकिन पहले सुने संदेश।
1: जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई। मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: आई श्रोता, हम सुनते हैं पहली पेशकश माता दीन और साथियों को, सरसों में फूल, पीला फूल।

0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
1: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
1: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
1: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
1: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
2: कुष्ठ रोग का इलाज संभव है।
3: त्वचा पे हल्के रंग का सुन्न दाग, उंगलियों का सुन्न होना, हाथ पैरों में कमजोरी, चीजें उठाने में तकलीफ, इनमें से कोई भी लक्षण दिखते ही तुरंत जांच करवाएं। जल्दी जांच और MDT से पूरा इलाज कुष्ठ रोग और विकलांगता से बचा सकता है।
2: लेप्रसी की जांच एवं इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। हम सबका है ये सपना, कुष्ठ रोग मुक्त भारत हो अपना।
4: स्वास्थ्य विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोता सुन रहे हैं लोकगीत और आज के फनकार हैं माता दीन और साथी। आइए सुनते हैं उनकी गाई अगली प्रस्तुति।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: श्रोता सुन रहे हैं माता दीन और साथियों के गए लोकगीत। अगली लोक प्रस्तुति गुलाबी रंग डाल जाए वो।

0: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
1: क्या हो गया ऐसा?
0: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
1: ये कमाल कैसे हो गया?
0: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
1: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
0: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: श्रोता सुन रहे हैं माता दीन और साथियों के गए लोकगीत। अगली लोक प्रस्तुति गुलाबी रंग डाल जाए वो।

श्रोता सुन रहे हैं माता दीन और साथियों के गाए लोकगीत। आइए सुनते हैं उन्हीं की गाई अगली प्रस्तुति।

काई उठे आंधी रेड़ा में, अरे मारा बीजना की डांडी खेचे चाले मेड़ा।

माता दीन और साथियों के गए इसी लोकगीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सर इसका चैनल है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की

0: टिप्पणियां खारिज की, इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। नेपाल की बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ से गोरखा जिला प्रभावित, अब तक 80 लोगों को बचाया गया और 5 लापता। काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडिया चाहिए, जो नए सॉल्यूशन चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दोज सॉल्यूशंस।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे। बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
1: भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। हम 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट भारत में होंगे, इसलिए भारत के युवाओं के पास अब प्लेटफॉर्म भी है, पोटेंशियल भी है और सपोर्ट भी है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियां खारिज कर दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि

0: तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
1: We have seen certain remarks.
2: हमने कल की घटनाओं के बारे में मानवाधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय की कुछ टिप्पणियों को देखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है। हमारे मजबूत संस्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।
1: पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोइजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए।
3: जेएनयू ने पॉश एक्ट के तहत एक इंटरनल कमिटी बिठाई। इस कमिटी ने तमाम सबूतों, तमाम विटनेसेस और तमाम सर्वाइवर्स की विटनेस टेस्टिमनी के बाद, सारे के सारे तथ्यों की जांच करने के बाद तुरंत बिमोल अकोइजम को नौकरी से बर्खास्त किया। फेमिनिज्म कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक हैशटैग से शुरू होता है और जवाबदेही की दहलीज पर आकर समाप्त हो जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज विशेष श्रृंखला में बात औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए की जा रही पहल की।
4: पिछले कुछ वर्षों में सरकार धीरे धीरे भारत से ब्रिटिश शासन की निशानियों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों यानी पंच प्रण की घोषणा की थी। दूसरे प्रण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि उनके मन के सबसे गहरे कोने या उनकी आदतों में भी गुलामी का कोई अंश नहीं होना चाहिए।
5: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहाँ हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
4: देश को उपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने और एक अलग भारतीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने पुराने ध्वज जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था की जगह वर्ष 2022 में अपना नया ध्वज अपनाया। सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। इसके साथ ही वर्ष 1924 से चली आ रही एक परंपरा समाप्त हो गई। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा,
6: वी लिव्ड एज अ नेशन, हम कम से कम 5000 वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जी रहे हैं। इतने लंबे इतिहास में हमने एक महान राष्ट्र, महान इतिहास, महान स्मारक, महान ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं। वे सहस्त्राब्दियों से भारत की पहचान रही है। महान पहचान आज यही हो रहा है, यही वह है जिसे हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति कहते हैं,
1: डीकॉलोनाइजेशन।
4: सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंधित साहित्य को फिर से सामने लाने का भी प्रयास किया है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की एक सूची तैयार कर रहा है। ये सभी पहल एक ऐसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र उत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया।

देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि

0: देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा लोगों को आत्मानुशासन और नैतिक मूल्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। ये महोत्सव नारी के सामर्थ्य, साहस और दृढ़ता में विश्वास को मजबूत करता है। भारत में त्योहारी खरीदारी सीजन की शुरुआत जोरदार रही। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने फेस्टिव सीजन में पहले दो दिनों में करीब 24,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस दौरान लोगों ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों और फैशन उत्पादों की जमकर खरीदारी की। त्योहारी सीजन के पहले दो दिन की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ के बाद अब तक 9 विदेशी नागरिकों सहित 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोग अब भी लापता हैं। आज सवेरे लगभग 4 बजे आई बाढ़ में घर और पुल बह गए और कई जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर आपातकाल लागू किया। इस कदम से पाकिस्तान की संघीय सरकार को मुख्य कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने दोनों देशों से समझौते का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने ही युद्ध विराम पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास घायल 11 भारतीयों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दूतावास उनकी सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। इंदौर में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 224 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट पर 223 रन बनाए। अब शर्मा ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने के साथ बरसात होने और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की। इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। और काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches development projects worth over 13,000 crore rupees in Tamil Nadu, stresses India's progress draws strength from rich cultural heritage and scientific achievements. Prime Minister Modi asserts India offers immense opportunities for youth, urges them to realize their potential for nation's development. Supreme Court directs authorities to ensure unrestricted movement of people and peaceful gatherers are not illegally detained. India rejects UN Rights Body's remarks on New Delhi events,

कार्यक्रम के अंत में सुनिए आरडी बर्मन, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में महान फिल्म का गाना, गीत अनजान का है, संगीत आरडी बर्मन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम
1: पूरे हिंदुस्तान भर से।

0: आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार।
1: कौन हो तुम?
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती।
0: अगर आप दोबारा पूछेंगे कौन हो तुम, तो वो कहेंगे
1: विजय दीनानाथ चौहान। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन, 16 घंटा चलवे।
0: सारी दुनिया को रहता है उनका इंतजार।
3: राउंड का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
0: वो सब तो ठीक है भाई साहब, पर क्या आपको इंग्लिश आती है?
4: नो कर लो बात। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज।
0: लोग उनको छोरा गंगा किनारे वाला कहते हैं।
5: छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खाई के पहन बनो रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला।
0: भाई हमने आज ये सोचा कि हम अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो आपको पता है। हम ये भी नहीं बताएंगे कि उन्होंने फिल्म जंजीर से एंग्री यंग मैन की अपनी पारी को शुरू किया था। हम ये भी नहीं बताएंगे कि एक के बाद एक उन्होंने बहुत सारी कामयाब फिल्में दी हैं। बल्कि हम तो आज अमिताभ बच्चन के डायलॉग दर डायलॉग, डायलॉग दर डायलॉग आपको सुनवाएंगे। ये वो डायलॉग हैं जो आपके जहन में ताजा हैं, और इनके जरिए आप अमिताभ की अभिनय यात्रा से होकर गुजरेंगे।
6: हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ। 1 1 2 2 1 1 2 2 3 4।
0: सबसे पहले चलते हैं ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद की तरफ। ये फिल्म साल 1971 में आई थी, और अमिताभ बच्चन की आवाज से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये उनके शुरुआती दौर की फिल्म थी।
7: मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे, दिन न भी पानी में हो रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको।
0: हम इस साल की दो महत्वपूर्ण फिल्मों की बातें करेंगे। पहले अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के सामने वाला सीन, फिल्म नमक हराम।
8: विकी, किस साले ने 100 रुपए हाथ उठाया? बोलो कौन है वो माइकल लाल जो अपनी माँ का दूध आजमाना चाहता है? राजा सामने कुत्तों कमीनों, आप हाथ उठा के दिखाओ। आओ एक एक की खाल ना खिंचवादी तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं, ये सारा मोहल्ला जला के राख कर दूंगा, समझे?
0: इसके बाद आ जाइए साल 1973 की तरफ, प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर, जहां से अमिताभ बच्चन का असली सफर शुरू होता है।
9: तुम्हारा नाम शेर खान है?
10: इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर अब मुलाकात हो गई।
9: जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।

0: आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी ये कुर्सी नहीं होगी उस दिन तुम
1: नहीं साहब।
2: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं।
0: मतलब कब बात बोलूं साहब?
3: जैसे जैसे अमिताभ बच्चन आगे की फिल्में करते गए उनकी आवाज पहले की बजाय ज्यादा कड़क होती चली गई और संवादों की अदायगी का दम बढ़ता चला गया।
2: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।
4: क्यों?
2: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
3: 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी यश चोपड़ा की फिल्म दीवार। इसी साल अगस्त के महीने में आई रमेश सिप्पी की फिल्म शोले, जिसमें जय और वीरू की जोड़ी थी। और जरा देखिए जय वीरू से अपनी दोस्ती किस कदर निभा रहा है और मौसी से कह रहा है,
5: कमाने का तो

0: दम बढ़ता चला गया।
1: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।
2: हाँ, क्यों?
1: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी यश चोपड़ा की फिल्म दीवार। इसी साल अगस्त के महीने में आई रमेश सिप्पी की फिल्म शोले, जिसमें जय और वीरू की जोड़ी थी। और जरा देखिए, जय वीरू से अपनी दोस्ती किस कदर निभा रहा है और मौसी से कह रहा है,
3: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
4: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
3: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
4: हार जाता है?
3: हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
4: तो क्या जुआरी है?
3: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष।
4: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
3: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी।
4: अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
3: मौसी आप वीरू को नहीं जानते, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
4: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
3: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं।
4: तुम्हारे गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
3: बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
0: भला सन 1975 से आगे हम कैसे जा सकते हैं, जब तक कि हम इस खास सीन का जिक्र ना कर लें। आज इतने बरस बाद भी अमिताभ बच्चन के चाहने वालों को ये डायलॉग जबानी याद हैं।
5: आज खुश तो बहुत हो गए तुम। देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो गए तुम, बहुत खुश हो गए कि आज मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूं, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है, और ये तुम्हारी हार है। ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म यह है कि वो मेरी माँ है? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म यह है कि मैं उससे प्यार करता हूं? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है उसे? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी मां सुहागिन होती हुई विधवा बनी रही, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज आज मांगता हूं। मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करना जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी मां मुझे वापस दे दो।
0: इस जज्बाती सीन के बाद जरा वो सीन सुन लीजिए जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके से हमने लिया है। अमिताभ बच्चन का बिल्कुल अलग रंग जो उन्हें बड़ा एक्टर बनाता है।
6: आइए आइए प्रेमल बाबू।
5: मजाक मत कीजिए भैया, मैं ये तमाशा करते करते तंग आ गया हूं, आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगा।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: अरे जो होना चाहिए था वो तो हो नहीं रहा है, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। आप लोग तो समझने की कोशिश ही नहीं करते ना।
6: अरे भैया, कभी कभी दो बातें ना होते हुए भी हो जाती हैं, और जो नहीं होती हैं वो कभी कभी होके भी
7: मेरे ख्याल से तुम रहने दो।
5: ओ सुनो तो सही।

0: मैं वसुधा को पढ़ाने जाता हूँ मैं बन के नहीं तुम बन के, और तुम बन के जो कहता हूँ वो समझती है। मैं कह रहा हूँ कहता मैं ही हूँ, कहता मैं ही हूँ, लेकिन वो मैं जो तुम और वो तुम जो मैं, यानी मैं जो तुम के क्या बकरी की तरह मैं लगा रखी है। सीधी तरह बात करना,
1: सीधी तरह कहां से करूं,
0: और तो तेरी तुम लोगों ने कर रखा है ना। देखो भैया मैं तो सुकुमार हूं ना, लेकिन वहां जब जाता हूं तो सुकुमार नहीं हूं, परिमल हूं ना। हाँ। और परिमल शादी शुदा है वसुधा के लिए, हूं ना,
2: हूं ना नहीं है ना।
0: हाँ है ना। हाँ। इसलिए जब मैं अपनी बात यानी सुकुमार की दिल की बात कहना चाहता हूँ तो वो समझती है कि परिमल जो कंबक शादी शुदा है,
2: कंबक क्या
0: परिमल जो शादी शुदा है वो कह रहा है। इसलिए बजाय मेरे दिल की बात समझने के वो मुझे परिमल समझ के कैरेक्टरलेस यानी चरित्रहीन समझती है, मुझसे नफरत करने लगी। और ये तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझसे नहीं बोलूंगा।
2: तो ये कहना अपने दिल की बात बीच में घुसेड़ कर सब गड़बड़ कर रहा है।
0: नहीं बोलूंगा अपने दिल की बात,
3: नहीं तुम्हें अपने दिल की बात करने का कोई हक नहीं। मत भूलो कि तुम इस ड्रामे में सिर्फ एक एक्टर हो और वही करोगे जो डायरेक्टर कहेगा।
4: जी हाँ बिल्कुल, अमिताभ बच्चन ने वही किया जो डायरेक्टर ने कहा और लेखक ने लिखा। इसीलिए अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन ये कारनामा करते नजर आए।
5: You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of the Ron Babasate.
6: My name is Anthony Gonsalves.
7: What's that? This?
6: Right. My name is Anthony Gonsalves. मैं दुनिया में अकेला हूँ।
4: अमिताभ बच्चन जैसा नायक दुनिया में अकेला ही होता है, फिर चाहे उसका नाम एंथनी गोंसाल्विस हो, डॉन हो या विजय। साल 1978, त्रिशूल।
8: मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए कि जो काम दूसरों ने 25 बरस में किया है मुझे एक बरस में करना है। दुनिया में कम लोग हैं जो दूसरों की कामयाबी से खुश होते हैं। मैं सोचा था पता नहीं आ पाएंगे या नहीं।
9: अगर ये जश्न तुम्हारी कामयाबी की खुशी में है तो मुझे आना ही चाहिए था, इसलिए कि तुम मानो या ना मानो लेकिन तुम्हारी इस कामयाबी में मेरे उन दो टेंडर्स का भी हिस्सा है जो तुम्हें भंडारी के जरिए मिले थे।
8: मैं तो मानता हूं कि आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से। यकीन कीजिए मिस्टर आर के गुप्ता, जिंदगी में जो कुछ भी आपसे मिला वो मैं भूला नहीं हूं। वो तो एक कर्ज है जिसे एक न एक दिन मैं जरूर उतारूंगा। जरा ठीक से साफ कीजिएगा वरना कोई देखने वाला समझेगा कि आपके हाथ किसी के खून से रंगे।
9: नहीं मैंने हाथ धो दिया है, साफ हो गया।
8: मैं तो समझता था कि ये दाग आसानी से नहीं धुलते।
9: तुमसे हाथ मिलाकर जब मैंने अपने हाथ पर खून देखा तो एक सेकंड के लिए मैं समझा मेरा अपना ही खून है, बाद में पता चला तुम जख्म।
4: यहां तक आते आते अमिताभ बच्चन के अभिनय का सूरज अपने पूरे शबाब पर चमक रहा था। साल 1978 में एक और फिल्म आई, मुकद्दर का सिकंदर।
10: मैं कोई नेता या लीडर या सोशल वर्कर नहीं हूं। मैंने अगर इन यतीम बच्चों के लिए कुछ दिया है तो अपनी बिरादरी को दिया है, अपने भाइयों को दिया है, क्योंकि क्योंकि मैं भी इन लोगों की तरह एक एक यतीम हूं। जब होश संभाला तो न मां की गोद थी न बाप का साया था, फुटपाथ की गोद थी, भूख और गरीबी का साया था। मैं था, मेरी तन्हाई थी, ठोकरें थी, समाने की धुतकार थी, लोगों की गालियां थी। ऐसे में एक हमदर्द मिला, उसे मेरी हालत पर रहम आया, प्यार से उसने मेरे सिर पर हाथ रखा, मैं रो पड़ा। उसने गीत गाकर मेरे जख्मी दिल पर मरहम लगाया। उस मरहम के सहारे हम आज जिंदा हैं, वरना हम तो कब के मर गए होते। वो गीत मेरे जहन के वादियों में आज भी गूंज रहा है, मैं उसे भूला नहीं। मैं गली या चौराहे पे वो गीत नहीं गाता, नहीं, बल्कि जब कभी भी उस खोए हुए हमदर्द की याद आती है, जब कभी भी जिंदगी से मायूस हो जाता हूं, वो गीत गुनगुना लिया करता हूं। आज वही गीत आपके सामने अगर आप चाह।

0: और अब हम आ गए हैं सन 1981 की तरफ, जब अमिताभ बच्चन की एक के बाद एक तीन महत्वपूर्ण फिल्में आईं। फिल्म कालिया।
1: इसे सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके, ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके।
2: आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चढ़वा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। कालिया हर दीवार फांद के दिखा देगा जेलर साहब, हर जंजीर तोड़कर दिखा देगा, समझे?
0: इसी साल आई फिल्म नसीब।
3: ये चुटकी उधर होटल में बजाना जहाँ वेटर है, यहाँ बुलाना हो तो नाम लेके प्यार से बुलाओ।
4: अच्छा जॉन साहब, आपको हम घर छोड़ दें?
3: तुम मेरे को घर छोड़ोगे? मैं तो समझा था अपना स्टोरी होटल में खलास हो गया, पर ये तो आगे बढ़ रहा है। बढ़ने दो, बहुत दम है स्टोरी में। जल्दी खाना खत्म कर दिया आपने।
4: मैंने तो खाना खाया ही नहीं उसके साथ।
3: बहुत अच्छा किया खाना नहीं खाया, ये विलन लोग के साथ तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। जितना घटिया आदमी होता है ना उतना ही घटिया इनका खाना होता है। आप देखो अपना गला देखो है, कितना अच्छा है। वो खाना खाया होता ना बैठ गया होता।
4: मैंने तुम्हें यहाँ बक बक करने के लिए नहीं बिठाया।
3: अच्छा क्या, ठीक है बक बक नहीं करता है।
4: कहाँ जाना है? अरे बोलो ना कहाँ जाना है।
3: अरे कमाल करता है, खुद बोलता है कि बक बक करता है, फिर खुद ही बात करने को बोलता है। बैलेट फेयर जाना है।
4: अच्छा वहाँ रहते हो?
3: नहीं नहीं, वहाँ तो हर शनिचर हमारा इंतजार होता है।
4: इंतजार?
3: हाँ।
4: कौन करता है?
3: अपना महबूब।
4: महबूब?
3: हाँ, अपना डार्लिंग, अपना दिल, अपना जिगर। एक घंटा मुलाकात होता है तबीयत हरी हो जाती है। अभी आप मिलेगी ना, देखना कितने प्यार से मिलते। दो किस मैं मारूंगा, दो किस वो।
4: बस बस बस,
3: एकदम सही जगह पर लाके पटका।
0: और साल 1981 में ही आई अमिताभ बच्चन की एक और महत्वपूर्ण फिल्म यश चोपड़ा की सिलसिला।
5: जिंदगी का सफर तय करने के लिए बस एक सहारा चाहिए। शुक्रिया उस सफर के लिए, उस मान के लिए, उस जिंदगी के लिए। चंद अल्फाज अपने नए ड्रामे से आपकी खिदमत में पेश करता हूं। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो जमीनों की तरह सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हसीं चांद सही, मेरी दुनिया के हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, मैं किसी राह से गुजरूं, मेरी मंजिल तू है।
6: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरा होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।
0: साल 1984, अमिताभ बच्चन की एक बहुत यादगार भूमिका, फिल्म शराबी।
7: आपको कहां से मिल गए बड़े मालिक, हम तो उन्हें बरसों से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कभी दिखाई नहीं दिए।
8: क्या बात करते हैं आप, रोज तो आप उनसे मिलते हैं, अभी बाहर आए थे, बोर्ड की मीटिंग में बुलाया आपको।
7: ओ, वो बड़े मालिक, हम ऊपर वाले बड़े मालिक की सोच रहे थे। भाई ये नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहां हैं?
9: सरकार मैं तो आपके बगल में ही खड़ा हूं।
7: नथुलाल जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी हम यहाँ आए अगल बगल नहीं हमारे सामने रहा कीजिए ताकि हम आपकी मूछें देख सकें। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का, मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना।
9: ये तो आपका बड़प्पन है।
7: मेरा बड़प्पन है? मूछें बड़ी आपकी और बड़प्पन हमारा? नहीं,

0: बचपन तो उसका होता है जिसकी मूछें बड़ी होती है। हमारा तो कोई पन नहीं, ये देख मैदान सफर चट।
1: बात कहने की मालिक।
0: देखो यार, इतनी शानदार मूछों के मालिक होकर के हमें मालिक मत कहा करो। कहो क्या काम है?
1: सरकार, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है।
0: वाह, ये तो बड़ी खुशी का मौका है। हम अपनी बहन की शादी में जरूर आएंगे और तमाम जनता के सामने खड़े होकर के कहेंगे कि मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना हो।
2: नथुलाल जी, आपकी 3 बेटियां हैं ना?
1: नहीं मुंशी जी, मेरी 5 बेटियां हैं। पढ़ाया लिखाया मगर कोई फायदा नहीं। जो भी शादी की बात करने आता है 25-30 हजार जहेज के लिए मांगता है। अब बड़ी लड़की की शादी के लिए मैंने 25 हजार रुपया बड़ी मुश्किल से जमा किया है।
0: हमारे अकाउंट में से नथुलाल जी को 2.5 लाख रुपए दे दीजिए।
3: 2.5 लाख रुपया?
0: हाँ सक्सेना साहब, 50 हजार के हिसाब से हमारी 5 बहनों का 2.5 लाख बनता है। जाइए चेकबुक लेके आइए, हम अभी साइन किए देते हैं। कल का क्या भरोसा नथुलाल जी? मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना हो। क्यों? चलो ठीक है। हमने
4: हमारे लिए ये बड़ा ही मुश्किल था कि अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्मों की संवाद आपको सुनाएं और कौन सी फिल्मों के छोड़ दें। अब अमिताभ बच्चन के इस दौर की कुछ फिल्मों के बेमिसाल डायलॉग्स। फिल्म मोहब्बतें,
5: परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। आपसे पहले जो यहां से गुजर चुके हैं वो आपके लिए बहुत ऊंचे सिद्धांत छोड़ गए हैं। आज वो सब अपनी अपनी जगह बहुत कामयाब लोग हैं। कुछ बड़े लेखक, कुछ बड़े बिजनेसमैन, कुछ बड़े नेता, पर उन सब में एक चीज सामान्य है, वो सब अपनी सारी जिंदगी इस गुरुकुल के सिखाए हुए उसूलों पे चले। आज आप सबको उस कामयाब वंश का हिस्सा बनने का मौका दिया जा रहा है। हम आप सबको इस देश के चारों कोनों से चुन चुन कर यहां लाए हैं, इस विश्वास के साथ कि आप में वो काबिलियत है जो एक कामयाब इंसान बनने की होनी चाहिए। पर कोई भी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान होता है। आज आपने इस गुरुकुल में कदम रखकर बाहर की दुनिया अपने पीछे छोड़ दी है। जब तक आप यहां हैं, गुरुकुल ही आपकी दुनिया है।
4: फिल्म बागबान का ये जज्बाती कर देने वाला मोनोलॉग।
6: बागबान मेरे बारे में या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है, ये किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे के बारे में। ये किताब है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर पुल के बारे में। ये किताब है झुके हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे थे। ये किताब है कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था। ये किताब है लरसते हुए उन होठों के बारे में जिन पर कभी लोरियां थी मगर अब परसों से खामोश।
4: फिल्म पीकू का ये संवाद, ये मस्ती।
7: ए पीकू, अरे फ्लाश में पानी नहीं है।
8: ऐसे वॉक करने से कुछ नहीं होगा, जाके बैठिए बाथरूम में, हो जाएगी।
7: आई नो माई सिस्टम बेटर ऑन यू।
9: आपको ना कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर है, यहाँ पर।
10: इंसान का इमोशन उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है।
11: कमाल है, आप हर बात को पेट से कैसे जोड़ देते हैं।
4: निर्माता सुजीत सरकार की फिल्म पिंक का ये संवाद जो गली गली घर घर में गूंजा।
12: नो नो योर ऑनर, ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर, जिसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। माय क्लाइंट सेड नो योर ऑनर And these boys must realize, no का मतलब no होता। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, friend हो, girlfriend हो, कोई sex worker हो, या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो, no means no।
4: सबसे आखिर के लिए हमने चुना है 2

0: महानायकों का आमना सामना, सन 1982, फिल्म शक्ति।
1: पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने?
2: क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी?
1: तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है। इसका फैसला अदालत में होगा।
2: तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा।
1: विजय, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है।
2: मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा।
1: ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ।
2: कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है।
1: देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो।
0: दोस्तों, हमारी कोशिश यही रही कि भी किस तरीके से आप तक नए से नए अंदाज में प्रोग्राम पेश किए जाएं, और हमारी ये कोशिश कितनी कामयाब हुई है इसके बारे में आप ही अपनी राय हमें नवाजिए, ताकि हमें भी समझ आए कि जो हम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। फिलहाल आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो यूनिस ने आप लोगों के लिए पेश किया, इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी है। कि यूनिस जब मेरे पास आया ये सारे डायलॉग्स का कंसेप्ट लेके और इतने डायलॉग्स लेके, तो यकीन मानिए कि मेरे सर के ऊपर से चला गया कि अमिताभ बच्चन का कौन सा डायलॉग प्रोग्राम में लेना चाहिए, शामिल करना चाहिए और किसको छोड़ दें, क्योंकि अमिताभ बच्चन की अदायगी, किरदार का अंदाज़े बयां, उनका आवाज़ के ऊपर अपना किस तरीके का भाव है और किस तरीके का वज़न है उनका, उस सब को देखते हुए कोई भी डायलॉग छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिलहाल हमने जो कोशिश की वो कामयाब हुई कि नहीं हुई, ये आप ही बेहतर जान सकते हैं। प्रोग्राम आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
3: तो अब इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी के साथ अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत।
4: आज के फनकार।

पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक ऐसी श्रृंखला जिनमें वो गाने शामिल हैं जिन्हें पुरुष और महिला दोनों स्वरों ने अलग अलग गाया है, पर सुनने के आनंद और कौतूहल के लिए इन गानों को हमने एक दिलचस्प मोड़ पर आपस में जोड़ दिया है। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। यादों की तहरीर जैसे सितारों पे लिखी होती है, सितारों के कैनवस पर बनता है कोई चेहरा और बस मन खिंचा चला जाता है गुजरे जमाने में। यादें जुगनू की तरह चमकती हैं, कोई खुशबू, कोई इमारत, कोई तस्वीर, कोई बात, कोई गाना हमें खींच कर ले जाता है उस वक्त की तरफ जो बीत चुका है, जो अब कभी वापस नहीं आएगा, जो यादों में तब्दील हो चुका है।

सदियों से आसमान पर कंदील बनकर चमकता रहा है चांद। ये चांद अकेले लोगों का साथी है। ये चांद कभी उदास लगता है तो कभी मुस्कुराता हुआ नजर आता है। चांद ने देखा है लोगों को खुश होते हुए, उदास होते हुए। बातें करता है हमसे ये चांद। न जाने कितनी पीढ़ियों की, न जाने कितनी बातें चांद को पता हैं, पर अब लोग इतने मसरूफ हो गए हैं कि किसी के पास चांद से बातें करने की फुर्सत ही नहीं।

0: छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे ये गाना।
1: तो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी,
2: हैरान हूँ मैं।
0: हम अभी हाजिर हुए

जिंदगी ने कितना कुछ सिखाया है हमें। कभी ये फूलों से लगी, कभी पथरीली राहों पे ले गई जिंदगी। सब कुछ बदलता रहा, कुछ खोया कुछ पाया, पर जिंदगी रुकी नहीं, बस चलती चली गई। लोग बिछड़े, लोग मिले, कारवां आगे बढ़ता गया। जिंदगी के माथे पर शिकन आती तो है, पर इसकी मुस्कान कभी जाती नहीं है। इसकी मुस्कान कभी जानी भी नहीं चाहिए।

छाया गीत में पिछले कुछ हफ्तों से मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक ऐसी श्रृंखला जिनमें वो गाने शामिल हैं जिन्हें पुरुष और महिला दोनों स्वरों ने अलग अलग गाया है, पर सुनने के आनंद और कौतूहल के लिए इन गानों को हमने एक दिलचस्प मोड़ पर आपस में जोड़ दिया है।

आज के छाया गीत में थे ऐसे गाने जिनकी पुरुष और महिला दोनों संस्करण हैं, और सुनने के आनंद और कौतूहल के लिए इन्हें हमने आपस में किसी दिलचस्प मोड़ पर जोड़ दिया है। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। यूनुस खान को दीजिए इजाजत।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
3: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
2: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
4: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
2: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जब

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दिल्ली की यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
3: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
2: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
3: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
2: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में

0: ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया। देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में आज सुबह अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार। FM बैंड 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारे प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सवेरे 5:53 पर आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।